अनुराधा पौडवाल और साथियों के गाए इस भक्ति गीत के साथ ही भक्ति गीतों का कार्यक्रम प्रभाती वंदना अब यहीं संपन्न होता है।

0: मीडियम वेव 438.6 मीटर अर्थात 684 किलोहर्ट्स पर ये आकाशवाणी का श्री विजयपुरम केंद्र है। इस समय प्रातः के 5:55 हुए हैं। पेश है कार्यक्रम एग्री टिप्स।
1: मुख्यतः कृषि वानिकी की चार विधियां हैं, खेतों की मेड़ों पर वृक्ष लगाना, फार्म गृह व जल स्रोतों के पास पेड़ लगाना, जल निकास एवं सिंचाई की नालियों के किनारे पेड़ लगाना तथा फसल के साथ वृक्ष लगाना। किसान भाइयों, आप अपने खेतों की मेड़ों अथवा फार्म की सीमाओं पर वृक्ष लगा सकते हैं। वृक्ष लगाते समय यह ध्यान रहे कि उत्तरी और पश्चिमी सीमा पर वृक्ष लगाएं, जिससे कि पूर्व व दक्षिण की दिशा से सूर्य का प्रकाश बराबर मिल सके। ऐसे पेड़ लगाएं जो शीघ्र बढ़ने वाले हों, जिनका छतक अधिक घना ना हो, वृक्ष पानी तथा उर्वरकों के लिए प्रतिस्पर्धा ना करें। जहां तक हो सके दो दलीय वृक्ष लगाएं, जो कि नाइट्रोजन को प्रतिस्थापित करके खेत की उर्वरा शक्ति बढ़ाने में सहायक होते हैं और हमारी फसलों की उपज को भी प्रभावित नहीं करते। सीमाओं पर वृक्षरोपण 2 से 3 मीटर की दूरी पर करें। आवश्यकतानुसार वृक्षों की कटाई छटाई करते रहें। ऊपरी 1/3 हिस्सा छोड़ दें, ऐसा करने से वृक्षों की बढ़वार अच्छी होती है। खेत की मेड़ों पर लगाने के लिए जो उपयुक्त वृक्ष हैं, उनमें कैजुरीना, सुबबुल, मलबेरी, पॉपुलर आदि शामिल हैं। किसान भाइयों, फार्म गृह एवं जल स्रोतों के आसपास भी पेड़ लगाकर हम लाभान्वित हो सकते हैं। इससे लकड़ी के अतिरिक्त विश्राम के लिए छाया मिलेगी और समय समय पर पशुओं को चारा, ईंधन की लकड़ी आदि की भी प्राप्ति होगी। अक्सर किसान फार्म गृह के पास कुछ स्थान जानवरों को बांधने के लिए तथा कृषि यंत्र आदि को रखने के लिए छोड़ देते हैं। ऐसे स्थानों पर छायादार व बहुउपयोगी वृक्ष लगाएं। ऐसे वृक्ष ज्यादा घने नहीं होने चाहिए। इसके लिए उपयुक्त वृक्ष हैं आम, इमली, जामुन, कटहल, नीम, शहतूत, संतरा आदि। जल निकास एवं सिंचाई की नालियों के किनारे भी वृक्ष लगाए जा सकते हैं। इसके लिए जो उपयुक्त वृक्ष हैं उनमें शामिल हैं बबूल, पॉपुलर, बांस आदि। इससे हमारे किसान भाइयों को अतिरिक्त आमदनी मिलेगी और साथ ही साथ नालियों आदि में मिट्टी भरने से बच जाएगा। फसलों के साथ वृक्ष लगाकर भी हम कुछ लाभ कमा सकते हैं, लेकिन वृक्षों का चुनाव करते समय हमें कुछ बातों पर विशेष ध्यान देना होगा। वृक्ष ऐसे होने चाहिए जो कि फसलों के साथ प्रतिस्पर्धा ना करें। वृक्ष ज्यादा गहराई तक जाने वाले हों, वृक्ष अधिक फैलने वाले ना हों तथा ज्यादा घने ना हों, वृक्ष शीघ्र बढ़ने वाले हों, वृक्षों की पत्तियां व जड़ें ऐसी ना हों जो कि सड़ने पर हानिकारक प्रभाव छोड़ें। ऐसे वृक्ष जिनका कि हम चुनाव करते हैं वो बहुउपयोगी होने चाहिए तथा अधिक कटाई छटाई को सहन करने की क्षमता रखने वाले होने चाहिए। ऐसे वृक्षों में बबूल, जिंदाबल्ली, देशी बबूल, पॉपुलर, कैजुरीना आदि शामिल हैं। किसान भाइयों, अपने उपयोग के हिसाब से कृषि वानिकी की विभिन्न प्रणालियों को अपनाकर आप निश्चित तौर पर लाभान्वित हो सकते हैं।
0: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम एग्री टिप्स।

मीडियम वेव 438.6 मीटर अर्थात 684 किलोहर्ट्स पर ये आकाशवाणी का श्री विजयपुरम केंद्र है। सवेरे के 6 बजने को है। अब कुछ ही पलों में समाचारों का प्रसारण होगा जिसे हम अपने दिल्ली केंद्र से रिले करेंगे। कृपया प्रतीक्षा कीजिए।

नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मुकेश कुमार बल। गृहमंत्री अमित शाह ने कल नई दिल्ली में राष्ट्रीय आतंकरोधी नीति और रणनीति प्रहार सम्मेलन का उद्घाटन किया। सम्मेलन में प्रहार के 7 स्तंभों पर चर्चा हुई। श्री शाह ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सरकार ने सभी तरह के आतंकवाद को कतई बर्दाश्त न करने की नीति अपनाई है। उन्होंने बताया कि वर्ष 2019 से 2026 के बीच सरकार 36 देशों से 288 भगोड़े अपराधियों को भारत वापस लाई है। श्री शाह ने नया प्रत्यर्पण पोर्टल भी शुरू किया। ये विदेशों में मौजूद भगोड़ों को भारत वापस लाने के प्रयासों में समन्वय और तेजी लाने में सहायता करेगा। नौसेना का वर्ष 2026 का दूसरा कमांडर्स सम्मेलन आज से नई दिल्ली में होगा। रक्षा मंत्रालय ने बताया कि 3 दिन के इस सम्मेलन में नौसेना के वरिष्ठ अधिकारी, विभिन्न क्षेत्रों और स्थानों के संचालक तथा क्षेत्रीय कमांडर भाग लेंगे। सम्मेलन में सैन्य और रणनीतिक स्तर पर नौसेना की अभियानगत तैयारियों की समीक्षा की जाएगी। रक्षा मंत्रालय ने कहा कि पश्चिम एशिया में संघर्ष के बीच भारत के ऊर्जा हितों की सुरक्षा सहित समुद्री हितों की रक्षा में नौसेना की भूमिका को रेखांकित करने की दृष्टि से ये सम्मेलन महत्वपूर्ण होगा। भारत ने इस वर्ष वस्तुओं और सेवाओं के कुल निर्यात को पिछले वर्ष के 863 अरब डॉलर से बढ़ाकर 1,00,000 करोड़ डॉलर करने का लक्ष्य रखा है। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा कि वैश्विक चुनौतियों के बीच चालू वित्त वर्ष के पहले 6 महीनों में देश के वस्तु निर्यात में 15% से अधिक की वृद्धि हुई है। श्री गोयल ने कल मुंबई में भारत संयुक्त अरब अमीरात UAE निवेश संबंधी उच्च स्तरीय संयुक्त कार्यबल की 14वीं बैठक के बाद संवाददाताओं को बताया कि भारत UAE व्यापक आर्थिक साझेदारी समझौते के बाद दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय व्यापार दोगुना होकर करीब 100 अरब डॉलर हो गया है। उद्योग मंत्री पीयूष गोयल आज से 5 अक्टूबर तक अमरीका की यात्रा पर रहेंगे। वे कल से शुरू होने वाली 2 दिन की G20 व्यापार मंत्रियों की बैठक में शामिल होंगे। श्री गोयल अन्य सदस्य देशों के व्यापार और उद्योग मंत्रियों के साथ द्विपक्षीय बैठकें करेंगे। इन बैठकों में किसानों, मछुआरों, महिला उद्यमियों, स्टार्टअप, सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम

0: के लिए अवसर बढ़ाने पर चर्चा होगी। श्री गोयल अमेरिका के वाणिज्य मंत्री के साथ भी द्विपक्षीय बैठकें करेंगे। इसमें भारत अमेरिका द्विपक्षीय व्यापार समझौते को संतुलित और दोनों देशों के लिए लाभकारी बनाने तथा अंतरिम समझौते को अंतिम रूप देने के प्रयासों पर चर्चा होगी। भारत ने न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र महासभा के 81वें सत्र के दौरान नस्लवाद, नस्लीय भेदभाव, विदेशियों के प्रति नफरत और इससे जुड़ी असहिष्णुता से लड़ने के अपने संकल्प को दोहराया है। डर्बन घोषणा और कार्य योजना DDPA की 25वीं वर्षगांठ के अवसर पर आयोजित उच्च स्तरीय बैठक में विदेश मंत्रालय में पश्चिमी मामलों के सचिव सिबी जॉर्ज ने वैश्विक समानता और मानवीय गरिमा बढ़ाने को भारत का रुख स्पष्ट किया। दिल्ली में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण SIR अभियान के अंतर्गत जिन मतदाताओं को त्रुटियों के संबंध में नोटिस जारी किए गए हैं, बूथ स्तर के अधिकारी उनके घरों से दस्तावेज एकत्र करेंगे। इसका उद्देश्य मतदाताओं के लिए सुनवाई प्रक्रिया को सुगम बनाना है। इस बीच SIR के अंतर्गत आज से दिल्ली के कॉलेजों, विश्वविद्यालयों और अन्य शिक्षण संस्थानों में युवा मतदाताओं के पंजीकरण के लिए विशेष शिविर आयोजित किए जाएंगे। देश में इस वर्ष अगस्त में औद्योगिक उत्पादन सूचकांक IIP द्वारा मापे गए औद्योगिक उत्पादन में वार्षिक आधार पर 8% की वृद्धि हुई है। सरकार के ताजा आंकड़ों के अनुसार औद्योगिक गतिविधि का विस्तार जारी है। जुलाई की IIP वृद्धि दर पहले के 6.7% के अनुमान से बढ़कर 7.4% हो गई है। उधर जापान में जारी एशियाई खेलों में भारत ने निशानेबाजी, क्रिकेट, कुराश, एथलेटिक्स और मुक्केबाजी में खिलाड़ियों ने बेहतरीन प्रदर्शन किया है। पुरुष क्रिकेट टीम भी सेमीफाइनल में पहुंच गई है। अब तक भारत कुल 45 पदक प्रतियोगिता में जीत चुका है, जिनमें 4 स्वर्ण, 20 रजत और 21 कांस्य पदक शामिल हैं। राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और खेल मंत्री ने पदक विजेताओं को बधाई दी है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: This is Akashvani, the news read by Shagun Chopra. Union Home Minister Amit Shah inaugurated the conference on Prahar, National CET Policy and Strategy in New Delhi yesterday. The conference deliberated upon the 7 pillars of Prahar, including prevention, response, aggregating internal capacities, human rights, attenuating conditions for terrorism, aligning with international efforts, and recovery and resilience through a whole-of-society approach. Speaking on the occasion, the Home Minister said, "The government has adopted a zero-tolerance policy against all forms and manifestations of terrorism." He highlighted that from 2019 to 2026, the Narendra Modi government successfully brought back 288 fugitive criminals to India from 36 countries. Mr. Shah said, as a result of better coordination among agencies, more than 40 modules of Shehzad Bhatti network involved in cross-border smuggling of weapons, explosives and narcotics were busted. Commerce and Industry Minister Piyush Goyal will be on a visit to US from today till 5th of next month. During the visit, Mr. Goyal will participate in the two-day G20 Trade Ministers meeting, which will commence tomorrow. On the sidelines of the meeting, Mr. Goyal will hold bilateral meetings with his counterparts. The engagements will focus on expanding opportunities for farmers, fishermen, women entrepreneurs, startups, MSMEs and other enterprises. The minister also engaged bilaterally with his counterpart from the United States as part of ongoing efforts to advance a balanced and mutually beneficial India-US bilateral trade agreement and finalize an interim deal. Indian Navy will host second edition of Commanders Conference 2026 in New Delhi from today till Thursday. The three-day conference will provide an avenue for senior naval leadership, including outstation operational and area commanders. It will undertake a comprehensive review of our operational preparedness at the military strategic level and engage with senior government functionaries through an institutionalized mechanism. The conference will be pivotal in underscoring Indian Navy's contribution towards safeguarding India's maritime interests, including security of energy, amidst the ongoing conflicts in West Asia. On the opening day of the conference, Defence Minister Rajnath Singh will share his vision and guidance on national maritime perspectives and expectations from

0: Indian Navy. The Chief of the Defence Staff and the Chief of the Army Staff will also engage with naval commanders to foster tri-services synergy and integration. The FASTag annual pass has crossed the significant milestone of 1 crore passes issued after its launch on 15th August last year. Ministry of Road Transport and Highways said that the milestone reflects growing acceptance of the annual pass among private vehicle owners for providing a seamless and economical travel option on the national highways and expressways. It said that the pass is applicable on about more than 1,000 fee plazas on national highways and national expressways, which eliminates the need to frequently recharge FASTag through one-time fee payment of 3,075 rupees for one-year validity or 200 toll plaza crossings. India has dispatched about 3 tons of anti-tuberculosis medicines to Colombo to help support Sri Lanka's public health system. In a social media post, External Affairs Minister Dr. S. Jaishankar announced the dispatch and expressed India's commitment to supporting its neighbouring country. Dr. Jaishankar said, India remains committed to supporting Sri Lanka's public health system. About 3 tons of anti-tuberculosis medicines were dispatched to Colombo yesterday. India continued its impressive medal-winning run at the Asian Games in Aichi, Nagoya, Japan, with athletes and shooters adding several medals to the country's tally. In athletics, India secured a double podium finish in the men's javelin throw. Yashveer Singh won the silver medal with a personal best effort of 85.72 meters, while Rohit Yadav claimed bronze with a throw of 84.35 meters. In the men's long jump, Sri Shankar Murali secured the silver medal with a best effort of 8.07 meters. Gulveer Singh also added another silver to his tally after finishing runner-up in the men's 1,500 metres. He had earlier won silver in the men's 10,000 metres. In shooting, Isha Singh won silver in the women's 25-metre pistol individual event. The 21-year-old Indian shooter finished second with a score of 38 points. And that is the end of this news bulletin.
1: मीडियम वेव 438.6 मीटर अर्थात 684 किलोहर्ट्ज पर ये आकाशवाणी का श्री विजयपुरम केंद्र है। श्रोताओं, अब सुनिए जलयानों का यात्रा कार्यक्रम। जहाजरानी सेवा निदेशालय से प्राप्त जानकारी के अनुसार एमवी कैमल बे लिटिल अंडमान के लिए आज सुबह 10 बजे श्री विजयपुरम से चलेगा तथा इसकी वापसी होगी आज ही रात 9 बजे लिटिल अंडमान से। जलयान नालंदा नानकौरी होते हुए कैम्बल बे के लिए आज सवेरे 9 बजे श्री विजयपुरम से चलेगा। ये जलयान परसों बृहस्पतिवार 1 अक्टूबर को कैम्बल बे से छूटकर नानकौरी होते हुए श्री विजयपुरम लौटेगा। एमवी कालीघाट मायाबंदर होते हुए डिगलीपुर की यात्रा पर कल रात 8 बजे श्री विजयपुरम से प्रस्थान करेगा। ये जलयान परसों बृहस्पतिवार 1 अक्टूबर को दोपहर बाद 3 बजे डिगलीपुर से छूटकर मायाबंदर होते हुए श्री विजयपुरम लौटेगा। एमवी सेंटिनल लिटिल अंडमान होते हुए कार निकोबार की यात्रा पर बृहस्पतिवार 1 अक्टूबर को प्रातः 7 बजे श्री विजयपुरम से जाएगा। ये जलयान शुक्रवार 2 अक्टूबर को शाम 4 बजे कार निकोबार से छूटकर लिटिल अंडमान होते हुए श्री विजयपुरम वापस आएगा। एमवी नॉर्थ पैसेज शहीद द्वीप के लिए आज दिन में 11 बजे श्री विजयपुरम से प्रस्थान करेगा। ये जलयान आज ही दोपहर 1 बजे शहीद द्वीप से स्वराज द्वीप के लिए और दोपहर बाद 2:30 पर स्वराज द्वीप से श्री विजयपुरम के लिए छूटेगा। एमवी जॉली बॉय स्वराज द्वीप के लिए आज दिन में 11:30 पर श्री विजयपुरम से जाएगा। ये जलयान आज ही दोपहर बाद 2 बजे स्वराज द्वीप से शहीद द्वीप के लिए और दोपहर बाद 3:30 पर शहीद द्वीप से छूटकर श्री विजयपुरम लौटेगा। एमवी रंगत शहीद द्वीप के लिए आज दोपहर बाद 2:30 पर श्री विजयपुरम से रवाना होगा तथा इसकी वापसी होगी आज शाम 4:30 पर शहीद द्वीप से। एमवी रानी लक्ष्मी स्वराज द्वीप के लिए आज शाम 5 बजे श्री विजयपुरम से छूटेगा। ये जलयान कल प्रातः 5:30 पर स्वराज द्वीप से छूटकर शहीद द्वीप होते हुए श्री विजयपुरम लौटेगा। एमवी वंडूर स्वराज द्वीप और लॉन्ग आइलैंड होते हुए रंगत की यात्रा पर कल सुबह 6 बजे श्री विजयपुरम से प्रस्थान करेगा। ये जलयान कल ही दोपहर 12 बजे रंगत से छूटकर लॉन्ग आइलैंड और स्वराज द्वीप होते हुए श्री विजयपुरम लौटेगा। एमवी रानीचंगा शहीद द्वीप के लिए कल प्रातः 6:15 पर श्री विजयपुरम से छूटेगा तथा

0: इसकी वापसी होगी कल ही सुबह 8:30 पर शहीद द्वीप से। एमवी नॉर्थ पैसेज सुराज द्वीप के लिए कल सुबह 6:15 पर श्रीविजयपुरम से चलेगा तथा इसकी वापसी होगी कल ही सुबह 8:45 पर सुराज द्वीप से। एमवी जॉली बॉय रंगत के लिए कल सुबह 7:00 श्रीविजयपुरम से जाएगा तथा इसकी वापसी होगी परसों बृहस्पतिवार 1 अक्टूबर को सुबह 7:00 रंगत से। जाते व आते समय ये जलयान शहीद द्वीप, सुराज द्वीप, स्ट्रेट आइलैंड, कदमतल्ला और लॉन्ग आइलैंड में भी रुकेगा। एमवी बम्बू का शहीद द्वीप के लिए कल दिन में 11:00 श्रीविजयपुरम से रवाना होगा। ये जलयान कल ही दोपहर 1:00 शहीद द्वीप से सुराज द्वीप के लिए और दोपहर बाद 2:30 पर सुराज द्वीप से श्रीविजयपुरम के लिए छूटेगा। एमवी रानी लक्ष्मी सुराज द्वीप के लिए कल दिन में 11:30 पर श्रीविजयपुरम से जाएगा तथा इसकी वापसी होगी। ये जलयान कल ही दोपहर बाद 2:00 सुराज द्वीप से शहीद द्वीप के लिए और दोपहर बाद 3:30 पर शहीद द्वीप से छूटकर श्रीविजयपुरम लौटेगा। अभी आप जलयानों का यात्रा कार्यक्रम सुन रहे थे। ये आकाशवाणी का श्रीविजयपुरम केंद्र है। सवेरे के 6:15 हुए हैं। अब आपके मनोरंजन के लिए प्रस्तुत है कार्यक्रम इंद्रधनुष।
1: इंद्रधनुष।

इंद्रधनुष कार्यक्रम सुनने वाले सभी श्रोताओं को हमारा प्यार भरा नमस्कार। और आज मैं हूं आपके साथ आपके रेडियो दोस्त सीमा। दोस्तों, आज का इंद्रधनुष कार्यक्रम हम सजाएंगे धड़कन शीर्षक से। दोस्तों, धड़कन सिर्फ हमारे शरीर के भीतर चलने वाली एक लय नहीं, बल्कि जीवन के होने का एहसास है। जब तक दिल धड़कता है, तब तक उम्मीद, सपने और रिश्ते हमारे साथ चलते रहते हैं। हर धड़कन मानो यह संदेश देती है कि जिंदगी अभी बाकी है, इसलिए हर पल को पूरी शिद्दत से जीना चाहिए।

दोस्तों, कभी कभी धड़कनें शब्दों से ज्यादा कुछ कह जाती है। किसी अपने की याद आए तो दिल की धड़कन बढ़ जाती है। किसी खास इंसान के सामने दिल कुछ पल के लिए जैसे ठहर सा जाता है। प्रेम में धड़कनें भावनाओं की ऐसी भाषा बन जाती है जिसे कहने के लिए शब्दों की जरूरत नहीं पड़ती।

जी हाँ दोस्तों, धड़कनों का रिश्ता भावनाओं से भी गहरा है। खुशी में ये सुरों की तरह झूमती है, डर में तेज हो जाती है और दुख में जैसे धीमी पड़ जाती है। किसी की एक मुस्कान, एक मुलाकात या एक खूबसूरत याद भी दिल की धड़कनों को बदल सकती है।

0: और इसी के साथ दोस्तों इंद्रधनुष कार्यक्रम से दीजिए इजाजत, नमस्कार।
1: इंद्रधनुष।

श्रोताओं, अभी आप इंद्रधनुष कार्यक्रम का आनंद ले रहे थे। इस कार्यक्रम को आपकी सेवा में प्रस्तुत कर रही थी सीमा। मीडियम वेव 438.6 मीटर अर्थात 684 किलोहर्ट्ज पर आप सुन रहे हैं आकाशवाणी श्री विजयपुरम केंद्र से कार्यक्रम। इस समय सुबह के 6:30 हुए हैं। अब पेश है रामचरित मानस कहन की 376वीं कड़ी।

मेघनाद के नागपाश में अपने को बंधा लेना श्री रामचंद्र की एक रणलीला थी। महर्षि नारद द्वारा भेजे जाने पर गरुड़ ने वह नागपाश तो काट डाला, किंतु उनके मन में संदेह उत्पन्न हुआ कि जो व्यापक विकार रहित और परम ब्रह्म परमेश्वर हैं, वह ऐसे पाश में किस प्रकार बंध सकते हैं। अपनी शंका के निवारण के लिए पक्षीराज महर्षि नारद के पास पहुंचे। नारद जी ने उनके मोह का रहस्य ताड़कर उन्हें ब्रह्मा के पास भेज दिया, जिन्होंने संपूर्ण जगत की रचना की है। स्वयं उन ब्रह्मा को भी तो माया के प्रभाव में परमेश्वर ने कई बार नचाया है, अतः वह क्या कहते। उन्होंने गरुड़ को भगवान शंकर के पास जाने का परामर्श दिया, क्योंकि शंकर जी ही श्री राम की महिमा को भलीभांति जानते हैं।

अभी आप रामचरितमानस गान की 376वीं कड़ी का आनंद ले रहे थे। गायक कलाकार थे सुरेश वाडकर तथा संगीत संयोजन किया सतीश भाटिया ने। मीडियम वेव 438.6 मीटर अर्थात 684 किलोहर्ट्ज पर ये आकाशवाणी का श्री विजयपुरम केंद्र है। इस समय सवेरे के 6:40 हुए हैं। वतन के गीत कार्यक्रम के तहत आइए सुनते हैं कुछ देशभक्ति गीत।

विश्व हृदय दिवस पर लाइव फोन इन कार्यक्रम हेलो डॉक्टर का विशेष अंक। कार्यक्रम में अतिथि होंगे डॉक्टर बी अजीत कुमार, सीएमओ नोडल ऑफिसर एनपी एनसीडी। विषय रहेगा हृदय की सेहत हमारी जिम्मेदारी। ये कार्यक्रम प्राइमरी चैनल के अलावा एफएम 100.9 मेगाहर्ट्ज़ पर भी आप सुन सकेंगे। समय याद रखिएगा 7:30 पर।

वतन के गीत कार्यक्रम के तहत अभी आप कुछ देशभक्ति गीतों का आनंद ले रहे थे। ये आकाशवाणी का श्री विजयपुरम केंद्र है। सुबह के 6:50 हुए हैं। मौसम विभाग से प्राप्त जानकारी के अनुसार मछुआरों के लिए कोई विशेष चेतावनी नहीं है। जन सेवाओं को मौसम संबंधित चेतावनी में बताया जाता है कि द्वीपों के एक या दो भागों पर बिजली चमकने के साथ 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे के वेग से हवाएं चलेंगी। कल शाम तक के मौसम संबंधित पूर्वानुमान में बताया जाता है कि अंडमान तथा निकोबार द्वीप समूह के कई भागों पर हल्की से मध्यम वर्षा होगी या गरज के साथ छींटे पड़ेंगे। ये थी मौसम की जानकारी। और अब लीजिए सुनिए हमारे केंद्र से प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों की रूपरेखा।

सवेरे 7 बजे सुनिए जन सूचनाएं। 7:15 पर प्राइमरी चैनल पर आप सुनेंगे कार्यक्रम देश रागिनी, जबकि इसी समय पर FM 100.9 MHz पर आप सुन पाएंगे विविध भारती मुंबई से प्रसारित प्रायोजित कार्यक्रम भूले बिसरे गीत। 7:30 पर प्राइमरी चैनल और FM 100.9 MHz पर आप सुन सकेंगे विश्व हृदय दिवस पर लाइव फोन इन कार्यक्रम हेलो डॉक्टर का विशेष अंक। कार्यक्रम में अतिथि होंगे डॉक्टर बी अजीत कुमार, CMO नोडल ऑफिसर NP NCD। विषय रहेगा हृदय की सेहत हमारी जिम्मेदारी। सुगम संगीत के कार्यक्रम में 8:30 पर फनकार होंगे अनुराधा पौडवाल, महेंद्र कपूर एवं साथी। फिल्मी गीत सुनिए सुबह 9 बजे। 9:10 पर आप सुनेंगे माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी द्वारा जनसेवा के 25 वर्ष पूर्ण करने के अवसर पर समाचार सेवा प्रभाग द्वारा प्रस्तुत विशेष कार्यक्रम, जिसे हम अपने दिल्ली केंद्र से रिले करेंगे। तत्पश्चात 9:45 पर आप सुन सकेंगे कार्यक्रम फिल्मी गीत। गीत गाता चल कार्यक्रम का समय रहेगा सुबह 10 बजे। दिन के 11 बजे आप सुन पाएंगे प्रायोजित कार्यक्रम NCERT की 1382वीं कड़ी। चित्रगीत कार्यक्रम प्रसारित होगा 11:30 पर। दोपहर 12 बजे तेलुगु कार्यक्रम में आप सुन पाएंगे सुगम संगीत। मलयालम कार्यक्रम का समय रहेगा 12:30। सुगम संगीत के कार्यक्रम में दोपहर 1:10 पर हरिहरन और चंदन दास को आप सुन सकेंगे। आपके नाम फिल्मी पैगाम कार्यक्रम का समय रहेगा 1:30। दोपहर बाद 2:30 पर मौसम की जानकारी के बाद प्राइमरी चैनल पर हमारी पहली सभा संपन्न होगी, जबकि FM 100.9 MHz पर हमारी स्थानीय सभा जारी रहेगी नॉन स्टॉप म्यूजिक कार्यक्रम के साथ। तत्पश्चात 3:30 पर सुनिए कार्यक्रम यूं ही गाते रहो। हमारी दूसरी सभा आरंभ होगी शाम 4 बजे निकोबारी कार्यक्रम के साथ, जिसमें आप सुनेंगे सेंट माइकल चर्च के सदस्यों द्वारा प्रस्तुत गीत। सुगम संगीत के कार्यक्रम में 4:30 पर कलाकार होंगे मेहदी हसन। कार्यक्रमों का विवरण बताया जाएगा 4:40 पर। बहारों की शाम कार्यक्रम सुनिए 4:45 पर। शाम 5 बजे तमिल में महिलाओं के लिए कार्यक्रम होगा। बांग्ला कार्यक्रम का लुत्फ आप ले सकेंगे 5:30 पर। संध्या 6 बजे किसानवाणी कार्यक्रम में कड़ाकचांग की श्रीमती बिरसी

डुलना से बातचीत की जाएगी। विषय रहेगा परिवार की खुशहाली की ओर बढ़ता कदम, मेहनत और हुनर का संगम। 6:30 पर आप सुनेंगे सेवा संकल्प के अवसर पर विशेष कार्यक्रम ईज ऑफ डूइंग बिजनेस। इन कार्यक्रमों के अतिरिक्त रात 9:15 पर स्पॉटलाइट, 9:30 पर मनी टॉक, 9:45 पर मंथन और रात 10 बजे जापान में खेले जा रहे 20वें एशियाई खेलों की दैनिक रिपोर्ट हम अपने दिल्ली केंद्र से रिले करेंगे। जबकि रात्रि 10 बजे FM 100.9 MHz पर आप सुन पाएंगे विविध भारती मुंबई से प्रसारित प्रायोजित कार्यक्रम छाया गीत। ये थे हमारे केंद्र से प्रसारित होने वाले कार्यक्रम। ये आकाशवाणी का श्री विजयपुरम केंद्र है। सवेरे के 6:55 होने को है। अब कुछ ही पलों में संस्कृत में समाचार हम अपने दिल्ली केंद्र से रिले करेंगे। कृपया प्रतीक्षा कीजिए।

और रात 10 बजे जापान में खेले जा रहे 20वीं एशियाई खेलों की दैनिक रिपोर्ट हम अपने दिल्ली केंद्र से रिले करेंगे, जबकि रात्रि 10 बजे FM 100.9 मेगाहर्ट्ज पर आप सुन पाएंगे विविध भारती मुंबई से प्रसारित प्रायोजित कार्यक्रम छाया गीत। ये थे हमारे केंद्र से प्रसारित होने वाले कार्यक्रम। ये आकाशवाणी का श्री विजयपुरम केंद्र है। सवेरे के 6:55 होने को है। अब कुछ ही पलों में संस्कृत में समाचार हम अपने दिल्ली केंद्र से रिले करेंगे। कृपया प्रतीक्षा कीजिए।

0: क्षतात् अधिकं वृद्धिः समवापि. जापानदेशस्य आइची नागोया नगरे आयोज्यमानासु एशिया क्रीडासु भारतस्य पदकप्राप्तिक्रमः ह्यः अपि अनुवर्तितः. लक्ष्यवेधक्रीडा, क्रिकेट, कुराश, मुष्टियुद्धम् इत्यादिषु क्रीडासु भारतीयक्रीडकैः पदकानि प्राप्तानि. भारतेन पदकसंख्यायाम् अष्टौ पदकानि अधिकानि योजितानि. भारतीय पुरुष क्रिकेट दलं च उपान्त्यचक्रे प्रविष्टम्. पुरुषाणां कुन्तक्षेप स्पर्धायां भारतस्य द्वे पदके प्राप्ते. यशवीरसिंहेन रजतपदकं तथा रोहितयादवेन कांस्यपदकम् अवाप्तम्. इति वार्ताः.
1: मीडियम वेव 438.6 मीटर अर्थात 684 किलोहर्ट्ज और FM 100.9 मेगाहर्ट्ज पर ये आकाशवाणी का श्री विजयपुरम केंद्र है. इस समय सुबह के 7 बजे हैं. जन सूचनाएं. स्थानीय मौसम कार्यालय से आज सवेरे प्राप्त जानकारी के अनुसार पिछले 22 घंटों के दौरान श्रीविजयपुरम और आसपास के क्षेत्रों में वर्षा नहीं हुई. सवेरे 5:30 पर सापेक्ष आर्द्रता 92% तथा न्यूनतम तापमान 25.7 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया, जबकि कल शाम द्वीपों का अधिकतम तापमान रहा 31.2 डिग्री सेल्सियस. सूर्योदय सवेरे 5:08 पर हुआ तथा सूर्यास्त का समय रहेगा 5:11. मौसम के बाद अब विमान की उड़ान संबंधी सूचना. एयर इंडिया से प्राप्त जानकारी के अनुसार दिल्ली से आ रहा यात्री विमान 2937 दिन के 11 बजे श्रीविजयपुरम पहुंचेगा तथा विमान संख्या 2936 की श्रीविजयपुरम से दिल्ली के लिए उड़ान होगी दिन के 11:40 पर. ये थी एयर इंडिया से प्राप्त जानकारी के अनुसार विमान की उड़ान संबंधी सूचना.

श्रोताओं, आज सवेरे 7:30 पर आप सुनेंगे विश्व हृदय दिवस पर लाइव फोन इन कार्यक्रम हेलो डॉक्टर का विशेष अंक। कार्यक्रम में अतिथि होंगे डॉक्टर बी अजीत कुमार, CMO नोडल ऑफिसर NP NCD। विषय रहेगा हृदय की सेहत, हमारी जिम्मेदारी। ये कार्यक्रम प्राइमरी चैनल के अलावा FM 100.9 MHz पर भी आप सुन पाएंगे। विषय से संबंधित प्रश्न पूछने के लिए आप कॉल कर सकते हैं इस नंबर पर 2325582325588। समय याद रखिएगा, आज सवेरे 7:30 पर।

फिल्मी गीतों का आनंद आप ले सकेंगे सुबह 9:10 पर, 9:45 पर, सुबह 10 बजे गीत गाता चल कार्यक्रम में और दिन के 11:30 पर चित्रगीत कार्यक्रम में।

0: पर यह आकाशवाणी का श्री विजयपुरम केंद्र है। सवेरे के 7:05 पर आप सुनेंगे प्रादेशिक समाचार बुलेटिन इस अंतराल के बाद।
1: जब आप बच्चों के आसपास धूम्रपान करते हैं तो उन्हें हजारों ऐसे केमिकल से प्रभावित करते हैं जिनसे उनके जीवन को खतरा है। बीड़ी सिगरेट के धुएं में साइनाइड और कार्बन मोनोऑक्साइड जैसे कई जहरीले तत्व होते हैं जो स्वास्थ्य की गंभीर समस्याओं को जन्म देते हैं, जैसे कानों में दर्दनाक संक्रमण, गंभीर अस्थमा और जानलेवा निमोनिया। बच्चों का जन्म के समय कम वजन बीड़ी सिगरेट के धुएं की वजह से भी होता है और ये अचानक होने वाली शिशु मृत्यु के जोखिम को दुगना कर देता है। इसीलिए आज ही बीड़ी सिगरेट पीना छोड़ें।
2: नमस्कार, आकाशवाणी श्री विजयपुरम से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार।

उपराज्यपाल ने मुख्य सचिव को जनता द्वारा उठाए गए मुद्दों के शीघ्र समाधान के लिए आवश्यक कदम उठाने का निर्देश दिया। सर्वोच्च न्यायालय ने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से बकाया यातायात के ई चालान की वसूली में सुधार के लिए विचार करने को कहा है। राज्य परिवहन सेवा की ओर से श्री विजयपुरम से मिडिल स्ट्रेट तक दैनिक एसी डीलक्स बस सेवा का संचालन किया जा रहा है और पटाखों की खुदरा बिक्री के लिए अस्थायी लाइसेंस आवेदन जमा करने हेतु ई डिस्ट्रिक्ट पोर्टल 12 अक्टूबर तक खुला रहेगा।

सुबह के समाचारों के साथ मैं पूजा सिंह। मुख्य सचिव ज्ञानेश भारती ने कल लोक निवास में उपराज्यपाल डॉ. दिनेश शर्मा से मुलाकात की। बैठक के दौरान उपराज्यपाल ने जीबी पंत अस्पताल के अपने निरीक्षण के दौरान पाई गई कमियों को दूर करने और डॉक्टरों की कमी को जल्द से जल्द हल करने का निर्देश दिया। उन्होंने जन संवाद कार्यक्रम में जनता द्वारा उठाए गए मुद्दों के शीघ्र समाधान के लिए आवश्यक कदम उठाए जाने का भी निर्देश दिया। द्वीपों के उपराज्यपाल डॉ. दिनेश शर्मा ने अपने दो दिवसीय दौरे के दौरान कल दूसरे दिन शहीद द्वीप में स्वच्छता ही सेवा अभियान के तहत लक्ष्मणपुर बीच की स्वच्छता का निरीक्षण तथा समीक्षा की। अपने संबोधन में उपराज्यपाल ने इस बात पर जोर दिया कि स्वच्छता सुनिश्चित करने में ग्राम पंचायत की भागीदारी अत्यंत महत्वपूर्ण है। उन्होंने पर्यावरण संरक्षण के महत्व पर भी बल दिया ताकि विकास और पर्यावरण संरक्षण के बीच संतुलन बना रहे। उपराज्यपाल ने पर्यटन विभाग को इको हट्स, आगंतुकों के लिए बेंच, साइन बोर्ड और अन्य बुनियादी पर्यटक सुविधाएं स्थापित करने का निर्देश दिया। उपराज्यपाल ने स्थानीय निवासियों के साथ बातचीत भी की और उनकी शिकायतों को सुना। उपराज्यपाल ने अधिकारियों को विस्तृत रिपोर्ट तैयार करने और यात्रा के दौरान जारी निर्देशों का त्वरित क्रियान्वयन सुनिश्चित करने का निर्देश दिया। सर्वोच्च न्यायालय ने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से बकाया यातायात की ई चालान की राशि की वसूली में सुधार के लिए बिजली बिलों से जोड़ने पर विचार करने को कहा है। न्यायालय ने ये भी सुझाव दिया कि लंबित चालान का भुगतान होने तक वाहन पंजीकरण के नवीनीकरण, स्वामित्व हस्तांतरण, फिटनेस और PUC प्रमाण पत्र तथा ड्राइविंग लाइसेंस के नवीनीकरण पर रोक लगाई जाए। साथ ही न्यायालय ने परिवहन पोर्टल पर लंबित चालान वाले वाहनों को ब्लैकलिस्ट करने का भी सुझाव दिया है। लगातार चालान का भुगतान नहीं करने की स्थिति में वाहन जब्त करने की संभावना पर भी विचार करने को कहा गया है। स्वास्थ्य सेवा निदेशालय की आयुष शाखा और अंडमान निकोबार राज्य आयुष सोसाइटी की ओर से पूरे द्वीप समूह में निःशुल्क योग कक्षाओं का आयोजन किया जा रहा है। इच्छुक प्रतिभागियों से एक योग कक्षाओं में शामिल होकर लाभ उठाने को कहा गया है। अधिक जानकारी के लिए चिकित्सा अधिकारी प्रभारी डॉ. नंदिनी से संपर्क किया जा सकता है। अंडमान निकोबार कमान के 25 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में ANC सिल्वर जुबली हाफ मैराथन का आयोजन किया गया। इसमें विभिन्न श्रेणियों के तहत 1,500 से अधिक प्रतिभागियों ने भाग लिया। दौड़ को कमांडर इन चीफ वाइस एडमिरल विनीत मैकार्टी ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। समापन अवसर पर उन्होंने विजेताओं और उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले प्रतिभागियों को सम्मानित भी किया। SBI ग्रामीण स्वरोजगार प्रशिक्षण

संस्थान बेरोजगार युवाओं के लिए 2 अक्टूबर से खाद्य प्रसंस्करण, केक, पेस्ट्री और बेकरी उत्पाद निर्माण पर 38 दिनों का एक प्रशिक्षण कार्यक्रम शुरू कर रहा है। संस्थान ने इच्छुक उम्मीदवारों, विशेष रूप से आदिवासी समुदायों, बीपीएल परिवारों और एनआरएलएम स्वयं सहायता समूह के उम्मीदवारों को इस प्रशिक्षण कार्यक्रम के लिए पंजीकरण करने को कहा है। अधिक जानकारी के लिए SBI RCT से संपर्क किया जा सकता है। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी श्री विजयपुरम से सुन रहे हैं। समाचारों में आगे प्रमुख है बस सेवा और पटाखों के लिए आवेदन। आकाशवाणी श्री विजयपुरम से प्रसारित होने वाला ये प्रादेशिक समाचार बुलेटिन आप मीडियम वेव के साथ साथ FM 100.9 MHz पर भी सुन रहे हैं। इसके अलावा प्रादेशिक समाचार अब सोशल मीडिया के विभिन्न प्लेटफॉर्म एक्स, यूट्यूब, फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी उपलब्ध है। प्रादेशिक समाचार में आपका फिर स्वागत है। राज्य परिवहन सेवा की ओर से आम जनता और पर्यटकों की सुविधा के लिए श्री विजयपुरम से मिडिल स्ट्रेट तक दैनिक AC डीलक्स बस सेवा का संचालन किया जा रहा है। ये बस सेवा श्री विजयपुरम से सुबह 4 बजे रवाना होती है और लगभग सुबह 7:30 बजे मिडिल स्ट्रेट पहुंचती है। अपनी वापसी यात्रा में ये बस मिडिल स्ट्रेट से श्री विजयपुरम के लिए दोपहर बाद 3 बजे प्रस्थान करती है। यात्री ATR टिकटिंग के ATS पोर्टल के माध्यम से यात्रा की तिथि से 10 दिन पूर्व तक अग्रिम टिकट बुकिंग की सुविधा का लाभ उठा सकते हैं। दिवाली के दौरान आतिशबाजी और पटाखों की खुदरा बिक्री के लिए अस्थायी लाइसेंस जारी करने के लिए आवेदन जमा करने हेतु अंडमान एवं निकोबार प्रशासन का ई डिस्ट्रिक्ट पोर्टल खुला रहेगा। इच्छुक व्यक्ति 12 अक्टूबर तक ई डिस्ट्रिक्ट पोर्टल के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। इसके लिए ऑफलाइन आवेदन स्वीकार नहीं किए जाएंगे। अस्थायी लाइसेंस प्रदान करना, निर्धारित लाइसेंसिंग साइट, अग्निशमन सुरक्षा, विद्युत सुरक्षा और अन्य लागू वैधानिक आवश्यकताओं की पूर्ति तथा सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन के अधीन होगा। सभी इच्छुक नागरिकों से निर्धारित अवधि के भीतर अपने आवेदन जमा करने को कहा गया है। विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग ने कंप्यूटर असिस्टेंट के 1, जूनियर लेबोरेटरी असिस्टेंट और फील्ड असिस्टेंट के 2-2 पदों पर चयनित उम्मीदवारों की अंतिम योग्यता और प्रतीक्षा सूची जारी कर दी है। इन पदों पर नियुक्ति अल्पकालिक अनुबंध के आधार पर 1 वर्ष की अवधि के लिए की जाएगी। चयनित उम्मीदवार विभाग से अपना नियुक्ति पत्र कल तक प्राप्त कर सकते हैं। पशुपालन एवं पशु चिकित्सा सेवा विभाग की ओर से स्ट्रॉन्गर टुगेदर विषय के साथ कल पूरे द्वीप समूह में विभिन्न स्थानों पर विश्व रेबीज दिवस मनाया गया। इस अवसर पर जागरूकता कार्यक्रमों, एंटी रेबीज टीकाकरण शिविरों और पशु जन्म नियंत्रण ऑपरेशनों का आयोजन किया गया। मुख्य कार्यक्रम पशु चिकित्सा अस्पताल जंगली घाट में आयोजित हुआ। इस कार्यक्रम में सेवानिवृत्त वरिष्ठ पशु चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर AK वर्धन, पशुपालन विभाग के निदेशक और पशु चिकित्सा अधिकारियों ने रेबीज के विभिन्न पहलुओं पर प्रकाश डाला। उधर पशु चिकित्सा अस्पताल कार्निकोबार में छात्रों के लिए रेबीज जागरूकता शिविर आयोजित किया गया। कार्यक्रम के दौरान ITI के 2 छात्रों को बेजुबानों का संरक्षक के रूप में नामित किया गया। जिला उपायुक्त अमित काले ने राष्ट्रीय पशुधन मिशन के तहत किसानों को मुफ्त चूजे भी वितरित किए। विश्व पर्यटन दिवस और स्वच्छता ही सेवा के तहत मध्योत्तर अंडमान जिले में जिला स्तरीय स्वच्छता अभियान आयोजित कर जिले भर में 26 विभिन्न स्थानों पर एक साथ चलाया गया। मायाबंदर के बालूडेरा समुद्र तट पर मध्योत्तर अंडमान जिला उपायुक्त सुशांत पादा ने विभिन्न संबंधित विभागों के साथ स्वच्छता अभियान में भाग लिया। कार्यक्रम के दौरान उपायुक्त ने इस बात पर जोर दिया कि स्वच्छता केवल कभी कभार चलाए जाने वाले अभियानों या निर्दिष्ट सार्वजनिक स्थानों तक ही सीमित न रहकर जीवन जीने का एक तरीका और एक साझा जिम्मेदारी बनना चाहिए, जो समुद्र तटों और पर्यटन स्थलों से लेकर घरों, गांवों, संस्थानों, कार्यस्थलों और अन्य सामुदायिक स्थानों तक विस्तारित हो। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। उपराज्यपाल ने मुख्य सचिव को जनता द्वारा उठाए गए मुद्दे के शीघ्र समाधान के लिए आवश्यक कदम उठाने का निर्देश दिया। सर्वोच्च न्यायालय ने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से बकाया यातायात की

चालान की वसूली में सुधार के लिए विचार करने को कहा है। राज्य परिवहन सेवा की ओर से श्री विजयपुरम से मिडिल स्ट्रेट तक दैनिक एसी डीलक्स बस सेवा का संचालन किया जा रहा है और पटाखों की खुदरा बिक्री के लिए अस्थायी लाइसेंस आवेदन जमा करने हेतु ई डिस्ट्रिक्ट पोर्टल 12 अक्टूबर तक खुला रहेगा। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।

विविधताओं का संगम है हमारा ये देश, जहाँ भिन्न भिन्न भाषा, धर्म, आयु और जाति के लोग आपस में मिलजुल कर रहते हैं। पर जब भी कभी टकरार की स्थिति उत्पन्न होती है, हमारे मन से बस यही बात निकलती है,

हम बहुत खुशनसीब हैं, तभी तो हिंदुस्तान की इस पावन धरा पर हमने जन्म लिया है। जहाँ माता स्वरूपी नदियाँ हैं, तो कहीं पिता रूपी हिमालय की चोटियाँ हैं, कहीं हरे भरे खेत हैं, तो कहीं गर्म रेगिस्तान है। ये सब मिलकर बनता है हमारा हिंदुस्तान। हमारी मातृभूमि के कण कण का है उपकार हमारे जीवन पर।

0: मीडियम वेव 438.6 मीटर अर्थात 684 किलोहर्ट्ज़ और एफएम 100.9 मेगाहर्ट्ज़ पर ये आकाशवाणी का श्री विजयपुरम केंद्र है। सवेरे के 7:30 हुए हैं। अब प्रस्तुत है लाइव फोन इन कार्यक्रम हेलो डॉक्टर का विशेष अंक।
1: हेलो डॉक्टर।
2: Doctor.

0: दिल की धड़कनों में जीवन का संगीत है, हर धड़कन में छिपी खुशियों की उम्मीद है। इसे यूं ही धड़कता रहना है उम्र भर, हृदय की सेहत की जिम्मेदारी है हम सब पर। लाइव फोन इन कार्यक्रम हेलो डॉक्टर के विशेष अंक में सभी श्रोताओं का हार्दिक स्वागत है। कहते हैं हर धड़कन जिंदगी की एक खूबसूरत कहानी कहती है। हमारा हृदय बिना रुके दिन रात लगातार हमारे लिए काम करता रहता है, लेकिन श्रोताओं, क्या हम अपने इस अनमोल अंग की सेहत का उतना ही ख्याल रखते हैं? श्रोताओं, आज की भागदौड़ भरी जिंदगी, बदलती जीवन शैली, असंतुलित खान पान, तनाव और शारीरिक सक्रियता की कमी, इनका असर हमारे हृदय की सेहत पर पड़ सकता है। इसलिए ज़रूरी है कि हम अपने हृदय को समझें, उसकी देखभाल करें और समय रहते सही कदम उठाएं। श्रोताओं, आज विश्व हृदय दिवस के अवसर पर लाइव फोन इन कार्यक्रम हेलो डॉक्टर के इस विशेष अंक में हम चर्चा करेंगे इस महत्वपूर्ण विषय पर, हृदय की सेहत हमारी जिम्मेदारी। आखिर स्वस्थ हृदय के लिए हमारी दिनचर्या कैसी होनी चाहिए, किन आदतों से हम अपने हृदय को स्वस्थ रख सकते हैं, हृदय से जुड़े कौन से संकेत हमें बिल्कुल नज़रअंदाज नहीं करने चाहिए और क्या छोटे छोटे बदलाव हमारी सेहत, हृदय की सेहत में बड़ा फर्क ला सकते हैं, इन महत्वपूर्ण सवालों के जवाब के लिए आज हमारे साथ स्टूडियो में उपस्थित हैं चीफ मेडिकल ऑफिसर NFSG और नोडल ऑफिसर NP NCD डॉक्टर बी अजीत कुमार। डॉक्टर बी अजीत कुमार, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस प्रोग्राम में।
1: धन्यवाद, नमस्कार।
0: श्रोताओं, विषय से संबंधित कोई प्रश्न आप पूछना चाहते हैं तो नोट करें हमारा फ़ोन नंबर 232558, STD कोड 03192। फ़ोन नंबर एक बार फिर बता दें, 232558। डॉक्टर अजीत, सबसे पहले तो आप बताएं कि हमारे शरीर में हृदय की क्या भूमिका है और इसका स्वस्थ रहना क्यों ज़रूरी है?
1: अगर हमारा ज़िंदगी चलना है तो हमारा हृदय भी चलना है। जिस दिन हृदय रुक गया धड़कना, उस दिन हमारा ज़िंदगी भी रुक जाएगा। तो इससे इसके इम्पोर्टेंस आपको मालूम हो गया कि ये कितना इम्पोर्टेंट चीज़ है। एक स्वस्थ हृदय के लिए आपको अलग से कुछ प्लानिंग नहीं बनाना है, आपको ऐसी चीज़ें करनी है जो नेचुरल है, जो आर्टिफिशियल ना हो। आपको जो है अपना जो रूटीन जो कार्यक्रम है उसमें आपको कुछ कुछ चीज़ें आपको लानी है, जैसे कि आपको अपना जो है डेली जो हेल्दी हैबिट्स है उसको मेंटेन करना, उसको मिस नहीं करना है। दूसरा है, जो भी अगर वार्निंग्स

0: टाइम से जो भी आपको सिम्टम्स हैं, जो भी आपको तकलीफें कुछ हैं अपने शरीर में, उसको आप अवॉइड नहीं करना है, उसको नज़रअंदाज नहीं करना है। और तीसरा है रेगुलर चेकअप मेडिकल। ये
1: जी
0: तीन चीज़ें हैं जो आपको अपना हृदय को स्वस्थ रखने में मदद करेंगे। और
1: आपने
0: जी
1: हेल्दी हैबिट्स की बात की,
0: जी
1: तो इसमें क्या क्या शुमार है?
0: अब हेल्दी हैबिट्स में तो जो हमारी आदतें हैं उसमें आपको यह देखना है कि सबसे पहले तो ये आपने पहले सुना होगा, अर्ली टू बेड अर्ली टू राइज। अर्ली टू बेड, पहले आप रात को जल्दी सो जाइए और आप जल्दी उठिए। आपका सोने का समय कम से कम 7 से 8 घंटा होना ही चाहिए, 24 घंटा में होना ही चाहिए आपको, आपको ताकि आपको उसमें जो है हृदय को जो है काम जो है थोड़ा कम हो जाता है, क्योंकि आप इनएक्टिव रहते हैं फिजिकली और मेंटली भी। उसमें दिमाग को भी आराम मिलता है, आपके शरीर को भी आराम मिलता है, तो हार्ट जो है एकदम मिनिमम लेवल में काम करता है। तो इससे क्या है कि हम सहायता करते हैं हार्ट को थोड़ा सा रेस्ट करने के लिए, हल्का उनका काम जो है थोड़ा कम करने के लिए।
1: जी
0: ये एक जो है दिया आपने। दूसरी है आपके खान पान। आप जो है कैसे, आपकी जो आपके जो रोज़मर्रा के जो चीज़ें हैं, आप कैसे क्या क्या खाते हैं, आप क्या क्या पीते हैं, आपकी क्या क्या आदतें हैं खाने पीने का। और इसमें अब जैसे कि आपने देखा सुना होगा कि प्राइम मिनिस्टर का एक मुहिम है एडिबल ऑयल, खाने की तेल को एकदम आप आधे से भी कम करिए।
1: जी
0: ये एक सिर्फ एक इकोनॉमिकली को पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं है, ये आपके पूरे जन लोगों की जनरल स्वास्थ्य के लिए है। क्योंकि ये जो तेल है, ऑयल जो हम लोग खाते हैं, वो उसका जो हम लोग जो है हिसाब नहीं रखते हैं। आप जो भी तेल खाते हैं वो आप याद रखिए कि वो तेल हमारे शरीर में जमा हो जाता है कोलेस्ट्रॉल के रूप में, लिपिड्स के रूप में। और यही हार ये जो लिपिड्स और कोलेस्ट्रॉल है वो जो है आर्टरीज में ब्लड
1: जी
0: जिससे जिसमें जो है उसके नली में जमा होकर के हार्ट पर ज़्यादा स्ट्रेस करते हैं।
1: जी जी आपने कहा जो है हेल्दी हैबिट्स है, अर्ली टू बेड अर्ली टू राइज, लेकिन आजकल ऐसा होता नहीं है। आज ज़माना है सोशल मीडिया का, बच्चे सभी हम कह सकते हैं बहुत देर रात तक जगते हैं, तो इसका क्या-क्या बुरा असर पड़ सकता है हमारी सेहत पर?
0: देखिए आजकल जो सोशल मीडिया जो मोबाइल में लेकर के लोग बैठे रहते हैं और ये एक तरह से एडिक्शन है, लोग उसमें एक बार घुस जाते हैं तो वो कंटिन्यू करते रहते हैं लगातार एक ही जगह फोकस करके, एक ही मोबाइल छोटी से मोबाइल में स्ट्रेस करके, और उसको जो है लगातार 1, 2, 3 घंटे तक चलाते रहते हैं। इसमें जो है आपका जो मेंटल जो स्ट्रेस है और जो फोकस है वहाँ पर वो ज़्यादा वो स्ट्रेस करता है, वो आपको जो है आपकी जो नींद को जो है वो ख़राब करता है। क्योंकि आप एक बार उसमें घुस जाते हैं तो
1: जी
0: आपका सोने का समय बिगड़ जाता है, आप तो जब सोने का समय बिगड़ जाता है तो उठने का समय भी बिगड़ जाता है। तो
1: नेचुरली
0: ये तो, और उसमें बहुत सारी ऐसी ऐसी चीज़ें भी है जो बच्चों को नहीं भी देखनी चाहिए। तो ये जो टोटली जो है ये जो सोशल मीडिया वो जो यूज़ करते हैं हम लोग जो मोबाइल वगैरह में, तो ये जो है डायरेक्टली इनडायरेक्टली हमारे हृदय को असर करता है।
1: तो ये रेडियो के माध्यम आप हमारे जो युवा पीढ़ी है, यंगस्टर्स हैं, उनको क्या कहना चाहेंगे आप?
0: उनसे युवा पीढ़ी जो भी है उनसे ये हम ये कहते हैं कि आप जो है एक तो जैसे मैंने कहा कि आपका जो समय है आरा सोने का उसको आप रेगुलेट करिए, निर्धारित करिए कि भाई ये टाइम में ही हम मुझे सोना है। एक्टिविटीज़, आप सिर्फ बेड में लेट करके टीवी मत देखते रहिए, मोबाइल मत देखते रहिए, आपका फिजिकल एक्टिविटी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। आप
1: जी
0: यंग हैं इस वक्त, आप अपना अगर आप अपना जो ये जो रूटीन जो चीज़ है जिसमें जो आपका एक्टिविटीज़ है छोटे, याद रखिए आप छोटे से छोटे एक्टिविटी भी आपका जो एनर्जी कंज्यूम करेगा। तो आप कोशिश करिए कि कुछ ना कुछ, जैसे बहुत से घरों में हम देखते हैं कि बच्चे और अपने जो यंगस्टर्स हैं, मम्मी वो पानी ज़रा लेके आ कर देना
1: जी
0: या फिर वो ला करके देना ले करके मम्मी वहां से ले, ये चीज नहीं, आप खुद जाइए। वो उतना सा छोटा सा ही काम है लेकिन वहां पर आपका एनर्जी यूज हो रहा है। तो आपको इसमें जो जो जो कोलेस्ट्रॉल और लिपिड्स और जो भी एनर्जी शुगर की जो एनर्जी है वो उसमें कंज्यूम होगा। सीढ़ियां लिफ्ट मत यूज करिए, आप सीढ़ियाँ यूज़ करिए, सीढ़ियों से जाइए, सीढ़ियों से उतरिए। जब क्योंकि
1: जी
0: आप यंगस्टर या आप यूर यंगस्टर्स हैं, आप इसमें मोबाइल की जगह आप जाइए खेलने में चले जाइए कुछ घंटे, कुछ घंटे भी नहीं, आप आधा घंटा 15 मिनट भी अगर आप यूज़ करते हैं खेल में, आपका अच्छा जो फिजिकल एक्टिविटी अच्छा हो जाएगा, हृदय जो है आपका हार्ट जो है फंक्शनिंग उसमें बहुत ही अच्छा रेगुलेट होगा।
1: सुबह के 7:39 हुए हैं, आप सुन रहे हैं आकाशवाणी श्री विजयपुरम से लाइव फोन इन कार्यक्रम हेलो डॉक्टर का विशेष अंक, और आज हम चर्चा

0: रहे हैं हृदय की सेहत हमारी जिम्मेदारी। श्रोताओं, कोई सवाल है इस विषय से संबंधित तो आप कॉल कर सकते हैं। हमारे साथ हैं डॉक्टर बी अजीत कुमार, नोट कीजिए हमारा फ़ोन नंबर 232-558। डॉक्टर अजीत, खान पान की अगर हम बात करें तो हमारे खान पान में भी काफ़ी बदलाव आ गया है। आज लोग बाहर खाना ज़्यादा पसंद करते हैं, तो ऐसे में क्या करना चाहिए?
1: खान पान का चीज़ जो है, हमारा जो अभी फास्ट फूड का जो टेंडेंसी चल रहा है, ऑनलाइन वाला जो चीज़ है, ये आपके सेहत के लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। और क्योंकि अगर आप कभी कभार आपने लिया, ठीक है, लेकिन हम देखते हैं कि घर में जो बच्चे हैं, पेरेंट्स को तंग करते हैं, इवन बाहर में जो ऑफिस में काम करते हैं लोग, वो भी अपने घर से बना करके नहीं ले जाते हैं।
0: जी जी
1: वो भी अपने जो है ऑनलाइन ऑर्डर करते हैं। और उसमें जो है, आपको याद रखिए, आप स्वादिष्ट दिख सकता है, लग सकता है वो डाइट, लेकिन पौष्टिक नहीं हो सकता है, क्योंकि उसमें जो भी ऑयल ऑयल का जो यूज़ है, मसाला का जो यूज़ है, प्रिजर्वेटिव्स, तो आपके जो पैकेज, जो आपका जो फूड है, ड्रिंक्स है, उसको तो आप बिल्कुल भी यूज़ करना ही नहीं है, क्योंकि ये जो है उसमें प्रिजर्वेटिव्स होते हैं। और ये प्रिजर्वेटिव जो है, जिसको आप रेगुलरली यूज़ करते हैं इस पैकेज को, वो आपका सेहत के लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं है।
0: जी जी
1: आपके जो भी आपके सेहत के लिए अच्छा नहीं है, यानी कि आपके हार्ट के लिए अच्छा नहीं है, जो टोटली आपका जो बॉडी है उसके लिए। और इसमें ये जो फूड है, इसमें ये आप इसमें जो है, आप जितना आता है आप सब पूरा खाते हैं, आप उसको वेस्ट नहीं करने देते, आप पूरा एक पूरा के पूरा खा ले, जबकि हालांकि वो डाइट आपका उतना नहीं होता है। तो उसमें क्या है कि यू आर टेकिंग मोर एनर्जी, और ये जो मोर एनर्जी जाएगा कहाँ, वो आपके बॉडी में डिपॉजिट होगा। कहाँ डिपॉजिट होगा? एज ए लिपिड, एज ए फैट। वो कहाँ डिपॉजिट होगा? वो आपके आर्टरीज में होगा, वो आपके बेली फैट में होगा, आपके बॉडी के हर एक पार्ट में होगा। और ये सब को इसका जो जो बोझ है, वो आपका जो हृदय है उसको लेना पड़ेगा।
0: जी, तो ऐसे पे माता पिताओं की जिम्मेदारी बहुत है कि बच्चों को घर का खाना खिलाएं, शुरू से ही ये आदत रखें बच्चों में। जी, अब देखिए ये बताएं कि जिनको हार्ट डिजीज़ होता है उसके लक्षण क्या होते हैं, कैसे पता चले कि उनको हृदय संबंधी कुछ समस्याएं हैं?
1: हृदय संबंधी समस्याओं में तो सबसे पहले जो वार्निंग साइंस होता है वो है पाँव का फूलना। पाँव धीरे धीरे लोग नोटिस करेंगे कि अरे इसका पाँव जो है फूल रहा है। उसके पहले उसको उनको ये चक्कर आना, सर दर्द होना बीच बीच में, नींद की कमी होना, डिस्टर्ब्ड स्लीप होना, और उसके बाद में जो सीढ़ियाँ चढ़ेगा या रूटीन काम करेगा, सांस का फूलना होता है।
0: जी डॉक्टर साहब, यहाँ हम आपको रुकना चाहेंगे, हम बात करेंगे लक्षणों के बारे में। एक कॉलर हमसे जुड़े हैं। हेलो हेलो
2: हेलो।
0: हाँ जी नमस्कार, कौन बोल रहे हैं?
2: जी नमस्कार, मेरा नाम भारत है।
0: कौन बोल रहे हैं?
2: भारत है मेरा नाम।
0: क्या सवाल है आपका?
2: एक्चुअली हार्ट में कभी कभी बहुत शार्प पेन होता है, एकदम पिन पॉइंट पेन, तो उसका रीजन मेरे को जानना था कि क्या रीजन है।
1: हाँ, धन्यवाद आपके क्वेश्चन के लिए। आपने कहा कि चेस्ट पेन, जो छाती में जो दर्द होता है, उसका कारण क्या है? छाती में दर्द होने का कारण है बहुत, एक सिर्फ एक कारण नहीं हो सकता है। अगर आपने हार्ट का ही प्रॉब्लम अगर पूछा है, तो मैं आपको ये बता दूं कि हार्ट में जब क्योंकि आपको जैसा पता है कि हर एक आपके शरीर के हर एक ऑर्गन को ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है, और ऑक्सीजन जा पहुँचता है ब्लड से ही, ब्लड के थ्रू ही ऑक्सीजन और सारे जितने भी आपके सेल्स हैं, टिश्यूज़ हैं, अंग हैं, जितने हैं, सबको एक्टिविटी के लिए आपको ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है। जब हार्ट, और तो नेचुरली ये भी कि हार्ट को भी ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है, तो हार्ट में जो नलियाँ हैं, ब्लड सप्लाई होता है, अगर उसमें अगर ब्लॉकेज हो जाए हल्का सा, उसमें अगर जो अगर वो नैरो हो जाए वेसल्स, तो हार्ट का जो ब्लड है वो हार्ट के वेसल्स में जो प्रेशर में, जो अमाउंट में पहुंचना है वो नहीं पहुंच पाता। रीज़न उसका कोलेस्ट्रॉल का डिपॉजिट होना है, लिपिड्स का डिपॉजिट होना है, हार्ट के जो वेसल्स हैं, हार्ट में जो ब्लड सप्लाई करते हैं उसके वजह से, और तो हार्ट जो है रिस्पॉन्ड करता है उसका, तो उससे उसको जो है छाती में जो है वो दर्द होता है, ये उसका एक सिम्टम है।
2: सर लेकिन ये मेरे को बहुत पहले बचपन में भी होता था, मतलब जब मैं 15 साल का हूँ शायद तब भी।
1: क्या आपको हृदय रोग कुछ है क्या? आपको हार्ट का कुछ प्रॉब्लम है?
2: नहीं सर, बहुत रैंडमली हुआ है, कभी कभी हुआ है।
1: हाँ जी,
2: बट
1: हाँ।

0: तो ये तो इसमें अगर हार्ट का अगर प्रॉब्लम अगर 15 साल की उम्र से अगर होता था तो ये हार्ट का प्रॉब्लम निश्चित रूप से नहीं है। इसमें जो है कोई इसको जो है ये जो आपके जो रीढ़ की हड्डियां हैं जो कोस्टोकोंड्रल पेन है ये भी हो सकता है आपको, या फिर प्लूरिसी बोल करके जो एक होता है जहाँ लंग्स के उसके कारण भी हो सकता है, या हो सकता है आपको एसिडिटी का प्रॉब्लम है। ये तो ये कोई एक रीज़न नहीं है एज सच चेस्ट पेन के लिए। तो चेस्ट पेन अगर ये बोलते हैं तो इसके डिफरेंट रीजंस होते हैं। तो अगर वो चेस्ट पेन के साथ को अगर अगर आपको सांस की बीमारी हो रहा है, आपको आप बिल्कुल भी आप कुछ काम नहीं कर पा रहे हैं, तो ये आपको हृदय से हृदय रोग की तरफ इशारा करेगा। अदरवाइज सिर्फ चेस्ट पेन हो सकता है, मस्कुलर पेन भी हो। तो मेरे ख्याल से शायद, हाँ मेरे ख्याल से शायद आपको मस्कुलर पेन ही रहा होगा, या कोस्टोकोंड्राइटिस जो रिब्स में जो थी उसके वो होगा।
1: सर एक और क्वेश्चन था कि जो कोलेस्ट्रॉल जो डिपॉजिट हो चुका है उसको क्या मिनिमाइज कर सकते हैं?
0: हाँ, कोलेस्ट्रॉल जो डिपॉजिट होता है उसको मिनिमाइज ये कर सकते हैं। तो पहले तो ये कि आपको अपना जो ईटिंग हैबिट्स है, तेल का एकदम बिल्कुल आपको बहुत ही कंट्रोल करना है, बिल्कुल ऑयल ऑयल फ्री डाइट आप कोशिश करिए लेने के लिए। दूसरा, वहाँ मेडिसिन्स अवेलेबल है जो आपको कम से कम 3 महीने लेना होगा, तो वो ताकि वो जो प्लाक्स हैं वो धीरे धीरे धीरे धीरे चला जाए। और उसके साथ हल्के हल्के जो भी एक्सरसाइज है, एक्सरसाइज आपको स्ट्रेनस एक्सरसाइज बिल्कुल भी नहीं करना है, आपको करना है जो सबसे ईजिएस्ट इज वॉकिंग। आधे घंटे का आप जो वॉक है, सवेरे हो या शाम हो, आप वॉकिंग कर सकते हैं। अगर आप साइकिलिंग करते हैं इज़ वेरी गुड। अगर आप स्विमिंग करने का मौका होता तो आपके पूरे बॉडी का सबसे बेस्ट एक्सरसाइज
1: जी
2: जी
1: सर, सर कोई कॉमन टेस्ट भी है जो कोई नॉर्मल इंसान करा सकता है चेकिंग के लिए?
0: हाँ जी, आप अपने अब जो हमारे जो जीवपन में और अपने जितने भी पेरिफेरल हेल्थ इंस्टीट्यूट्स में जो लिपिड प्रोफाइल है जिसमें कोलेस्ट्रॉल, ट्राइग्लिसराइड, एचडीएल, एलडीएल के जो भी हैं वो आपको टेस्ट में आपको मालूम हो जाएगा कि इसके बाद जो आप उसका जो मात्रा है वो ब्लड में आपका लेवल कम है या ज़्यादा है। ये ब्लड टेस्ट से आपको इसका पता चल जाएगा कि आपके कोलेस्ट्रॉल की मात्रा आपकी कैसी है।
1: जी सर, थैंक यू सो
2: जी,
1: मच सर।
2: बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर साहब। जैसे कि अभी हमारे कॉलर ने कहा कि उनको जो सीने में दर्द हो रहा है बहुत पहले से है, तो यही कई लोगों को होता है कि कोई कहता है गैस है, किसी को एसिडिटी की प्रॉब्लम है, कोई मस्कुलर पेन है, तो अब ये पता कैसे चले जो पेन है वो हृदय से संबंधित है?
0: हाँ, सबसे पहले तो ये मैं बताऊँ कि अगर आपको चेस्ट पेन है तो उसको, ये चेस्ट पेन है या कोई भी तरह की आपको तकलीफ है, शारीरिक
2: जी
0: तकलीफ है, उसको अवॉइड नहीं करना है। मतलब आप अपना अपने से ही खुद का इलाज कभी मत करिए। आप जाइए हमारे अंडमान निकोबार में हेल्थ इंस्टीट्यूट, कोई भी हेल्थ इंस्टीट्यूट 1-4-5 किलोमीटर के अंदर से ज़्यादा दूर है ही नहीं, और पूरे इंडिया में ऐसा कोई जगह अवेलेबिलिटी नहीं है कि इतने क्लोज प्रॉक्सिमिटी में आपका हेल्थ इंस्टीट्यूट से। आप जाइए वहाँ के मेडिकल ऑफिसर्स के पास साथ मिलिए, मेडिकल ऑफिसर नहीं हो सब सेंटर में आप एएनएम से भी मिलिए, वहाँ पर सीएचओज हैं, कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर्स, उनसे कंसल्ट करिए, उनको बताइए, वो आपका चेकअप करेंगे। क्योंकि एनसीडी जो है, नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेस का जो हमारा रूटीन टेस्ट जो है हमेशा से होता है, तो अगर उनको वो चेकअप करेंगे उनके पास, अगर उनको लगेगा कि हाँ ये कुछ एबनॉर्मल है, तो वो आपको एडवाइस करेंगे कि आप जाइए मेडिकल ऑफिसर के पास जाइए। मेडिकल ऑफिसर आपको आपको चेकअप करेगा और उसके अनुसार आपको जो जो जो जो टेस्ट करना है वो सब करके आपको जो है वो अपने एडवाइस देंगे कि मेडिसिन की अगर ज़रूरत है तो मेडिसिन, या फिर एक्सरसाइज, या और हेल्थ एजुकेशन आपको अच्छी तरह से दे देंगे।
2: कई बार ऐसा होता है कि देर रात में ऐसे सीने में दर्द होता है, तो जो पेशेंट होता है घर वाले कहते हैं ठीक है सुबह चले जाएंगे हॉस्पिटल, तो सुबह होने तक उस मरीज़ को क्या करना चाहिए?
0: पहला तो ये है कि अगर सीने में दर्द है तो आपको घर में नहीं रहना है, आपको घर में रुकना ही नहीं है,
2: जी
0: ठीक है। दूसरा ये है कि आप अपनी तरफ से इलाज मत करिए। आप हो सकता है लेकिन आप आजकल आपके पास मोबाइल है, आप कॉल करिए आपके नियरेस्ट जो सबसे नज़दीकी जो हेल्थ इंस्टीट्यूट में आपको जो एएनएम होगी, या फिर आपका सीएचओ होगा, या फिर इवन मेडिकल ऑफिसर्स, कोई भी देखिए आपका जो है आपका कॉल को वो रिजेक्ट नहीं करेगा, आपके सारे जो भी ज़रूरत है उसको आप वो उठाएंगे। और सबसे इमरजेंसी है, अगर एक इमरजेंसी है आपको इमरजेंसी नंबर डायल करिए 112, ये यूनिवर्सल नंबर है,
2: जी
0: 112 एम्बुलेंस कॉल नंबर इज़ 102, ज़रूरत नहीं है 102 भी काट करने का, दोनों में 112 के लिए आप कोई भी इमरजेंसी कॉल कर सकते हैं किसी भी परिस्थिति के लिए,
2: जी
0: कोई किसी दुर्घटना हो या कुछ भी हो। और तो उसमें जो है 112 को अगर आप कॉल करेंगे तो पूछेंगे आपसे आपको क्या चाहिए, क्या हुआ पेशेंट को, क्या हुआ पर्सन को, क्या हुआ, तो
2: जी
0: उसके अनुसार वो आपको एम्बुलेंस में भिजवा एम्बुलेंस कॉल करके एम्बुलेंस को भिजवा देंगे,
2: जी
0: ताकि आप

0: देर रात हो, सुबह हो, कोई भी वक्त हो, वो एम्बुलेंस आपके घर के पास पहुंच जाएगा, ताकि उसको, अगर आप अपने पास उसको नहीं मूव कर सकते, एम्बुलेंस आकर के पेशेंट को मूव कर देगा।
1: श्रोताओं, आप सुन रहे हैं आकाशवाणी श्री विजयपुरम से विश्व हृदय दिवस के अवसर पर लाइव फोन इन कार्यक्रम हेलो डॉक्टर का विशेषांक। और आज इस कार्यक्रम में हम बातें कर रहे हैं हृदय की सेहत हमारी जिम्मेदारी। कोई सवाल आपके मन में है, पूछना चाहते हैं तो नोट करें हमारा फ़ोन नंबर 232-558। हमारे साथ कार्यक्रम में उपस्थित हैं चीफ मेडिकल ऑफिसर NFSG डॉक्टर बी अजीत कुमार। डॉक्टर अजीत, कई बार ऐसा होता है कोई व्यक्ति अपने घर से बाहर गया है, अचानक सीने में दर्द हुआ, गिर गया, तो उस व्यक्ति को मेडिकल पहुंचने तक का, वहाँ पे जो लोग रहते हैं या परिवार के जो लोग रहते हैं, क्या करना चाहिए?
0: अगर बाहर अगर किसी कोई आदमी चेस्ट पेन हो गया या और गिर गया, तो उसमें सबसे पहले तो ये है कि आप कॉल फॉर हेल्प, जैसे मैंने कहा 112 नंबर यूनिवर्सल नंबर है, 112 को इमिडिएटली पहले कॉल कर दीजिए कि
1: जी
0: आपको लोकेशन बता दीजिए कहाँ पर है, और उसके बाद में पेशेंट को अटेंड करिए। पेशेंट को अटेंड करने का मतलब ये है कि अगर वो गिर गया है तो इमिडिएटली उसको बिल्कुल भी मत उठाइए,
1: जी
0: उसी वक्त मत खड़े। अगर अगर वो किसी गंदगी जगह में, कीचड़ भरा ऐसे कुछ जगह में जहाँ पर
1: जी
0: उसको चोट लग सकती है, ऐसी जगह पर है, तो उसे कोई किसी अच्छी जगह पर लेकर गए, लिटा करके रखिए, कभी मत उसे उसे बैठाइए मत, उसे खड़ा खड़ा मत करिए। तो हो सकता है वो चेस्ट पेन जो है उसको हृदय रोग की वजह से, वो हार्ट अटैक की वजह से हुआ होगा। तो और उसको फ्रेश एयर, भीड़ नहीं करना है,
1: जी जी
0: पेशेंट को
1: जी
0: जो है अच्छा जो है ताज़ा हवा उसको मिलना चाहिए, और उसके बाद में पेशेंट को उसको सांत्वना देना है, उसको कंफर्ट देना है कि नहीं कुछ नहीं होगा, ये जो चीज़ है उसको जो जो कंफर्ट जो देने का, नहीं कुछ नहीं होगा, हमने सब बता दिया है आपको, इस तरह किसी तरह का गंभीर चीज़ नहीं है, ये होते रहता है, मतलब पेशेंट को कंफर्ट करने के लिए, ये जो उसका फर्स्ट एड है, दिस इज़ द फर्स्ट एड फॉर दिस चेस्ट पेन। उसमें क्या होता है, इसमें फ़ायदा क्या है, उसमें फ़ायदा ये है कि जब पेशेंट को कंफर्ट मिलता है, उसका जो हार्ट रेट है कम हो जाता है, हार्ट का जो फंक्शनिंग है वो हल्का हो जाता है,
1: जी
0: और
1: जी
0: दैट हेल्प्स हिम टू कॉन्शियसनेस में रखने के लिए, और उसका जो वाइटल्स जितना भी है उसको नॉर्मल रखने के लिए, जब तक कि एम्बुलेंस आप तक नहीं पहुंच पाता।
1: कई लोग
0: तो
1: पैनिक हो जाते हैं,
0: हाँ
1: चिल्लाते
0: जी
1: हैं,
0: बिल्कुल
1: आवाज़ ऊंची हो जाती
0: जी,
1: है।
0: तो सबसे पहले तो पैनिक, आपका जो बाईस्टैंडर्स है साथ वाले, वो पैनिक नहीं होना
1: जी
0: है।
1: जी
0: हाँ सर, पहले सबसे पहले तो वही है कि वो पैनिक नहीं हो, क्योंकि उनका जो रिएक्शन देख करके पेशेंट और डिप्रेशन में चला जाएगा। हाँ तो दिस ऑल कोरिलेटेड, तो आपको जितना हो सकेगा उसको काम रखना है, उसको सही तरह उसको उनसे बात करना है,
1: जी
0: उसको रेस्ट देना है, और इंतज़ार करिए कि एम्बुलेंस आप तक आए। अगर एम्बुलेंस आने में देर होता है, आपको लगता है, अगर आपके
1: जी
0: पास में गाड़ी है तो उसको इमिडिएटली पास के जो हॉस्पिटल है वहाँ पर पहुँचा दीजिए।
1: डॉक्टर
0: जी
1: साहब, आजकल की जो हमारी ज़िंदगी है, तनाव को हम इससे दूर नहीं रह सकते, एक स्ट्रेसफुल लाइफ है आज सबकी, तो स्ट्रेस का हमारे हृदय पर क्या प्रभाव पड़ता है?
0: देखिए, स्ट्रेस होता क्यों है, स्ट्रेस हमारे, एक तो आजकल का जो ज़िंदगी हमारे बहुत फास्ट लाइफ है, और जब आपको टेंशन होता है, स्ट्रेस होता है, तो लोग क्या करते हैं, स्मोकिंग और अल्कोहल,
1: जी
0: दोनों ही आपकी सेहत के लिए, आपके हार्ट के लिए एकदम ही खराब है। टोबैको, तंबाकू किसी भी फॉर्म में, वो स्मोकिंग हो, खैनी हो, आप ऐसे ही खा रहे हो, पान हो, किसी, टोबैको इज द नंबर वन एनिमी ऑफ हार्ट डिजीज। आपको किसी, अगर आप टोबैको ले रहे हैं, आज के आज बंद करिए, आज के आज बंद करिए, क्योंकि यही आपका ज़िंदगी जो है, आपका हार्ट को कमज़ोर करने का नंबर वन कारण आज के लाइफ में है। तो इसीलिए टोबैको आपको एकदम से अवॉइड करना है। अल्कोहल जो है वो, उसका भी वही काम है। हाँ, आप उसको रेयरली अगर आप लेते हैं तो ठीक है, लेकिन ये थिंग इज रेयरली, मत को आप उसको रेगुलर मत बनाइए
1: जी,
0: करके।
1: जैसे कि आपने कहा कि लोग जब स्ट्रेस में आते हैं तो मदिरा पान करते हैं या टोबैको या जो भी है, लेकिन बहुत से लोग हैं ऐसा कुछ भी नहीं करते, स्ट्रेस में तो रहते हैं लेकिन कोई नशा नहीं करते, उसका क्या प्रभाव पड़ता है?
0: उनका बात ये है कि वो अपना टाइम नहीं देते अपने आप को फ्री होने के लिए, उनको जो, उनका जो है वो अपने फैमिली में सबको ले, कहीं कभी पिकनिक में चले जाएं, एक साथ कुछ कहीं घूमने चले जाएं, और एक दूसरे से बात करें। आज की ज़िंदगी में जो है बच्चे जो है पेरेंट्स के साथ में बात नहीं करें, पेरेंट्स भी आपस में नहीं बात करते हैं।
1: जी, सब
0: हाँ
1: एक
0: हम
1: फोन पे लगे रहते
0: एकदम
1: हैं।
0: बिल्कुल, तो समय ही नहीं आपका, एक दूसरे की जो बातें हैं, एक
1: जी
0: आपको सुनने वाला नहीं है और उसको समझने वाला नहीं, क्योंकि आपका फोकस जो है दूसरी तरफ है। तो अगर आप एक दूसरे से अपने फैमिली में ही अगर

0: इफ़ यू आर वेरी फ्रेंडली टू ईच अदर, अपनी बातें एक दूसरे को रख सकते हैं, अपने किस्से बता सकते हैं, आज के दिन में क्या हुआ कि शेयर कर सकते हैं, करते हैं, तो दिस इट्सेल्फ जो है आपका स्ट्रेस को एकदम 80% ख़त्म कर दे।
1: जी देखिए, आजकल बहुत से लोग हाई ब्लड प्रेशर और मधुमेह, शुगर जो बीमारी है, डायबिटीज़ है, इसका शिकार होते हैं, इसका क्या असर पड़ता है?
0: डायबिटीज़ जो है एक ऐसी बीमारी है जो आपके शरीर के हर एक भाग को हर असर करता है
1: जी
0: करता है, और हार्ट उसमें वन ऑफ द मेजर थिंग है। अगर जहाँ हाई ब्लड प्रेशर यानी कि हाइपरटेंशन और डायबिटीज़ मेलिटस अगर एक कंबाइंड अगर हो गया तो आपका हार्ट डिजीज़ का जो रिस्क फैक्टर इज़ वेरी हाई। तो इसीलिए अगर आप तो ये जो नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ को पर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो है उस पर बहुत स्ट्रेस करता है कि इसको कंट्रोल करना है ताकि हृदय रोग जो है को हम लोग कम कर सकें और हमारा जो ये जो कम्युनिटी है वो जो है वो आगे बढ़ सके, एक स्वास्थ्य जीवन जी सके, ताकि ये जो हेल्प करेगा हमारे देश को आगे बढ़ने के लिए।
1: कई बार ऐसा होता है कि कई लोगों को

0: तो ये जो नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ को अपन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो है उस पर बहुत स्ट्रेस करता है कि इसको कंट्रोल करना है ताकि हृदय रोग जो है को हम लोग कम कर सकें और हमारा जो ये जो कम्युनिटी है वो जो है वो आगे बढ़ सके, एक स्वास्थ्य जीवन जी सके, ताकि ये जो हेल्प करेगा हमारे देश को आगे बढ़ने के लिए।
1: कई बार ऐसा होता है कि कई लोगों को हाई ब्लड प्रेशर होता है लेकिन उसकी जानकारी उनको होती नहीं है जब तक कि कोई बड़ी समस्या ना आ जाए, तो ऐसे में ब्लड प्रेशर की जांच करना कितना ज़रूरी है?
0: जी, क्योंकि मैंने आपको देखा था, कहा था शुरुआत में, डोंट मिस ए बीट 312, उसमें एक तीसरा था कि आपका रेगुलर चेकअप।
1: जी,
0: रेगुलर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। 30 उम्र के बाद आपको कुछ तकलीफ हो ना हो, आपको 3 महीने 6 महीने में एक बार मेडिकल चेकअप जरूर कराना चाहिए। 40 ईयर्स के बाद में आपके इट इज़ मस्ट कि आप जो है रूटीन जो है अपना शुगर और प्रेशर का जो है चेकअप बराबर करिए। और अगर आपको डायबिटीज़ है या बीपी है, आपको हर 15 दिन में आपको हॉस्पिटल जाना है, और ज़रूरी है हर 15 दिन में, 2 सप्ताह में आपको चेकअप करना है ताकि डॉक्टर वो देख करके बीपी और शुगर जो है उसका लेवल कम है या ज़्यादा है, अगर ज़्यादा है तो उसको मेडिसिन जो है उसका डोज जो है बढ़ाना या घटाना ये वो करेंगे ताकि आपका जो हृदय वो स्वस्थ रहे।
1: हम लक्षणों की बात कर रहे थे, ऐसे कौन से लक्षण हैं जिसको नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए?
0: लक्षणों में एक तो ये कि जो आप रूटीन चल रहे हैं उसमें आपको सांस सांस जो फूल रहा है,
1: जी,
0: छाती में दर्द हो रहा है, आपको बहुत ज़्यादा थकावट हो रहा है, ये 3 चीज़ें इज वेरी अर्ली साइंस, ये बहुत अर्ली साइंस है आपको सांस में। फिर उसके बाद में आता है पाँव का फूलना, पैर का फूलना। तो अर्ली साइंस में आप में जो है आप देख रहे हैं कि आपके साथ वाले दोस्त वाले अरे आराम से चल रहे हैं, उनको कोई तकलीफ नहीं है, लेकिन आप जो है
1: हाँ रहे हैं।
0: दूसरा और मेजर फैक्टर एक चीज़ है आपका ओबेसिटी, आपका जो वजन जो बढ़ रहा है, वेट जो बढ़ रहा है वो दैट इज़ ए रॉन्ग साइन कि आप भी आप अगर आप क्योंकि मोटा शरीर भारी शरीर हृदय के ऊपर ज़्यादा बोझ डालेगा और हृदय उससे असर होगा। तो ये जो चीज़ें हैं तो ईजी फटीग, इजी मतलब कोई भी आप रूटीन काम कर रहे हैं उसमें थकावट हो रहा है, थकावट हो रहा है, तो ये सर ये चीज़ जो चीज़ें जो हैं तो आपको दिमाग उसी वक्त ध्यान देना चाहिए कि कहीं मैं हृदय में मेरी कमजोरी तो नहीं हो रही।
1: जी जी डॉक्टर साहब, समय बहुत कम है, आप चलते चलते बताइएगा कि इस वर्ष की थीम क्या है और कुछ टिप्स जो आप हमारे श्रोताओं को देना चाहें।
0: इस 2026 का जो थीम है वो डोंट मिस अ बीट, 3 चीज़ें हैं, डोंट मिस योर डेली हेल्दी हैबिट्स, आपका जो हेल्दी हैबिट्स उसको मिस नहीं करना है, डोंट मिस वार्निंग साइंस, जो भी वार्निंग साइंस है, जो भी आपको साइंस है आपका बॉडी दिखा रहा है उसको आप मिस मत करिए, और तीसरा है रेगुलर चेकअप। ये 3 चीज़ें हैं जो डोंट मिस ये थीम पर हैं। इसके अलावा हम अब इस सारी चीज़ें क्योंकि आज के दिन में हमारी पूरी दुनिया में जो मृत्यु का जो कारण है वो सबसे ज़्यादा जो उसमें सबसे लीडिंग रीज़न इज़ कार्डियक डिजीज़, हार्ट से होती हुई बीमारियां हैं सबसे ज़्यादा। इसलिए आज हम ये प्लेज लें कि हमारा जो हृदय का जो सेहत है हमारी जिम्मेदारी, ये हमारा प्लेज होना चाहिए ताकि हम एक अच्छा स्वस्थ जिंदगी जी सकें और दूसरों को भी बता सकें, सिखा सकें।
1: बिल्कुल, विश्व हृदय दिवस पर आइए श्रोताओं, हम सब अपने हृदय के लिए संकल्प लें, अपने स्वास्थ्य को प्राथमिकता देंगे और हृदय की सेहत के लिए सही कदम उठाएंगे। तो डॉक्टर अजीत कुमार, आज आप कार्यक्रम में आए और आपने हृदय को लेकर बहुत सारी जानकारी हमारे श्रोताओं के साथ साझा की। कार्यक्रम में समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।
0: धन्यवाद
1: श्रोताओं, हेलो डॉक्टर कार्यक्रम के अगले अंक में शनिवार को एक नए विषय के साथ हम फिर उपस्थित होंगे, तब तक के लिए नमस्कार।

0: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं जया भारती। सर्वोच्च न्यायालय ने केंद्र सरकार से इस वर्ष सीबीएसई की त्रिभाषा नीति से कक्षा 6 के विद्यार्थियों को छूट देने पर विचार करने को कहा। भारतीय नौसेना आज से बृहस्पतिवार तक नई दिल्ली में कमांडर्स सम्मेलन 2026 के दूसरे संस्करण की मेजबानी करेगी। दिल्ली सरकार ने राष्ट्रीय राजधानी में सर्दियों के मौसम में वायु प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए कार्य योजना तैयार की। अमेरिका ने भारत और 19 अन्य देशों से आयातित विशेष दवाओं पर टैरिफ हटाया और एशियाई खेलों में भारतीय पुरुष क्रिकेट टीम सेमीफाइनल में पहुंची। अब समाचार विस्तार से। सर्वोच्च न्यायालय ने केंद्र सरकार और केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड सीबीएसई के मौजूदा सत्र में कक्षा 6 के विद्यार्थियों को कक्षा 7 के विद्यार्थियों की तरह त्रिभाषा नीति से छूट देने पर विचार करने को कहा है। मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति सूर्यकांत के नेतृत्व वाली पीठ ने केंद्र सरकार तथा सीबीएसई की ओर से उपस्थित सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता और अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल ऐश्वर्या भाटी से कहा कि वे कक्षा 6 के विद्यार्थियों को भी वही छूट दें जो कक्षा 7, 8 और 9 के विद्यार्थियों को दी गई है। सर्वोच्च न्यायालय ने 17 सितंबर को सीबीएसई से कक्षा 6 के विद्यार्थियों के लिए 2027 से शुरू होने वाले अगले शैक्षणिक सत्र से भारतीय मूल की दो भाषाओं सहित तीन भाषाओं के अनिवार्य अध्ययन वाली अपनी नीति को लागू करने पर विचार करने को कहा था। यह विवाद सीबीएसई के अपने पाठ्यक्रम को राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 और विद्यालय शिक्षा के लिए राष्ट्रीय पाठ्य चर्चा के रूपरेखा 2023 के अनुरूप बनाने के निर्णय से संबंधित है। इस रूपरेखा के अंतर्गत विद्यार्थियों के लिए दो भारतीय भाषाओं सहित तीन भाषाओं का अध्ययन अनिवार्य है। सर्वोच्च न्यायालय ने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से बकाया यातायात के ई चालान की राशि को बिजली बिलों से जोड़ने पर विचार करने को कहा है। न्यायालय ने कहा कि प्रभावी वसूली की व्यवस्था में इस पहल से सुधार किया जा सकता है। न्यायालय ने यह भी सुझाव दिया कि लंबित चालान का भुगतान होने तक वाहन पंजीकरण के नवीनीकरण, स्वामित्व हस्तांतरण, फिटनेस और पीयूसी प्रमाण पत्र तथा ड्राइविंग लाइसेंस के नवीनीकरण पर रोक लगाई जाए। भारतीय नौसेना का वर्ष 2026 का दूसरा कमांडर्स सम्मेलन आज से नई दिल्ली में शुरू हो रहा है। रक्षा मंत्रालय ने बताया कि 3 दिन के सम्मेलन में नौसेना के वरिष्ठ अधिकारी, विभिन्न क्षेत्रों के संचालक और क्षेत्रीय कमांडर हिस्सा लेंगे। सम्मेलन में सैन्य और रणनीतिक स्तर पर नौसेना की परिचालन तैयारियों की व्यापक समीक्षा की जाएगी। रक्षा मंत्रालय ने कहा कि पश्चिम एशिया में संघर्ष के बीच भारत के ऊर्जा हितों की सुरक्षा सहित समुद्री हितों की रक्षा में भारतीय नौसेना की भूमिका को रेखांकित करने की दृष्टि से यह सम्मेलन महत्वपूर्ण होगा। सम्मेलन के पहले दिन रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह राष्ट्रीय समुद्री हितों और भारतीय नौसेना से अपेक्षाओं पर अपना दृष्टिकोण और मार्गदर्शन साझा करेंगे। प्रमुख रक्षा अध्यक्ष और थल सेना अध्यक्ष भी नौसेना कमांडरों के साथ विचार विमर्श करेंगे। इसका उद्देश्य तीनों सेनाओं के बीच समन्वय और एकीकरण को सुदृढ़ करना है। पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव ने दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता के साथ दिल्ली में वायु प्रदूषण को कम करने के लिए कार्य योजना की समीक्षा के लिए कल एक उच्चस्तरीय बैठक की। हमारे संवाददाता ने बताया है कि इस बैठक में अब तक उठाए गए कदमों और सर्दियों के मौसम से पहले उसके दौरान जरूरी उपाय की समीक्षा की गई।
1: कार्य योजना के अंतर्गत दिल्ली के सभी पेट्रोल पंप पर पीयूसीसी नहीं तो ईंधन नहीं व्यवस्था लागू की जाएगी। इसके लिए जागरूकता अभियान और नियमों का पालन सुनिश्चित कर कार्रवाई की जाएगी। इसके अंतर्गत पहले नवंबर से 31 जनवरी तक तोड़फोड़ और निर्माण कार्यों पर पूर्ण प्रतिबंध रहेगा। सार्वजनिक अभियान के माध्यम से दिल्ली मेट्रो सारथी ऐप को बढ़ावा दिया जाएगा और परिवहन सुविधा बेहतर की जाएगी। वृक्षारोपण सार्वजनिक अभियान के माध्यम से दिल्ली मेट्रो सारथी ऐप को बढ़ावा दिया जाएगा और परिवहन सुविधा बेहतर की जाएगी। वृक्षारोपण कार्य में तेजी लाई जाएगी और मलबा ऐप पर पंजीकरण अनिवार्य किया जाएगा। सर्दियों की कार्य योजना के तहत प्रदूषण फैलाने वाले वाहनों पर

अभी आप लाइव फोन इन कार्यक्रम हेलो डॉक्टर का विशेष अंक सुन रहे थे। अतिथि थे डॉक्टर बी अजीत कुमार, सीएमओ नोडल ऑफिसर एनपीएनसीडी। विषय था हृदय की सेहत हमारी जिम्मेदारी। तकनीकी सहयोग रहा अनिमेश चंद्र रॉय और हिमांजलि ओझा का। कार्यक्रम की संचालक एवं प्रस्तुतकर्ता थी जयशीला। ये आकाशवाणी का श्री विजयपुरम केंद्र है। सवेरे के 8 बजने को है। अब अगला प्रसारण हम अपने दिल्ली केंद्र से रिले करेंगे। कृपया प्रतीक्षा कीजिए।

0: अधिक पार्किंग शुल्क, कार्यालयों के समय में बदलाव और वर्क फ्रॉम होम जैसी व्यवस्थाएं लागू की जाएंगी। इलेक्ट्रिक वाहन नीति 2026 और परिवर्तन योजना को बढ़ावा देने के लिए पंजीकरण अभियान और जन भागीदारी शिविर आयोजित किए जाएंगे। बैठक में केंद्रीय पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव ने 37 चिन्हित प्रदूषण 10 अक्टूबर तक जन भागीदारी कार्यक्रम आयोजित करने और संबंधित पक्षों को शामिल करने पर बल दिया। वहीं दिल्ली के मुख्यमंत्री ने जोर दिया कि निर्णयों तथा चिन्हित कार्रवाई बिंदुओं का धरातल पर प्रभावी कार्यान्वयन सुनिश्चित किया जाना चाहिए। नितिका गुप्ता के साथ ऋषु जायसवाल, आकाशवाणी समाचार दिल्ली।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जनसेवा के 25 वर्ष पूरे कर रहे हैं। जनसेवा से देश सेवा के मंत्र और निरंतर प्रतिबद्धता तथा सुशासन से प्रेरित होकर सरकार 2047 तक विकसित भारत बनाने के लिए अनवरत कार्य कर रही है। समावेशी विकास और सामाजिक सशक्तिकरण से लोगों के जीवन में बदलाव आ रहा है। आज अपनी विशेष श्रृंखला में हम नजर डालेंगे कि कैसे मिशन लाइफ की सहायता से इस सोच को जमीनी हकीकत में बदला गया है।
2: देश का 40% खनिज संसाधन समेटने वाले झारखंड में औद्योगिक विकास के साथ पर्यावरण संतुलन बनाए रखना एक बड़ी चुनौती है। झारखंड देश का पहला ऐसा राज्य बन गया है जिसने युवाओं को पर्यावरण अनुकूल आदतें सिखाने के लिए अपने सभी कॉलेजों में स्नातक स्तर पर 2 क्रेडिट और 10 सप्ताह का अनिवार्य कोर्स शुरू किया है। इस आंदोलन के मूल विजन को स्पष्ट करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कहते हैं,
3: हमारी संस्कृति हमें सिखाती है कि प्रकृति से इतना हासिल किया है उसे लौटाने का प्रयास भी करना चाहिए। इसलिए भारत ने विश्व को एक नया मार्ग सुझाया है जिस पर चलते हुए हम पर्यावरण की बहुत मदद कर सकते हैं। ये मार्ग है मिशन लाइफ यानी लाइफस्टाइल फॉर एनवायरनमेंट का।
2: प्रधानमंत्री के इसी विजन को कोडरमा जिले की जरगा पंचायत ने सच कर दिखाया है। यहाँ के कझाटांड गांव की कभी बंजर रही भूमि को जल योद्धा पार्वती देवी के नेतृत्व में ग्रामीणों ने सामूहिक भागीदारी से हरा भरा कर दिया है। पार्वती देवी को इसके लिए राष्ट्रपति से सम्मान भी मिल चुका है।
4: पहले बारिश के पानी सीधे जंगल चल जाता था, कुछ नहीं होता था यहाँ पे। अभी जिसके घर जाइएगा सब सारा अनाज मिलेगा, बहुत अच्छा फसल होता है बारिश के पानी जब से रुकता है।
2: साहिबगंज के आदिवासी इलाकों में इस साल 5 लाख से अधिक पौधे लगाकर जल जंगल और वन्य जीवों को नया जीवन दिया गया है। इससे स्थानीय आदिम जनजातियों को गाँव में रोजगार और पत्तों और बांस से अतिरिक्त आय मिल रही है।
5: नाम है चुन्ना हल्दा। इस जंगल में हम लोग आम भी लगवाए हैं और केले है, फल उल रहा है, उससे हम लोग गांव वालों को भी यहाँ उस बेच उच करके हम लोग का सुविधा होगा।
2: ये बदलाव सिर्फ ग्रामीण इलाकों तक सीमित नहीं है। झुमरी तिलैया जैसे शहरी क्षेत्रों में भी 10,000 से अधिक घरों में वाटर हार्वेस्टिंग स्ट्रक्चर बनाए जा रहे हैं। साथ ही नई शिक्षा नीति के तहत स्कूलों में गठित इको क्लब्स बच्चों को बचपन से ही ऊर्जा और पानी की बचत सिखा रहे हैं। आकाशवाणी समाचार के लिए कोडरमा से गजेंद्र बिहारी सिन्हा और साहिबगंज से अनंत ओझा के साथ रांची से मैं महविश रहमान।
1: सरकार ने कहा है कि देश का राष्ट्रीय राजमार्ग नेटवर्क वर्ष 2014 में 91,000 किलोमीटर से बढ़कर इस वर्ष मार्च में 1,46,000 किलोमीटर से अधिक हो गया है। इसमें करीब 61% की वृद्धि हुई। राष्ट्रीय राजमार्गों के तेजी से विस्तार से संपर्क सुविधाएं मजबूत हुई है और बाजारों तक भी पहुंच बेहतर हुई है। देश के राष्ट्रीय राजमार्गों को हरित बनाने का काम ग्रीन हाईवेज नीति 2015 के तहत किया जा रहा है। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल आज से 5 अक्टूबर तक अमेरिका की यात्रा पर रहेंगे। इस दौरान वे इस कल से शुरू होने वाली 2 दिन की G20 व्यापार मंत्रियों की बैठक में शामिल होंगे। बैठक से अलग श्री गोयल अपने समकक्षों के साथ द्विपक्षीय बैठक भी करेंगे। इन बैठकों में किसानों, मछुआरों, महिला उद्यमियों, स्टार्टअप, सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम के लिए अवसर बढ़ाने पर चर्चा होगी। भारत अमेरिका व्यापार समझौते को संतुलित और दोनों देशों के लिए लाभकारी बनाने के प्रयासों पर भी चर्चा की जाएगी। इस यात्रा में भारत और अमेरिका के बीच व्यापार और निवेश संबंध और मजबूत होंगे। भारत ने इस वर्ष वस्तुओं और सेवाओं के कुल निर्यात को पिछले वर्ष के 863 अरब डॉलर से बढ़ाकर 1,00,000 करोड़ डॉलर करने का लक्ष्य रखा है। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि वैश्विक चुनौतियों के बाद भी चालू वित्त वर्ष के पहले 6 महीनों में देश के वस्तु निर्यात में 15% से अधिक की वृद्धि हुई है। श्री गोयल ने कल मुंबई में भारत संयुक्त अरब अमीरात UAE निवेश संबंधी उच्च स्तरीय संयुक्त कार्यबल की

0: 14वीं बैठक के बाद संवाददाताओं को बताया कि भारत यूएई व्यापक आर्थिक साझेदारी समझौते के बाद दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय व्यापार दोगुना होकर करीब 100 अरब डॉलर हो गया है। ये समाचार हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप और हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in पर भी उपलब्ध हैं।
1: आपका स्मार्टफोन हो या हेडफोन, अप्लायंसेस हो या कार, क्या वो रॉकेट जो आपके डिवाइस पे सैटेलाइट सिग्नल्स भेजता है? हर वो चीज जिसे पाने के लिए हम कभी दुनिया की तरफ देखते थे, आज खुद बनाते हैं और पूरी दुनिया तक पहुंचाते हैं। एक सोच से शुरू हुआ ये सफर और 12 साल में इंडिया की इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग 6 गुना बढ़ी, मोबाइल फोन 32 गुना और एक्सपोर्ट 84% बढ़ गए। मेक इन इंडिया ने इंडिया को ग्लोबल स्टेज पर दी एक मजबूत पहचान।
2: भारत ग्लोबल बिजनेसेस के लिए नए अवसरों का केंद्र बन रहा है, इसलिए मेक इन इंडिया, इनोवेटिव इंडिया, स्केल फॉर द वर्ल्ड।
0: समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। अमेरिका में भारत और 19 अन्य देशों से आयात होने वाली दुर्लभ बीमारियों के इलाज के लिए इस्तेमाल की जाने वाली कुछ विशेष दवाओं और उनके संबंधित घटकों पर कोई शुल्क नहीं लगाया जाएगा। अमेरिका के वाणिज्य विभाग ने इन देशों की सूची फेडरल रजिस्टर में प्रकाशित की है। अमेरिका 29 सितंबर से कुछ पेटेंट दवाओं और उनके संबंधित घटकों के आयात पर 100% शुल्क लगाने की तैयारी कर रहा है। और अब एशियाई खेल खबरों के साथ हैं सरफिरोजी।
3: जापान में चल रहे एशियाई खेलों में भारतीय खिलाड़ियों ने निशानेबाजी सहित कई स्पर्धाओं में और पदक जीते हैं। एथलेटिक्स में पुरुषों की भाला फेंक स्पर्धा में भी भारत को 2 पदक मिले हैं। यशवीर सिंह ने रजत पदक जीता जबकि रोहित यादव ने कांस्य पदक हासिल किया। पुरुषों की लंबी कूद में श्रीशंकर मुरली ने रजत पदक जीता। गुलवीर सिंह ने पुरुषों की 1500 मीटर दौड़ में रजत पदक हासिल किया। निशानेबाजी में ईशा सिंह ने महिलाओं की 25 मीटर पिस्टल व्यक्तिगत स्पर्धा में रजत पदक जीता। इस बीच भारतीय पुरुष क्रिकेट टीम सेमीफाइनल में पहुंच गई है। भारत अफगानिस्तान क्वार्टर फाइनल मैच खराब मौसम के कारण रद्द कर दिया गया। पदक तालिका में भारत कुल 45 पदकों के साथ 12वें स्थान पर है, जिनमें 4 स्वर्ण, 20 रजत और 21 कांस्य पदक है।
0: मौसम विभाग ने आज पूर्वोत्तर भारत, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, दक्षिण आंतरिक कर्नाटक, तमिलनाडु, पुदुचेरी और कारैक्काल के कुछ हिस्सों में मूसलाधार वर्षा का अनुमान व्यक्त किया है। विभाग के अनुसार आज मध्य महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, केरलम, माही, कोंकण, गोवा और ओडिशा में भी आंधी तूफान के साथ बिजली कड़कने और तेज हवाएं चलने की संभावना है। अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं मुकेश कुमार बल।
4: धन्यवाद जया। महिला सुरक्षा पर शीर्ष अदालत द्वारा लिए गए स्वतः संज्ञान की खबर को आज सभी अखबारों ने अपने पहले पन्ने पर जगह दी है। हिंदुस्तान ने सुप्रीम कोर्ट के हवाले से लिखा है कि शोलियों से गैंगरेप, पूरे तंत्र की विफलता, रेप मामलों पर सुप्रीम कोर्ट सख्त, कई निर्देश जारी, स्थिति रिपोर्ट तलब, दैनिक ट्रिब्यून की सुर्खी है। आम लोगों से जुड़े 4 और मामलों में सर्वोच्च न्यायालय की टिप्पणियां आज के अखबारों की सुर्खियां हैं। जनसत्ता ने यूपीआई भुगतान से जुड़े फैसले को प्रमुखता से दिया है। सुप्रीम कोर्ट का एनडीआर पर रोक लगाने से इंकार, केंद्र सरकार और अन्य को नोटिस, 4 सप्ताह में मांगा जवाब। बवाल के बाद लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी 10 दिन के लिए बंद, पंजाब केसरी की खबर है। नवभारत टाइम्स ने सुप्रीम कोर्ट का सुझाव लिखा है, ट्रैफिक चालान ना भरें तो बिजली बिल में जोड़ दें। बच्चों की सोशल मीडिया पहुंच को नियंत्रित करने के लिए प्रभावी सुरक्षा तंत्र तैयार करे केंद्र सरकार, सुप्रीम कोर्ट का बयान अमर उजाला में है। हिंदुस्तान ने विश्व हृदय दिवस पर भारत समेत एशिया प्रशांत क्षेत्र के 39 देशों के आंकड़ों का विश्लेषण दिया है। प्रदूषण दिल के मर्ज को जानलेवा बना रहा, हर साल 17 लाख लोगों की हार्ट अटैक से होती है मौत। लोकसत्ता ने मौसम का मिजाज शीर्षक से लिखा है, सितंबर की बारिश ने तोड़ा 57 साल का रिकॉर्ड, फिर भी 11.8% कम वर्षा। एशियाई खेलों में विथ्या रामराज के नए रिकॉर्ड को भी अखबारों ने सचित्र दिया है।
0: अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। सर्वोच्च न्यायालय ने केंद्र सरकार से इस वर्ष सीबीएसई की त्रिभाषा नीति से कक्षा 6 के विद्यार्थियों को छूट देने पर विचार करने को कहा। भारतीय नौसेना आज से बृहस्पतिवार तक नई दिल्ली में कमांडर्स सम्मेलन 2026 के दूसरे संस्करण की मेजबानी करेगी। दिल्ली सरकार ने राष्ट्रीय राजधानी में सर्दियों के मौसम में वायु प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए कार्य योजना तैयार की और एशियाई खेलों में भारतीय पुरुष क्रिकेट टीम सेमीफाइनल में पहुंची।

मीडियम वेव 438.6 मीटर अर्थात 684 किलोहर्ट्स पर ये आकाशवाणी का श्री विजयपुरम केंद्र है। इस समय सुबह के 8:30 हुए हैं। सुगम संगीत इस कार्यक्रम में आज के फनकार हैं अनुराधा पौडवाल, महेंद्र कपूर, चंदन दास एवं साथी। कार्यक्रम का आगाज कर रहे हैं महेंद्र कपूर एवं साथियों की गाई इस गजल से।

0: क्या आपके जिले की कोई ऐसी खास पहचान है जिस पर पूरे देश को गर्व हो? अब उसे राष्ट्रीय मंच पर प्रस्तुत करने का सुनहरा अवसर है। सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय द्वारा जेम्स ऑफ इंडिया राष्ट्रीय पहल शुरू की गई है। इसका उद्देश्य देश के हर जिले की संस्कृति, विरासत, पर्यटन, लोक कला, हस्तशिल्प, स्थानीय व्यंजन, प्राकृतिक सौंदर्य और प्रेरणादायक कहानियों को डिजिटल माध्यम से पूरे देश तक पहुंचाना है। यदि आप एक उभरते हुए डिजिटल क्रिएटर हैं, तो 30 सितंबर 2026 तक वेव्स ओटीटी ऐप के माई वेव्स सेक्शन में जाकर अपना क्रिएटर प्रोफाइल बनाइए और जेम्स ऑफ इंडिया के अंतर्गत अपने जिले पर आधारित मौलिक वीडियो, रील, डॉक्यूमेंट्री, ब्लॉग या पॉडकास्ट अपलोड कीजिए। चयनित प्रतिभागियों को जिला, राज्य और राष्ट्रीय स्तर पर सम्मानित किया जाएगा। जिला स्तर पर प्रत्येक पुरस्कार के लिए 50,000 रुपए, राज्य स्तर पर 2,00,000 रुपए तथा राष्ट्रीय स्तर पर 5,00,000 रुपए तक की पुरस्कार राशि प्रदान की जाएगी। तो देर किस बात की, अपने जिले की अनमोल पहचान को देश के सामने लाने का यह अवसर हाथ से न जाने दे। जेम्स ऑफ इंडिया से जुड़िए और अपने जिले को राष्ट्रीय पहचान दिलाइए।
1: सुगम संगीत के कार्यक्रम को जारी रखते हुए आइए अब सुनते हैं गजल अनुराधा पौडवाल की आवाज में।

सुगम संगीत के इस कार्यक्रम में अभी आप महेंद्र कपूर, अनुराधा पौडवाल, चंदन दास और साथियों की गाई चंद गजलों का लुत्फ ले रहे थे। आवश्यक सूचना। आकाशवाणी श्री विजयपुरम में ब्रॉडकास्ट असिस्टेंट के पैनल में शामिल होने हेतु योग्य उम्मीदवारों से आवेदन आमंत्रित किए गए हैं। स्नातक अर्थात ग्रेजुएट उम्मीदवार जिन्हें हिंदी व अंग्रेजी तथा कंप्यूटर का ज्ञान हो और जिनकी आयु 31 अगस्त 2026 को 40 वर्ष से अधिक ना हो, इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। श्री विजयपुरम नगरपालिका क्षेत्र के भीतर रहने वाले जो समुचित योग्यता रखते हैं, इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। आवेदन प्रपत्र आकाशवाणी श्री विजयपुरम के ड्यूटी रूम से प्राप्त किए जा सकते हैं। आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि 5 अक्टूबर 2026 है। याद रहे, प्रसारण सहायक अर्थात ब्रॉडकास्ट असिस्टेंट की ये चयन प्रक्रिया किसी नियमित रोजगार के लिए नहीं है। इस संबंध में और अधिक जानकारी के लिए आकाशवाणी श्री विजयपुरम से संपर्क किया जा सकता है।

मीडियम वेव 438.6 मीटर अर्थात 684 किलोहर्ट्स पर ये आकाशवाणी का श्री विजयपुरम केंद्र है। इस समय सुबह के 9 बजे हैं। श्रोताओं आइए सुनते हैं कुछ फिल्मी गीत। कार्यक्रम में पहले सुनिए टाइगर जिंदा है फिल्म का ये गीत आतिफ असलम की आवाज में।

0: आतिफ असलम के स्वर में ये गीत था टाइगर जिंदा है फिल्म से।
1: नमस्ते, गोयनकास की तरफ से आप सभी को दुर्गा पूजा की हार्दिक शुभकामनाएं। इस दुर्गा पूजा अपने स्टाइल को दीजिए एक नया फेस्टिव टच। गोयनकास में आ गया है दुर्गा पूजा का न्यू कलेक्शन। लेडीज हो या जेंट्स, लेटेस्ट डिजाइन्स, ब्यूटीफुल कलर्स और स्टाइलिश फेस्टिव आउटफिट्स, तो देर किस बात की। इस दुर्गा पूजा शॉपिंग हो तो गोयनकास से, गोयनकास की तरफ से शुभ हो दुर्गा पूजा।
2: इस एक्ट में ऐसे प्रावधान भी किए गए हैं जिनसे HIV के साथ जी रहे लोग भेदभाव या बुरे बर्ताव से जुड़ी शिकायत को आसानी से दर्ज करा सकते हैं। इन शिकायतों के निवारण के लिए हर राज्य में कम से कम एक लोकपाल की नियुक्ति होगी। साथ ही साथ हर संस्थान जहां 100 से अधिक लोग काम करते हैं एक कंप्लेंट ऑफिसर, और हर स्वास्थ्य संस्थान जहां 20 या अधिक लोग काम करते हैं वहां भी एक कंप्लेंट ऑफिसर होना जरूरी है। अगर कोई व्यक्ति HIV

संक्रमित व्यक्ति के साथ नफरत, भेदभाव या हिंसक व्यवहार करता है तो उस व्यक्ति को कम से कम 3 महीने से लेकर 2 साल तक जेल या 1,00,000 रुपए तक जुर्माना या दोनों भरना पड़ सकता है। साथ ही लोकपाल के ऑर्डर्स का पालन न करने पर 10,000 तक जुर्माना भरना पड़ सकता है और कानूनी कार्यवाही की गोपनीयता में विच्छेद करने पर 1,00,000 तक का जुर्माना भरना पड़ सकता है। तो अब बताइए, आपने HIV एंड AIDS एक्ट 2017 के बारे में ढंग से जाना क्या? अपने अधिकारों की पूरी जानकारी लेकर सही किया क्या?

दिल तो पागल है फिल्म के इस शीर्षक गीत के साथ ही फिल्मी गीतों का ये कार्यक्रम अब यहीं संपन्न होता है। ये आकाशवाणी का श्री विजयपुरम केंद्र है। अब अगला प्रसारण हम अपने दिल्ली केंद्र से रिले करेंगे। कृपया प्रतीक्षा कीजिए।

0: ये आकाशवाणी है। विशेष श्रृंखला जनसेवा से देश सेवा के 12वें संस्करण में प्रस्तुत है परिचर्चा, शिक्षा और कौशल, भविष्य की नींव। इसमें भाग ले रहे हैं विश्वविद्यालय अनुदान आयोग UGC के पूर्व सदस्य प्रोफेसर सुषमा यादव और वरिष्ठ पत्रकार संजीव चोपड़ा। कार्यक्रम का संचालन कर रहे हैं आनंद श्रीवास्तव।
1: एक छोटी सी उंगली जिसने पहली बार स्कूल की किताब को छुआ, एक गाँव का बच्चा जिसके लिए स्कूल तक पहुंचना ही कभी सबसे बड़ी चुनौती थी, और एक युवा जिसके हाथ में डिग्री तो थी लेकिन दुनिया बदल रही थी और उसके सामने सवाल था कि क्या मेरी शिक्षा मुझे भविष्य के लिए तैयार कर रही है। क्योंकि शिक्षा सिर्फ कक्षा, किताब और परीक्षा का नाम नहीं है। शिक्षा वो नींव है जिस पर किसी व्यक्ति का भविष्य और किसी राष्ट्र की दिशा तय होती है। गुजरात में शाला प्रवेश उत्सव और गुणोत्सव जैसे प्रयासों से शुरू हुई एक सोच ने स्कूल में प्रवेश से लेकर सीखने की गुणवत्ता तक का सवाल उठाया और राष्ट्रीय स्तर पर राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020, निपुण भारत, विद्या प्रवेश, कौशल विकास, विशेषज्ञता आधारित उच्च शिक्षा और चिकित्सा शिक्षा में सुधार ने शिक्षा को केवल डिग्री नहीं बल्कि ज्ञान, कौशल और क्षमता से जोड़ने की दिशा तय की। इसी यात्रा में परीक्षा पे चर्चा ने परीक्षा को जीवन का अंतिम पड़ाव नहीं बल्कि सीखने की यात्रा का एक पड़ाव मानने की बात की। तो गुजरात से दिल्ली तक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सार्वजनिक जीवन में बिताए 25 वर्षों में क्या कुछ बदला इस दिशा में, आकाशवाणी की इस विशेष श्रृंखला जनसेवा से देश सेवा में आज का हमारा विषय है शिक्षा और कौशल, भविष्य की नींव। और इस पर चर्चा के लिए हमारे साथ दो बेहद खास मेहमान उपस्थित हैं, वरिष्ठ पत्रकार संजीव चोपड़ा और हमारे साथ जुड़ रही हैं पूर्व UGC सदस्य सुषमा यादव। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है।
2: धन्यवाद और नमस्कार।
1: संजीव जी, आपके साथ शुरुआत करते हैं। गुजरात के मुख्यमंत्री रहते हुए नरेंद्र मोदी ने शाला प्रवेश उत्सव और गुणोत्सव जैसे अभिनव प्रयोग शुरू किए थे और इसका असर ये हुआ कि राज्य में ड्रॉपआउट रेट काफी कम हो गए और यहीं से जब आगे बढ़े तो निपुण भारत और विद्या प्रवेश जैसे राष्ट्रीय कार्यक्रमों को जब हम देखते हैं तो गुजरात के उस मॉडल और आज के राष्ट्रीय विजन के बीच आप किस तरह का समायोजन या संबंध देख पा रहे हैं?
3: जैसे भारत कोशिश कर रहा है कि विकसित भारत बनने की 2047 में, तो उसके लिए सबसे बड़ी जो जरूरत है वो है उसके नागरिकों की शिक्षा। जब देश शिक्षा में निपुण होगा तभी देश आगे तरक्की कर सकता है। तो इस विषय में जैसे प्रधानमंत्री जी ने जब 25 साल पहले अपनी यात्रा गुजरात से शुरू करी थी एज चीफ मिनिस्टर, तो उन्होंने वहां स्टेट में देखा, गुजरात तब शिक्षा के स्फेयर में इतना डेवलप्ड नहीं था, तो उन्होंने देखा ड्रॉप आउट रेट बहुत ज्यादा है, सोशल डिस्पैरिटीज बहुत ज्यादा हैं। सो उन्होंने ये दो इनिशिएटिव्स, एक शाला प्रवेशोत्सव जिसमें कि एंट्री एनरोलमेंट स्टूडेंट्स की बढ़ाने के लिए ये प्रयोग किया था 2003 में, सबसे पहले जो ड्रॉप आउट रेट था 37% था गुजरात में, तो धीरे धीरे करके इससे बढ़ते हुए बहुत कंसिडरेबल ड्रॉप आउट रेट रिड्यूस हुआ। तो एक तो ये था और दूसरा था गुणोत्सव जिसमें कि इवैल्यूएशन और अकाउंटेबिलिटी बच्चों की देखी जाती है। तो इन दोनों इनिशिएटिव से उन्होंने आगे प्रयोग शुरू किया और उसको अब स्टेट लेवल, जैसे गुणोत्सव तो असम में भी अडॉप्ट हुआ और कुछ और स्टेट्स भी अब करना चाह रही हैं, और नेक्स्ट इनिशिएटिव 7th एडिशन जो है वो जनवरी 7, 2027 को होगा असम में, और गुजरात में तो चल ही रहा है। तो ऐसे इनिशिएटिव जो हैं, जैसे मैंने आपको कहा कि एजुकेशन के फील्ड में जैसे भारत जाना जाता है अपने डेमोग्राफिक डिविडेंड की वजह से, यूथ पॉपुलेशन जो यंग पॉपुलेशन है इंडिया

0: कि वो भारत में है और वर्ल्ड में पॉपुलेशंस एज हो रही हैं। तो भारत का जो डेमोग्राफिक डिविडेंड है वो तभी सक्सेसफुल हो सकता है जब उसके जो नागरिक और यूथ हैं वो निपुण हो, शिक्षा के तरीके से स्किल्ड हो, निपुण हो, और तभी देश भी आगे तरक्की करेगा और तभी दुनिया में लीड कर सकता है भारत।
1: जी हाँ, हम अपने आकाशवाणी के श्रोताओं के लिए सरल शब्दों में बताएं तो गुणोत्सव जो योजना थी वो प्राथमिक विद्यालयों में शिक्षा की गुणवत्ता, छात्रों के सीखने के स्तर, शिक्षकों की उपस्थिति और स्कूल के बुनियादी ढांचे का मूल्यांकन करने से जुड़ी थी। जब हम निपुण भारत की बात करते हैं तो इसका उद्देश्य ये सुनिश्चित करना है कि देश का प्रत्येक बच्चा प्राथमिक कक्षा के अंत तक बुनियादी साक्षरता और जो नंबर ज्ञान है उसे अवश्य हासिल कर ले। विद्या प्रवेश की जब हम बात करते हैं तो इसका मुख्य मकसद यही रहा कि पहली कक्षा में प्रवेश लेने वाले बच्चों को स्कूल के नए माहौल में ढलने और औपचारिक पढ़ाई के लिए मानसिक एवं भावनात्मक रूप से तैयार किया जा सके। विद्या प्रवेश की चर्चा को प्रोफेसर सुषमा जी अगर आगे बढ़ाएं तो जैसा कि विद्या प्रवेश के बारे में हमने बताया कि 3 महीने के प्ले बेस्ड स्कूल प्रिपरेशन मॉड्यूल का मुख्य लक्ष्य रखा गया कि बच्चा जब स्कूल में जाए उससे पहले उसको एक भावनात्मक और शैक्षणिक माहौल प्रदान किया जाए कि स्कूल जाने के लिए वो तैयार हो सके। कुछ समय पहले तक इस तरह की सोच रखना भी सरकारी स्तर पर किसी योजना को बनाया जाए कि बच्चा पहली कक्षा में जाने से पहले तैयार हो, इसके लिए कोई योजना लाई जाए, बहुत मुश्किल काम था। लेकिन ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की दूरदर्शिता थी कि इस योजना को न सिर्फ शुरू किया गया बल्कि इसके सकारात्मक परिणाम देखने को मिले। सामाजिक परिवर्तन के लिहाज से और बच्चों के मानसिक विकास के लिहाज से कैसे देखती हैं इस योजना को आप?
2: भारत में विद्या प्रवेश या विद्यालय जाना बच्चों के लिए एक प्रकार से एक पनिशमेंट होती थी, वो क्योंकि सीधे स्कूल में जाना घर का माहौल होता है जहां उस प्रकार की नियमबद्धता नहीं होती और बच्चा अपनी मर्जी का ऑलमोस्ट मालिक होता है, स्वामी होता है। और जब वो विद्यालय में जाता था तो बहुत सारे समय के अनुशासन की सीमाएं उस पर लग जाती थी। उस गैप को दूर करने के लिए यह एक प्रकार से मैं बहुत सुंदर प्रयास मानती हूँ जो स्कूल तैयारी मॉड्यूल बनाया गया, और ये NEP 2020 जिसको हम राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 कहते हैं, उसमें कहा गया कि लर्निंग शुड बी ए प्लेजेंट एक्सरसाइज, यानी सीखना आरंभ बच्चे का ऐसा होना चाहिए कि वो उसको एंजॉय करे, वो उसके लिए एक फन जैसी एक्सरसाइज हो। तो इस विद्या प्रवेश का यही उद्देश्य है। और आप जान सकते हैं कि बड़े शहरों में और शहरी उच्च वर्ग में प्ले स्कूल्स का कंसेप्ट आ चुका था लेकिन वो पूरे देश के बच्चों को उपलब्ध नहीं था, तो उनको भी खेल आधारित गतिविधियों के आधार पर सीखने की प्रक्रिया आरंभ करना, औपचारिक शिक्षा आरंभ होने से पहले उनको उस माहौल में सहज रूप से ढाल लेना और वहीं से निपुण भारत की भी नींव रखना। निपुण इज वेरी इंटरेस्टिंग, नेशनल इनिशिएटिव फॉर प्रोफिशिएंसी इन रीडिंग विद अंडरस्टैंडिंग एंड न्यूमरेसी। और आपको याद होगा आयुषर जैसी बहुत सारी संस्थाएं पहले ये कहती रही कि 10वीं तक बच्चा पहुंच जाता है देश के सरकारी विद्यालयों में, लेकिन ना वो पढ़ सकता है, ना वो लिख सकता है पूरी बात, और ना ही वो गणना में निपुण होता है। इसलिए वह मिशन रखा गया था और उसी की रणनीति की नींव मजबूत करने के लिए, बुनियाद मजबूत करने के लिए विद्या प्रवेश का ये एक बहुत सुंदर मॉड्यूल बनाया गया। और जिसमें ये हो सकता था क्योंकि ये प्रारंभिक है तो हर राज्य अपनी अपनी स्थानीय भाषा और सांस्कृतिक संदर्भ के अनुसार पाठ्य सामग्री तैयार कर सकता था ताकि बच्चे को बहुत अजनबी भाव ना लगे वहां पर, जैसा वो घर में अभी तक रहा उसी को थोड़ा आगे ले जाते हुए पढ़ना लिखना और गणना करना आरंभ कर दे। थोड़ा शाला प्रवेशोत्सव पर और गुणोत्सव पर भी बात करना चाहती हूँ क्योंकि वो कन्या केलमणि महोत्सव था एक तरह से, कि कन्या किस प्रकार से विद्यालय पहुंचे भी और फिर वहां रहे भी, क्योंकि ड्रॉपआउट दर बहुत ज्यादा थी उनकी, तो इसलिए बालिकाओं की शिक्षा पर विशेष बल उसके माध्यम से दिया गया था। और 3 दिवसीय अभियान यानी जिसमें जनप्रतिनिधि भी और अधिकारी भी गांव-गांव जाकर बच्चों को बाल वाटिका, आंगनवाड़ी, प्राथमिक ये खेल विद्यालय इन सब में प्रवेश दिलाते, शिक्षण सामग्री किट वितरित करते, तो अपने आप ही एक नामांकन उत्सव जैसा बन जाता और बच्चों को भी इसमें रुचि होती और शिक्षक इसलिए सजग रहते क्योंकि इसमें जनप्रतिनिधियों और अधिकारियों का विशेष ध्यान था। यही गुणोत्सव का भी एक बहुत महत्वपूर्ण पक्ष है क्योंकि ये माना गया कि जितने सरकारी विद्यालय हैं उनमें गुणवत्ता कम होती जा रही, तो गुजरात

0: 2009 में जो शुरू हुआ, बेसिकली माननीय मोदी जी, माननीय प्रधानमंत्री जब ये मुख्यमंत्री थे तब भी, इसीलिए जाने जाते हैं कि इन्होंने जिस भी क्षेत्र पर ध्यान दिया वहां गुणवत्ता और जवाबदेही, उत्तरदायित्व निश्चित करने पर बल दिया, और विद्यालयी शिक्षा में इन तीनों के माध्यम से ड्रॉप आउट कम करने की बात, और शिक्षा और शिक्षण और शिक्षार्थियों की गुणवत्ता बढ़ाने की बात कही गई।
1: चर्चा को आगे बढ़ाते हैं और संजीव जी कुछ और योजनाओं पर चर्चा करते हैं। गुजरात से शुरुआत हुई डोमेन स्पेसिफिक यूनिवर्सिटीज की। हम अपने श्रोताओं के लिए बता दें कि किसी विशेष स्पेसिफिक विषय को लेकर शुरू की गई यूनिवर्सिटी को डोमेन स्पेसिफिक यूनिवर्सिटीज कहते हैं, जैसे राष्ट्रीय रक्षा विश्वविद्यालय, फॉरेंसिक साइंस यूनिवर्सिटी या ऊर्जा अनुसंधान संस्थान। इस तरह के विश्वविद्यालय आज राष्ट्रीय स्तर पर अपनी पहचान बना चुके हैं। सवाल आपसे ये है संजीव जी कि जो पारंपरिक विश्वविद्यालय हुआ करते थे, जहां हम देखते हैं कि आर्ट्स की भी पढ़ाई हो रही है, कॉमर्स भी पढ़ाए जा रहे हैं, विज्ञान के विषय भी पढ़ाए जा रहे हैं, उनसे अलग 21वीं सदी की जरूरतों को ध्यान में रखते हुए जो डोमेन स्पेसिफिक यूनिवर्सिटीज शुरू हुए, आज के दौर में भारतीय युवाओं के लिए कितने कारगर हैं और 21वीं सदी की चुनौती के लिए वो कैसे तैयार कर रहे हैं?
2: जी, जैसे आपको पता होगा कि पहले यूनिवर्सिटीज़ में जनरली सब हर फील्ड में एजुकेशन दी जाती है, मास्टर्स आप अचीव करते हो, उसके बाद PhD उसी फील्ड में लेते हो, लेकिन प्रोफेशनल कोर्सेज में जैसे इंजीनियरिंग होता था तो इंजीनियरिंग भी एक ही डिफरेंट सब्जेक्ट्स एक ही इंजीनियरिंग कॉलेज में पढ़ाए जाते हैं, लेकिन जैसे लॉ फॉर एग्जाम्पल, लॉ का यूनिवर्सिटी का 2 ईयर कोर्स होता था, तो आहिस्ता आहिस्ता इसको 5 ईयर्स कोर्स स्पेसिफिक कर दिया कि बच्चे को 12वीं के बाद ही एकदम एडमिशन वहां चले जाएं उस यूनिवर्सिटी में और उसी फील्ड में स्पेशलाइजेशन दें। तो लॉ के 5 ईयर कोर्सेज बने, 3 ईयर कोर्सेज भी बने, 5 ईयर कोर्सेज भी हैं कई। ये जरूरी था कि डोमेन स्पेसिफिक, जैसे फिर आपको बताऊं कि प्राइवेट सेक्टर भी इसमें एंटर कर चुका है, लॉ स्कूल्स डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द कंट्री में बने ही हैं, लेकिन यूनिवर्सिटीज भी डिफरेंट, फॉर एग्जांपल पेट्रोलियम और एनर्जी की एक यूनिवर्सिटी देहरादून में बनी, वो प्राइवेट सेक्टर में थी, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता वहां एक लॉ स्कूल भी बना प्राइवेट सेक्टर में, वही 5 ईयर स्कूल
1: जी,
2: वहां बच्चे खूब जाने लगे एंड उनकी इनटेक इन द इंडस्ट्री भी बढ़ गई बिकॉज वो उसी स्पेसिफिक फील्ड में जा रहे थे। जैसे कई यूनिवर्सिटीज में, मैं आपको बताऊं, उसको बहुत सीरियसली नहीं लेते, जैसे इंटरनेशनली फॉरेंसिक साइंस है
1: जी,
2: या एस्ट्रोनॉमी की फील्ड, तो नासा वगैरह में भी यहाँ के स्टूडेंट्स कई गए हैं जो यहाँ से यूनिवर्सिटीज में पढ़ के, हालांकि एस्ट्रोनॉमी के लिए स्पेसिफिक यूनिवर्सिटी नहीं है, लेकिन कई यूनिवर्सिटीज में एस्ट्रोनॉमी की मास्टर्स कराई जाती है। तो सिमिलरली फोरेंसिक साइंस जो बहुत इंपॉर्टेंट है क्राइम की फील्ड में और कई फील्ड्स में, एनर्जी और पेट्रोलियम मैंने आपको बताया, स्पोर्ट्स और फिजिकल एजुकेशन मैंने आपको बताया, जैसे भारत बहुत आगे बढ़ रहा है स्पोर्ट्स की फील्ड में, जैसे एस्पिरेशनल इंडिया आगे चल रहा है, हर फील्ड में तरक्की हो रही है। सिमिलरली डिफेंस और इंटरनल सिक्योरिटी की यूनिवर्सिटी स्पेसिफिक बन रही है, एग्रीकल्चर के बारे में बनी और जैसे लॉ के बारे में मैंने आपको बताया, और इनकी एडमिशंस भी सेंट्रल यूनिवर्सिटी एग्जामिनेशन जो होता है CUET उसके थ्रू होती है। इसमें क्या है कि इंडस्ट्री की डिमांड, जब बच्चा ज्यादा टाइम एक ही फील्ड में लगाता है तो इंडस्ट्री की डिमांड उसको समझ में आती है और इंडस्ट्री को भी समझ में आता है कि ये बच्चा हमारे फील्ड की मास्टरी कर चुका है और इसको इनटेक लेना है। सो एक तो उससे मास्टरी होती है उस सब्जेक्ट में, दूसरी इंटरनेशनली भी प्रिपेयर होता है बच्चा, और तीसरा उनकी जॉब अपॉर्चुनिटीज इंप्रूव होती हैं बहुत ज्यादा।
1: सुषमा जी, अगर इसी चर्चा को थोड़ा आगे बढ़ाएं तो पारंपरिक उच्च शिक्षा में अक्सर जो शिक्षण संस्थान और उद्योग के बीच की दूरी की बात होती रही है, और हमने देखा कि इस कारण कई बार ग्रेजुएट पोस्ट ग्रेजुएशन करने के बाद भी जो युवक हैं या जो छात्र हैं वो रोजगार से वंचित रह जाते थे। गति शक्ति विश्वविद्यालय या नेशनल फॉरेंसिक साइंस यूनिवर्सिटी जैसे डोमेन स्पेसिफिक मॉडल आपके अनुसार इस खाई को कैसे पाट रहे हैं, इस अंतर को कैसे खत्म कर रहे हैं?
0: जी, संजीव जी की बात को आगे बढ़ाते हुए, ये विश्वविद्यालय तो है ही, जैसे अगर राष्ट्रीय फोरेंसिक विज्ञान विश्वविद्यालय तो अपनी तरह का एक विश्वविद्यालय ही है और उसने बाकियों से MOUs किए हैं, और फोरेंसिक टेस्ट के लिए हमारे यहाँ इतना लंबे समय अभी तक लगता था, वेटिंग पीरियड बहुत ज्यादा था, अब इस विश्वविद्यालय ने उसको संभालना और अपने कैंपसेस के माध्यम से कुछ और एक्सपर्ट्स भी हमें प्रोवाइड किए हैं। राष्ट्रीय रक्षा विश्वविद्यालय जो है पहले रक्षा शक्ति माना जाता था, देयर वॉज नो यूनिवर्सिटी इन इंडिया विच वुड स्पेशली टैकल दिस एक्सेप्ट NDA, तो वह भी अब कुछ विशेषज्ञ तैयार कर रही है, लेकिन इसके साथ साथ आरंभ तो गुजरात से हुआ, लेकिन कौशल विश्वविद्यालय भी देश के बहुत सारे प्रांतों में खोले गए हैं जो स्पेसिफिकली स्किल इम्पार्टिंग यूनिवर्सिटीज हैं, पहले नहीं थे। चिल्ड्रंस यूनिवर्सिटी

0: यूनिवर्सिटी खोली गई हैं, स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटीज खोली गई हैं, विमेन यूनिवर्सिटीज खोली गई हैं, और इनकी संख्या जो बड़ी है, केवल इतना ही नहीं, उसी बात को जो आपने मुझसे अभी पूछा है
1: जी
0: उसको ही पाटने के लिए मैं बताना चाहती हूँ, क्योंकि यूजीसी से संबद्ध रही हूँ। 2014 में यदि इस देश में 723 यूनिवर्सिटीज थी, अब जाकर के लगभग 1400, डबल ऑफ द नंबर, 1400 से अधिक विश्वविद्यालय खोल दिए गए हैं।
1: जी
0: इसका मतलब है एनरोलमेंट अधिक हो रहा है, विशेषज्ञता भी बढ़ रही है, और टीचर एजुकेशन यूनिवर्सिटीज भी खुली हैं जो पहले कहीं नहीं थी। एंटरप्रेन्योरशिप यूनिवर्सिटी खुली है, उद्यमिता विश्वविद्यालय,
1: जी
0: यानी ये जो स्किल बेस्ड एरियाज थे, डोमेन्स थे, वहां पर विशेषज्ञ उत्पन्न करने के लिए, तैयार करने के लिए ऐसे विश्वविद्यालय खोले गए हैं। एक तरफ राष्ट्रीय शिक्षा नीति कहती है हम मेरू मल्टी डिसिप्लिनरी एजुकेशन एंड रिसर्च यूनिवर्सिटीज भी खोल रहे हैं जो थी पहले भी, लेकिन दूसरी तरफ जो विशेष विशेष क्षेत्र पहचाने गए जहां जहां विशेषज्ञता की आवश्यकता थी वो यूनिवर्सिटीज खुली हैं। कॉलेजेस को भी ऑटोनोमस बनाने का प्रयास किया गया है, और जब मैं यूजीसी में थी तो मैं बता सकती हूँ कि बहुत सारे विश्वविद्यालयों को हमने इनकरेज किया कि वो ऑटोनोमी के लिए आगे आए, बिकॉज इस देश में कुछ कुछ कॉलेजेस तो इतने बड़े थे, दे कुड बीट एनी यूनिवर्सिटी और दे कुड कंपेयर विद द बेस्ट ऑफ यूनिवर्सिटीज, तो
1: जी
0: उनको ऑटोनॉमी देने की बात, ताकि शिक्षा का विस्तार हो। जहां 38,000 के करीब कॉलेजेस थे 2014 में, वो अब 55,000 के लगभग हो गए हैं। उसका विस्तार भी आप समझ सकते हैं। इनके अपने तरीके भी हैं, एडमिशंस क्लैट के माध्यम से लॉ यूनिवर्सिटीज में होता है,
1: जी
0: पहले केवल लॉ कॉलेजेस होते थे, अब लगभग हर प्रांत में एक नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी है, तो जो लॉ ग्रेजुएट्स को तैयार कर रही है या एक्सपर्ट्स को तैयार कर रही है। और जो एक हमारे यहाँ गैप जिसकी आपने बात की कि मैं बीए हूँ, मैं एमए हूँ, मैं पीएचडी भी हूँ, लेकिन मैं क्या कर सकता हूँ या क्या कर सकती हूँ, ये माननीय प्रधानमंत्री जी बार बार उद्धरण देते हैं, तो बच्चा कोई जवाब नहीं दे पाता विश्वविद्यालयों के माध्यम से। अब जब बच्चा निकलता है तो उसके पास कोई ना कोई निपुणता, कोई ना कोई कौशल, कोई ना कोई विशेषज्ञता अवश्य होती है, और इस प्रकार ये रोजगार से जोड़ने का माध्यम है। दूसरी बात जो आपने पूछी है, इंडस्ट्री, अब लगभग हर विश्वविद्यालय को ये निर्देश दिया गया है शिक्षा मंत्रालय के माध्यम से भी और यूजीसी के माध्यम से भी, कि वे तीसरे वर्ष में, हो सके तो सेकंड से ही शुरू कर लें, इंटर्नशिप करें, इंडस्ट्री से बात करें, आसपास जो भी इंडस्ट्री हो उनको कांटेक्ट भी करें, उनको किस प्रकार की आवश्यकता है, एक तो बच्चों को वहां इंटर्नशिप के लिए भेजें, इंडस्ट्रीज के एक्सपर्ट्स को, उन इंडस्ट्रीज के जो ओनर्स हैं उनको विश्वविद्यालयों के स्टडी बोर्ड्स में या उनके मैनेजमेंट बोर्ड्स में, एकेडमिक काउंसिल में, एग्जीक्यूटिव काउंसिल में, बोर्ड ऑफ मैनेजमेंट में स्थान दें, ताकि रोजगार और शिक्षा के बीच का, कौशल और विद्या के बीच का जो अंतर अभी तक था वह अंतर समाप्त हो सके। यह प्रयास विशेष तौर पर राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के बाद से किया जा रहा है, और इसमें बहुविषयक
1: जी
0: और लचीली शिक्षा हमने इसमें जोड़ी है उसके साथ ही, और कौशल कक्षा 6 से ही आरंभ हो जाए, और आईआईटीज का नंबर बढ़ाया गया है, आईआईएम्स का नंबर बढ़ाया गया है, एनआईटीज बहुत सारी खोली गई हैं, इंस्टीट्यूट ऑफ नेशनल इंपोर्टेंस बहुत सारे खोले गए हैं, आईसर्स बनाए गए हैं जो इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस का एक प्रकार से समानांतर बन सके, ताकि बच्चों को सच में ही, जो अभी माननीय प्रधानमंत्री जी ने कुछ समय पहले कहा था कि आप
1: जी
0: सपना देखें हम आपको उड़ान का अवसर देंगे, तो ये विश्वविद्यालय वस्तुतः उन सपनों को सत्य करने के लिए और युवाओं को रोजगार के लिए तैयार करने के लिए सच में महत्वपूर्ण उपलब्धियां हैं। कॉलेजेस में और विश्वविद्यालयों में प्रोफेसर के रूप में, प्रोफेसर ऑफ प्रैक्टिस के रूप में आ सकते हैं और बच्चों को अपनी विशेषज्ञता से लाभान्वित कर सकते हैं। ये बिल्कुल नई बात लगभग पिछले 3 वर्षों से भारत की उच्च शिक्षा में आई है।
1: और इन सब का उद्देश्य यही है कि जो बच्चे जिस विषय की पढ़ाई कर रहे हैं वो थियरी के साथ साथ इंडस्ट्री में क्या कुछ घट रहा है उसको भी करीब से जान सकें, समझ सकें, ताकि जब वो इंडस्ट्री में प्रवेश करें तो वो उन चीजों के लिए नए नहीं रहें। संजीव जी, चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। पहले अगर पढ़ाई बीच में छूट जाए तो साल बर्बाद हो जाता था, लेकिन जब से राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 आई है और उसमें बीच में पढ़ाई छोड़ने पर क्रेडिट्स सुरक्षित रखने वाला एबीसी सिस्टम हो या फिर मातृभाषा में पढ़ाई, कागजों पर तो ये बहुत बड़े नियम लगते हैं और लगता है कि बहुत बड़ा बदलाव हो गया, लेकिन बतौर पत्रकार ग्राउंड जीरो में क्या बदला है इससे?
2: ग्राउंड जीरो पे बदलाव तो आया है,

0: आप अगर देखेंगे तो भारत का फोकस जो था पहले, अब नेशनल एजुकेशन पॉलिसी पहले आई 1986 में, उसमें कुछ बदलाव हुआ 1992 में, लेकिन तब से लेके उसके बाद नेक्स्ट पॉलिसी आई, सक्सेसिव गवर्नमेंट्स ने पॉलिसी ही नहीं लेके आए, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी आई 2020 में, मतलब ऑलमोस्ट 3 दशक बाद। तो अब ये जरूरी भी थी बिकॉज नेशनल एजुकेशन पॉलिसी सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स जो 2030 एजेंडा फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट है, इंडिया ने हस्ताक्षर किया था 2015 में, और नेशनल एजुकेशन पॉलिसी उसके मुताबिक लानी थी टू एंश्योर इंक्लूसिव एंड इक्विटेबल क्वालिटी एजुकेशन एंड प्रमोट लाइफ लॉन्ग लर्निंग अपॉर्चुनिटीज फॉर ऑल बाय 2030। सो उसमें बदलाव तो काफी आया है, लेकिन अगर आप एंशियंट इंडिया में देखें, हमारा ज्ञान पहले 3 चीजों पे आधारित था, ज्ञान जो नॉलेज, विजडम प्रज्ञा, और ट्रूथ सत्य को अचीव करने के लिए। सो आप देखेंगे कि हमारे एंशियंट भारत में तक्षशिला जैसी यूनिवर्सिटी, नालंदा, विक्रमशिला, वल्लभी, बहुत हाई स्टैंडर्ड्स की यूनिवर्सिटीज थी जो उन एंशियंट इंडिया में पुरानी शताब्दियों में भी लोग चाइना से और यूरोप से और कहां कहां से लोग पढ़ने आते थे वहां, और इन हाउस फैसिलिटी थी वहां स्टूडेंट्स के रहने की, 4-4, 5-5 हज़ार बच्चा वहां पढ़ता था। तो भारत ने कहीं ना कहीं बीच में जब इन्वेड हुआ, पहले मुगल से फिर ब्रिटिश से, समहाउ ये अपनी एज लूज कर दी। उसके बाद भारत ने दोबारा फोकस किया है अब दोबारा अपने आप को, क्योंकि डेमोग्राफिक डिविडेंड जो है वो भारत के पक्ष में है, और यंग कंट्री इंडिया माना जा रहा है, और स्किलिंग को बढ़ावा देते हुए हर युवा को स्किल से एम्पावर करने से उसको सक्षम बनाएं कि वो वर्ल्ड में टेक ओवर कर सके। सो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी जो अब की है, ये बहुत वास्ट डॉक्यूमेंट था जो प्रिपेयर किया, इसमें हायर एजुकेशन में बहुत रिफॉर्म्स आए, इसमें लोअर एजुकेशन में रिफॉर्म्स आए, जैसे हमने पहले इनिशिएटिव डिस्कस किए कि कैसे बच्चे को बचपन से ही प्ले स्कूल से ही उसको रुझान उसका ताकि स्कूल जाने का हो, ड्रॉप आउट ना हो, ये सब इंश्योर की, और प्लस क्वालिटी हायर एजुकेशन। जैसे हायर एजुकेशन में आप देखेंगे कि पहले बहुत ज्यादा किसी लेवल तक करप्शन भी थी, और आज भी जो बच्चा कभी विचलित हो जाते हैं कभी, लेकिन रिफॉर्म्स के माध्यम से, जैसे मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया थी पहले, उसको रिप्लेस करके नेशनल मेडिकल कमीशन लेके आए, एंट्रेंस से एग्जाम होता है, अभी और रिफॉर्म्स प्रोसेस में है, और रिफॉर्म्स कस्तूरी रंजन कमेटी बैठी है, और इसके ऊपर हाई पावर्ड कमेटी एक और रिफॉर्म्स को आगे लेके जा रही है। सो ये बहुत जरूरी है कि रिफॉर्म्स इज अ कंटिन्यूअस प्रोसेस, और इसमें जो टार्डिनेस है, जो करप्शन है, जो चीजें एम्बेड कर जाती हैं हमारे सिस्टम में, उसको रिमूव करने के लिए कंटिन्यूअसली रिफॉर्म्स की प्रोसेस जरूरी है। शिक्षा ही भारत को आगे ले जा सकती है, जब हर इंडियन जब निपुण होगा शिक्षा में, तभी भारत आगे विकसित बन सकता है।
1: सुषमा जी, अभी संजीव जी ने एक अपने सवाल के जवाब में जो बताया एनएमसी के बारे में, हम उसी पर चर्चा करते हैं, नेशनल मेडिकल कमीशन। एनएमसी के आने के बाद देश में मेडिकल सीटों को लेकर एक बड़ा बदलाव आया है, एमबीबीएस और पीजी दोनों की सीटें लगभग दोगुनी हो गई हैं। डॉक्टरी की पढ़ाई के इस तरह आसान और सुलभ होने से हमारे देश के युवाओं के लिए और गांव शहरों की स्वास्थ्य व्यवस्था के लिए इसके क्या मायने हैं, और पिछले 2 दशकों में इसमें जो परिवर्तन हुए हैं वो भावी भारत के निर्माण में कितनी अहम भूमिका निभा सकते हैं?
2: अगर विकसित भारत की बात करें और भावी भारत की बात करें तो शिक्षा और स्वास्थ्य वो 2 मजबूत पिलर्स होते हैं जिनके आधार पर किसी भी विकसित राष्ट्र की नींव रखी जाती है। तो शिक्षा के क्षेत्र में हमने राष्ट्रीय शिक्षा नीति के अंतर्गत परिवर्तन किए हैं, जो अर्ली चाइल्डहुड केयर से लेके, जिसकी बात अभी हमने की, शिक्षा के लिए विद्यालय से पहले ही खेल खेल में तैयार किया जाए, से विशेषज्ञ डोमेन स्पेसिफिक विश्वविद्यालय खोले गए हैं, वह एक बात है। लेकिन रेगुलेशन भारत में एक समस्या थी, और ये माना जाता था या ये घटित हो गया था कि जो भी नियंत्रक नियामक आयोग हैं या परिषदें हैं वह अपने आप में भ्रष्ट निकाय बन गए थे, क्योंकि पारदर्शिता नहीं थी। इसलिए एक तरफ अभी हेकी जो जल्दी ही आएगा, यूजीसी का स्थान लेगा और बहुत सारी परिषदों का स्थान लेगा, लेकिन 2020 में ही भारतीय चिकित्सा परिषद के स्थान पर भारतीय चिकित्सा आयोग या राष्ट्रीय आयुर्विज्ञान आयोग लाया गया, क्योंकि मेडिकल एजुकेशन में इतना ज्यादा रेगुलेशन था जैसे लॉ एजुकेशन में भी है लगभग। तो यहाँ संरचनात्मक सुधार तो ये हुआ कि 4 स्वायत्त बोर्ड बना दिए, अंडर ग्रेजुएट मेडिकल एजुकेशन बोर्ड, पोस्ट ग्रेजुएट मेडिकल एजुकेशन बोर्ड, मेडिकल असेसमेंट एंड रेटिंग बोर्ड, एथिक्स एंड मेडिकल रजिस्ट्रेशन बोर्ड। दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स ऑफ मेडिकल एजुकेशन, क्योंकि एथिक्स भी उस रिसर्च के लिए

0: भी आवश्यक है और शिक्षा के लिए भी आवश्यक है। और इसके साथ साथ शिक्षक संकाय से की योग्यता से जुड़े हुए जो नियम थे उनको भी अपडेट किया गया है। और वहीं से जो सुधार आरंभ हुए तो मेडिकल कॉलेजेस में सीटों की पारदर्शी विधि प्रक्रिया यानी आप नीट के माध्यम से एकीकृत हो गए, साथ ही साथ पारदर्शी प्रवेश व्यवस्था हो गई क्योंकि आपको पता है आपका कौन सा स्थान है, आपने कहाँ अप्लाई किया है। एंड एवरी इंस्टीट्यूशन इज सपोज टू पुट इट ऑन देयर बोर्ड, पुट इट ऑन देयर वेबसाइट। तो यह भविष्य के लिए इसलिए बहुत सुंदर है कि भारत का बच्चा कहीं यूक्रेन भागता था, कहीं चीन भागता था, कहीं और किसी विदेश में भागता था क्योंकि यहाँ मेडिकल सीट्स उसके लिए उपलब्ध नहीं थी। तो मेडिकल सीटों का बढ़ना दो प्रकार से उत्तम है। एक, जो बच्चा यहाँ चिकित्सा शिक्षा ग्रहण करना चाहता है चाहती है उसको यही अवसर उपलब्ध हो रहे हैं, और जो भारत के विभिन्न चिकित्सालयों में चिकित्सा विशेषज्ञ उपलब्ध नहीं है या टीचर मेडिकल टीचर्स उपलब्ध नहीं थे वह भी अब उपलब्ध होंगे।
1: भारत की डेमोग्राफिक डिविडेंड का पूरा लाभ उठाने के लिए स्किल इंडिया, जिसे हम प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना कहते हैं, PMKVY 4.0 की शुरुआत हुई है इस देश में, और उसके तहत हम देख रहे हैं कि आज के समय की जरूरत के अनुसार AI, रोबोटिक्स और 3D प्रिंटिंग जैसी फ्यूचरिस्टिक स्किल्स में युवाओं को ट्रेनिंग दी जा रही है। स्किल और रोजगार के क्षेत्र में जो परिवर्तन आया है और जब से ये योजना शुरू हुई है करोड़ों युवाओं को इससे प्रशिक्षित किया जा चुका है। और सुषमा जी ने भी थोड़ी देर पहले कहा था कि कौशल से जुड़े विश्वविद्यालय भी चल रहे हैं, इसको आप कैसे देखते हैं, युवाओं में उनको स्किल्ड बनाने में, उनको खुद का व्यवसाय शुरू करने में, नौकरी खोजने की बजाय नौकरी देने में इसकी कितनी बड़ी भूमिका आप देख रहे हैं?
2: जी, जैसे मैंने आपको पहले भी बताया कि भारत को विकसित बनाने के लिए शिक्षा का बहुत महत्व है, और शिक्षा का महत्व ये है कि अगर जब तक उसके हर सिटीजन ट्रूली ग्लोबल सिटीजन ना बने कि शिक्षा यहाँ ग्रहण करे और हर जगह उसकी वैल्यू हो। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी उसका विजन भी यही था कि एक तो अपनी मदर टंग में शिक्षा प्रदान करनी, उस पे फोकस था, दूसरा इंडियन इथॉस में रूटेड हो हमारा एजुकेशन, और तीसरा हर सिटीजन को एक ट्रूली ग्लोबल सिटीजन बनाना। तो स्किलिंग बहुत जरूरी एस्पेक्ट था क्योंकि डेमोग्राफिक डिविडेंड आपने बात करी, भारत का एक एडवांटेज है, बहुत मेजर एडवांटेज है, और जब तक उसके युवा शिक्षित नहीं होंगे, स्किल्ड नहीं होंगे कि वर्ल्ड पावर के साथ जो बाकी देशों के युवा हैं उनके साथ कम्पीट करने के लिए, जब ट्रूली ग्लोबल नहीं होंगे तो वो कम्पीट नहीं कर सकते। तो इसलिए स्किल यूनिवर्सिटीज, अगर आपको याद हो कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब प्रधानमंत्री बने 2014 में, तो सबसे पहले उन्होंने अपनी मिनिस्ट्री में एक स्किल डिपार्टमेंट, एक स्पेशल अलग बनाया जिसमें युवाओं को स्किल करने के लिए, जैसे पहले हमारे हायर लेवल पे IITs होती थी स्किल करने के लिए, IIMs थे, लोअर लेवल पे ITIs वगैरह थी और पॉलिटेक्निक्स थे। तो उसके अलावा अब स्किल यूनिवर्सिटीज भी बन रही हैं, और जैसे एम्स की बात करी कि वो हेल्थ एजुकेशन में, अब एम ये है कि हर स्टेट के पास एक एम जरूर हो, एक एटलीस्ट हो, 12 या 14 निर्माण हो चुके हैं एम्स एक से शुरू करके, सिमिलरली हर स्टेट के पास होगा। सो स्किल यूनिवर्सिटीज में भी इस स्पेसिफिक फील्ड्स में, जैसे हायर एजुकेशन की हमने बात करी, तो स्किल प्रदान करने के लिए युवाओं को इवन पॉलिटेक्निक्स और ITIs जो थे उनको भी अपग्रेड किया जा रहा है अब। तो बहुत सारा फोकस जो है वो स्किलिंग पे लग रहा है, और मिनिस्ट्री ऑफ स्किल एजुकेशन इज कंटिन्यूअसली वर्किंग इवन विद द प्राइवेट सेक्टर। प्राइवेट सेक्टर को इन्वॉल्व किया जा रहा है, इंडस्ट्री को इन्वॉल्व किया जा रहा है, सो दैट द यूथ बिकम एम्पावर्ड विद ग्लोबल स्किलिंग स्किल्स।
1: सुषमा जी, एक सवाल परीक्षा पे चर्चा से जुड़ा भी, परीक्षा की जब भी हम बात करते हैं, परीक्षा की चर्चा करते हैं, तो दो दशक पहले के भारत में जब मैं विद्यार्थी था तो घर का माहौल ऐसा हो जाता था कि पता नहीं घर में क्या हो गया है, टीवी ऑन होना बंद हो जाते थे, अगर कोई मेहमान आने वाले हैं तो बता दिया जाता था कि अभी परीक्षा चल रही है बच्चों की, आप थोड़े समय बाद आइए, घर में शोर शराबा नहीं होता था। लेकिन उसके बाद जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने परीक्षा पे चर्चा जैसे कार्यक्रम की शुरुआत की, खुद बच्चों से बात करते थे, खुद उनके अभिभावकों को बताते थे, और कुल मिलाकर एक माहौल तैयार किया गया कि परीक्षा डर का मामला नहीं है, इसे आप एक त्योहार की तरह देखिए, एक उत्सव की तरह देखिए, अगर उसमें आप नाकाम हो भी जाते हैं तो सुसाइड करने की जरूरत नहीं है, डिप्रेशन में जाने की जरूरत नहीं है, जीवन में बहुत सारे अवसर हैं। इस बदलाव से बच्चों के मेंटल हेल्थ और कॉन्फिडेंस में बहुत परिवर्तन आया, अभिभावकों को भी बातें समझ में आई। कैसे देखते हैं बच्चों के मनोविज्ञान के नजरिए से, उनके विकास के नजरिए से और सामाजिक परिवर्तन के नजरिए से

0: कितना बड़ा बदलाव आप मानती हैं परीक्षा पे चर्चा को?
1: जी, सबसे पहले तो इसकी जो खूबसूरती है या सौंदर्य है वो ये है, प्रधानमंत्री स्वयं बच्चों से बात करें। ये अपने आप में एक बड़ी उपलब्धि है कि विद्यार्थियों को राष्ट्र के प्रधानमंत्री से बात करने का, संवाद करने का अवसर मिल रहा है। तो राष्ट्र के शीर्ष नेतृत्व के साथ वो बात करते हैं, सीधा संवाद करते हैं, विद्यार्थी करते हैं, शिक्षक करते हैं, अभिभावक करते हैं, और इसको एग्जाम वॉरियर्स अभियान भी उन्होंने आरंभ में चलाया। ये मुझे लगता है बहुत ही समीचीन था और सामयिक भी था, क्योंकि एक समय ऐसा आया, बिल्कुल सही है, मैं भी उसी समय की उपज हूँ, जब आपने कहा टेलीविजन भी बंद, घर में मेहमानों का आना भी बंद, कमरा भी बंद, और बच्चे के लिए जैसे सजा हो उसे एक एग्जाम के लिए तैयारी करनी है और अधिक से अधिक मार्क्स लेने, उसमें अधिक से अधिक अंक प्राप्त करने हैं, एक एग्जाम ना हुआ ऐसा लगता था जैसे जीवन वहीं रुक गया है और वहीं रुककर उसको सफलता ही हासिल करनी है, उसके बाद उसका दरवाजा खुलेगा। उसमें बहुत बड़ा बदलाव माननीय प्रधानमंत्री जी के संवाद से आया है, और इसे आप इस रूप में भी देख सकते हैं कि 3 करोड़ से अधिक पंजीकरण अब तक, नौवां संस्करण 2026 में हुआ था उसमें इतने पंजीकरण हुए, और सहभागिता भी बहुत बड़ी है,
2: क्योंकि कक्षा 6 से कक्षा 12 तक के विद्यार्थी इसमें भाग ले सकते हैं, अलग अलग श्रेणियों में पंजीकरण कराते हैं, और उद्देश्य भी यह है परीक्षा के तनाव को कम करना। यहाँ मैं विशेष तौर पर एक आंकड़ा लेना चाहती हूँ कि हमारे देश के यदि विद्यालयों के आंकड़े हम लें तो विद्यार्थी माध्यमिक स्तर तक तो एनरोलमेंट 88.5% है, लेकिन 9वीं से 12वीं तक ये घटकर 56.4% हो जाता है। मुझे लगता है कि इनको भी एड्रेस करना अवश्य ही माननीय प्रधानमंत्री जी का उद्देश्य रहा होगा, ताकि जीवन के प्रति, परीक्षा के प्रति, अंकों के प्रति एक सकारात्मक दृष्टिकोण विकसित हो और तनाव कम हो, तो व्यक्ति अपने आप अवसर देखने लगता है, खोजने नहीं पड़ते पर उसको अर्थ कर सकेंगे।
0: संजीव जी, आखिर में परीक्षा पे चर्चा का एक और महत्वपूर्ण पहलू रहा स्ट्रेस को कम करना, और कहीं ना कहीं उससे जो परिणाम हमें देखने को मिले वो बहुत शानदार रहे। संक्षेप में, कार्यक्रम में समय कम है, क्या बताएंगे आप?
3: जी, ये जो परीक्षा पे चर्चा जो प्रधानमंत्री जी ने 2018 में इनिशिएटिव शुरू किया, इसका पर्पस मेनली यही था कि हाउ टू अप्रोच एग्जाम्स इन अ स्ट्रेस फ्री एंड इजी मैनर। सो सबसे ज्यादा प्रधानमंत्री ने इंटरेक्शन स्टूडेंट के साथ, टीचर्स के साथ और पेरेंट के साथ, मैं आपको बता दूं कि टोटल इस इनिशिएटिव के साथ अभी तक टोटल 4.5 करोड़ से ज्यादा लाभार्थी, यू नो, स्टूडेंट्स, टीचर्स एंड पेरेंट्स जुड़ चुके हैं। 4.2 करोड़ तो स्टूडेंट्स ही हैं, 25 लाख टीचर्स हैं, 6 लाख पेरेंट्स हैं, और पहला संस्करण इसका 16 फरवरी 2018 को हुआ। उसके बाद प्रधानमंत्री ने इसमें काफी पहलू उठाए। फॉर एग्जाम्पल, 1 2024 में उन्होंने इस पे बहुत इंपॉर्टेंटली बच्चों को ये भी बताया कि अपना टाइम वेस्ट मत कीजिए रीलें देखने में, और हैव एनफ स्लीप, नींद बहुत जरूरी है ताकि अगले दिन फ्रेश होके अपना एग्जाम दे सकें। उन्होंने पहले एक बारी पबजी का भी, जो बहुत क्रेज की तरह बच्चों में फैल चुका था, बाद में तो गेम बैन हो गई, लेकिन पबजी के बारे में भी मेंशन किया कि वो बच्चे नहीं उसमें करें। सो ये जो इनिशिएटिव था बेसिकली बहुत स्टूडेंट्स को इन्फॉर्मेटिव भी है, क्योंकि प्रधानमंत्री जी उसके साथ अपने अनुभव भी उसके साथ जोड़ देते हैं।
0: तो श्रोताओं, शाला प्रवेश उत्सव से शुरू हुई प्राथमिक शिक्षा की एक छोटी सी चिंगारी आज राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020, निपुण भारत और गतिशक्ति विश्वविद्यालय जैसे वट वृक्ष का रूप ले चुकी है। गुजरात के दूर दराज के गांव में ड्रॉपआउट रेट कम करने के लिए एक संकल्प से लेकर आज 145 करोड़ भारतीयों के विकसित भारत 2047 के सपने तक, ये यात्रा सिर्फ योजनाओं की नहीं बल्कि सोच के परिवर्तन की यात्रा है। जब देश का शीर्ष नेतृत्व शिक्षा को केवल कागजी डिग्रियों तक सीमित न मानकर हर बच्चे के आत्मविश्वास, उसके मानसिक स्वास्थ्य, उसकी मातृभाषा और उसकी कुशलता से जोड़ता है, तब जनसेवा की यही भावना वास्तव में एक स्वर्णिम देश सेवा का रूप ले लेती है। चर्चा में शामिल होने के लिए संजीव जी आपका और सुषमा जी आपका बहुत बहुत आभार।
3: जी, बहुत धन्यवाद।
2: धन्यवाद।
4: विशेष श्रृंखला जनसेवा से देश सेवा के 12वीं संस्करण में आप सुन रहे थे परिचर्चा, शिक्षा और कौशल, भविष्य की नींव। इसमें भाग ले रहे थे विश्वविद्यालय अनुदान आयोग UGC की पूर्व सदस्य प्रोफेसर सुषमा यादव और वरिष्ठ पत्रकार संजीव चोपड़ा। कार्यक्रम का संचालन कर रहे थे आनंद श्रीवास्तव। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग द्वारा प्रस्तुत किया गया। इसे आप हमारे मोबाइल ऐप NewsOnAIR और यूट्यूब चैनल NewsOnAIR ऑफिशियल पर भी सुन सकते हैं। इस कार्यक्रम के संबंध में अपनी प्रतिक्रिया आप हमें ईमेल या व्हाट्सएप के माध्यम से भेज सकते हैं। ईमेल का पता है

0: irnsdtalks@gmail.com और व्हाट्सएप नंबर है 9289094044।
1: श्रोताओं, अभी आप माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी द्वारा जनसेवा के 25 वर्ष पूर्ण करने के अवसर पर समाचार सेवा प्रभाग द्वारा प्रस्तुत विशेष कार्यक्रम सुन रहे थे। मीडियम वेव 438.6 मीटर अर्थात 684 किलोहर्ट्ज़ पर यह आकाशवाणी का श्री विजयपुरम केंद्र है। सवेरे के 9:45 हुए हैं। आइए सुनते हैं कुछ फिल्मी गीत।

0: श्रोताओं, अभी आप रन फिल्म का गीत सुन रहे थे, जिसे गाया अलका याग्निक और सोनू निगम ने। श्रोताओं, कार्यक्रम में हम पुनः जुड़ेंगे इस छोटे से अंतराल के बाद।
1: ये कहानी है एक नर्स और उसकी अंतर्मन की।
2: आ गई सैलरी? नहीं झुमके ना, पहले बचत, पहले झुमके। सुनो, हर महीने थोड़ा बचाओ और थोड़ा निवेश करो, और कुछ इमरजेंसी के लिए भी बचाओ ताकि रहो टेंशन फ्री। लेकिन झुमकों का क्या, जाते हो कि लगाओ इंजेक्शन।
3: आरबीआई कहता है,
4: वित्तीय समझदारी समृद्ध नारी।
0: श्रोताओं, कार्यक्रम में आपका पुनः स्वागत है। श्रोताओं, आइए सुनते हैं तुम मिले फिल्म का गीत, जिसे गाया है प्रीतम जावेद अख्तर और ईशान अशरफ ने।

कार्यक्रम का अंतिम गीत सुनिए लता मंगेशकर की आवाज़ में, जिसे लिखा आनंद बख्शी और संगीत दिया आरडी बर्मन ने। फिल्म का नाम बेमिसाल।

श्रोताओं, अभी आप कुछ फिल्मी गीतों का आनंद ले रहे थे। ये आकाशवाणी का श्री विजयपुरम केंद्र है। सवेरे के 10 बजे हैं। अब प्रस्तुत है फिल्मी गीतों का कार्यक्रम गीत गाता चल। कार्यक्रम का पहला गीत हम आपको सुनवा रहे हैं फिल्म टू स्टेट से अरिजीत सिंह और छिन्मय श्रीपदा की आवाज़ों में। गीत रचना अमिताभ भट्टाचार्य की और संगीत दिया है शंकर एहसान लॉय ने।

मोहित चौहान और सुजानी डी मेलो की आवाज़ में सुनिए फिल्म रॉकस्टार का गीत, जिसे संगीत दिया है ए आर रहमान ने।

कौशिक मुनीर का लिखा हुआ साजिद वाजिद का संगीतबद्ध किया हुआ गीत श्रोताओं सुनिए, मैं तेरा हीरो फिल्म का गीत, जिसे गाया है नीति मोहन और जावेद अली ने।

अगला गाना जो आप सुनेंगे उसे आवाज़ दी है अरिजीत सिंह ने। फिल्म का नाम यंगिस्तान, गाने के बोल लिखे हैं कौशर मुनीर ने और संगीत से सजाया है जीत गांगोली ने।

समीर अंजान का लिखा हुआ साजिद वादिद का संगीतबद्ध किया हुआ गीत श्रोताओं सुनिए जय हो फिल्म से, जिसे गाया है शान और श्रेया घोषाल ने।

हाईवे। श्रोताओं सुनिए इस फिल्म का गीत एआर रहमान की आवाज़ में, जिसे लिखा है इरशाद कामिल ने और संगीत से सजाया है एआर रहमान ने।

शादी के साइड इफेक्ट्स। श्रोताओं सुनिए इस फिल्म का गीत मोहित चौहान का, आवाज़ में स्वानंद किरकिरे के लिखे इस गीत को संगीत से सजाया है प्रीतम ने।

अभी आप शादी के साइड इफेक्ट्स फिल्म का गीत सुन रहे थे जिसे मोहित चौहान ने गाया था। श्रोताओं, अब सुनिए कौशिकी चक्रवर्ती की आवाज़ में फिल्म गुलाब गैंग का गीत, रचना नेहा सराफ की और संगीत से सजाया है शौमिक सेन ने।

आवश्यक सूचना। आकाशवाणी श्री विजयपुरम से ब्रॉडकास्टिंग असिस्टेंट के पैनल में शामिल होने हेतु योग्य उम्मीदवारों से आवेदन आमंत्रित किए गए हैं। स्नातक अर्थात ग्रेजुएट उम्मीदवार जिन्हें हिंदी व अंग्रेजी तथा कंप्यूटर का ज्ञान हो और जिनकी आयु 31 अगस्त 2026 को 40 वर्ष से अधिक ना हो, इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। श्री विजयपुरम नगर पालिका क्षेत्र के भीतर रहने वाले जो समुचित योग्यता रखते हैं इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। आवेदन प्रपत्र आकाशवाणी श्री विजयपुरम के ड्यूटी रूम से प्राप्त किए जा सकते हैं। आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि 5 अक्टूबर 2026 है। याद रहे प्रसारण सहायक अर्थात ब्रॉडकास्टिंग असिस्टेंट की ये चयन प्रक्रिया किसी नियमित रोजगार के लिए नहीं है। इस संबंध में और अधिक जानकारी के लिए आकाशवाणी श्री विजयपुरम से संपर्क किया जा सकता है। श्रोताओं, कार्यक्रम के अंत में हम आपको सुनवा रहे हैं फिल्म यंगिस्तान का गीत। सीरज उपाल की आवाज़ में गीत रचना शकील सोहेल की।

आकाशवाणी का ये श्री विजयपुरम केंद्र है। दिन के 11 बजे हैं। आइए सुनते हैं प्रायोजित कार्यक्रम NCERT की 1382 कड़ी।

0: इतनी कम उम्र में देश की आज़ादी के लिए अंग्रेजों का विरोध करते हुए उन्होंने अपने प्राण न्यौछावर कर दिए। बाजी राउत की शहादत हमें सिखाती है कि देशभक्ति उम्र नहीं जज्बे की मोहताज है। ऐसे वीर बाल शहीद को शत शत नमन।
1: आपका बहुत बहुत धन्यवाद इस सुंदर संदेश के लिए। अगला संदेश हमें मिला है रायगढ़ से गेंदलाल श्रीवास, नरेंद्र कुमार तिवारी और कृष्ण कुमार यादव जी का।
0: इसके साथ साथ ही हमें संदेश प्राप्त हुआ है सहसपुर से छोटकू साहू, मोहित राम साहू, लोकेश साहू, रामकिशन साहू, दुली चंद साहू और सतीबाई साहू जी का।
1: और वो लिखते हैं, प्रिय उद्घोषक जी, मन ला राम राम जय जोहर पहुँचे। उमंग कार्यक्रम प्रसारित होते एमा बहुत सुंदर ज्ञान वर्धक बात लगत है। शहर में गंदगी से कैसे बचे और सावधान रहे ये सब बात बताते, हमरा बहुत सुंदर लगत। एक हर बार बहुत बहुत धन्यवाद
0: जी। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद संदेश भेजने के लिए।
1: अकोला महाराष्ट्र से राजेश पी कारिया जी का संदेश हमें मिला है। लिखते हैं, विमलेश जी और अजीत जी को प्यार भरा नमस्कार। कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूं कि आप सब कुशल मंगल होंगे।
0: हमें दिनांक 28 अगस्त 2026 का उमंग प्रोग्राम बहुत पसंद आया, जिसमें आपने एक कहानी सुनाई। वो कहानी थी बुद्धिमान किसान। हमें बेहद अच्छी लगी। इस कहानी के जरिए हमें ये सीख मिलती है कि जीवन में हर चीज का बारीकी से निरीक्षण करना चाहिए। ये सुनवाने के लिए मैं NCERT उमंग टीम को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ।
1: बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी श्रोताओं को संदेश भेजने के लिए। श्रोताओं, जैसा कि आप जानते हैं, उमंग कार्यक्रम मुख्य रूप से विद्यार्थियों का शैक्षिक कार्यक्रम है
0: जी।
1: इस क्रम में हम मुख्य रूप से प्रस्तुत कर रहे हैं एक नई श्रृंखला, भारत के बहादुर बच्चे।
0: जी हाँ श्रोताओं, इस श्रृंखला के दो एपिसोड में हम चर्चा करेंगे मेघालय राज्य के दो ऐसे बच्चों की जिन्हें उनकी बहादुरी के लिए राष्ट्रीय स्तर पर सम्मानित किया गया।
1: तो आज सुनिए श्रोताओं, एक ऐसे बालक की कहानी जिसकी उम्र तो केवल 13 वर्ष थी, लेकिन उसके साहस ने उसे हमेशा के लिए अमर बना दिया।
0: श्रोता, उस बहादुर बालक का नाम था मेघराज। लेकिन एक दिन ऐसा आया जब उसे अपने जीवन का सबसे बड़ा निर्णय लेना पड़ा। आइए जानते हैं ऐसा क्या हुआ था।
1: मित्रों, ये घटना है 12 मई 1997 की। मेघराज अपने 6 मित्रों के साथ शिलोंग के प्रसिद्ध एलिफेंट फॉल्स में गया था। बच्चे वहाँ खेल रहे थे कि तभी एक दुर्घटना हो गई।
0: ओ, क्या हुआ था?
1: हुआ ये कि मेघराज के 11 वर्षीय मित्र किशन सिंह का पैर फिसल गया और वो पानी में जा गिरा। किशन तैरना नहीं जानता था, वो पानी में डूबने लगा।
0: श्रोताओं, मेघराज तैरना जानता था। उसने एक पल भी अपने मित्र को अकेला नहीं छोड़ा। उसे मालूम था किशन तैर नहीं सकता है। मेघराज तुरंत उसे बचाने के लिए पानी में कूद गया।
1: लेकिन विमलेश जी, एक स्वाभाविक प्रश्न है मेरे मन में
0: जी,
1: क्या उसे अपनी जान का डर नहीं लगा?
0: अजीत जी, स्वाभाविक तो है, थोड़ा डर तो जरूर लगा होगा, लेकिन उस क्षण उसके सामने अपनी सुरक्षा से बड़ी प्राथमिकता थी अपने मित्र को बचाना।
1: तो विमलेश जी, क्या मेघराज अपने मित्र किशन सिंह को बचा पाया?
0: जी, वो बचा पाया। पानी में डूबते किशन सिंह को बचाने के लिए मेघराज को बहुत संघर्ष करना पड़ा और अंत में उसने अपने मित्र किशन को पानी से बाहर निकालने में सफलता प्राप्त की। किशन की जान बच गई।
1: तो फिर मेघराज भी बाहर आ गया होगा?
0: नहीं अजीत जी, यही मेघराज की कहानी का सबसे दुखद और हृदय को छू लेने वाला भाग है। मेघराज ने किशन को तो बचा लिया, लेकिन बचाते समय मेघराज का पैर चट्टानों के बीच में फंस गया।
1: ओह,
0: वो स्वयं पानी से बाहर नहीं निकल पाया और उसकी मृत्यु हो गई।
1: जी हाँ श्रोताओ, मेघराज ने अपने मित्र की जान तो बचा ली, लेकिन अपनी जान दे दी।
0: एक 13 वर्ष के बालक ने मित्रता की ऐसी मिसाल कायम की जिसे लोग आज भी याद करते हैं।
1: जी हाँ श्रोताओ, मेघराज को उसकी बहादुरी के लिए 1997 का नेशनल ब्रेवरी अवार्ड मरणोपरांत प्रदान किया गया
0: जी।
1: गणतंत्र दिवस के अवसर पर 22 जनवरी 1998 को भारत के तत्कालीन राष्ट्रपति KR नारायणन ने उनकी माता को ये पुरस्कार प्रदान किया
0: जी।
1: आइए श्रोताओं, अब विचार करते हैं कि इस कहानी से हमें क्या क्या संदेश या सीख मिलती है।
0: जी, तो सबसे पहली सीख हमें मिलती है, सच्ची मित्रता संकट के समय ही दिखाई देती है। कहावत है ना, सच्चे मित्र की पहचान जरूरत और संकट के समय ही होती है।
1: श्रोताओं, मेघराज की कहानी केवल बहादुरी की नहीं बल्कि मित्रता और जिम्मेदारी की कहानी भी है।
0: बिल्कुल सही कहा जी जी, बालक मेघराज ने हमें दिखाया कि किसी दूसरे के जीवन को बचाने की भावना कितनी महान हो सकती है।
1: जी, कुछ जीवन लंबे नहीं होते लेकिन उनके कर्म उन्हें अमर बना देते हैं। बालक मेघराज केवल 13 वर्ष जिया, लेकिन उसने अपने छोटे से जीवन में ऐसा काम किया जिसे लोग पीढ़ियों तक याद रखेंगे।
0: तो श्रोताओं, ये थी हमारी आज की प्रेरक कहानी साहसी बालक मेघराज के बारे में। अब सुनिए आज का प्रश्न, आज की ही जानकारी से।
1: आज का प्रश्न है, बालक मेघराज को मरणोपरांत राष्ट्रीय वीरता पुरस्कार किनके द्वारा और किसे दिया गया? प्रश्न एक बार फिर से सुन लीजिए।
0: बालक मेघराज को मरणोपरांत राष्ट्रीय वीरता पुरस्कार किनके द्वारा और किसे दिया गया?

0: उमंग
1: सीआईईटी प्रस्तुत करता है
0: उमंग उमंग उमंग उमंग।
2: सभी श्रोताओं को विमलेश का नमस्कार
1: और अजीत का भी नमस्कार। श्रोताओं, हमेशा की तरह करते हैं शुरुआत एक सुंदर विचार से, जिसे हमें भेजा है धमधा ग्राम सुखरी कला से अमित जंघेल, शकुन जंघेल, आरुषि, ओशिका और अंजलि जंघेल जी ने।
2: लिखते हैं, शिक्षा वो प्रकाश है जो ज्ञान के अंधकार को दूर कर जीवन को सही दिशा देता है।
1: आपका बहुत बहुत आभार इस सुंदर संदेश के लिए। आइए अब सुनते हैं संदेश भेजने वाले श्रोताओं के नाम। तो पहला संदेश हमें मिला है तहसील ठियोग जिला शिमला हिमाचल प्रदेश से सूरज चौहान जी का, और बिलाईगढ़ छत्तीसगढ़ से रोशन लाल देवांगन, कौशल्या देवांगन, हेमलता और डिम्पल दिवांगन जी ने लिखा है, अजीत जी, विमलेश जी, सादर नमस्कार।
2: 1 सितंबर के उमंग कार्यक्रम में बालक बाजी राउत के साहस, संघर्ष और बलिदान के बारे में सुनकर मन भावुक हो गया।

0: तो 8800044555 हमारा IVRS नंबर है। आप इस नंबर पर या हमारे ईमेल यानी audio@ciet.nic.in पर हमारे प्रश्नों के उत्तर या प्रतिक्रियाएं भेज सकते हैं।
1: जी
0: तो आइए अब सुनते हैं आज के शैक्षिक कार्यक्रम। हमारा आज का पहला कार्यक्रम है बीरबल की खिचड़ी।
2: अकबर के दरबार में अनेक विद्वान थे, बीरबल उन्हीं में से एक थे। वे अपनी चतुराई के लिए बड़े प्रसिद्ध थे। अपनी चतुराई से वे बादशाह को भी हरा देते थे। अकबर और बीरबल के बारे में अनेक कहानियां प्रसिद्ध हैं। लोग उन्हें बड़े चाव से सुनते सुनाते हैं। एक बार की बात है, अकबर किसी गांव से होकर जा रहे थे। सर्दी के दिन थे, गांव के लोग आग जलाकर उसके चारों ओर बैठे बातें कर रहे थे। जब बादशाह अपने साथियों के साथ वहां पहुंचे, तो एक व्यक्ति कह रहा था,
3: मैं यमुना के पानी में रात भर खड़ा रह सकता हूँ। हाँ।
2: अकबर को इस बात का विश्वास नहीं हुआ। उन्होंने उस व्यक्ति से कहा,
4: यदि तुम सारी रात पानी में खड़े रहो तो मैं तुम्हें थैली भर मोहरे इनाम में दूंगा।
2: वह मान गया। अगली रात वह व्यक्ति यमुना के ठंडे जल में पूरी रात खड़ा रहा। प्रातः वह बादशाह के दरबार में आया। बादशाह ने आश्चर्य से पूछा,
4: हैं? तुम इतनी सर्दी में सारी रात पानी में कैसे खड़े रहे?
2: उसने नम्रता से उत्तर दिया,
5: महाराज, आपके राजमहल से दीपक का प्रकाश आ रहा था, मैं उसे देखते हुए सारी रात पानी में खड़ा रहा।
2: बादशाह ने कहा,
4: तो तुम मेरे दीपक की गर्मी के कारण ही सर्दी से बच सके, तुम्हें कोई इनाम नहीं दिया जाएगा।
2: वह बहुत दुखी हुआ और उदास होकर चला गया। उस समय बीरबल भी दरबार में उपस्थित थे। उन्होंने सोचा, इस दुखी व्यक्ति की सहायता करनी चाहिए। दूसरे दिन बीरबल दरबार में नहीं आए। अकबर को चिंता हुई कि कहीं बीरबल बीमार तो नहीं पड़ गए। उन्होंने बीरबल को बुलावा भेजा। बीरबल ने कहलवाया कि मैं खिचड़ी पका रहा हूँ, पक जाने पर दरबार में उपस्थित हो जाऊंगा। अगले दिन बीरबल को फिर दरबार में न देख कर बादशाह ने कुछ सोचा। फिर वे बोले,
4: चलो स्वयं ही चलकर देखें कि बीरबल कैसी खिचड़ी पका रहे हैं।
2: जब बादशाह बीरबल के यहाँ पहुँचे तो उन्होंने देखा, एक बहुत लंबे बांस के ऊपरी सिरे पर एक हांडी लटकी हुई है। हांडी से बहुत नीचे भूमि पर बहुत थोड़ी सी आग जल रही है। बादशाह ने हैरानी से पूछा,
4: बीरबल, भला ये खिचड़ी कैसे पक सकती है? हांडी तो आग से बहुत दूर है।
2: बीरबल ने उत्तर दिया,
3: हुजूर, अगर वो व्यक्ति राजमहल के दीपक की गर्मी के सहारे सारी रात ठंडे पानी में खड़ा रह सकता है, तो इस आग से मेरी खिचड़ी क्यों नहीं पक सकती?
2: अकबर को बात समझ में आ गई। उन्होंने दूसरे दिन उस व्यक्ति को दरबार में बुलाया और बड़े सम्मान के साथ उसे मोहरों की थैली भेंट कर दी।
0: अभी आपने सुना कार्यक्रम बीरबल की खिचड़ी, और आइए अब सुनते हैं कार्यक्रम मेजर शैतान सिंह।
1: इस कार्यक्रम में भारत और चीन के युद्ध के दौरान असाधारण वीरता का प्रदर्शन करने वाले मेजर शैतान सिंह की जीवन गाथा प्रस्तुत की गई है, और बताया गया है कि युद्ध के दौरान उन्होंने किस प्रकार अपनी वीरता का प्रदर्शन किया। उन्हें मरणोपरांत सर्वोच्च सैनिक सम्मान परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया।

0: भारत और चीन का युद्ध अपने चरम पर था। वो दिन था 18 नवंबर 1962 का। चारों ओर बर्फ से ढके पहाड़, साए साए करती बर्फीली हवा और लद्दाख क्षेत्र की हड्डियां जमा देने वाली ठंड। रात भर भीषण गोलाबारी के बाद अभी कुछ देर के लिए वातावरण शांत हुआ था। सुबह होने ही वाली थी और भारतीय सैनिक समुद्र तल से लगभग 17,000 फीट यानी 5,000 मीटर से भी ज्यादा की ऊंचाई पर अपनी चौकी पर पूरी मुस्तैदी से डटे हुए थे।
1: ये 13वीं कुमाऊं बटालियन की सी कंपनी थी, जिसे लद्दाख के चुशुल सेक्टर में तैनात किया गया था। बटालियन में कुल 120 जवान थे, जिनके पास ना तो इस भयंकर ठंड से जूझने के लिए पर्याप्त कपड़े थे और ना ही उन्हें बर्फीली जगहों पर युद्ध करने का अनुभव था। और तो और, उनके पास हथियारों के नाम पर पुरानी 303 राइफलें थीं, जो दूसरे विश्व युद्ध के बाद बेकार घोषित कर दी गई थीं।
0: अचानक बर्फीली सुबह की धुंध में उन सैनिकों को कुछ दिखाई दिया।
2: रामसिंह,
3: हाँ,
2: वो सामने तुम कुछ देख रहे हो?
3: हाँ, ऐसा लग रहा है जैसे दुश्मन मशाले लेकर इधर आ रहा है।
2: हाँ, लेकिन लड़ाई के मैदान में कोई मशाल लेकर भला क्यों आएगा?
3: ये बात तो तुम ठीक कहते हो, ऐसा जोखिम कोई क्यों उठाएगा?
2: हाँ,
3: अरे देखो, रोशनी के ये गोले अब तो और पास आ रहे हैं।
2: हाँ,
3: हमें तुरंत कमांडर को इसकी सूचना देनी चाहिए।
2: हाँ, चलो जल्दी चलो।
3: हाँ,
2: उन्हें बता देते हैं।
3: जय हिंद सर।
4: जय हिंद राम सिंह।
3: सर, पहाड़ की पूर्वी घाटी से लगता है कुछ चीनी सैनिक मशाले लेकर इधर ही आ रहे हैं।
4: क्या कहा? सैनिक मशाले लेकर इधर ही आ रहे हैं? ऐसा तो हो ही नहीं सकता। कहीं ये दुश्मन की कोई चाल तो नहीं है? समझा। सुनो।
3: जी सर।
4: फौरन मोर्चा संभालो और फायरिंग शुरू करो।
3: जी सर।
4: लेकिन ध्यान रहे, हमारे पास गोलियां कम हैं, इसलिए हमें गोलियां बचा कर रखनी है। बस कुछ एक गोलियां ही चलाना।
3: जी सर।
4: जय हिंद।
3: जय हिंद सर।

0: और सैनिकों ने मोर्चा बांधकर फायरिंग शुरू कर दी। लेकिन आश्चर्य, वो मशालें रुकी नहीं, वो आगे बढ़ती रही। जब वो बिल्कुल पास आ गई तो साफ साफ दिखाई देने लगा। पता चला कि वो मशालें नहीं थी, लालटेन थी, जिन्हें चीनी सैनिकों ने स्थानीय याक पशुओं के गले में बांधकर भारतीय सेना की ओर भेजा था।
1: 1 दिसंबर 1924 को जोधपुर राजस्थान में एक सैनिक परिवार में उनका जन्म हुआ था। उनका पूरा नाम शैतान सिंह भाटी था। उनके पिता आर्मी अफसर लेफ्टिनेंट कर्नल हेम सिंह भाटी थे। बचपन में उनकी बाल सुलभ शरारतों के कारण संभवतः उनका नाम शैतान रख दिया गया हो, लेकिन निजी जिंदगी में वो बेहद विनम्र और सौम्य व्यक्ति थे।
0: शैतान सिंह ने जोधपुर स्थित राजपूत उच्च विद्यालय से मैट्रिक की पढ़ाई पूरी की। सन 1943 में स्कूल की पढ़ाई के बाद वो सिंह जसवंत सिंह कॉलेज गए और स्नातक की पढ़ाई पूरी की। 1 अगस्त 1949 को वो एक सेना अधिकारी के रूप में जोधपुर

0: रियासत की सेना में शामिल हो गए। अपने सैन्य जीवन में विनम्रता और कार्य कुशलता के कारण वो अफसरों और सैनिकों के बीच बहुत लोकप्रिय थे।
1: तो आइए एक बार फिर से चलते हैं उसी युद्ध के मैदान में, जहां 13वीं कुमाऊं बटालियन की सी कंपनी लद्दाख के चुशुल सेक्टर में तैनात थी। ये जगह थी रेजांग लाह की घाटी। सामरिक दृष्टि से भारत कमजोर स्थिति में था। चीनी सैनिक सैकड़ों की संख्या में पूरी तैयारी के साथ बेहतर हथियारों से लैस थे और उन्हें बर्फीले क्षेत्र में युद्ध करने का भी खासा अनुभव था। जबकि भारतीय सैनिकों की संख्या उस चौकी पर मात्र 120 थी।
0: ऐसे में चीनी सेना से युद्ध में मुकाबला करना भी आत्महत्या करने के समान था। और आखिर वही हुआ जिसकी आशंका थी। 18 नवंबर 1962 की सुबह चीनी सेना ने हल्की मशीन गनों द्वारा भारतीय पोस्ट पर हमला कर दिया। मेजर शैतान सिंह सतर्क हो गए और अपने साथियों को मोर्चाबंदी करने का आदेश दिया। और जैसे ही चीनी सैनिक निकट आए, भारतीय सैनिकों ने उन पर लाइट मशीन गन, राइफल्स, मोर्टार और ग्रेनेड से हमला कर दिया और कई चीनी सैनिक मार गिराए।
2: जवानों, हमारे पास दो ही विकल्प हैं, मरो या मारो। तुम सब भारत माता के बहादुर सिपाही हो। तुमने अपनी जन्मभूमि की रक्षा करने की शपथ ली है, तो आगे बढ़ो। हम किसी भी हालत में पीछे नहीं हटेंगे। फायर! फायर! कालिका माता की
3: जय!
2: भारत माता की
3: जय!
2: फायर!
4: आगे बढ़ो।
5: साहब, वो देखिए, घाटी के दूसरे रास्ते से दुश्मन के बहुत से सैनिक इधर ही आ रहे हैं।
6: फतेह सिंह, अभी उन्हें और पास आने दो। जब पास आ जाएं, तो हथगोलों का इस्तेमाल करो।
5: जी सर।
0: चीनी सेना के सिपाही भारतीय सेना के प्रचंड प्रहार के सामने टिक नहीं सके और पीछे हटने लगे। उनके बहुत से सैनिक मारे जा चुके थे, लेकिन शीघ्र ही चीनी सेना ने रणनीति में बदलाव किया। उन्होंने घाटी में ऊंचे स्थानों पर बनी चौकियों से भारतीय चौकी पर जबरदस्त बमबारी की।
1: भारतीय सैनिकों के बंकर नष्ट हो गए। उनके पुराने हथियार चीनी सैनिकों के नए हथियारों के मुकाबले बेकार साबित हो रहे थे। भारी संख्या में भारतीय सैनिक मारे जा चुके थे। चीनी सैनिक घोड़ों और याक पर और अधिक हथियार लाद कर ले आए और आक्रमण जारी रखा।
0: लेकिन मेजर शैतान सिंह भला हार कहां मानने वाले थे। उन्होंने इस दुर्गम परिस्थिति का डटकर मुकाबला किया।
2: जितना असला है पूरा इस्तेमाल करो। मैं तुम्हें और बक्सा ला के देता हूं असले का। फायर! हुकम सिंह।
5: जी सर।
2: एलएम जी संभाल, छोड़, फायर कर। राइट साइड पे फायर कर।
1: वो उनका साहस बंधाते और उन्हें लड़ने मरने के लिए प्रेरित करते। गोलियां कम थी, ठंड की वजह से उनके शरीर जवाब दे रहे थे। अपनी मशीन गनों और बंदूकों के ट्रिगर पर भीषण ठंड के कारण उनकी उंगलियां काम नहीं कर रही थीं। चीनी सैनिकों से ये बचे हुए जवान लड़ते रहे। 10-10 चीनी सैनिकों से एक एक जवान ने लोहा लिया। उस दिन चीन की प्लाटून के बहुत से सैनिक मारे गए।
0: मेजर शैतान सिंह को भी कई गोलियां लगी थी, जिससे वो बुरी तरह से घायल हो गए थे।
5: अरे साहब, आप तो बहुत घायल हो गए हैं।

0: ना खून बह रहा है, आपके आपके दोनों हाथ बेकार हो चुके हैं।
1: राम सिंह मेरी चिंता मत कर, मैं ठीक हूँ। मेरे लिए एक मशीन गन लाओ, मशीन गन लाओ।
0: जी साहब, अभी लाया। अरे हुकुम भाई, जरा साहब के लिए एक मशीन गन ले आना।
2: अच्छा, सर यही मशीन गन।
1: हुकुम सिंह, एक काम करो।
2: जी।
1: गन के ट्रिगर को एक रस्सी से बांध दो।
2: जी सर।
1: मैं छोड़ूंगा नहीं दुश्मन को, जल्दी करो।
2: जी सर। बांध दिया सर।
1: ठीक से बंध गई रस्सी ट्रिगर के साथ।
2: हाँ सर, बांध।
1: इस रस्सी को मेरे बाएं पैर के साथ बांधो, जल्दी। टाइट करके, खींच करके, खींच के इस तरफ लेके। हील नहीं रहनी चाहिए बिल्कुल।
2: जी सर।
1: भारत माता की जय। भारत माता की जय।
3: कहते हैं कि मेजर शैतान सिंह ने मशीन गन को दुश्मन के आने की दिशा में निशाना लगाकर जमीन पर जमा दिया और रस्सी की मदद से अपने एक पैर से फायरिंग शुरू कर दी। लेकिन लगातार खून बहने से मेजर शैतान सिंह अब अर्धमूर्छित अवस्था में आ गए थे। कुछ सैनिक घायल मेजर शैतान सिंह को एक बड़ी चट्टान के पीछे ले गए।
0: संभल कर, संभल कर।
2: सर, सब यहां सर टिका लीजिए।
0: सर, ऐसे सर।
4: कालिका माता की जय।
5: वो नहीं चाहते थे कि किसी भी हालत में उनके प्रिय कमांडर मेजर शैतान सिंह चीनी सैनिकों के हाथ लगें। मेजर शैतान सिंह को कभी कभी होश आ जाता था।
4: छोड़ना नहीं, आखिरी सांस। फायर, फायर।
5: सैनिक बारी बारी से मेजर शैतान सिंह को अपनी पीठ पर लादे हुए उबड़ खाबड़ बर्फीले रास्तों पर चल रहे थे कि तभी चीनी सैनिकों की एक और टुकड़ी दिखाई दी जो उनकी ओर आ रही थी। मेजर समझ गए थे कि अब उनका सफर यहीं तक है। उन्होंने अपने सैनिकों को आदेश दिया।
4: साथियों, हमें चीनी सैनिकों ने देख लिया है और वो इधर ही आ रहे हैं। मेरी चिंता मत करो, मुझे यहीं छोड़ दो।
2: साहब,
4: तुम लोग आगे निकलो।
0: साहब, ये आप क्या कह रहे हैं साहब? ऐसा नहीं हो सकता साहब, हम आपको किसी भी कीमत पर नहीं छोड़ेंगे।
4: नहीं, नहीं। बात को समझो, अगर मुझे लेकर चलोगे तो पकड़ लिए जाओगे। अपनी जान बचाओ।
0: नहीं साहब।
4: क्या मालूम चीनी सैनिक तुम लोगों से कैसा सलूक करे। मुझे यही मेरे हाल पर छोड़ दो।
0: नहीं साहब,
4: नहीं। याद है, इट्स एन ऑर्डर।
2: सर,
4: जाओ। अलविदा, अलविदा दोस्तों, अलविदा। भारत माता की
3: भारी मन से सैनिकों ने मेजर शैतान सिंह को वहीं छोड़ दिया और आगे चल दिए। इसके बाद उनका कोई पता नहीं चला। 1963 के फरवरी महीने में भारत चीन युद्ध समाप्त हो गया। 3 महीने बाद जब बर्फ पिघली और चरवाहों का एक दल भेड़ों के झुंड के साथ चुशुल में रेजांग ला घाटी से गुजर रहा था तो उन्होंने एक भयानक दृश्य देखा। चारों तरफ भारतीय सैनिकों के मृत शरीर बिखरे पड़े थे। उनके हाथों में हथियार थे, चेहरे विकृत थे और आंखें आसमान की तरफ ताक रही थी।
5: उन चरवाहों ने तुरंत भारतीय पोस्ट

0: पर अधिकारियों को सूचना दी।
1: साहब, मैं एक चरवाहा हूँ साहब, मुझे एक बहुत जरूरी सूचना देनी है।
0: भारतीय सेना ने तुरंत कार्यवाही की। सेना के जवानों के साथ वहां रेड क्रॉस सोसाइटी भी थी। उन्हीं दिनों एक और चरवाहे ने सूचना दी कि एक चट्टान के नीचे कोई दिखाई दे रहा है। खोजी दल उस चट्टान के पास पहुंचा। वहां किसी और का नहीं, मेजर शैतान सिंह का पार्थिव शरीर पड़ा हुआ था। बर्फ की वजह से उनका शरीर जम गया था।
2: उनके पार्थिव शरीर को पूरे सम्मान के साथ उनके गृह नगर जोधपुर लाया गया और पूरे सैनिक सम्मान के साथ उनका अंतिम संस्कार किया गया।

0: युद्ध के शहीदों की स्मृति में रेजांगला घाटी में एक स्मारक बनाया गया है। आज भी बर्फीले पर्वतों के जंगली घोड़े कियांग और नीली भेड़ों के झुंड उस स्मारक के आसपास घूमते रहते हैं। ऐसा लगता है मानो वो सैनिकों की याद में बने इस स्मारक की प्रेम से रखवाली कर रहे हैं।
1: कई बार बर्फीले पर्वतों पर साए साए चलने वाली हवाएं कहीं दूर से बुरांश के फूलों को लाकर उस स्मारक पर डाल देती हैं, जैसे श्रद्धांजलि दे रही हूं।
0: हालांकि भारत युद्ध हार गया था, लेकिन बाद में पता चला कि चीन की सेना का सबसे ज्यादा नुकसान रेजांगला पर ही हुआ था। चीन के करीब 1,800 सैनिक इस जगह मारे गए थे। ये एकमात्र जगह थी जहां भारतीय सेना ने चीनी सेना को घुसने नहीं दिया था, और ये संभव हुआ था मेजर शैतान सिंह के असाधारण शौर्य के कारण।
1: परमवीर चक्र से सम्मानित भारत भूमि के इस पराक्रमी महायोद्धा को हमारा सलाम।
2: और इसी के साथ हमारा आज का उमंग कार्यक्रम यहीं पर समाप्त होता है। अब अपने मित्र अजीत को उमंग कार्यक्रम की तकनीकी टीम यानी कुसुमलता,
3: जगबंधु,
2: चेतना,
3: अर्शद,
2: सौम्या,
3: प्रसून
2: और हमारे आज के विशेषज्ञ प्रोफेसर सरयुग यादव के साथ
3: विमलेश को आज्ञा दीजिए।
2: नमस्कार।
4: उमंग उमंग उमंग उमंग।
5: श्रोताओं, अभी आप प्रायोजित कार्यक्रम NCERT की 1382 कड़ी सुन रहे थे। ये आकाशवाणी का श्री विजयपुरम केंद्र है। दिन के 11:30 हुए हैं। अब प्रस्तुत है फिल्मी गीतों का कार्यक्रम चित्र गीत। कार्यक्रम का पहला गीत हम आपको सुनवा रहे हैं फिल्म हमारा दिल आपके पास है से। अलका याग्निक और कुमार सानू की आवाज़ों में गीत रचना जावेद अख्तर की और संगीत दिया है संजीव दर्शन ने।

कार्यक्रम का अगला गीत हम आपको सुनवा रहे हैं फिल्म दीवानगी से। सोनू निगम और कविता कृष्णमूर्ति की आवाज़ों में गीत रचना नुसरत बद्र की और संगीत दिया है इस्माइल दरबर ने।

उदित नारायण और अलका याग्निक की आवाज़ों में सुनिए फिल्म तेरे नाम का गीत। गीत रचना समीर की और संगीत से सजाया है हिमेश रेशमिया ने।

समीर का लिखा हुआ प्रीतम का संगीतबद्ध किया हुआ गीत, श्रोताओं सुनिए फिल्म भागम भाग का गीत, जिसे गाया है कुणाल गांजावाला ने और सुनिधि चौहान ने।

अपने श्रोताओं सुनिए इस फिल्म का गीत। सोनू निगम और जसपिंदर नरूला की आवाज़ों में समीर के लिखे इस गीत को संगीत से सजाया है हिमेश रेशमिया ने।

0: श्रोताओं, अभी आप फिल्मी गीतों का कार्यक्रम चित्र गीत सुन रहे थे। ये आकाशवाणी का श्री विजयपुरम केंद्र है। दोपहर के 12 बजे हैं। आइए सुनते हैं तेलुगु कार्यक्रम।
1: आकाशवाणी श्री विजयपुरम केंद्रम प्रियमैन श्रोतलकु नमस्कारम्।

0: श्रोताओं, अभी आप तेलुगु कार्यक्रम सुन रहे थे। ये आकाशवाणी का श्री विजयपुरम केंद्र है। दोपहर के 12:30 हुए हैं। आइए सुनते हैं मलयालम कार्यक्रम।
1: മീഡിയം വേവ് 438.6 മീറ്റർ അഥവാ 684 കിലോ ഹെഡ്സിൽ ഇത് ആകാശവാണിയുടെ ശ്രീ വിജയപുരം നിലയം.

श्रोताओं, अभी आप मलयालम कार्यक्रम सुन रहे थे। ये आकाशवाणी का श्री विजयपुरम केंद्र है। दोपहर के 1 बजने वाले हैं। कुछ ही क्षणों में समाचार आप सुनेंगे, जिसे हम अपने दिल्ली केंद्र से रिले करेंगे। कृपया प्रतीक्षा कीजिए।

नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं जागृति शर्मा। भारत और सऊदी अरब ने रक्षा, सुरक्षा, व्यापार, निवेश, ऊर्जा, प्रौद्योगिकी, स्वास्थ्य देखभाल और शिक्षा के क्षेत्र में सहयोग की समीक्षा की। दोहा में एशियाई बुनियादी ढांचा निवेश बैंक की वार्षिक बैठक से इतर सऊदी अरब के वित्त मंत्री मोहम्मद अल जदान के साथ बैठक में वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने सऊदी अरब को भरोसेमंद और रणनीतिक साझेदार बताया। उन्होंने भारत सऊदी अरब द्विपक्षीय निवेश समझौते पर वार्ता सफलतापूर्वक पूरा होने का स्वागत भी किया। इस समझौते का उद्देश्य निवेश के लिए और अधिक मजबूत तथा भरोसेमंद व्यवस्था उपलब्ध कराना है। श्रीमती सीतारामन ने स्विट्जरलैंड के एशियाई अवसंरचना निवेश बैंक गवर्नर पियत्रो लाजेरी से मुलाकात कर भारत में निवेश के अवसरों पर चर्चा की। उन्होंने नेपाल के वित्त मंत्री स्वर्णिम वागले के साथ बैठक में बाढ़ के बाद पुनर्बहाली कार्यों तथा द्विपक्षीय परियोजनाओं पर चर्चा की। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल अमेरिका में कल से शुरू होने वाली दो दिन की G20 व्यापार मंत्रियों की बैठक में शामिल होंगे। बैठक से इतर श्री गोयल अपने समकक्षों के साथ द्विपक्षीय बैठक करेंगे। इन बैठकों में किसानों, मछुआरों, महिला उद्यमियों, स्टार्टअप और सूक्ष्म, लघु तथा मध्यम उद्यम के लिए अवसर बढ़ाने पर चर्चा होगी। नौसेना का वर्ष 2026 का दूसरा कमांडर्स सम्मेलन आज से नई दिल्ली में हो रहा है। रक्षा मंत्रालय ने बताया कि तीन दिन के सम्मेलन में नौसेना के वरिष्ठ अधिकारी, विभिन्न क्षेत्रों के संचालक और क्षेत्रीय कमांडर भाग ले रहे हैं। सम्मेलन में सैन्य और रणनीतिक स्तर पर नौसेना की परिचालन तैयारियों की व्यापक समीक्षा की जा रही है। केंद्रीय संस्कृति और पर्यटन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने कहा है कि मीडिया और पत्रकारिता लोगों के दृष्टिकोण को आकार देने तथा ज्ञान का प्रकाश फैलाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। फिक्की फ्रेम्स 2026 के उद्घाटन सत्र को संबोधित करते हुए उन्होंने ये बात कही।

0: श्री सिंह ने कहा कि कोई कहानी केवल मनोरंजन का माध्यम नहीं होती, बल्कि वो किसी विषय, स्थान या मुद्दे के बारे में लोगों की सोच को प्रभावित कर सकती है और समाज को एक दूसरे को समझने के तरीके को आकार दे सकती है।
1: आज जब दुनिया बदलाव के दौर पर है, तकनीकी हमारे जीवन में पूरी तरह से प्रवेश कर चुकी है, प्रभावित करने लगी है, ऐसे समय में हम रिस्पॉन्सिबल कंटेंट क्रिएशन किस तरह से करें, ऑथेंटिक कंटेंट क्रिएशन किस तरह से करें, इसके ऊपर जब आज चर्चा हुई है तो मैं मानता हूं कि ये प्रासंगिक भी है और महत्वपूर्ण भी है। फिल्म शूटिंग और उसके साथ साथ में किसी एक लोकेशन को प्रमोट करने के लिए फिल्म का उपयोग, ये पर्यटन के लिए निश्चित रूप से अत्यंत महत्वपूर्ण है। अगर हमारी फिल्म इंडस्ट्री भारत के पर्यटन को, भारत की कल्चर को, भारत संस्कृति की विविधता को दिखाने के लिए काम करेगा तो निश्चित ही उसके बहुत दूरगामी प्रभाव, सकारात्मक प्रभाव देश के लिए होंगे।
0: फिक्की एम्बेसडर और अभिनेता आयुष्मान खुराना ने कहा कि भारत का मीडिया और मनोरंजन क्षेत्र अब फिल्म, वेब सीरीज, टेलीविजन, गेमिंग, खेल, संगीत, कंटेंट क्रिएटर्स और डिजिटल प्लेटफॉर्म तक विस्तारित हो चुका है। सूचना और प्रसारण मंत्रालय में अपर सचिव प्रभात ने गलत सूचना, सिंथेटिक कंटेंट और तेजी से उत्पन्न हो रही AI जनित सामग्री से उत्पन्न चुनौतियों का जिक्र किया। गृहमंत्री अमित शाह ने आज बारापुल्ला फेज 3 कॉरिडोर का उद्घाटन किया। ये मयूर विहार फेज 1 और सरायकाले खां के बीच सिग्नल फ्री लिंक प्रदान करता है और पूर्वी तथा दक्षिणी दिल्ली के बीच कनेक्टिविटी में सुधार करेगा। इस अवसर पर उन्होंने 1900 करोड़ रुपए से अधिक की कनेक्टिविटी परियोजनाओं का भी शुभारंभ किया। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन ने आज नई दिल्ली स्थित पार्टी मुख्यालय में राज्य प्रभारियों और सह प्रभारियों की बैठक की अध्यक्षता की। इसमें पार्टी की संगठनात्मक प्राथमिकताओं को अधिक प्रभावी बनाने पर ध्यान केंद्रित किया गया। निशानेबाज नीरू ढांडा ने महिला ट्रैप स्पर्धा में इतिहास रचते हुए भारत को जापान एशियाई खेलों में पहला व्यक्तिगत स्वर्ण पदक दिलाया। एशियाई खेलों में इस स्पर्धा में स्वर्ण जीतने वाली वे पहली भारतीय महिला निशानेबाज बन गई हैं। उन्होंने 28 अंक के साथ नया एशियाई रिकॉर्ड भी कायम किया है। इससे पहले आज महिला ट्रैप टीम स्पर्धा में भी नीरू ढांडा, आशिमा अहलावत और मनीषा कीर ने रजत पदक अपने नाम किया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने नीरू ढांडा को एशियाई खेलों में भारत को पहला व्यक्तिगत स्वर्ण पदक दिलाने पर बधाई दी है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: दिस इज आकाशवाणी, द न्यूज रेड बाय वल्सा विलियम्स। External Affairs Minister Dr. S. Jaishankar has said India's relationship with China is better today than it was last year. Speaking at an event organized by Asia Society in New York, Dr. Jaishankar said the relationship started improving once the border standoff was resolved. He said India has long been telling China that a dip in bilateral relationship does not help either country and a long standoff does not serve interests of any nation. Speaking about the India-US relationship and the trade deal negotiations, the External Affairs Minister said both nations have reached a situation where there is an understanding on the trade agreement. He pointed out that India is a society of small producers, small agriculture producers, and small factories. He added that apart from the per capita gap between India and the US, the nature of production and the nature of society are very different. He said a trade negotiation required a certain amount of patience and detailing to see it through. He admitted that tariffs did create a bump for the relationship last year. India and Saudi Arabia reviewed cooperation in defence, security, trade, investment, energy, technology, healthcare and education during a meeting with Saudi Finance Minister Mohammed Al-Jadan on the sidelines of the AIIB annual meeting in Doha. Finance Minister Nirmala Sitharaman described Saudi Arabia as a trusted and valued strategic partner of India. They welcomed the successful conclusion of negotiations on the India-Saudi Arabia bilateral investment treaty aimed at providing a stronger and more predictable framework for investments. Ms. Sitharaman also met Switzerland's AIIB Governor Ambassador Pietro Lazzeri and discussed investment opportunities in India, including through NIIF and GIFT IFSC. The government has said the country's

श्रोताओं, अभी आप सुगम संगीत के कार्यक्रम के तहत हरिहरन और चंदनदास की आवाज़ों में चंद गज़लों का आनंद ले रहे थे। ये आकाशवाणी का श्री विजयपुरम केंद्र है। दोपहर की 1:30 हुए हैं। अब प्रस्तुत है कार्यक्रम आपके नाम फिल्मी पैगाम। इस कार्यक्रम के माध्यम से अपने मनपसंद गीतों को सुनने के लिए आप अपना नाम, पता, फिल्म का नाम और गाने के बोल लिखकर हमें व्हाट्सएप मैसेज भेज सकते हैं। इस नंबर पर हमारा नंबर है 9474234000। कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं फिल्म सन ऑफ इंडिया के इस गीत से। इस गीत को सुनने के लिए हमें व्हाट्सएप मैसेज भेजा है सदर बाज़ार मारवाड़ बिलाड़ा राजस्थान से रमेश चंद्र चौहान, जय नारायण, तरुण प्रतीक चौहान ने।

अब सुनते हैं अगला गीत फिल्म अंश से। इस गीत की फरमाइश की है पश्चिम सिंहभूम चाईबासा झारखंड से शिवा प्रेम कपिल शिवांश संगीता लिपि दीपाली गोप ने।

महाराष्ट्र से नंदकिशोर, संगीता, साक्षी और अंजलि हमारे ये दोस्त सुनना चाहते हैं फिल्म दाग का ये गीत। तो आइए सुनते हैं इनका ये गीत।

अब आपको सुनवाते हैं फिल्म दूर की आवाज़ का गीत। इस गीत को सुनने के लिए हमें व्हाट्सएप मैसेज किया है पद्मा टॉकीज नेपानगर मध्य प्रदेश से सुदर्शन सह, पल्लवी प्रखर, कुशल नीति शाह ने।

0: बच्चे होते हम भी अगर बच्चे होते नाम हमारा होता गबलू बबलू खाने को मिलते लड्डू
1: और दुनिया कहती हैप्पी बर्थडे टू यू
0: कोई लाता गुड़िया मोटर रेस तो कोई लाता फिरकी लट्टू कोई चाबी का टट्टू
1: और

वंडर से रोशनी हमारे इस दोस्त ने फरमाइश की है फिल्म मलंग के इस गीत के लिए। लीजिए सुनिए इनके पसंद का ये गीत।

श्रोताओं, कार्यक्रम के अंत में सुनते हैं फिल्म रईस का गीत। इस गीत को सुनने के लिए हमें व्हाट्सएप मैसेज भेजा है अरविंद ने साउथ पॉइंट श्री विजयपुरम से।

श्रोताओं, अभी आप व्हाट्सएप पर आधारित फिल्मी गीतों का कार्यक्रम आपके नाम फिल्मी पैगाम सुन रहे थे। ये आकाशवाणी का श्री विजयपुरम केंद्र है। दोपहर के 2 बजने वाले हैं। कुछ ही क्षणों में समाचार आप सुनेंगे, जिसे हम अपने दिल्ली केंद्र से रिले करेंगे। कृपया प्रतीक्षा कीजिए।

0: officially notified as wildlife sanctuary on September 4, 1998. According to Assam Forest Department 2024 elephant census, 140 elephants were recorded within its boundaries. The sanctuary was once home to hundreds of elephants, but they abandoned the area due to increasing human activities and land encroachments. However, the eviction of these encroachers and a strong emphasis on restoring greenery through afforestation have helped restore the ecological balance of the forest. As a result, herds of elephants are now being seen in those areas where they had not been spotted for many years. With Rajat Bharadwaj from Sonitpur, Rakesh Tole, Akashwani News, Guwahati.
1: At the Asian Games 2026, Neeru Dhanda made history by becoming the first Indian shooter to win a gold medal in the women's trap individual event. This was after she carried India to a silver medal in the women's trap team event with Ashima Ahlawat and Manisha Kher. In boxing, Parveen Hooda and Ankush Panghal have stormed into the gold medal bouts of their respective weight categories with semi-final wins at Nishio today. In athletics, India secured a double podium finish. In the men's javelin throw, Yashveer Singh won the silver medal, while Rohit Yadav claimed bronze. India has won a total of 48 medals at the Asian Games 2026. The current tally includes 5 gold, 21 silver and 22 bronze medals. And now before we end the bulletin, the headlines once again. External Affairs Minister Dr. S. Jaishankar says border standoff resolution has helped improve India-China ties. India emerging as a major aviation hub and on the way to become the world's third largest aviation market, says Civil Aviation Minister K. Ram Mohan Naidu. India and Saudi Arabia review cooperation in defence, security, trade, investment, energy and technology on sidelines of AIIB annual meeting in Doha. Election Commission issues notification for biennial elections for 11 Rajya Sabha seats. And in Asian Games 2026, Neeru Dhanda scripts history with India's first individual Asian Games gold at women's individual trap event. With that, we end the midday news.
2: नमस्कार आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं जागृति शर्मा। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहा भारत चीन संबंधों में सीमा विवाद के समाधान से सुधार आया है। नागर विमानन मंत्री के राममोहन नायडू ने कहा भारत एक प्रमुख विमानन केंद्र के रूप में उभर रहा है। देश विश्व का तीसरा सबसे बड़ा विमानन बाजार बनने की दिशा में अग्रसर। भारत और सऊदी अरब ने दोहा में रक्षा सुरक्षा व्यापार निवेश ऊर्जा और प्रौद्योगिकी क्षेत्रों में सहयोग की समीक्षा की। राज्यसभा की 11 सीटों के लिए द्विवार्षिक चुनावों की अधिसूचना जारी। और निशानेबाज नीरू ढांडा ने महिला ट्रैप स्पर्धा में इतिहास रचते हुए भारत को जापान एशियाई खेलों में पहला व्यक्तिगत स्वर्ण पदक दिलाया। और अब समाचार विस्तार से। विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर ने कहा है कि भारत और चीन के संबंध पिछले वर्ष की तुलना में आज बेहतर हैं। अमेरिका के न्यूयॉर्क में एशिया सोसाइटी द्वारा आयोजित कार्यक्रम में उन्होंने कहा कि सीमा गतिरोध का समाधान होने के बाद दोनों देशों के संबंधों में सुधार शुरू हुआ। उन्होंने कहा कि भारत लंबे समय से चीन से कहता रहा है कि द्विपक्षीय संबंधों में गिरावट दोनों देशों के हितों में नहीं है और लंबे समय तक सीमा गतिरोध किसी भी देश के हित में नहीं है। एक रिपोर्ट।
3: भारत अमेरिका संबंध और व्यापार समझौते पर वार्ता के बारे में विदेश मंत्री ने कहा कि दोनों देश ऐसी स्थिति में पहुंच गए हैं जहां व्यापार समझौते को लेकर समझ बनी है। उन्होंने कहा कि व्यापार वार्ता को आगे बढ़ाने के लिए धैर्य और बारीकी से विचार विमर्श की जरूरत है। डॉक्टर जयशंकर ने आतंकवाद के मुद्दे का जिक्र करते हुए कहा कि यह भारत के लिए विशेष रूप से महत्वपूर्ण मुद्दा है। उन्होंने कहा कि इस संबंध में अमरीकी पक्ष की ओर से पर्याप्त समझ या संवेदनशीलता नहीं है। विदेश मंत्री ने कहा कि रूस यूक्रेन और ईरान खाड़ी संघर्षों ने विकासशील और अल्प विकसित देशों की अर्थव्यवस्था पर गंभीर प्रभाव डाला है। उन्होंने ऊर्जा की स्थिति पर चिंता व्यक्त करते हुए कहा कि बाजार में आपूर्ति को लेकर काफी कठिनाई है। उन्होंने कहा कि इसको लेकर अगर राजनीति की जाती है तो इससे बाजार की जटिलताएं और कीमतें बढ़ती हैं, जबकि इस समय कीमतों का स्थिर रहना बहुत जरूरी है। सुपर्णा की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से अमन यादव।
2: वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल अमरीका में कल से शुरू होने वाली दो दिन की G20 व्यापार मंत्रियों की बैठक में शामिल होंगे। बैठक से इतर श्री गोयल अपने समकक्षों के साथ द्विपक्षीय बैठक करेंगे। इन बैठकों में किसानों, मछुआरों, महिला

0: उद्यमियों, स्टार्टअप और सूक्ष्म, लघु तथा मध्यम उद्यम के लिए अवसर बढ़ाने पर चर्चा होगी। भारत और सऊदी अरब ने रक्षा, सुरक्षा, व्यापार, निवेश, ऊर्जा, प्रौद्योगिकी, स्वास्थ्य देखभाल और शिक्षा के क्षेत्र में सहयोग की समीक्षा की। दोहा में एशियाई बुनियादी ढांचा निवेश बैंक की वार्षिक बैठक से इतर सऊदी अरब के वित्त मंत्री मोहम्मद अल जदान के साथ बैठक में वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने सऊदी अरब को भरोसेमंद और रणनीतिक साझेदार बताया। उन्होंने भारत सऊदी अरब द्विपक्षीय निवेश समझौते पर वार्ता सफलतापूर्वक पूरी होने का स्वागत किया। इस समझौते का उद्देश्य निवेश के लिए और अधिक मजबूत तथा भरोसेमंद व्यवस्था उपलब्ध कराना है। श्रीमती सीतारामन ने स्विट्जरलैंड के एशियाई अवसंरचना निवेश बैंक गवर्नर पियत्रो लाजेरी से मुलाकात कर भारत में निवेश के अवसरों पर चर्चा की। उन्होंने नेपाल के वित्त मंत्री स्वर्णिम वागले के साथ बैठक में बाढ़ के बाद पुनर्बहाली कार्यों तथा द्विपक्षीय परियोजनाओं पर भी चर्चा की। भारत और अमेरिका के बीच रक्षा सहयोग को और मजबूत करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठाया गया है। भारतीय सेना ने आधिकारिक सोशल मीडिया पोस्ट में इस मुलाकात के बारे में जानकारी दी है। अमरीकी सेना के प्रशांत क्षेत्र कमान के डिप्टी कमांडिंग जनरल लेफ्टिनेंट जनरल जोएल बी वोवेल ने कल भारतीय सेना प्रमुख जनरल धीरज सेठ से मुलाकात की। दोनों ने हिंद प्रशांत में बदलते सुरक्षा परिदृश्य पर चर्चा की। इस दौरान कई क्षेत्रों में आपसी रक्षा सहयोग को आगे बढ़ाने के अवसरों पर भी विचार विमर्श किया गया। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।
1: लगातार खबरों से जुड़े रहने के लिए @AIRNews हिंदी को फॉलो करें और हमारे व्हाट्सएप चैनल आकाशवाणी समाचार से जुड़े।
0: दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। नागर विमानन मंत्री के राममोहन नायडू ने कहा है कि भारत वैश्विक विमानन का एक प्रमुख केंद्र बनकर उभर रहा है और विश्व का तीसरा सबसे बड़ा विमानन बाजार बनने की दिशा में अग्रसर है। नई दिल्ली में आज रूट्स एशिया 2027 के बारे में संवाददाता सम्मेलन में उन्होंने बताया कि भारत का लक्ष्य 2047 तक यात्रियों की संख्या मौजूदा लगभग 24 करोड़ से बढ़ाकर 130 करोड़ करना है। श्री नायडू ने बताया कि देश में चालू हवाई अड्डों की संख्या 2014 में 74 से बढ़कर वर्तमान में 166 से अधिक हो गई है। क्षेत्रीय संपर्क योजना उड़ान के बारे में श्री नायडू ने कहा कि इस योजना ने देश भर में हवाई यात्रा को अधिक सुलभ और किफायती बना दिया है। उन्होंने कहा कि भारत अगले वर्ष 16 मार्च से नई दिल्ली के भारत मंडपम में रूट्स एशिया 2027 के 23वें संस्करण की मेजबानी करेगा। नौसेना का वर्ष 2026 का दूसरा कमांडर्स सम्मेलन आज से नई दिल्ली में हो रहा है। रक्षा मंत्रालय ने बताया कि 3 दिन के सम्मेलन में नौसेना के वरिष्ठ अधिकारी, विभिन्न क्षेत्रों के संचालक और क्षेत्रीय कमांडर भाग ले रहे हैं। सम्मेलन में सैन्य और रणनीतिक स्तर पर नौसेना की परिचालन तैयारियों की व्यापक समीक्षा की जा रही है। गृहमंत्री अमित शाह ने आज बारापुल्ला फेज 3 कॉरिडोर का उद्घाटन किया। ये सुविधा मयूर विहार फेज 1 और सराय कालेखां के बीच सिग्नल फ्री लिंक प्रदान करेगी। इससे राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के पूर्वी तथा दक्षिणी दिल्ली के बीच आवागमन बेहतर होगा। श्री शाह ने मुखरबा चौक अंडरपास का भी उद्घाटन किया। गृहमंत्री श्री शाह ने मोदी मिल, सावित्री सिनेमा फ्लाईओवर तथा लोनी अंडरपास के निर्माण की आधारशिला रखी। इन परियोजनाओं की लागत 1,900 करोड़ रुपए से अधिक रहेगी। जनजातीय कार्य मंत्रालय और इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र ने भारत की विविध जनजातीय सांस्कृतिक विरासत के संरक्षण, प्रलेखन, डिजिटलीकरण, अनुसंधान और संवर्धन के लिए एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। मंत्रालय ने बताया कि ये साझेदारी मंत्रालय के जनजातीय अनुसंधान तंत्र और जनजातीय अनुसंधान संस्थानों के नेटवर्क को इस केंद्र की अकादमिक, अभिलेखीय और अनुसंधान तथा क्यूरेटोरियल विशेषज्ञता के साथ जोड़ेगी। पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव ने आज आंध्र प्रदेश वन विकास निगम को प्रथम प्रमाण से सम्मानित किया। प्रमाण राष्ट्रीय स्तर पर स्वीकृत विश्वसनीय और पारदर्शी ढांचा है जो वनों, लकड़ी और अन्य वन उत्पादों के प्रमाणीकरण के लिए बनाया गया है। इसका उद्देश्य प्रमाणित वनों और कृषि वानिकी उत्पादों को घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय बाजारों से जोड़ना है। आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री एन चंद्रबाबू नायडू ने नागरिकों की बदलती जरूरतों को पूरा करने और नई तकनीक के साथ तालमेल

0: बनाए रखने के लिए सरकारी कर्मचारियों के कौशल को बढ़ाने की आवश्यकता पर जोर दिया है। श्री नायडू ने आज विजयवाड़ा में क्षमता निर्माण आयोग द्वारा आयोजित मिशन कर्मयोगी के अंतर्गत साधना श्रृंखला 2026 की दक्षिणी क्षेत्रीय कार्यशाला के उद्घाटन सत्र में ये जानकारी दी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जनसेवा के 25 वर्ष पूरे कर रहे हैं। जनसेवा से देश सेवा के मंत्र और निरंतर प्रतिबद्धता तथा सुशासन से प्रेरित होकर सरकार 2047 तक विकसित भारत के लिए अनवरत कार्य कर रही है। समावेशी विकास और सामाजिक सशक्तिकरण से लोगों के जीवन में बदलाव आ रहा है। हमारी विशेष श्रृंखला में आज हम बताएंगे कि कैसे वक्फ संशोधन अधिनियम से बदलाव आया है।
1: वक्फ संशोधन अधिनियम 2025 एक ऐसा ऐतिहासिक विधायी कदम है जिसके माध्यम से सरकार ने सदियों पुरानी धारणाओं को तोड़ने का प्रयास किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि संसद को दोनों सदनों द्वारा वक्फ संशोधन विधेयक और मुसलमान वक्फ निरसन विधेयक का पारित होना एक ऐतिहासिक क्षण है। दाऊदी बोरा समुदाय के साथ बातचीत के दौरान उन्होंने उल्लेख किया कि ये कानून मुस्लिम महिलाओं और मुस्लिम समुदाय के अन्य अल्पसंख्यक वर्गों के साथ हुए अन्याय का संज्ञान लेने और उसके समीक्षा करने के बाद बनाया गया है।
2: 1700 से ज्यादा मुस्लिम समाज की शिकायतें थी, हमें न्याय दो, वक्फ वालों ने हमारे साथ ये किया। उसमें ज्यादातर बहनें बेटियां थी। तब जाकर के मैंने कहा रियलिटी क्या है, खोजो। तो ये रातों रात नहीं आया, लगातार 5 साल तक हर बारीक चीज को कोशिश की सब। तो मुझे मालूम था कि बोरा समाज हो या शिया मुस्लिम हो, उन सब उनको तो और मुझे अहमदिया को और मुसीबत है, इनको तो कोई अलग से प्रोटेक्ट करना पड़ेगा। और उसमें से मैंने इस व्यवस्था को विकसित करने का प्रयास किया।
1: कोलकाता उच्च न्यायालय की वकील शिवली शाह ने कहा कि वक्फ संशोधन अधिनियम के माध्यम से मुस्लिम महिलाओं को उनके संपत्ति की अधिकार प्राप्त हुए हैं।
3: इस अमेंडमेंट एक्ट में 3 बहुत ही इम्पोर्टेंट केसेस है, महिला लोगों के लिए एम्पावरमेंट और रिप्रेजेंटेशन को भी बहुत ही अच्छी तरीके से बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट दिया गया है। नॉर्मली महिलाओं लोगों का वक्फ बोर्ड और वक्फ काउंसिल में कोई भी रिप्रेजेंटेशन नहीं था, लेकिन इस अमेंडमेंट एक्ट के तहत ये मास्ट कर दिया गया है कि वक्फ बोर्ड में कम से कम 2 महिला मेंबर होना चाहिए और वक्फ काउंसिल में भी कम से कम 2 महिला मेंबर होना चाहिए।
1: आकाशवाणी समाचार के लिए कोलकाता से कल्याण लहा की रिपोर्ट।
0: भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन ने नई दिल्ली स्थित पार्टी मुख्यालय में आज राज्य प्रभारियों और सह प्रभारियों की बैठक की अध्यक्षता की। हाल ही में हुए संगठनात्मक नियुक्तियों के बाद पार्टी के इन पदाधिकारियों की ये पहली बैठक थी। निर्वाचन आयोग ने राज्यसभा की 11 सीटों के लिए आज द्विवार्षिक चुनाव संबंधी अधिसूचना जारी की। इनमें उत्तर प्रदेश की 10 और उत्तराखंड की 1 सीट शामिल हैं। भाजपा नेता और केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी, बीएल वर्मा, समाजवादी पार्टी नेता रामगोपाल यादव, बसपा के रामजी और 6 अन्य नेताओं का कार्यकाल 25 नवम्बर को समाप्त हो रहा है। उत्तराखंड से नरेश बंसल का कार्यकाल भी इसी दिन समाप्त हो रहा है। आयोग ने पश्चिम बंगाल की राज्यसभा की 1 सीट पर उपचुनाव के लिए भी अधिसूचना जारी की है। ये सीट तृणमूल कांग्रेस सांसद रुक्मिणी मलिक के इस्तीफे के कारण रिक्त हुई थी। नामांकन आज से शुरू हो गए हैं और मतदान 16 अक्टूबर को होगा। केंद्रीय संस्कृति और पर्यटन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने कहा है कि मीडिया और पत्रकारिता लोगों के दृष्टिकोण को आकार देने और ज्ञान का प्रकाश फैलाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। मुंबई में फिक्की फ्रेम्स के उद्घाटन सत्र में उन्होंने ये बात कही।
4: आज जब दुनिया बदलाव के दौर पर है, तकनीकी हमारे जीवन में पूरी तरह से प्रवेश कर चुकी है, प्रभावित करने लगी है, ऐसे समय में हम रिस्पॉन्सिबल कंटेंट क्रिएशन किस तरह से करें, ऑथेंटिक कंटेंट क्रिएशन किस तरह से करें, इसके ऊपर जब आज चर्चा हुई है तो मैं मानता हूँ कि ये प्रासंगिक भी है और महत्वपूर्ण भी है। अगर हमारी फिल्म इंडस्ट्री भारत के पर्यटन को, भारत की कल्चर को, भारत की संस्कृति की विविधता को दिखाने के लिए काम करेगा तो निश्चित ही उसके बहुत दूरगामी प्रभाव, सकारात्मक प्रभाव देश के लिए।
0: असम के सोनितपुर जिले में सोनाई रूपाई वन्य जीव अभयारण्य एक बार फिर राष्ट्रीय चर्चा का विषय बन गया है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि प्रधानमंत्री ने मन की बात कार्यक्रम की 138वीं कड़ी में सोनाई रूपाई जंगल और हाथियों के लौटने का उल्लेख किया था।
5: हिमालय की तलहटी में स्थित सोनाई रूपाई वन्य जीव अभयारण्य 220 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। 4 सितम्बर 1998 को इसे आधिकारिक रूप से वन्य जीव

0: अभयारण्य घोषित किया गया था। असम वन विभाग की 2024 की हाथी गणना के अनुसार इसकी सीमाओं के भीतर 140 हाथी दर्ज किए गए थे। यह अभयारण्य कभी सैकड़ों हाथियों का घर हुआ करता था, लेकिन बढ़ती मानवीय गतिविधियों और भूमि अतिक्रमण के कारण हाथियों ने इस क्षेत्र को छोड़ दिया था। हालांकि अतिक्रमणकारियों को हटाने और वनीकरण के माध्यम से हरियाली बहाल करने के लिए किए गए विशेष प्रयासों ने जंगल के पारिस्थितिक संतुलन को पुनर्स्थापित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। नतीजतन अब उन क्षेत्रों में भी हाथियों के झुंड देखे जा रहे हैं जहां वे कई वर्षों से दिखाई नहीं दिए थे। सोनितपुर से रजत भरद्वाज के साथ राकेश तोले, आकाशवाणी न्यूज, गुवाहाटी।
1: और जापान एशियाई खेलों की ताजा अपडेट के साथ हैं प्रियंका अरोड़ा।
2: निशानेबाज नीरू ढांडा ने महिला ट्रैप स्पर्धा में इतिहास रचते हुए भारत को जापान एशियाई खेलों 2026 में पहला व्यक्तिगत स्वर्ण पदक दिला दिया है। एशियाई खेलों में इस स्पर्धा में स्वर्ण जीतने वाली वे पहली भारतीय महिला निशानेबाज भी बन गई हैं। उन्होंने 28 अंक के साथ नया एशियाई रिकॉर्ड कायम किया है। इससे पहले आज महिला ट्रैप टीम स्पर्धा में भी नीरू ढांडा, आशिमा अहलावत और मनीषा कीन ने रजत पदक हासिल किया। उधर मुक्केबाजी की बात की जाए तो नरेंद्र बरवाल ने 90 किलोग्राम से अधिक भार वर्ग में कांस्य पदक अपने नाम किया।
1: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने नीरू ढांडा को एशियाई खेलों में भारत को पहला व्यक्तिगत स्वर्ण पदक दिलाने पर बधाई दी है। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहा, भारत चीन संबंधों में सीमा विवाद के समाधान से सुधार आया है। नागर विमानन मंत्री के राममोहन नायडू ने कहा, भारत एक प्रमुख विमानन केंद्र के रूप में उभर रहा है। देश विश्व का तीसरा सबसे बड़ा विमानन बाजार बनने की दिशा में अग्रसर। भारत और सऊदी अरब ने दोहा में रक्षा, सुरक्षा, व्यापार, निवेश, ऊर्जा और प्रौद्योगिकी क्षेत्रों में सहयोग की समीक्षा की। राज्यसभा की 11 सीटों के लिए द्विवार्षिक चुनावों की अधिसूचना जारी। और निशानेबाज नीरू ढांडा ने महिला ट्रैप स्पर्धा में इतिहास रचते हुए भारत को जापान एशियाई खेलों में पहला व्यक्तिगत स्वर्ण पदक दिलाया। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
3: अब प्राइमरी चैनल पर हमारी पहली सभा समाप्त होती है। अपनी दूसरी सभा में शाम 4 बजे हम आपकी सेवा में फिर उपस्थित होंगे। तब तक के लिए हम आपसे अनुमति चाहते हैं, लेकिन अब से लेकर शाम 4 बजे तक हम आपसे जुड़े रहेंगे 100.9 MHz FM पर स्थानीय कार्यक्रमों के साथ। नमस्कार।

0: मीडियम वेव 438.6 मीटर अर्थात 684 किलोहर्ट्ज पर ये आकाशवाणी का श्री विजयपुरम केंद्र है। इस समय शाम के 4 बजे हैं। आज की हमारी दूसरी सभा में आप सभी श्रोताओं का हार्दिक स्वागत है। सभा के आरंभ में लीजिए सुनिए निकोबारी कार्यक्रम।
1: सिनला मन एन ये रोकर हमंग एंग रेताका लमकते एलनी मीडियम वेव 438.6 मीटर 684 किलोहर्ट्ज रमांग एलनी आकाशवाणी इसरी विजयपुरम अन्य निकोबारी प्रोग्राम दहांग
2: इंडियाज ग्रेटेस्ट

0: मीडियम वेव 438.6 मीटर अर्थात 684 किलोहर्ट्ज पर ये आकाशवाणी का श्री विजयपुरम केंद्र है। इस समय शाम के 4 बजे हैं। आज की हमारी दूसरी सभा में आप सभी श्रोताओं का हार्दिक स्वागत है। सभा के आरंभ में लीजिए सुनिए निकोबारी कार्यक्रम।
1: सिनला मन इन ये रोकर हमंग इंग रेताका लमक तेलनी मीडियम वेव 438.6 मीटर 684 किलोहर्ट्ज रमांग एलनी आकाशवाणी इसरी विजयपुरम अन्नी निकोबारी प्रोग्राम दहांग।
2: India's greatest treasures are not just its monuments, they are its people, culture, and untold stories. The Ministry of Information and Broadcasting, through Prasar Bharati, proudly presents Gems of India, a national initiative inviting creators to showcase the unique identity of their districts. Whether it's culture, heritage, tourism, festivals, cuisine, handicrafts, local heroes, or hidden destinations, your story matters. Create a 1 to 3 minute video, reel, documentary, podcast or vlog and upload it on the MyWaves platform. Entries will be judged on authenticity, creativity, storytelling, technical quality and community impact. Exciting prizes await. 50,000 rupees at the district level, 2 lakh rupees at the UT level and 5 lakh rupees at the national level. Celebrate your roots. Inspire the nation. Gems of India, because every district has a story worth telling.
1: Min kahatalon hi taran mene mahavit karachong nalak elhoy nekun panam hi.

अभी आप सुगम संगीत के कार्यक्रम में मेहदी हसन की आवाज़ में चंद गज़लें सुन रहे थे। ये आकाशवाणी का श्री विजयपुरम केंद्र है। इस समय शाम के 4:40 में हैं। आइए अब सुनते हैं हमारे केंद्र से आज के शेष व कल प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों का विवरण।

अब से थोड़ी देर बाद यानी शाम 4:45 पर सुनिए फिल्मी गीतों का कार्यक्रम बहारों की शाम। तमिल कार्यक्रम में शाम 5 बजे महिलाओं के लिए कार्यक्रम होगा। शाम 5:30 पर बांग्ला कार्यक्रम प्रसारित किया जाएगा। किसानवाणी कार्यक्रम में संध्या 6 बजे आप सुनेंगे कड़काचांग की श्रीमती बिरसी कंडुलना के साथ की गई बातचीत। विषय होगा परिवार के खुशहाली की ओर बढ़ता कदम, मेहनत और हुनर का संगम। शाम 6:30 पर सुनिए सेवा संकल्प अभियान के तहत क्षेत्रीय समाचार एकांश की विशेष प्रस्तुति ईज ऑफ डूइंग बिजनेस। मौसम की जानकारी, जलियानों का यात्रा कार्यक्रम और जन सूचनाएं आप सुन पाएंगे। संध्या 7:15 पर संध्या 7:20 पर सुनिए फिल्मी गीतों का कार्यक्रम दिल ने फिर याद किया। युववाणी कार्यक्रम के अंतर्गत संध्या 7:30 पर आप सुनेंगे विश्व हृदय दिवस पर चर्चा तत्पश्चात कार्यक्रम देश की शान, जिसमें क्रांति के वीर भगत सिंह पर केंद्रित कार्यक्रम होगा। चित्रपट संगीत कार्यक्रम का समय रहेगा रात 8:30 पर सुनिए रोजगार समाचार तत्पश्चात गौरव गान और रात्रि 10 बजे FM 100.9 MHz पर विविध भारती मुंबई केंद्र से प्रायोजित कार्यक्रम होगा छाया गीत। इन कार्यक्रमों के अलावा रात 9:15 पर स्पॉटलाइट, रात 9:30 पर मनी टॉक, रात 9:45 पर मंथन कार्यक्रम और रात्रि 10 बजे जापान में खेले जा रहे 20वें एशियाई खेलों की दैनिक रिपोर्ट आप सुनेंगे, जिसे हम अपने दिल्ली केंद्र से रिले करेंगे। ये थे आज के शेष कार्यक्रम। अब एक नज़र कल के कार्यक्रमों पर। कल हमारी पहली सभा आरंभ होगी प्रातः 5:25 पर। सवेरे 5:30 पर सुनिए अनमोल विचार तत्पश्चात भक्ति गीतों का कार्यक्रम प्रभाती वंदना। एग्री टिप्स कार्यक्रम का समय रहेगा प्रातः 5:55, जिसमें जानकारी का विषय होगा भूमि की उर्वरक शक्ति कैसे कायम रखें। सुबह 6:10 पर बताया जाएगा जलियानों का यात्रा कार्यक्रम। सवेरे 6:15 पर इंद्रधनुष कार्यक्रम केंद्रित होगा यादें शीर्षक पर। रामचरित मानस गान का समय रहेगा सवेरे 6:30, सुबह 6:40 पर प्रसारित किया जाएगा वतन के गीत कार्यक्रम। मौसम की जानकारी और कार्यक्रमों का विवरण दिया जाएगा सवेरे 6:50 पर। सुबह 7 बजे आप सुनेंगे जन सूचनाएं। सवेरे 7:15 पर सुनिए फिल्मी देशभक्ति गीतों से सजा कार्यक्रम देशरागनी, जबकि इसी समय पर FM 100.9 MHz पर विविध भारती मुंबई केंद्र से प्रायोजित कार्यक्रम होगा भूले बिसरे गीत। प्राइमरी चैनल और FM 100.9 MHz पर सुबह 7:30 पर गुड मॉर्निंग अंडमान कार्यक्रम के अंतर्गत साहित्य दर्पण कार्यक्रम में आप सुनेंगे वरिष्ठ नागरिकों के सम्मान में स्वरचित काव्य पाठ, कवयित्री होंगी डॉक्टर एन लक्ष्मी। सवेरे 8:30 पर सुगम संगीत के कार्यक्रम में फनकारा होंगी कमलिनी मल्होत्रा और नूरजहां। कुछ फिल्मी गीतों का आप आनंद लेंगे सुबह 9 बजे। सवेरे 9:10 पर आप सुनेंगे माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी द्वारा जनसेवा के 25 वर्ष पूर्ण करने के अवसर पर समाचार सेवा प्रभाग द्वारा प्रस्तुत विशेष कार्यक्रम, जिसे हम अपने दिल्ली केंद्र से रिले करेंगे। सुबह 9:45 पर कुछ फिल्मी गीत प्रसारित किए जाएंगे। गीत गाता चल कार्यक्रम का समय रहेगा सुबह 10 बजे। दिन में 11 बजे प्रसारित किया जाएगा प्रायोजित कार्यक्रम NCERT। सुबह 11:30 पर सुनिए चित्रलोक कार्यक्रम। तेलुगु कार्यक्रम में दोपहर 12 बजे महिलाओं के लिए कार्यक्रम होगा वनीता वानी। दोपहर 12:30 पर मलयालम कार्यक्रम प्रसारित किया जाएगा। महफिल कव्वाली कार्यक्रम के अंतर्गत दोपहर 1:10 पर कव्वाल होंगे अर्शी बेगम, यूसुफ आज़ाद कव्वाल और महेंद्र कपूर। आपके नाम फिल्मी पैगाम फरमाइशी फिल्मी गीतों का ये कार्यक्रम होगा दोपहर 1:30 पर। दोपहर 2:30 पर मौसम की जानकारी और प्राइमरी चैनल पर पहली सभा की समाप्ति के बाद FM 100.9 MHz पर हमारा प्रसारण जारी रहेगा, जिसमें आप लाइव फोन आउट कार्यक्रम सुनेंगे हेलो डियर फ्रेंड्स। और दोपहर बाद 3:30 पर फिल्मी गीतों का कार्यक्रम होगा यूं ही गाते रहो। श्रोताओं, अभी आप हमारे केंद्र से आज के शेष व कल प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों का विवरण सुन रहे थे।

0: अभिया सुखविंदर सिंह और सपना अवस्थी का गाया दिल से फिल्म का गीत सुन रहे थे। गीतकार थे गुलजार तथा संगीतकार थे एआर रहमान।
1: इंडियाज ग्रेटेस्ट ट्रेजर्स आर नॉट जस्ट इट्स मॉन्यूमेंट्स, दे आर इट्स पीपल, कल्चर एंड अनटोल्ड स्टोरीज। द मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग थ्रू प्रसार भारती proudly presents Gems of India, a national initiative inviting creators to showcase the unique identity of their districts. Whether it's culture, heritage, tourism, festivals, cuisine, handicrafts, local heroes, or hidden destinations, your story matters. Create a 1 to 3 minute video, reel, documentary, podcast, or vlog and upload it on the MyWaves platform. Entries will be judged on authenticity, creativity, storytelling, technical quality and community impact. Exciting prizes await. 50,000 rupees at the district level, 2 lakh rupees at the UT level and 5 lakh rupees at the national level. Celebrate your roots. Inspire the nation. Gems of India. Because every district has a story worth telling.
0: आइए अब सुनते हैं सचिन जिगर के संगीत निर्देशन में तैयार मयूर पुरी का लिखा ABCD2 फिल्म का ये गीत। आवाज़ है अरिजीत सिंह की।

अब सुनिए रश्मि विराग की लिखी ये रचना, जिसकी तर्ज बनाई है जीत गांगुली ने। आवाज़ है दीपाली साठे की और फिल्म का नाम है हमारी अधूरी कहानी।

दीपाली साठे के गाए हमारी अधूरी कहानी फिल्म के इस गीत के साथ ही फिल्मी गीतों का कार्यक्रम बहारों की शाम समाप्त हुआ। ये आकाशवाणी का

0: श्री विजयपुरम केंद्र है। इस समय शाम के 5 बजे हैं। अब प्रस्तुत है तमिल कार्यक्रम।
1: आकाशवाणी श्री विजयपुरम वानोली वणकम तमिल अमुदम वणकम नेयर्गले

0: এই গানখানির সঙ্গে শেষ হলো অনুষ্ঠান কথায় ও গানে। এর সঙ্গেই শেষ হলো আজকের বাংলা অনুষ্ঠান। অনুষ্ঠানটি প্রচারিত হলো আকাশবাণী শ্রী বিজয়পুরাম কেন্দ্র থেকে। সঙ্গে ছিলাম আপনাদেরই বন্ধু নিভা রানী। আজ তাহলে আসি, নমস্কার, শুভরাত্রি।
1: अभी आप बांग्ला कार्यक्रम सुन रहे थे। ये आकाशवाणी का श्री विजयपुरम केंद्र है। संध्या के 6 बजे हैं। अब हम आपको सुनवा रहे हैं किसान वाणी कार्यक्रम।
2: इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं भारत सरकार का कृषि एवं कृषक कल्याण मंत्रालय।

नंदन। किसान साथियों, आज के इस अंक की शुरुआत भी हम आज के खूबसूरत विचार से कर रहे हैं। भाइयों, आज का हमारा विचार है, आसानी से मिलने वाली हर वो चीज़ हमेशा तक नहीं रहती, और जो हमेशा तक रहती है वो आसानी से नहीं मिलती। अगर आप अपनी गलतियों से सीख लेते हैं तो गलतियां आपके लिए सीढ़ी हो जाती है। साथियों, कोई अगर आपके अच्छे कार्य पर संदेह करता है तो करने देना, क्योंकि शक सदा सोने की शुद्धता पर किया जाता है, कोयले की कालीख पर नहीं। उम्मीद करते हैं कि इस विचार से आप सहमत होंगे। साथियों, अगर हम अच्छे काम करेंगे और अच्छी बातें करेंगे तो हम हमेशा अच्छे मार्ग पर ही चलेंगे। इन्हीं खूबसूरत विचारों के साथ हम बढ़ते हैं कार्यक्रम की तरफ और आपसे पूछ लेते हैं आज का प्रश्न। हमारा आज का प्रश्न है, मुर्गियों को गर्मी से होने वाले तनाव से राहत दिलाने के लिए पीने के पानी के साथ क्या मिलाकर दिया जा सकता है, ये आपको बताना है। साथियों, प्रश्न एक बार फिर सुने, मुर्गियों को गर्मी से होने वाले तनाव से राहत दिलाने के लिए पीने के पानी के साथ क्या मिलाकर दिया

0: है। साथियों, कोई अगर आपके अच्छे कार्य पर संदेह करता है तो करने देना, क्योंकि शक सदा सोने की शुद्धता पर किया जाता है, कोयले की कालिख पर नहीं। उम्मीद करते हैं कि इस विचार से आप सहमत होंगे। साथियों, अगर हम अच्छे काम करेंगे और अच्छी बातें करेंगे तो हम हमेशा अच्छे मार्ग पर ही चलेंगे। इन्हीं खूबसूरत विचारों के साथ हम बढ़ते हैं कार्यक्रम की तरफ और आपसे पूछ लेते हैं आज का प्रश्न। हमारा आज का प्रश्न है, मुर्गियों को गर्मी से होने वाले तनाव से राहत दिलाने के लिए पीने के पानी के साथ क्या मिलाकर दिया जा सकता है, ये आपको बताना है। साथियों, प्रश्न एक बार फिर सुने, मुर्गियों को गर्मी से होने वाले तनाव से राहत दिलाने के लिए पीने के पानी के साथ क्या मिलाकर दिया जा सकता है, ये आपको बताना है। प्रश्न के उत्तर सोचते रहें और कार्यक्रम में हमारे साथ बने रहें। कार्यक्रम के तहत इस प्रश्न का सही उत्तर हम आपको अवश्य ही बताएंगे। किसान भाइयों, अब आइए हम चर्चा कर लेते हैं बागवानी के एकीकृत विकास मिशन पर।
1: एकीकृत बागवानी विकास मिशन भारत सरकार की एक प्रमुख केंद्र प्रायोजित योजना है, जिसे वर्ष 2014-15 से देश में फल, सब्जी, मसाले, फूल, नारियल, काजू और बांस जैसे बागवानी फसलों के समग्र विकास के लिए लागू किया गया है। इसका मुख्य उद्देश्य क्या है? गुणवत्तापूर्ण बीज, पौध सामग्री और सूक्ष्म सिंचाई का उपयोग करके बागवानी उत्पादन बढ़ाना है, किसानों की आमदनी बढ़ाना और सुरक्षा सुनिश्चित करना, ग्रामीण युवाओं के लिए रोजगार के नए अवसर पैदा करना। एकीकृत बागवानी विकास मिशन की कुछ मुख्य विशेषताएं भी है। पहला है, यह मिशन किसी एक फसल तक सीमित नहीं है। इसमें फलों, सब्जियों, कंद फसलों, मशरूम, मसालों, फूलों, सुगंधित पौधों, नारियल, काजू, कोको और बांस सहित बागवानी क्षेत्र के सभी घटकों के विकास पर एक साथ ध्यान दिया जाता है। दूसरा है, देश के विभिन्न क्षेत्रों की जलवायु और मिट्टी के आधार पर विशिष्ट बागवानी फसलों के क्लस्टर यानी समूह बनाए जाते हैं। इसमें उत्पादन, प्रसंस्करण और विपणन को एक ही स्थान पर मजबूत करने में मदद मिलती है। तीसरा है, ग्रीन हाउस, पॉली हाउस और शेड नेट हाउस के निर्माण के लिए तकनीकी और वित्तीय सहायता दी जाती है, जिससे बेमौसम और उच्च गुणवत्ता वाली फसलें उगाई जा सके। पानी की बचत और सटीक सिंचाई के लिए ड्रिप और स्प्रिंकलर सिंचाई को बढ़ावा दिया जाता है। बागवानी के अनुकूल छोटे ट्रैक्टर, टीलर और आधुनिक कृषि उपकरणों की खरीद पर सहायता मिलती है। चौथा है, फसलों को खराब होने से बचाने और किसानों को सही दाम दिलाने के लिए बुनियादी ढांचे के विकास पर भारी जोर दिया जाता है। पांचवा है, उच्च उपज देने वाली और रोग प्रतिरोधी किस्मों को तैयार करने के लिए आधुनिक नर्सरियों और टिश्यू कल्चर प्रयोगशालाओं की स्थापना की जाती है। और छठा है, किसानों, महिला स्वयं सहायता समूहों और ग्रामीण युवाओं को बागवानी की उन्नत तकनीकों, जैविक खेती और फसल प्रबंधन के लिए मुफ्त प्रशिक्षण और तकनीकी सहायता प्रदान की जाती है। इस योजना के मुख्य लाभ भी है, पारंपरिक फसलों जैसे गेहूं, धान की तुलना में फलों, सब्जियों और फूलों की खेती से किसानों को ज्यादा मुनाफा और नियमित आमदनी मिलती है। पॉली हाउस बनाने, ड्रिप इरिगेशन लगाने, कोल्ड स्टोरेज खोलने और आधुनिक कृषि यंत्र खरीदने के लिए सरकार की तरफ से 35% से 50% तक की भारी सब्सिडी दी जाती है। उच्च गुणवत्ता वाले बीजों, आधुनिक नर्सरी और नई तकनीकों के कारण बागवानी फसलों के उत्पादन में 14% से अधिक की वृद्धि दर्ज की जाती है। बागवानी क्षेत्र श्रम प्रधान है, या ग्रामीण युवाओं और महिलाओं को नर्सरी प्रबंधन, पैकिंग, कोल्ड चेन और प्रोसेसिंग इकाइयों में रोजगार के नए अवसर देता है। देश में फलों और सब्जियों की उपलब्धता बढ़ने से आम जनता के लिए पोषाहार और स्वास्थ्य सुरक्षा मजबूत हुई है। योजना की चुनौतियां और कुछ कमियां भी है। सरकारी नीतियों की कोई प्रत्यक्ष हानि नहीं होती, लेकिन इस योजना को जमीन पर लागू करने में किसानों को कुछ समस्याओं और सीमाओं का सामना करना पड़ता है। बागवानी फसलें जल्दी सड़ जाती है। देश में आज भी पर्याप्त मात्रा में कोल्ड स्टोरेज और रेफ्रिजरेटेड गाड़ियों की कमी है, जिससे लगभग 15-30% फसल मंडियों तक पहुँचने से पहले ही खराब हो जाती है। पारंपरिक खेती के मुकाबले बागवानी शुरू करने में शुरू

0: बाती खर्च बहुत ज्यादा आता है जिसे छोटे किसान वहन नहीं कर पाते। बागवानी फसलों के लिए कोई न्यूनतम समर्थन मूल्य नहीं होता। बम्पर पैदावार होने पर कभी कभी कीमतें इतनी गिर जाती है कि किसानों की लागत भी नहीं निकल पाती। कई बार छोटे और अनपढ़ किसानों को सरकारी सब्सिडी पाने के लिए लंबी कागजी कार्रवाई और प्रशासनिक देरी का सामना करना पड़ता है, जिससे वे योजना का लाभ नहीं ले पाते। जी हाँ, एकीकृत बागवानी विकास मिशन के अंतर्गत किसानों को सीधे तकनीकी मार्गदर्शन देने, उनकी समस्याओं को सुनने और योजनाओं की जानकारी पहुंचाने के लिए सरकार ने संवाद और हेल्पलाइन की व्यवस्था की है। किसान भाई निम्नलिखित माध्यमों से सीधे जुड़ सकते हैं। पहला है किसान कॉल सेंटर, दूसरा है ग्राम स्तर पर खुली बैठकें और प्रशिक्षण, तीसरा है डिजिटल संवाद पोर्टल। बागवानी और कृषि से जुड़ी किसी भी जानकारी या समस्या के समाधान के लिए सरकार का आधिकारिक टोल फ्री नंबर 1800-180-1551 है। इस पर सप्ताह के सातों दिन सुबह 6 बजे से रात 10 बजे तक अपनी स्थानीय भाषा में विशेषज्ञों से सीधे बात की जा सकती है। इस मिशन के तहत जिला उद्यान विभाग द्वारा समय समय पर गांवों में खुली बैठकों और चौपालों का आयोजन किया जाता है। यहां किसान अधिकारियों से आमने सामने संवाद कर आधुनिक खेती, पॉली हाउस और सब्सिडी की जानकारी ले सकते हैं। योजना में पारदर्शी तरीके से आवेदन करने और अपनी अर्जी का स्टेटस देखने के लिए सरकार ने हॉटनेट पोर्टल बनाया है। संक्षेप में कहे तो यह मिशन किसानों को कम लागत में आधुनिक तकनीकों के जरिए पक्का और ज्यादा मुनाफा कमाने का मार्ग दिखाता है।
1: साथियों, अभी आपने बागवानी की एकीकृत विकास मिशन के बारे में ये जानकारी हासिल कर रहे थे। हमारे किसान साथियों की जो मेहनत होती है उसको हम हमेशा सलाम करते हैं, क्योंकि किसान साथियों की तरह मेहनत कोई नहीं कर सकता। दिन रात वे खेतों में काम करते हैं और हमारा पूरा देश किसानों पर ही निर्भर रहता है। मेहनत और हुनर का जो संगम है ना साथियों, वो देश के साथ साथ अपनी परिवार को भी खुशहाली देता है। परिवार की खुशहाली की ओर जो बढ़ता कदम है वो मेहनत ही है। आज हम इसी मुद्दे पर बातचीत करेंगे कड़ाका चांग की रहने वाली श्रीमती बिरसी कंडोलाना जी से। आइए इनसे मिलते हैं और इनकी जुबानी सुनते हैं।
2: बिरसी जी, आपका हमारे कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है।
3: नमस्ते मैम।
2: जी बिरसी जी, हम जानते हैं कि आप एसएचजी ग्रुप से जुड़ के कुछ एक काम आप करती हैं, तो सबसे पहले हम जानना चाहेंगे कि आपका एसएचजी ग्रुप का नाम क्या है।
3: नमस्ते मैम, मेरा नाम बिरसी कंडोलना है। मेरा स्वयं सहायता समूह का नाम एकता एसएचजी है।
2: जी हाँ, और एकता एसएचजी ग्रुप से आप कब से जुड़ी हैं?
3: एकता एसएचजी ग्रुप से मैम 2021 में, जुलाई 2021 में जुड़ी हूँ इसमें।
2: अच्छा, तो इस ग्रुप में कितने मेंबर हैं?
3: हमारे ग्रुप में मैम 10 मेंबर है टोटल। अभी कुछ मेंबर्स, दो मेंबर्स निकल गए थे, इस वजह से मतलब मेंबर्स कम थे। कम होने के कारण हम उसमें से और 4 मेंबर को ऐड करें तो भी टोटल 12 मेंबर है।
2: 12 मेंबर हैं। और ना, इस ग्रुप के बारे में आपको कैसे पता चला कि एसएचजी ग्रुप के साथ जुड़ना चाहिए?
3: एसएचजी ग्रुप के बारे में तो हमें पहले सुनी थी, सेल्फ हेल्प ग्रुप है करके, लेकिन ऐसा मतलब हमें रूरल डेवलपमेंट के बारे में नहीं पता था। तो हमारे घर पे एक मतलब आए थे पंचायत में, एक एक सीआरपी को चुना गया था, तो उन लोग मतलब हर मतलब कड़गचन एरिया में आए थे एक एक पंचायत से, तो दीदी लेके आई थी एक मैडम को, तो
2: मतलब उन लोगों ने आपसे मुलाकात की और आप लोगों को इसके बारे में बताया होगा।
3: जी,
2: तो क्या बताया कि एसएचजी ग्रुप से जुड़ के आप मतलब किस तरह से लाभान्वित हो सकती हैं?
3: एसएचजी ग्रुप के बारे में उन लोगों ने बताया कि आप लोग एसएचजी ग्रुप में जुड़िए, जैसे कि हम लोग मंथली ऐसा मंथली मतलब जैसे 100 रुपया हो गया या 50 रुपया वैसा इनकम जमा करते हैं। जैसे कि हमें किसी की पैसे की जरूरत पड़ती है तो हम ना किसी से नहीं मांग के अपने ग्रुप से ही हम वो पैसे को मतलब लोन के द्वारा लेके अपना काम शुरू कर सकते हैं। मतलब किसी से अभी मेरे पास पैसे नहीं है तो हम दूसरा किसी से नहीं मांग के अपना एसएचजी से ही लोन ले सकती है।
2: इस बात ने आपको प्रभावित किया और आप एसएचजी ग्रुप की तरफ बढ़ी।
3: जी,
2: और आज आप उसका एक मेंबर है। तो आपने कभी अपने ग्रुप में इस तरह की बात की कि भाई मेरे पास पैसे की तंगी है थोड़ी और मुझे कोई काम करना है तो मुझे उसके लिए लोन मिल सकता है, या लोन लिया कभी आपने?
3: जी मैम, जैसे एसएचजी ग्रुप में मैंने जुड़ी तो हमारे एसएचजी ग्रुप में मतलब जो मैडम है सीआरपी मैडम, जैसे कि हम लोगों को ट्रेनिंग मिलता है, तो सबसे पहले हम लोगों को ट्रेनिंग मिला था सिलाई का।
2: जी,
3: सिलाई में हम लोग जाते थे सभी। सिलाई करना मुझे आता ही नहीं था, मशीन चलाना ही नहीं आता था, सबसे पहले वहीं से शुरू करे थे। फिर वहां हम लोग धीरे धीरे छोटा छोटा काम शुरू करे थे सिलाई का, जैसे मैट वगैरह बना

0: थे हम लोग सब मैट वर्क।
1: अच्छा,
0: हाँ जी,
1: किस तरह के मैट बनाते थे आप लोग?
0: जैसे हम लोग जैसे मैट, जैसे जूट का भी मैट बनाते थे,
1: जी
0: जैसे कपड़ा वेस्टेज कपड़ा, जो वेस्टेज वाला कपड़े जो हम लोग फेंक देते हैं उनको हम लोग कैसा यूज करना उनसे बनाते थे। जैसे नया नया कपड़ा से नहीं बनाते थे, वेस्ट वाला कपड़ा भी हम लोग यूज करके मैट वगैरह बना सकते थे।
1: किस तरह से, थोड़ा बताइए कि हम जानना चाहेंगे कि किस तरह से जो घर का बर्बाद कपड़ा होता है या खराब कपड़ा होता है उसको हम नहीं पहन सकते, लेकिन उसके मैट जो है वो किस तरह से बनाए जा सकते हैं, थोड़ा सा बताइए।
0: जैसे कि मैम हम लोग जैसे साड़ी हो गया, वेस्टेज साड़ी हो गया,
1: जी
0: उनको हम लोग जैसे पतला पतला काट के एक, मतलब एक एक साइज साइज का हम लोग कर करके बनाते हैं। फिर जैसे हम लोग जैसा
1: जोड़ जोड़ के,
0: जोड़ जोड़ के बनाते हैं, मशीन से भी जोड़ के बनाते, जैसे हाथ से भी हम लोग हैंडीक्राफ्ट आइटम हैंड से भी बनाते, जैसे हम लोग बाल का चुटिया वगैरह गाद गाद के वैसा बना बना के फिर लंबा वगैरह बना के फिर उनको जोड़ते हैं, जोड़ जोड़ कर सिलाई करते हैं।
1: तो इस काम की ट्रेनिंग आपको SSG ग्रुप से मिली,
0: जी जी
1: तो
0: एस एच
1: आपने
0: ग्रुप से
1: बनाए क्या मैट, कितने मैट बनाए आपने?
0: मैट हम लोग बनाए थे मैम, बहुत सारे मैट बनाए थे। जो मैट हम लोग बनाए थे, जैसे मैरीना पार्क में मेला लगता है तो हम उस मेले में मैट को लेकर मतलब सेल्स के लिए लेके जाते हैं।
1: तो उसमें आपके मैट बिके,
0: जी जी बिके,
1: लोगों ने पसंद
0: जी
1: किए,
0: पसंद किए।
1: तो और भी डिमांड होगी उनकी,
0: जी जी जी
1: तो जिस तरह डिमांड होती है उस
0: देते
1: तरह
0: हैं
1: आप
0: मैम। जी
1: बनाते
0: जी
1: हैं और फिर
0: बनाते,
1: लोगों को देते
0: जी
1: हैं।
0: जी
1: ये तो मरीना पार्क में जो फ्ली मेला लगता है उसमें आप लोग अपना
0: जी
1: लेके गए, और वो भी आप SSG के थ्रू ही गए
0: जी
1: होंगे,
0: जी एस एच जी के
1: है
0: थ्रू
1: ना?
0: ही
1: वहां
0: गए।
1: तो आपके मैट्स की बिक्री बढ़िया हुई, लेकिन कभी आपने अपने गाँव में भी इन मैट्स को बेचने की कोशिश की?
0: गांव में तो कोशिश की हम लोग जैसे जो मैट बनाते हैं ना मैम, हम लोग जैसे अपने व्हाट्सएप ग्रुप में डाल देते हैं ताकि
1: जी
0: किसी को चाहिए तो उन लोग मतलब
1: हाँ
0: पूछते हैं ये मैट कौन बनाया, कैसे बनाया, तो हम लोग वो हिसाब से डालते हैं। तो उन लोग बोलते हैं, मतलब लोग मतलब बोलते हैं आप लोग कैसे बनाते हैं वेस्ट कपड़ा से, तो हमें भी ये बनाकर दीजिए, मतलब बोलते हैं उन लोग।
1: मतलब गांव में भी
0: जी
1: ये जो
0: जी
1: काम है ये आपका चल रहा है, लोग
0: जी
1: यूज
0: जी
1: करते हैं,
0: हम
1: पसंद
0: लोग
1: करते
0: जैसे
1: हैं।
0: दो एक तो एस एच जी में मतलब 4-5 मेंबर है जो ट्रिंग सीख के आते हैं, तो रात को घर में बैठ के बनाते थे सब मिलकर।
1: अच्छा
0: जी
1: अच्छा
0: जी चार
1: एक
0: पांच
1: मैट बनने में कितना टाइम लग जाता होगा?
0: एक मैट बनने में टाइम लगता है मैडम, उनको चुटिया बनाने में बहुत टाइम लगता है, बहुत ज्यादा
1: जी
0: लंबा बना के फिर उनको गोल गोल करके हम लोग करके फिर
1: रैप
0: सिलाई भी
1: करके,
0: करना,
1: सिलाई
0: रैपिंग करके
1: करना
0: फिर सिलाई भी करना पड़ता है उनको।
1: टाइम लगता है,
0: जी
1: लेकिन
0: जी
1: चीज अच्छी बनती
0: जी जी
1: है।
0: अच्छी बनती है मैम।
1: अच्छा, सिलाई में इसके अलावा और क्या सीखा?
0: सिलाई में मैम हम जैसे सूट वगैरह बनाना सीखे, ब्लाउज वगैरह बनाना सीखे, फिर उसके साथ साथ जैसे कि फिटिंग का काम भी हम लोग सीखे, जैसे
1: मतलब ऑल्टर का काम जो
0: जी
1: होता
0: वो भी
1: है,
0: काम सीखे मैम।
1: हाँ, तो वो सब आपने सीखा और उसको यूज कर रहे हैं। गांव में लोग
0: जी जी
1: आते हैं
0: जी
1: बनवाने आपसे
0: जी
1: कपड़े,
0: बनवाने आते हैं मैम।
1: तो उसके दाम वगैरह आपके जो भी फिक्स आपने दाम रखे होंगे अच्छे दाम मिल जाते हैं।
0: जी जी
1: अच्छा, इसके अलावा और क्या-क्या काम करती हैं आप?
0: इसके अलावा मैम सिलाई के साथ साथ हम लोगों ने जैसे गोला मशीन, जो बर्फ का गोला होता है
1: जी
0: जो गर्मी के सीजन में होता है, जैसे बर्फ का गोला हो गया, शरबत उनके साथ
1: जी
0: साथ जूस, वो भी हम लोग साथ रखते हैं, काम करती हैं।
1: वो किस तरह से करती हैं आप?
0: जैसे बर्फ का गोला मैडम, वो जो गोला मशीन है हम लोगों ने मंगाया था,
1: खरीदा है वो?
0: खरीदा है, खरीदने के बाद में हम लोगों ने जैसे सिलाई सेंटर में ही हम लोग शुरू करे थे, फिर अभी सिलाई सेंटर में शुरू करते करते फिर हम लोगों ने बोला कि लोग अगर ये जंक्शन में अगर रहेगा तो सभी को दिखेंगे, तो जो भी आते जाते लोग मतलब गोला है तो सब गोला के लिए सब आते हैं ना खाने पीने, जैसे शरबत वगैरह गर्मी का सीजन में, तो हम लोगों ने विम्बलगंज जंक्शन में सबसे फर्स्ट वहां पे करना शुरू करे।
1: कैसा रिस्पॉन्स है उसका?
0: अच्छा है मैम गोला,
1: लोग आते हैं,
0: जी
1: पसंद करते
0: जी
1: हैं?
0: पसंद करते हैं जी।
1: उसमें गोला में मतलब आपने अलग अलग फ्लेवर के
0: अलग
1: रखे
0: अलग
1: हुए
0: फ्लेवर
1: हैं, कौन
0: बनाए
1: कौन
0: हैं
1: से फ्लेवर है उसमें?
0: जैसे कि ऑरेंज हो गया मैम, मैंगो हो गया, काला खट्टा हो गया, काला खट्टा हमारा सबसे फेमस फ्लेवर है मैम।
1: अच्छा
0: जी काला
1: अच्छा
0: खट्टा हो गया, मतलब बहुत तरह का फ्लेवर है मैम, हम लोग एक
1: हाँ
0: 9-10 तक फ्लेवर बनाते हैं।
1: अच्छा, आपने बात की कि आपने कई सारे फ्लेवर रखे हैं, तो इसके लिए जो शरबत है और भी तमाम तरह का सामान होता है
0: जी जी
1: वो आप कहाँ से लेती हैं?
0: मैम हम लोग तो जो फ्लेवर वगैरह वो ऑनलाइन मंगाते हैं, और बाकी ऑनलाइन मंगा के हम लोग घर में ही बनाते हैं फ्लेवर सब।
1: वो भी घर में बनाती
0: जी
1: हैं
0: घर
1: आप?
0: में
1: उसका
0: बनाते हैं
1: सारा सामान यहाँ मिल जाता है आपको
0: जी, यहाँ पर तो हमें कुछ कुछ मिलता
1: कड़ाका
0: है
1: चांग
0: कड़ा
1: में?
0: कचान में, तो उतना कुछ कुछ मिलता है, हम बाजार से ही आते, जब श्री विजयपुरम आते हैं तो हम लोग गोला का जो मार्केटिंग है हम लोग यहीं से कर लेते हैं,
1: सारा
0: जो अगर
1: सामान ले जाते
0: ले
1: होंगे।
0: जाते हैं जो
1: जी
0: गिलास वगैरह हो गया, हमारे वहाँ बिम्बलीगंज गाँव में वहाँ पे ज्यादा रेट पड़ता है, तो हम
1: ठीक।
0: लोग जब श्री विजयपुरम आते हैं तो उसका मार्केटिंग करके लेके जाते हैं।
1: अच्छा, तो एक दिन में जब सीजन होता है
0: जी जी
1: उस टाइम पे तो टूरिस्ट भी वहां आता होगा,
0: जी टूरिस्ट आते हैं
1: है ना?
0: मैम।
1: यहाँ
0: हाँ
1: वहां से निकलते
0: जी
1: हुए,
0: जी
1: क्योंकि वो जंक्शन एरिया है
0: जी
1: तो लोग रुक जाते हैं, और जिनको भी जरूरत होती है तो वो वहां रुक के
0: रुकते
1: वो
0: हैं
1: जरूर खरीदते
0: जी।
1: होंगे।
0: अच्छा
1: हाँ
0: रिस्पांस मिलता है मैम गोले का, मतलब जो मरीना पार्क में जैसे गांधी पार्क में भी गोला का
1: स्टॉल
0: है
1: लगाते हैं
0: स्टॉल
1: आप?
0: लगाते हैं
1: हाँ
0: हम लोग, वहाँ पे भी स्टॉल है, पर हमारा स्टॉल में जो गोला बनता है तो सब कहते हैं कि आप लोग का गोला सबसे फेमस फ्लेवर है करके कहते हैं।
1: तो इसका मतलब लोग आपके गोला के स्टॉल को लोग पसंद कर रहे हैं,
0: जी
1: और तो आपकी बिक्री भी जो है और लोगों से ज्यादा अच्छी होती
0: जी
1: होगी,
0: जी जी
1: तो कितनी तक आय आपकी हो जाती है?
0: मैम हमारे गोले का मतलब बर्फ का गोला जब हम लोग बेचते हैं उसके साथ साथ नींबू पानी भी रखते हैं
1: जी
0: तो हो जाती है मैम हमारे जो
1: दे?
0: हम लोग खर्चा कर

0: हैं मैम उससे ज़्यादा हमारी आय हो जाती है।
1: अच्छा, मतलब आपको बचत होती
0: जी जी
1: है ना?
0: जी
1: तो ये सब पॉसिबल हुआ है क्योंकि आप एकता एसएचजी ग्रुप से जुड़ी
0: जी
1: और वहाँ पर आपको इन सब चीज़ों की ट्रेनिंग मिली और
0: जी
1: ये इस ट्रेनिंग का आपने फायदा उठाया और आज आपके लिए ये सारे ही हुनर जो हैं वो आय का एक साधन बन गई हैं,
0: जी
1: है ना? तो आप अपने काम से खुश हैं या और कुछ करना चाहते हैं आप?
0: मैं एसएचजी में ही रह के जो अलग अलग तरह का ट्रेनिंग आएगा तो जिसमें हमारे बेनिफिट होता है उसी में ही काम करेगी। और
1: ये जो ट्रेनिंग जो है ये मतलब आपकी लगातार चलती ही रहती
0: जी
1: है,
0: जी चलती रहती है
1: चलती
0: जी
1: रहती है,
0: जी
1: जिसमें आपको इंटरेस्ट होगा तो आप उसी काम की ट्रेनिंग लेके और काम जो है वो बढ़ाना
0: बढ़ाना ये
1: चाहेंगे।
0: बढ़ाएगी अपना इनकम को आगे बढ़ाएगी।
1: अब हम आ जाते हैं आपके परिवार की ओर।
0: जी
1: आपके परिवार में कौन कौन है?
0: मेरे परिवार में टोटल मैम 8 मेंबर है जी।
1: कौन कौन है?
0: मम्मी पापा हो गए, सास ससुर हो गए, हस्बैंड वाइफ हो गए, बच्चे हो गए, दो ननद हो गए, टोटल 8 मेंबर रहते हैं।
1: तो 8 मेंबर्स का जो खर्चा है महीने का
0: जी
1: वो आपकी और आपके हस्बैंड की इनकम को मिला के पूरा हो जाता है?
0: हो जाता है मैम। जैसे कि हमारे घर में हम लोग अपने अलग से जैसे कि मम्मी पापा लोग जो रहते हैं सबका मिला के एक साथ हो जाता है। फिर भी अगर नहीं होता है जब से हम एसएचजी में जुड़ी है तो हमारे इनकम की मतलब जैसे कि हमें घर से कुछ मांगने की जरूरत नहीं होती है। जो हमें मतलब चाहिए जैसे कि घर का सब्जी वगैरह हो गया, कुछ कुछ बच्चों की खर्चा वगैरह हो गया जो अपने सेविंग्स में हो जाती है।
1: छोटे मोटे
0: छोटे
1: खर्चे
0: मोटे
1: जो हैं
0: खर्चे
1: वो
0: सारा
1: आप
0: हो जाते
1: निकाल
0: हैं।
1: पा रही हैं
0: जी जी
1: अपनी इनकम से,
0: जी
1: तो कोई बात नहीं, समय लगता है हर
0: जी
1: चीज को। आपने इतने कम समय में ही अपने एसएचजी ग्रुप से जुड़कर कुछ एक ट्रेनिंग्स ली और उन सब से आप बहुत अच्छी तरह कमा रही हैं, तो समय दीजिए थोड़ा और ट्रेनिंग्स लीजिए और अपने काम को और बढ़ाइएगा तो काम बढ़ेगा तो आपकी इनकम जो है वो भी अपने आप
0: बढ़ेगी
1: बढ़
0: जी
1: जाएगी। आप और महिलाओं को क्या कहना चाहती हैं जिनके पास की आय
0: जी
1: के साधन बहुत कम है और वो घर में बैठी हुई है, तो ऐसी महिलाओं को आप क्या सलाह देंगी?
0: जो स्वयं सहायता में जो जुड़े हैं वो महिलाओं को ये सलाह देना चाहती हूँ कि उन लोग भी घर से निकले आगे आइए। जैसे कि हम लोग जैसे भी अपने अपने स्टॉल में काम करते हैं वो भी घर में रह के तब बाहर नहीं निकल के घर से ही अपना खुद का काम कर सकती है। जैसे सिलाई का काम हो गया, आजकल तो लोग मतलब फास्ट फूड का काम भी अपने घर से ही करते जैसे कि होम डिलीवरी वगैरह हो गया अपने घर से ही करते। तो मैट वगैरह बनाते हैं, फूलों की माला वगैरह बनाते हैं, फिर गिफ्ट रैप वाला पैकेट, फिर मैम जो घर से जो कैंडल बनाने की ट्रेनिंग वो सब भी कर सकते हैं। जैसे दीपावली का सीजन में मैडम जो हम लोग बनाते हैं ना जो दिया वगैरह हो गया, जो पेंट उंट मार के
1: मोमबत्ती के दिए,
0: मोमबत्ती
1: डेकोरेशन वाले
0: डेकोरेशन
1: दिए,
0: सब वो सब बना सकते
1: वो
0: हैं।
1: सब काम आप लोग करते हैं? आपके एसएचजी में मतलब
0: जी
1: इस
0: जी
1: चीज की
0: करते
1: ट्रेनिंग
0: हैं।
1: मिली है
0: जी
1: आपको,
0: जी
1: तो अभी दीपावली आने वाली
0: जी
1: है ना,
0: जी
1: आगे महीनों में दीपावली आएगी तो
0: जी
1: तब आप ये सब काम करेंगे?
0: ये सब काम मैम जैसे हम लोग मैरीना पार्क में दीपावली के समय में मैरीना पार्क में हमारा मेला लगता है तो सब मतलब जैसे दीपावली में जो दिया वगैरह हो गया दिया को सुंदर से डेकोरेशन करके सब
1: जी,
0: महिलाएं लेके जाते हैं।
1: और भी बहुत सारी डेकोरेशन आइटम जो होते हैं जिनसे हम लोग अपने घर वगैरह को सजाते हैं,
0: जी
1: तो
0: जी
1: वो सब भी आप लोग क्या तैयार करते हैं?
0: जी जी करते हैं मैम वो सारा भी जैसे झूमर वगैरह हो गया वो भी एसएचजी मेंबर्स करते हैं, वो सब भी लेके जाते हैं।
1: बहुत अच्छा काम अपने एसएचजी द्वारा कर रही हैं और
0: जी
1: हम चाहते हैं कि वो सभी ऐसी महिलाएं जो अभी तक कोई काम नहीं कर रही हैं और घर में हैं तो वो जल्दी से जल्दी एसएचजी ग्रुप से जुड़े और वहां जाएं, अपने हुनर को पहचाने और जिस तरह के भी काम वो करना चाहती है उनमें से वो काम अपनी इच्छा के अनुसार चूज करके उस काम की ट्रेनिंग ले और वो इस तरह से आय और रोजगार का सृजन कर सकती हैं। बिरसी जी, आप हमारे कार्यक्रम में आई, आपके साथ इतनी बातें हुई, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
0: धन्यवाद मैम।
2: साथियों, अभी आपने मेहनत और हुनर का संगम, परिवार की खुशहाली की ओर बढ़ता कदम इस विषय पर कड़ाका चांग की रहने वाली श्रीमती बिरसी कंडोलना के साथ की गई ये बातचीत सुन रहे थे। उम्मीद करते हैं इनकी बातचीत आपको अच्छी लगी होगी। किसान भाइयों, अब आइए कार्यक्रम का रुख करते हैं संगीत की ओर और सुन लेते हैं ये प्यारा सा गीत।

0: साथियों, गीत संगीत की दुनिया से बाहर आते हैं और ले लेते हैं मौसम पर आधारित कृषि परामर्श। साथियों, अगले 5 दिनों के दौरान मौसम पूरी तरह साफ और शुष्क रहेगा। बारिश की कोई संभावना नहीं है, जिससे किसानों के लिए कृषि कार्य निपटाने का ये एक बेहतरीन समय है। अधिकतम तापमान 31 डिग्री सेल्सियस से 33 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 21 डिग्री सेल्सियस से 23 डिग्री सेल्सियस के बीच रहने का अनुमान है। किसानों के लिए विशेष सलाह जो दी जाती है कृषि परामर्श के दौरान, वो इस तरह से है। साथियों, मौसम के पूरी तरह शुष्क और साफ रहने के अनुमान को देखते हुए किसानों को कुछ सलाह दी जाती है। खरीफ फसलों की कटाई और मड़ाई, धान, मक्का या अन्य तैयार हो चुकी खरीफ फसलों की कटाई का ये सबसे उत्तम समय है। कटी हुई फसल को खेतों में अच्छी तरह सुखा लें और सुरक्षित स्थानों पर भंडारण की व्यवस्था करें। रबी फसलों की तैयारी, खाली हुए खेतों की जुताई करके उन्हें धूप लगने दें, जिससे मिट्टी की उपजाऊ क्षमता बढ़ेगी और हानिकारक कीट नष्ट हो जाएंगे। आगामी रबी सीजन के लिए उन्नत बीजों जैसे गेहूं, सरसों, चना और खादों का प्रबंध पहले से कर लें। सिंचाई प्रबंध के दौरान बताया जाता है कि जिन देर से बोई गई फसलों को अभी पानी की आवश्यकता है, उनमें आवश्यकता अनुसार हल्की सिंचाई कर सकते हैं, क्योंकि अगले 5 दिनों तक बारिश की कोई रुकावट नहीं होगी। कीटनाशक और कवकनाशी का छिड़काव, यदि खड़ी फसलों में किसी कीट या बीमारी का प्रकोप दिख रहा है तो दवाओं का छिड़काव करने के लिए ये मौसम सबसे अनुकूल है। तेज धूप के कारण दवाएं फसलों पर बेहतर असर करेगी। किसान साथियों, ये थी मौसम संबंधी जानकारी। और अब कार्यक्रम में वक्त हो गया है आज पूछे गए प्रश्न के सही उत्तर बताने का। हमने आपसे पूछा था कि मुर्गियों को गर्मी से होने वाले तनाव से राहत दिलाने के लिए पीने के पानी के साथ क्या मिलाकर दिया जा सकता है। भाई, उस प्रश्न का सही उत्तर है मुर्गियों को गर्मी से होने वाले तनाव से राहत दिलाने के लिए पीने के पानी के साथ इलेक्ट्रोलाइट मिलाकर दिया जा सकता है। उम्मीद करते हैं किसान भाइयों ने अपने उत्तर की जांच कर ली होगी। भाइयों, इसके साथ ही हमारे कार्यक्रम का समय समाप्त हो चला है। अगले कार्यक्रम में हम आपसे फिर मुलाकात करेंगे, तब तक के लिए हमें दीजिए अनुमति। नमस्कार।
1: प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना मिलेगा।

0: प्रधानमंत्री किसान मान धन योजना से लघु सीमांत किसानों का भविष्य होगा सुरक्षित
1: और 60 वर्ष की आयु से 3000 रुपए मासिक पेंशन होगी सुनिश्चित।
0: 55 रुपए से 200 रुपए की मासिक किश्त देकर प्रवेश कर सकते हैं 18 से 40 वर्ष तक के किसान।
1: इस अंशदायक योजना में सरकार देगी बराबर का योगदान।
0: सभी किसान भाई बहन इस योजना के लाभ के लिए जनसेवा केंद्र में जाएं
1: और अपना निःशुल्क नामांकन कराएं।
0: प्रधानमंत्री किसान मान धन योजना, अन्नदाता के परिश्रम को संबल, पेंशन से सुरक्षित उनका कर।
2: कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी।
3: इस कार्यक्रम के प्रायोजक थे भारत सरकार का कृषि एवं कृषक कल्याण मंत्रालय।
4: अभी आप किसान वाणी कार्यक्रम सुन रहे थे। ये आकाशवाणी का श्री विजयपुरम केंद्र है। इस समय शाम के 6:30 हुए हैं। अब सुनिए सेवा संकल्प अभियान के तहत क्षेत्रीय समाचार एकांश की विशेष प्रस्तुति ईज ऑफ डूइंग बिजनेस।
5: नमस्कार, सेवा संकल्प अभियान के इस श्रृंखला में आप सभी का स्वागत है। आज हम एक ऐसे महत्वपूर्ण विषय पर बातचीत करने जा रहे हैं जिसका सीधा संबंध देश में व्यापार, उद्योग और रोजगार के अवसरों से है। हमारा आज का विषय है ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, यानी व्यापार करने में सुगमता। इससे जुड़े विभिन्न पहलुओं को समझने के लिए आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं अंडमान चैम्बर ऑफ कॉमर्स के अध्यक्ष डॉक्टर के चंद्रशेखरन जी। आपका हमारे आज के इस कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है।
6: नमस्कार मैडम, मुझे यहाँ आमंत्रित करने के लिए आपका धन्यवाद।
5: तो आइए बातचीत की शुरुआत करते हैं और समझते हैं कि ईज ऑफ डूइंग बिजनेस आखिर क्या है, यह आम लोगों, उद्यमियों और व्यापारियों के लिए क्यों महत्वपूर्ण है और इसके माध्यम से देश की अर्थव्यवस्था

0: व्यवस्था को किस प्रकार लाभ मिल सकता है। सबसे पहले आप हमारे श्रोताओं को सरल शब्दों में बताइए कि ईज ऑफ डूइंग बिजनेस यानी व्यवसाय करने में सुगमता क्या होती है।
1: ईज ऑफ डूइंग का मतलब ही ये आता है कि बिजनेस करने में सहायता कैसे प्रदान करें। ये बिजनेस जो इंडस्ट्री उद्योग इंडस्ट्री खाली सुविधाएं प्राप्त करने का एक क्षेत्र नहीं है। उद्योग स्वयं सरकार के राजस्व का एक महत्वपूर्ण आधार है। उद्योग एवं MSME रोजगार पैदा करते हैं। GST आयकर TDS सीमा शुल्क शुल्क एवं अन्य राजस्व में योगदान देते हैं। तो अपनी पूरी सप्लाई चेन के माध्यम से अप्रत्यक्ष रूप से भी अधिक गतिविधि और सरकारी राजस्व बढ़ाते हैं। इसलिए ईज ऑफ डूइंग बिजनेस पर किया गया विशेष वास्तव में सरकार के भविष्य के राजस्व के आधार को बढ़ावा देना है। सिंपल लैंग्वेज में कहा जाए कि हम एम्प्लॉयमेंट जनरेट करते हैं ईज ऑफ डूइंग के बिजनेस के द्वारा। ये खाली एम्प्लॉयमेंट जनरेट करना ही उद्देश्य नहीं है, इससे सरकार का राजस्व में भी वृद्धि करते हैं ईज ऑफ डूइंग के बिजनेस के माध्यम से। ईज ऑफ डूइंग गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का एक विजन डॉक्यूमेंट है जो कि पूरे देश भर में ईज ऑफ डूइंग बिजनेस है, जिसमें पब्लिक सर्विसेज को एक सिंगल विंडो सिस्टम के अंतर्गत लाया गया, जिसमें कि लाइसेंस, बिल्डिंग परमिशन, लैंड कन्वर्शन, लैंड सबडिविजन, विद्युतीकरण, वाटर सप्लाई कनेक्शन, मीटर कनेक्शन, सारी को एक सॉफ्टवेयर के अंदर एक विंडो के अंतर्गत लाया गया है। हमारे यहाँ प्रशासन भी इसमें कार्यरत है। अभी बहुत सारे सुविधाओं को सिंगल विंडो पे किया गया है। इसमें कुछ और जो सर्विसेस है इसको भी ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के अंतर्गत लाया जाना चाहिए। हम उसके लिए कार्यरत हैं। हम प्रशासन के साथ लगातार संपर्क में है कि इसको ईज ऑफ डूइंग को और आगे बढ़ाया जाए।
0: तो हम जानना चाहेंगे सर कि सरकार के लिए ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को बढ़ावा देना क्यों जरूरी है।
1: हाँ, जैसा कि मैंने बताया, ये खाली उद्योग को सुविधा देना नहीं है, ये सरकार के लिए भी एक राजस्व और एम्प्लॉयमेंट जनरेशन का एक दायरा है। तो सरकार इस पर प्रतिबद्ध है, सरकार काम कर रहे हैं इसके। पूरे देश भर में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में सेक्रेटरी रैंक का एक अफसर को नियुक्त किया गया, उसके अंदर में पूरा एक कमेटी है। पूरे इंडिया में मेरे ख्याल से करीब करीब 28 राज्य और 8 यूनियन टेरिटरी है। ये सभी प्रदेशों के लिए एक अलग अलग कमेटी का आयोजन किया गया है। वो जो कमेटी यहाँ प्रशासन के साथ, उद्योग संघों के साथ, हमारे साथ में भी करीब 4 मीटिंग कर चुका है, जिसका पॉजिटिव रिजल्ट हमें देखने को मिल रहा है। जिसमें कि मेन ये था कि कोई भी एक इंडस्ट्री स्टार्ट करने के लिए डाइवर्शन ऑफ लैंड, जो प्रशासन ने उसको मान्यता दे दी है, डाइवर्शन ऑफ लैंड अलाउ कर दिया है। उसके अलावा जो बिल्डिंग प्लान अंडमान से संबंधित है, ये एक बहुत ही टफ जॉब माना जाता था, क्योंकि ये बहुत सारे डिफरेंट ऑफिसर्स के थ्रू बिल्डिंग प्लान जाता था। म्यूनसिपल में अप्लाई करेगा तो ये फिर टाउन प्लानिंग से होते हुए नेवी के उत्कृष्ट एयरपोर्ट और नेवी के कमांड में क्लियरेंस के लिए, जो एयरपोर्ट फनल एरिया क्लियरेंस के लिए जाता था, ये करीब करीब 6 महीने से 2 साल तक लगता था। उसको बहुत सारे उसमें से सुविधाएं ईज कर दिया गया है। डिफेंस सेक्टर में वही फाइल जाएगा जो कि एयरपोर्ट के फनल एरिया क्लियरेंस में आता है, बाकी एरिया को उससे से अलग कर दिया गया है। ये एक सराहनीय कदम है। इसमें और भी बहुत सारे संशोधन किया गया है, जैसे कि एप्लीकेंट का पुलिस वेरिफिकेशन को हटा दिया गया है और उसका कैरेक्टर सर्टिफिकेट को पूछा जाता था वो सबको हटा दिया गया है। हम समझते हैं कि प्रशासन और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया दोनों इस पर कार्यरत हैं।
0: जी, काफी चीजें कम कर दी गई हैं ताकि नए व्यवसायियों को सुविधा हो।
1: माना जाए तो हमारे यहाँ इंडस्ट्री इतना फ्लोरिश नहीं है, फिर भी आज के डेट में करीब 22,000 MSMEs रजिस्टर्ड है अंडमान निकोबार में, जो कार्यरत है। और MSME सेक्टर का आपको मालूम ही है कि देश भर में करीब करीब GDP का 31-32% MSME ही सहयोग देते हैं और करीब 36.5 मिलियन एम्प्लॉयमेंट जनरेट करते हैं MSME अलोन।
0: तो सर, ये बताइए कि किसी व्यक्ति को नया व्यवसाय शुरू करने के लिए किन किन प्रमुख प्रक्रियाओं से गुजरना पड़ता है।
1: किसी भी व्यवसाय को शुरू करने के लिए उसको पहले लैंड आइडेंटिफिकेशन, लैंड के बाद में उसका डाइवर्शन ऑफ लैंड, फिर उसके बाद में उसका परमिशन, बिल्डिंग प्लान परमिशन, उसके बाद उसमें लाइसेंस क्लियरेंस आता है, जैसे कि उसमें पानी की सुविधा, इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करना, फायर NOC, उसके अलावा जिस सेक्टर में है उसमें जैसे फूड रिलेटेड या होटल इंडस्ट्री में तो FSSI का क्लियरेंस, उसके अलावा GST का रजिस्ट्रेशन, इस तरह का कई प्रक्रियाओं से होके गुजरना पड़ता है, जो अभी सिंगल विंडो सिस्टम में करने की कोशिश की जा रही है। अलग अलग डिपार्टमेंट में अलग करने के बजाय हम इंडस्ट्री की नेशनल जो पोर्टल है उसमें अप्लाई करने से ही वो एक नोडल ऑफिसर के द्वारा उसको चेकिंग किया जाएगा। बट एट प्रेजेंट अभी चालू नहीं हुआ अंडमान में, इसके हम कोशिश कर रहे हैं कि एक सिंगल विंडो में हमें एक इंडस्ट्री स्टार्ट करना है तो वो अपने

0: ऑनलाइन सिंगल विंडो सिस्टम में अप्लाई करे, उसको सारा अप्रूवल जो कंसर्न नोडल ऑफिसर है वो उसको अप्रूवल लेके दे, या रिजेक्शन है तो उसको वापस कम्युनिकेट करे कि इस वजह से आपका वापस हुआ है, रिसबमिट करे।
1: जी सर, हमें ये बताइए कि क्या आज के समय में व्यवसाय शुरू करने के लिए ऑनलाइन सुविधाओं ने प्रक्रियाओं को आसान बनाया है?
0: बहुत ही आसान कर दिया मैडम, नॉट ओनली फॉर व्यवसाय, ये सारे आम जनता के लिए भी आसान कर गया है। अभी ई डिस्ट्रिक्ट के माध्यम से जितना डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन का कार्यक्रम है, जिसमें कि उनका रिकॉर्ड करेक्शन, म्यूटेशन, सब डिवीजन, रजिस्ट्रेशन, पेमेंट, ये सारे अभी ई सुविधा के अंतर्गत में, ई डिस्ट्रिक्ट पोर्टल के अंतर्गत है। इससे क्या है कि आपको फाइल लेके जो टेबल टू टेबल घूमने का काम आसान हो गया, समय सीमा निर्धारित हो गया। इसमें थोड़ा सुधार की जरूरत है, ये समय के साथ साथ उसमें हम कंसर्न प्रशासनिक
1: जी,
0: अधिकारियों के साथ संपर्क में हैं, उसको बहुत ही ईज करने की कोशिश कर रहे हैं।
1: तो सर ये बताइए कि छोटे और नए उद्यमियों के लिए सरकार की ओर से किस तरह की सुविधाएं उपलब्ध हैं?
0: सरकार की तरफ से बहुत सारी स्कीम है मैडम, जिसकी कि यहाँ में अवेयरनेस कम है। प्राइम मिनिस्टर जो एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी स्कीम है, जो और बैंक के कोलेटरल फ्री सिक्योरिटी लोन्स है, जिसमें कि
1: जी
0: किसी कोलेटरल सिक्योरिटी देने का जरूरत नहीं है। इस तरह का बहुत सारे स्कीम है, बैंक और इंडस्ट्री के द्वारा, एमएसएमई डिपार्टमेंट के द्वारा प्रोत्साहन करते हैं। इसमें किसी को भी, कोई एक अनएम्प्लॉयड बच्चे को, देखिए हमारे यहाँ जॉब का लिमिटेड ऑप्शंस है। सरकारी
1: जी
0: जॉब टोटल पॉपुलेशन का 10% के ऊपर सरकारी जॉब का एंटिसिपेशन नहीं कर सकते हैं, बाकी 90% को अपना एम्प्लॉयमेंट खुद ढूंढना पड़ेगा। तो ये हम सबसे आह्वान ये करते हैं कि आप एम्प्लॉय बनने के बजाय एम्प्लॉयर बने, उसके लिए आपको व्यवसाय में आना चाहिए। व्यवसाय का स्कोप अंडमान में बहुत अच्छा है, हमारे यहाँ टूरिज्म फिशरी सेक्टर में बहुत अपार
1: संभावनाएं हैं।
0: संभावनाएं हैं, जिसको हम लोग खुद नया व्यवसाय शुरू करने के लिए उसको एक आइडियाज चाहिए, एक ब्रेन चाहिए, एक प्रोजेक्ट रिपोर्ट चाहिए, उसके बाद यहाँ प्रशासन, गवर्नमेंट, बैंक आपको बिना कोई तकलीफ का, बिना कोई कोलेटरल सिक्योरिटी का लोन देने के लिए बाध्य है।
1: जी अच्छा सर, हमें ये बताइए कि जैसा अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह दूरदराज के क्षेत्र हैं, तो यहाँ पर ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को बढ़ावा देना कितना महत्वपूर्ण है?
0: मेनलैंड के कंपेरिशन में अंडमान एक आइसोलेटेड जगह है, यहाँ की भौगोलिक स्थितियाँ डिफरेंट इसमें माना जाता है। जो रेस्ट ऑफ द पार्ट ऑफ द कंट्री में जो ईज ऑफ डूइंग बिजनेस है, उससे थोड़ा हट के यहाँ पद्धति बनाना चाहिए,
1: जी
0: क्योंकि हम यहाँ सिर्फ एयर कनेक्टिविटी और सी कनेक्टिविटी से माध्यम से जुड़ा हुआ है। तो
1: जी
0: एयर कनेक्टिविटी हमारे लिए कोई लग्जरी आइटम नहीं है, ये हमारी एक
1: जरूरत है
0: लाइफ लाइन है,
1: जी,
0: ये हमारी
1: लाइफलाइन
0: जरूरत
1: है
0: की ये है। बिना कनेक्टिविटी का हम तो यहाँ आइसोलेट हो जाएगा। तो हमने भारत सरकार से, प्रशासन से और उड्डयन मंत्रालय से टेकअप किया हुआ है कि हमारी कनेक्टिविटी को अब लग्जरी से हटाकर इसको हमारी, आपको रोजमर्रा की जीवन की जरूरत है, लाइफलाइन है, उसके अंतर्गत लाया गया, और एक अफोर्डेबल प्राइस में सफिशियंट मात्रा में फ्लाइट की अवेलेबिलिटी उपलब्ध कराया जाए।
1: चलिए उम्मीद करते हैं कि इसका कुछ अच्छा नतीजा निकले और हमारे द्वीपवासियों के लिए लाभ हो। तो सर हमें ये बताइए कि यहाँ के स्थानीय छोटे व्यापारियों और उद्यमियों के सामने आमतौर पर किस तरह की चुनौतियाँ होती हैं?
0: यहाँ सबसे बड़ी चुनौतियाँ यह कि ट्रांसपोर्टेशन, कोई भी अंडमान में कोई इंडस्ट्री है ही नहीं है, हम लोग को हर सामान को आयात करना पड़ता है मेनलैंड इंडिया पोर्ट से। तो ये ट्रांसपोर्टेशन एक बिगर चैलेंज है हमारे सामने। तो कोई भी एस्टेब्लिशमेंट करने के लिए, कोई मेनलैंड में जितना इन्वेस्टमेंट और जितना समय का जरूरत है, उससे 3 गुना इन्वेस्टमेंट और पैसे की जरूरत है यहाँ अंडमान में उद्योगों के लिए। तो हम प्रशासन से इस तरफ में ध्यान देने के लिए आग्रह किया गया कि उद्यमियों को ट्रांसपोर्ट सब्सिडी दिया जाए। ये ट्रांसपोर्ट फैसिलिटीज, सरकार की कोई शिप नहीं चल रही है, बट प्राइवेट जो ऑपरेटर शिप चलाते हैं, उनके एक मैक्सिमम अफोर्डेबल फ्राइट तारीफ को फिक्स किया जाए, तो उसे उद्योगियों को आगे आने के लिए मदद मिलेगा। अब हम यहाँ एक कोई इंडस्ट्री लगाया, यहाँ हमारे यहाँ लोकल कंजम्पशन बहुत लिमिटेड है, तो
1: जी
0: इसको वापस हम रॉ मटेरियल वहाँ से लाएंगे, यहाँ प्रोडक्ट करेंगे, वापस रीमार्केटिंग के लिए जब मेलन जाता है, तो ये बोथ साइड का ट्रांसपोर्टेशन के साथ में हम मेलन के उद्योगियों के साथ में कम्पीट नहीं कर सकेंगे। तो उसके लिए हमने अलग से टेकअप किया हुआ है कि इनको ट्रांसपोर्ट सब्सिडी दिया जाए हमें।
1: जी सर, तो हमें ये बताइए कि द्वीपों में पर्यटन, मत्स्य पालन, कृषि, हस्तशिल्प और अन्य स्थानीय व्यवसायों के लिए कारोबार को आसान बनाने की दिशा में क्या प्रयास किए जा रहे हैं?
0: प्रयास इन सभी, इसमें ये ईज ऑफ डूइंग बिजनेस ही इसका एक एकमात्र उपाय है। जितना
1: जी
0: लाइसेंसिंग है, जिसमें अलग अलग विभागों में जाना है, वो सिंगल विंडो के अंतर्गत में उसको लाइसेंस प्रदान किया जाए और टाइम बाउंड मैनर पे उसको प्रदान किया जाए। तो ये बिजनेस को यहाँ में एम्प्लॉयमेंट जनरेट करने के लिए, जो हमारे बच्चे उनको

0: रोजगार ढूंढने के बजाय रोजगार प्रदान करने का प्रावधान बने, उस पर हम कार्यरत हैं। हम उम्मीद करते हैं कि आने वाले दिनों में प्रशासन की मदद से ये ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को सही तरीके से इम्प्लीमेंट करने से एम्प्लॉयमेंट जनरेशन और एम्प्लॉयर बनने का सौभाग्य मिलेगा अधिक लोगों को।
1: जी सर, बताइए कि क्या महिलाओं के लिए भी उद्यमिता के क्षेत्र में विशेष अवसर और सहायता उपलब्ध हैं?
0: डेफिनेटली मैडम, इस चैम्बर में मैंने 2 साल पहले चैम्बर ऑफ कॉमर्स का चार्ज लिया, तब से मैंने एक महिला विंग, जो महिला उद्यमियों का एक विंग बनाया गया, उनको लगातार प्रोत्साहन दे रहे हैं। वो ज्यादातर माइक्रो इंडस्ट्रीज में है, जो स्मॉल स्मॉल इंडस्ट्रीज में उनको लगाया गया है, और उनको जितना फाइनेंशियल असिस्टेंस बैंक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से प्रदान है, जिसमें कि सेल्फ हेल्प ग्रुप भी है, जिसमें माइक्रो फाइनेंसिंग स्कीम भी है, उसका बिना कोई कोलैटरल सिक्योरिटी का प्रदान करने का हमारी एक महिला विंग को, जो महिला लीड करती है, उसको समय समय पर हम मार्गदर्शन देके उनको भी आगे लाने का कार्यक्रम कर रहे हैं।
1: सर, हमें ये बताइए कि व्यवसायियों के लिए नियमों और प्रक्रियाओं को सरल बनाने की दिशा में सरकार किस तरह काम कर रही है?
0: सरकार और प्रशासन बहुत ही पॉजिटिव है, क्योंकि सरकार समझते हैं उद्यमी या जो इंडस्ट्री सेक्टर या व्यवसायी, ये सरकार का बैकबोन है, क्योंकि सरकार का राजस्व का मोर देन 80% ऑफ द रेवेन्यू कलेक्शन होता है थ्रू ये व्यवसायियों के द्वारा। सरकार का अपना सोर्स ऑफ इनकम बहुत ही नहीं के बराबर है, तो उनका टैक्स है, टैक्स कलेक्शन, जीएसटी कलेक्शन, इनकम टैक्स कलेक्शन या कस्टम कलेक्शन या सर्विस कलेक्शन, ये किन से होता है, ये थ्रू व्यवसायियों के द्वारा। तो हम तो सरकार की बैकबोन है, तो सरकार हमारी रीढ़ पर सवार होकर जो ये देश के रक्षा सौदा में या देश के जो कल्याणकारी प्रोग्राम्स ले आते हैं, जिसमें हेल्थ सेक्टर, एजुकेशन सेक्टर, रोड सेक्टर, पावर सेक्टर, ये सब में इन्वेस्टमेंट करने के लिए हम उनका बैकबोन है। हम सरकार के साथ हैं, हम सरकार का अलग पार्ट नहीं है।
1: जी, अब हम जानना चाहेंगे सिंगल विंडो सिस्टम क्या है और यह व्यवसायियों के लिए किस तरह उपयोगी है।
0: हम एक वेबसाइट पे, जिसमें कि सिंगल में हम अप्लाई करें, अपना उसमें पहले पोर्टल में हमको जमा करना पड़ेगा, मेरा नाम, मेरा एड्रेस, मेरा आधार कार्ड, मेरा डिटेल्स, उसके बाद में हम किस व्यवसाय में जाना चाहता है उसमें अप्लाई करेगा, जो जो डॉक्यूमेंट उसमें मांगता है उसमें अपलोड कर देगा। तो ये पोर्टल से कंसर्न जो डिपार्टमेंट है, जैसे फायर ब्रिगेड को जाना है तो फायर ब्रिगेड को चल जाएगा, पावर को, पावर को, जिसको FSI में भेजना है तो हेल्थ डिपार्टमेंट में, अलग अलग डिपार्टमेंट को वो भेज देगा उस पोर्टल से उसका नोडल ऑफिसर। तो उससे क्या है कि जो एप्लीकेंट है उसको इस 10 डिपार्टमेंट का चक्कर काटना नहीं पड़ता है, और 10 डिपार्टमेंट से परमिशन लाके अपना व्यवसाय शुरू करने का जरूरत नहीं है। इसमें सबसे मेजर ये आता है कि बिल्डिंग प्लान, डाइवर्शन ऑफ लैंड, ये अंडमान में आपको पता ही है कि हमारे पास में करीब 94% ऑफ द लैंड रिजर्व फॉरेस्ट है, 6% है उसमें डिफेंस रेवेन्यू और प्राइवेट लैंड्स है। तो ये लैंड डाइवर्शन एक बहुत बड़ा मुद्दा था, अब थोड़ा सरल हो गया है। ये सारे सिंगल पोर्टल के अंतर्गत में किया जाएगा, जहाँ में कि अंडमान में मास्टर प्लान के अंतर्गत जहाँ में कॉमर्शियल जोन है वो कॉमर्शियल हो जाए, जहाँ रेजिडेंशियल है रेजिडेंशियल जोन हो जाए, और जो अदर एरिया में कुछ परसेंटेज ऑफ द लैंड को कन्वर्ट करने परमिशन दिया गया उसको ऑटोमेटिकली कर दिया जाए तो बहुत ईज हो जाएगा। उसके लिए हम कोशिश कर रहे हैं कि वो ईज ऑफ डूइंग के बिजनेस के अंतर्गत ये डाइवर्शन ऑफ लैंड को लाया जाए।
1: अच्छा सर, ये बताइए, क्या ईज ऑफ डूइंग बिजनेस का उद्देश्य केवल नए व्यवसाय शुरू करना है या मौजूदा व्यवसायों के संचालन को आसान बनाना भी इसका हिस्सा है?
0: ये दोनों है मैडम, ये नए उद्यमियों को आगे लाने के लिए प्रोत्साहन करने का भी ईज ऑफ डूइंग, और जो ओल्ड बिजनेस में है उनको थोड़ा सरल बना के उनका बिजनेस को फ्लोरिश करने का। हम बिजनेसमैन फ्लोरिश होता है तो भारत सरकार फ्लोरिश होता है, भारत सरकार का रेवेन्यू बढ़ेगा। तो ये दोनों इंटरकनेक्टेड है, हम एक ब्रिज है बिटवीन गवर्नमेंट एंड द टैक्सेशन के, तो ये दोनों को ही लाभदायक है मैम।
1: जी तो सर, हमें ये बताइए कि ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में सुधार का रोजगार के अवसरों पर क्या प्रभाव पड़ सकता है?
0: ईज ऑफ डूइंग बिजनेस से आप एम्प्लॉयमेंट जनरेशन होगा, जितना हमारे बेरोजगार बच्चे है उसको अगर हम एम्प्लॉयर बनाते हैं, सिंपल लैंग्वेज में कहा जाए तो एक ट्रैवल ऑफिस खोले तो एक ट्रैवल ऑफिस के साथ में उसके साथ कम से कम 2 एम्प्लॉई जोड़ेगा। तो ये एम्प्लॉयमेंट जनरेट करने का एकमात्र उपाय अंडमान में यही है कि हम बच्चों को या नए लोगों को एम्प्लॉयर बनाएं, इंडस्ट्री में लाए, व्यवसाय में आकर्षित करें उनको।
1: अंत में आप हमारे श्रोताओं, विशेषकर युवाओं और छोटे उद्यमियों को क्या संदेश देना चाहेंगे जो अपना व्यवसाय शुरू करने की सोच रहे हैं?
0: मैं अपने सभी दर्शकों को, पर्टिकुलरली यूथ को आह्वान करूंगा कि आप सरकारी नौकरी के पीछे मत दौड़िए, आप एम्प्लॉयर बनिएगा। यहाँ अपार संभावनाएं हैं, आप एक एम्प्लॉयर बनने से, एक सिंपल लैंग्वेज में आपको बताएं कि आप कितनी भी ऊंची कुर्सी

0: पे, कोई भी पोजीशन पे जाए, आप कभी भी एम्प्लॉयर नहीं बन सकता है। आपको व्यवसाय में आने से ही आप एम्प्लॉयर बन सकता है। आपके माध्यम से एक परिवार, दो परिवार, 50 परिवार, 100 परिवार, 200 परिवार को आप और उनको एक घर चलाने का जीविका प्रदान कर सकता है। तो लोगों को आगे आना चाहिए, जिसमें हमारे यहाँ पर्टिकुलरली बहुत सारे संभावना है। लोगों को, बच्चों को, यूथ को आगे आना चाहिए कि उसमें आप कैसे एम्प्लॉय बनने के बजाय एम्प्लॉयर बने।
1: जी, डॉक्टर के चंद्रशेखरन जी, आप हमारे श्रोताओं को ईज ऑफ डूइंग बिजनेस और इससे जुड़ी सरकारी सुविधाओं के बारे में सरल और उपयोगी जानकारी दी। उम्मीद है कि आज की यह बातचीत हमारे श्रोताओं के लिए उपयोगी और जानकारीपूर्ण रही होगी। इस कार्यक्रम में आने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
2: अभी आपने सुना सेवा संकल्प अभियान के तहत क्षेत्रीय समाचार एकांश की विशेष प्रस्तुति ईज ऑफ डूइंग बिजनेस। ये आकाशवाणी का श्री विजयपुरम केंद्र है। श्रोताओं, आइए अब सुनते हैं कुछ फिल्मी गीत। कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं सिलसिला है प्यार का फिल्म के इस गीत से। आवाजें हैं कुमार सानू और अनुराधा पौडवाल की। समीर के लिखे गीत को संगीत दिया है जतिन ललित ने।

अभी आप अलका याग्निक का गाया दिल क्या करे फिल्म का गीत सुन रहे थे। गीतकार थे आनंद बख्शी तथा संगीतकार थे जतिन ललित। आइए अब सुनते हैं मैंने प्यार किया फिल्म का ये गीत। आवाज़ है लता मंगेशकर की, बोल असद भोपाली के हैं तथा धुन बनाई है राम लक्ष्मण ने।

0: मीडियम वेव 438.6 मीटर अर्थात 684 किलोहर्ट्स और FM 100.9 मेगाहर्ट्स पर ये आकाशवाणी का श्री विजयपुरम केंद्र है। इस समय शाम के 7 बजे हैं।
1: क्या आपके जिले की कोई ऐसी खास पहचान है जिस पर पूरे देश को गर्व हो? अब उसे राष्ट्रीय मंच पर प्रस्तुत करने का सुनहरा अवसर है। सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय द्वारा जेम्स ऑफ इंडिया राष्ट्रीय पहल शुरू की गई है। इसका उद्देश्य देश के हर जिले की संस्कृति, विरासत, पर्यटन, लोक कला, हस्तशिल्प, स्थानीय व्यंजन, प्राकृतिक सौंदर्य और प्रेरणादायक कहानियों को डिजिटल माध्यम से पूरे देश तक पहुंचाना है। यदि आप एक उभरते हुए डिजिटल

क्रिएटर है तो 30 सितंबर 2026 तक वेव्स ओटीटी ऐप के माय वेव्स सेक्शन में जाकर अपना क्रिएटर प्रोफाइल बनाइए और जेम्स ऑफ इंडिया के अंतर्गत अपने जिले पर आधारित मौलिक वीडियो, रील, डॉक्यूमेंट्री, ब्लॉग या पॉडकास्ट अपलोड कीजिए। चयनित प्रतिभागियों को जिला, राज्य और राष्ट्रीय स्तर पर सम्मानित किया जाएगा। जिला स्तर पर प्रत्येक पुरस्कार के लिए 50,000 रुपए, राज्य स्तर पर

0: अनमोल पहचान को देश के सामने लाने का यह अवसर हाथ से न जाने दे। जेम्स ऑफ इंडिया से जुड़िए और अपने जिले को राष्ट्रीय पहचान दिलाइए।
1: एक आवश्यक सूचना। आकाशवाणी श्री विजयपुरम में ब्रॉडकास्ट असिस्टेंट के पैनल में शामिल होने हेतु योग्य उम्मीदवारों से आवेदन आमंत्रित किए गए हैं। स्नातक अर्थात ग्रेजुएट उम्मीदवार जिन्हें हिंदी व अंग्रेजी तथा कंप्यूटर का ज्ञान हो और जिनकी आयु 31 अगस्त 2026 को 40 वर्ष से अधिक न हो, इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। श्री विजयपुरम नगर पालिका क्षेत्र के भीतर रहने वाले जो समुचित योग्यता रखते हैं इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। आवेदन प्रपत्र आकाशवाणी श्री विजयपुरम के ड्यूटी रूम से प्राप्त किए जा सकते हैं। आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि 5 अक्टूबर 2026 है। याद रहे, प्रसारण सहायक अर्थात ब्रॉडकास्ट असिस्टेंट की ये चयन प्रक्रिया किसी नियमित रोजगार के लिए नहीं है। इस संबंध में और अधिक जानकारी के लिए आकाशवाणी श्री विजयपुरम से संपर्क किया जा सकता है।

श्रोताओं, हम आपको पुनः याद दिला दें, कल सुबह 6:15 पर इंद्रधनुष कार्यक्रम केंद्रित होगा यादें शीर्षक पर। प्राइमरी चैनल और FM 100.9 MHz पर सुबह 7:30 पर गुड मॉर्निंग अंडमान कार्यक्रम के अंतर्गत साहित्य दर्पण कार्यक्रम में आप सुनेंगे वरिष्ठ नागरिकों के सम्मान में स्वरचित काव्य पाठ। कवियत्री होंगी डॉक्टर एन लक्ष्मी। सवेरे 8:30 पर सुगम संगीत के कार्यक्रम में फनकारा होंगी कमलिनी मल्होत्रा और नूर जहां।

ये आकाशवाणी का श्री विजयपुरम केंद्र है। श्रोताओं, 7:05 पर आप सुनेंगे प्रादेशिक समाचार हमारे केंद्र से।

मुख्य समाचार। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि दक्षिण चीन सागर से अटलांटिक तक भारतीय युद्धपोतों की मौजूदगी देश की ब्लू वाटर नौसैनिक क्षमता को दर्शाती है। कला एवं संस्कृति विभाग 3 अक्टूबर को आयोजित करेगा विश्व युद्ध द्वितीय पर विशेष हेरिटेज वॉक। डॉक्टर बी आर अम्बेडकर प्रौद्योगिकी संस्थान ने विद्यार्थियों के कल्याण और सहायता तंत्र को मजबूत करने के उद्देश्य से प्रयास जुवेनिल एड सेंटर सोसाइटी के साथ समझौता ज्ञापन किया। और मायाबंदर में राष्ट्रीय स्वैच्छिक रक्तदान दिवस का आयोजन 1 अक्टूबर को किया जाएगा। सांध्य समाचारों के साथ मैं तरन्नुम मोहम्मद। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि बदलती प्रौद्योगिकी, अनिश्चित परिस्थितियों और भौगोलिक चुनौतियों के बीच भारतीय नौसेना की जमीनी स्तर पर रणनीतिक सोच और आकस्मिक परिस्थितियों से निपटने की योजनाओं को प्राथमिकता देनी चाहिए। भारतीय नौसेना कमांडर्स सम्मेलन को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि वर्ष 2047 तक विकसित भारत के लक्ष्य को हासिल करने में नौसेना महत्वपूर्ण रणनीतिक भूमिका निभा रही है। उन्होंने ऑपरेशन ऊर्जा सुरक्षा का उल्लेख करते हुए कहा कि इस अभियान ने ऊर्जा आपूर्ति लाइनों और राष्ट्रीय हितों

सुरक्षा में नौसेना की परिचालन क्षमता को प्रदर्शित किया है। उन्होंने कहा कि हिंद महासागर क्षेत्र में भारत संकट के समय सहायता, सुरक्षा सहयोग और भरोसे के प्रतीक के रूप में अपनी भूमिका मजबूत कर रहा है। दक्षिण चीन सागर, भूमध्य सागर और अटलांटिक में भारतीय युद्धपोतों की मौजूदगी देश की ब्लू वाटर नौसैनिक क्षमता को दर्शाती है। कला एवं संस्कृति विभाग द्वीप समूह की ऐतिहासिक एवं सांस्कृतिक विरासत से लोगों को परिचित कराने के उद्देश्य से नियमित हेरिटेज वॉक आयोजित करेगा। 3 अक्टूबर को विश्व युद्ध द्वितीय पर आधारित हेरिटेज वॉक आयोजित की जाएगी। यह वॉक सुबह 5:30 बजे से 7 बजे तक होगी और सेलुलर जेल से शुरू होकर बैटल ऑफ अबरडीन मेमोरियल, बंकर अंडमान क्लब, फरजंद अली मार्केट, नेताजी क्लब, जुल्फिकार अली स्मारक, क्लॉक टावर होते हुए गांधी पार्क के बंकर और शिंतो श्राइन तक जाएगी। इतिहासकार डॉ. प्रणब कुमार सरकार प्रतिभागियों को विभिन्न ऐतिहासिक स्थलों की जानकारी देंगे। हेरिटेज वॉक में पर्यटकों, विद्यार्थियों, पर्यटक गाइडों, टूर ऑपरेटरों के प्रतिनिधियों और अंडमान के विरासत में रुचि रखने वाले लोगों के लिए भाग लेने का अवसर है। इच्छुक व्यक्ति कला एवं संस्कृति विभाग से संपर्क कर सकते हैं। विश्व आत्महत्या रोकथाम दिवस और विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस के अवसर पर कंपोजिट रीजनल सेंटर ने अंडमान एवं निकोबार कॉलेज में माइंड मैटर्स, लव, लाइक्स, लाइफ एंड एवरीथिंग इन बिटवीन विषय पर जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया। कार्यक्रम टेलीमानस स्वास्थ्य सेवा निदेशालय और एनकॉल के सहयोग से हुआ। कार्यक्रम का उद्घाटन एनकॉल के प्राचार्य डॉ. जय कुमार ने किया। उन्होंने विद्यार्थियों से अपनी भावनाओं और चिंताओं पर खुलकर बात करने तथा आवश्यकता पड़ने पर समय पर सहायता लेने का आग्रह किया। सीआरसी की निदेशक सुमिता मोल एस ने मानसिक स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं की समय पर पहचान और उचित हस्तक्षेप के महत्व पर जोर दिया। प्रतिभागियों को 24 घंटे उपलब्ध टेलीमानस की टोल फ्री मानसिक स्वास्थ्य हेल्पलाइन 1-4-4-1-6 की जानकारी भी दी गई। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी श्री विजयपुरम से सुन रहे हैं। समाचारों में आगे प्रमुख है डिब्रेट और रक्तदान दिवस। आकाशवाणी श्री विजयपुरम से प्रसारित होने वाला यह प्रादेशिक समाचार बुलेटिन आप मीडियम वेव के साथ साथ एफएम 100.9 मेगाहर्ट्ज पर भी सुन रहे हैं। इसके अलावा प्रादेशिक समाचार आप सोशल मीडिया के विभिन्न प्लेटफॉर्म एक्स, यूट्यूब, फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी उपलब्ध है। प्रादेशिक समाचार में आपका फिर स्वागत है। डॉक्टर बी आर अम्बेडकर प्रौद्योगिकी संस्थान ने विद्यार्थियों के कल्याण और सहायता तंत्र को मजबूत करने के उद्देश्य से प्रयास जुवेनिल एड सेंटर सोसाइटी के साथ समझौता ज्ञापन किया है। इस सहयोग के तहत विद्यार्थियों को व्यावसायिक मार्गदर्शन, मानसिक स्वास्थ्य परामर्श, जीवन कौशल सहायता और जागरूकता कार्यक्रम उपलब्ध कराए जाएंगे। पहल का उद्देश्य विद्यार्थियों को शैक्षणिक, व्यक्तिगत और सामाजिक चुनौतियों से प्रभावी ढंग से निपटने में सहायता देना तथा सुरक्षित, समावेशी और सहयोगपूर्ण शैक्षणिक वातावरण को बढ़ावा देना है। विश्व पर्यटन दिवस के अवसर पर 27 सितंबर को स्वच्छता ही सेवा अभियान के तहत अंडमान एवं निकोबार पुलिस की पुलिस मरीन फोर्स ने विशेष स्वच्छता अभियान चलाया। अभियान के दौरान मरीन पुलिस के परिचालन केंद्रों और समुद्री संसाधनों की सफाई की गई। पीएमएफ कर्मियों ने कार्यालय परिसरों और आसपास के क्षेत्रों की सफाई की। इसके साथ ही नौकाओं और अन्य परिचालन परिसरों को स्वच्छ एवं व्यवस्थित रखा गया। इस अवसर पर तटीय और समुद्री क्षेत्रों में स्वच्छता, पर्यावरण संरक्षण तथा जिम्मेदार व्यवहार के महत्व पर संदेश दिया गया। मायाबंदर में राष्ट्रीय स्वैच्छिक रक्तदान दिवस का आयोजन 1 अक्टूबर को किया जाएगा। इस अवसर पर स्वैच्छिक रक्तदाताओं के जीवन रक्षक योगदान को सम्मानित किया जाएगा। कार्यक्रम का आयोजन जीबी पंत अस्पताल रक्त केंद्र द्वारा अंडमान एवं निकोबार एड्स नियंत्रण सोसाइटी तथा राष्ट्रीय एड्स नियंत्रण संगठन, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के सहयोग से किया जा रहा है। महात्मा गांधी राजकीय महाविद्यालय मायाबंदर में कल और आज प्रबंधन विषय पर 2 दिवसीय विशेष अतिथि व्याख्यान आयोजित किया गया। पौंडीचेरी विश्वविद्यालय के श्री विजयपुरम परिसर स्थित प्रबंधन अध्ययन विभाग के प्रोफेसर डॉ. सी. माधवैया ने व्याख्यान दिए। पहले दिन उन्होंने शिक्षा, करियर आकांक्षाओं और रोजगार के बीच बढ़ते अंतर तथा दूसरे दिन डिजिटल स्टोरी टेलिंग, सोशल मीडिया और ऑनलाइन

0: सामग्री निर्माण में उभरती क्रिएटर इकोनॉमी पर विचार साझा किए। महाविद्यालय के प्राचार्य डॉ. आर वी आर मूर्ति ने विशेषज्ञ का अभिवादन करते हुए विद्यार्थियों के लिए व्याख्यान का उपयोगी बताया। जवाहरलाल नेहरू राजकीय महाविद्यालय में आज आंतरिक शिकायत समिति की ओर से पोष जागरूकता एवं संवेदनशीलता कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम में यौन उत्पीड़न, सहमति, व्यक्तिगत सीमाओं, अधिकारों, शिकायत निवारण प्रक्रिया और आंतरिक शिकायत समिति की भूमिका पर जानकारी दी गई। राइट्स फॉर ऑल संस्था की अध्यक्ष एवं प्रमाणित पोष मास्टर ट्रेनर रुबीना सिद्दीकी ने विद्यार्थियों के साथ संवाददात्मक सत्र आयोजित किया। इसमें करीब 250 विद्यार्थियों ने भाग लिया। जिला परिषद दक्षिण अंडमान के अध्यक्ष पी उमर ने वंडूर के वार्ड नंबर 3 में सड़क का उद्घाटन किया। कार्यक्रम की अध्यक्षता जिला परिषद दक्षिण अंडमान के मुख्य कार्यकारी अधिकारी रजनीश सिंह ने की। इस अवसर पर जिला परिषद सदस्य प्रकाश अधिकारी, पंचायत समिति सदस्य भरत शर्मा, वंडूर ग्राम पंचायत के उप प्रधान उत्तम कुमार रॉय, वार्ड सदस्य सुखलता पाहन सहित पंचायती राज संस्थाओं के प्रतिनिधि, जिला परिषद सदस्य और स्थानीय निवासी मौजूद रहे। अंडमान एवं निकोबार प्रशासन के खेल एवं युवा कार्य विभाग के अनुसार नेताजी स्टेडियम स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स स्थित स्विमिंग पूल कल से पुनः आम लोगों के लिए खोल दिया जाएगा। रखरखाव कार्य पूरा होने के बाद पूल अब सदस्यों और गैर सदस्यों के लिए निर्धारित नियमों एवं समय के अनुसार खुला रहेगा। अंडमान कॉलेज में आज हिंदी पखवाड़ा एवं हिंदी दिवस समारोह 2026 का समापन सांस्कृतिक कार्यक्रम और पुरस्कार वितरण के साथ हुआ। मुख्य अतिथि महाविद्यालय के प्राचार्य डॉ. एस जयकुमार तथा विशिष्ट अतिथि डॉ. बी एस वी मीरा सेट्टी रही। 14 से 28 सितंबर तक आयोजित पखवाड़े के दौरान निबंध लेखन, सुलेख, पोस्टर निर्माण, चित्रकला, भाषण, कविता एवं कहानी पाठ तथा हिंदी जागरूकता सत्र आयोजित की गई। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि दक्षिण चीन सागर से अटलांटिक तक भारतीय युद्धपोतों की मौजूदगी देश की ब्लू वाटर नौसैनिक क्षमता को दर्शाती है। कला एवं संस्कृति विभाग 3 अक्टूबर को आयोजित करेगा विश्व युद्ध द्वितीय पर विशेष हेरिटेज वॉक। डॉ. बी आर अम्बेडकर प्रौद्योगिकी संस्थान ने विद्यार्थियों के कल्याण और सहायता तंत्र को मजबूत करने के उद्देश्य से प्रयास जुवेनिल एड सेंटर सोसाइटी के साथ समझौता ज्ञापन किया। और मायाबंदर में राष्ट्रीय स्वैच्छिक रक्तदान दिवस का आयोजन 1 अक्टूबर को किया जाएगा। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।
1: ये आकाशवाणी का श्री विजयपुरम केंद्र है। इस समय संध्या के 7:15 हुए हैं। लीजिए अब सुनिए मौसम की जानकारी, जलियानों का यात्रा कार्यक्रम और जन सूचनाएं।

पहले मौसम। मौसम विभाग से प्राप्त सूचना के अनुसार अंडमान तथा निकोबार द्वीप समूह के कुछ स्थानों पर हल्की से मध्यम वर्षा हुई। मायाबंदर में 2 मिलीमीटर और लॉन्ग आइलैंड में 1 मिलीमीटर वर्षा रिकॉर्ड की गई। जनसेवाओं और मछुआरों के लिए कोई विशेष चेतावनी नहीं है। परसों सुबह तक के मौसम संबंधी पूर्वानुमान में बताया जाता है कि अंडमान तथा निकोबार द्वीप समूह के 1-2 स्थानों पर हल्की वर्षा होने या गरज के साथ बौछारें पड़ने की संभावना है। ये था मौसम का हाल। आइए अब सुनते हैं जलियानों का यात्रा कार्यक्रम। जहाजरानी सेवा निदेशालय से प्राप्त सूचना के अनुसार एमवी कालीघाट मायाबंदर होते हुए डिगलीपुर की यात्रा पर कल 30 तारीख को रात 8 बजे श्री विजयपुरम से रवाना होगा और ये जलियान परसों यानी 1 तारीख को दोपहर बाद 3 बजे डिगलीपुर से छूटकर मायाबंदर होते हुए श्री विजयपुरम वापस लौटेगा। लिटिल अंडमान के लिए एमवी भारत सीमा परसों यानी 1 अक्टूबर को सुबह 8 बजे श्री विजयपुरम से प्रस्थान

करेगा। ये जलयान उसी दिन रात 8 बजे लिटिल अंडमान से श्री विजयपुरम के लिए वापस चलेगा। एमवी सेंटिनल लिटिल अंडमान होते हुए कार्निकोबार जाने के लिए 1 तारीख को सुबह 7 बजे श्री विजयपुरम से छूटेगा और ये जलयान 2 तारीख को शाम 4 बजे कार्निकोबार से छूटकर लिटिल अंडमान होते हुए श्री विजयपुरम वापस लौटेगा। स्वराज द्वीप और लॉन्ग आइलैंड होते हुए रंगत जाने के लिए एमवी वंडूर कल सवेरे 6 बजे श्री विजयपुरम से चलेगा और ये जलयान कल ही दोपहर 12 बजे रंगत से छूटकर इन्हीं रास्तों से होते हुए श्री विजयपुरम वापस आएगा। एमवी रानीचंगा शहीद द्वीप की यात्रा पर कल सवेरे 6:15 पर श्री विजयपुरम से छूटेगा और इस जलयान की वापसी कल ही सुबह 8:30 पर शहीद द्वीप से श्री विजयपुरम के लिए होगी। स्वराज द्वीप की यात्रा पर एमवी नॉर्थ पैसेज कल सवेरे 6:15 पर श्री विजयपुरम से रवाना होगा और ये जलयान कल ही सुबह 8:45 पर स्वराज द्वीप से श्री विजयपुरम वापस आएगा। एमवी जॉली बॉय रंगत की यात्रा पर कल सुबह 7 बजे श्री विजयपुरम से छूटेगा और ये जलयान परसों यानी 1 तारीख को सुबह 7 बजे रंगत से श्री विजयपुरम वापस लौटेगा। जाते व आते समय ये जलयान शहीद द्वीप स्वराज द्वीप स्ट्रेट आइलैंड कदमतला और लॉन्ग आइलैंड में भी रुकेगा। एमवी बम्बुका शहीद द्वीप की यात्रा पर कल दिन में 11 बजे श्री विजयपुरम से प्रस्थान करेगा। ये जलयान कल ही दोपहर 1 बजे शहीद द्वीप से स्वराज द्वीप जाएगा और कल ही दोपहर बाद 2:30 पर स्वराज द्वीप से श्री विजयपुरम वापस लौटेगा। स्वराज द्वीप के लिए एमवी रानी लक्ष्मी कल दिन में 11:30 पर श्री विजयपुरम से छूटेगा। ये जलयान कल ही दोपहर बाद 2 बजे स्वराज द्वीप से शहीद द्वीप जाएगा और कल ही दोपहर बाद 3:30 पर शहीद द्वीप से श्री विजयपुरम वापस लौटेगा। एमवी नॉर्थ पैसेज शहीद द्वीप की यात्रा पर कल दोपहर बाद 2:30 पर श्री विजयपुरम से रवाना होगा और इसकी वापसी कल ही शाम 4:30 पर शहीद द्वीप से श्री विजयपुरम के लिए होगी। स्वराज द्वीप की यात्रा पर एमवी रंगत कल शाम 5 बजे श्री विजयपुरम से प्रस्थान करेगा और ये जलयान परसों यानी 1 तारीख को प्रातः 5:30 पर स्वराज द्वीप से छूटकर शहीद द्वीप होते हुए श्री विजयपुरम के लिए वापस चलेगा। अभी आप जलयानों का यात्रा कार्यक्रम सुन रहे थे। अब सुनिए जन सूचनाएं। आकाशवाणी श्री विजयपुरम में ब्रॉडकास्ट असिस्टेंट के पैनल में शामिल होने हेतु योग्य उम्मीदवारों से आवेदन आमंत्रित किए गए हैं। स्नातक अर्थात ग्रेजुएट उम्मीदवार जिन्हें हिंदी व अंग्रेजी तथा कंप्यूटर का ज्ञान हो और जिनकी आयु 31 अगस्त 2026 को 40 वर्ष से अधिक न हो, इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। श्री विजयपुरम नगर पालिका क्षेत्र के भीतर रहने वाले जो समुचित योग्यता रखते हैं, इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। आवेदन प्रपत्र आकाशवाणी श्री विजयपुरम के ड्यूटी रूम से प्राप्त किए जा सकते हैं। आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि 5 अक्टूबर 2026 है। याद रहे, प्रसारण सहायक अर्थात ब्रॉडकास्ट असिस्टेंट की ये चयन प्रक्रिया किसी नियमित रोजगार के लिए नहीं है। इस संबंध में और अधिक जानकारी के लिए आकाशवाणी श्री विजयपुरम से संपर्क किया जा सकता है। गैरकानूनी कृत्यों की रोकथाम के लिए पुलिस विभाग सदैव तत्पर रहता है। ऐसी किसी भी गतिविधियों की रोकथाम के लिए पुलिस विभाग ने आम जनता से सहयोग की अपील की है। आम जनता द्वारा असामाजिक तत्वों द्वारा किए जा रहे गैरकानूनी कार्यों की सूचना इन टेलीफोन नंबरों पर दी जा सकती है। 112-03192-23210, 03192-23307 और 03192-23240 सूचना देने वाले का नाम गुप्त रखा जाएगा। जन सूचनाएं समाप्त हुई। ये आकाशवाणी का श्री विजयपुरम केंद्र है। श्रोताओं, आइए अब सुनते हैं फिल्मी गीतों का कार्यक्रम दिल ने फिर याद किया।

अभी आप कुमार सानू का गाया इक्का राजा रानी फिल्म का गीत सुन रहे थे। गीतकार थे समीर तथा संगीतकार थे श्याम सुंदर। अब सुनिए अलीशा चिनॉय और केके की आवाज़ों में आपकी खातिर फिल्म का ये गीत। समीर के लिखे गीत को संगीत दिया है हिमेश रेशमिया ने।

अलीशा चिनॉय और के गाए आपकी खातिर फिल्म के इस गीत के साथ ही फिल्मी गीतों का ये कार्यक्रम दिल ने फिर याद किया समाप्त हुआ। ये आकाशवाणी का श्री विजयपुरम केंद्र है। इस समय संध्या के 7:30 हुए हैं। अब युवा दोस्तों के लिए कार्यक्रम होगा युववाणी।

युववाणी कार्यक्रम सुनने वाले सभी युवा दोस्तों को हमारा प्यार भरा नमस्कार। दोस्तों, आज 29 सितंबर है और आज के दिन विश्व हृदय दिवस मनाया जाता है। दोस्तों, इस दिवस का उद्देश्य लोगों को हृदय और हृदय संबंधी बीमारियों के प्रति जागरूक करना है। विश्व हृदय महासंघ के अनुसार वर्ष 2026 का संदेश है, दिल की धड़कन न चूके। यह दिवस हमें याद दिलाता है कि स्वस्थ हृदय ही स्वस्थ जीवन का आधार है। संतुलित आहार, नियमित शारीरिक गतिविधि, पर्याप्त नींद और नशे से दूरी हृदय को स्वस्थ रखने में सहायक है। उच्च रक्तचाप और मधुमेह जैसी स्थितियों की समय पर जांच भी महत्वपूर्ण है। आइए इस अवसर पर अपने स्वास्थ्य के प्रति सजग रहने और दूसरों को भी जागरूक करने का संकल्प लें। दोस्तों, ये तो थी आज के दिन से जुड़ी कुछ खास बातें। तो दोस्तों, अब चलिए कार्यक्रम में आगे बढ़ते हैं। आज मंगलवार है और आज के दिन हम आपके लिए लेकर आते हैं कार्यक्रम देश की शान।

भारत के स्वतंत्रता संग्राम का इतिहास केवल आंदोलनों, सभाओं और राजनीतिक संघर्षों का इतिहास नहीं है, यह उन युवाओं के साहस, विचारों और त्याग की भी गाथा है जिन्होंने गुलामी को स्वीकार करने से इनकार कर दिया। 20वीं शताब्दी के तीसरे दशक में देश का युवा वर्ग अंग्रेजी शासन के विरुद्ध नई बेचैनी महसूस कर रहा था। जलियांवाला बाग जैसी घटनाओं ने इस पीढ़ी के मन पर गहरा प्रभाव डाला। इन्हीं परिस्थितियों में कुछ युवाओं ने स्वतंत्रता के संघर्ष को क्रांतिकारी विचारों और संगठित प्रयासों से आगे बढ़ाने का रास्ता चुना। उनके लिए आज़ादी केवल सत्ता परिवर्तन नहीं बल्कि अन्याय और शोषण से मुक्त समाज की कल्पना भी थी। इस पीढ़ी में एक ऐसा युवा सामने आया जिसने बहुत कम उम्र में अध्ययन, विचार और संघर्ष को अपने जीवन का उद्देश्य बना लिया। उसकी निर्भीकता, देशभक्ति और विचारशीलता ने उसे लाखों भारतीयों की प्रेरणा बना दी। वह अमर नाम था शहीद भगत सिंह।

दोस्तों, भगत सिंह का जन्म 28 सितंबर 1907 को पंजाब के बंगा गांव लायलपुर जिले में हुआ था। उनके पिता सरदार किशन सिंह और माता विद्यावती थी। उनका परिवार पहले से ही देशभक्ति की भावना से जुड़ा हुआ था। उनके चाचा अजीत सिंह ब्रिटिश शासन के विरोध के लिए प्रसिद्ध थे। बचपन से ही भगत सिंह के मन में देश की स्वतंत्रता के प्रति गहरी रुचि थी। जलियांवाला बाग हत्याकांड ने उनके विचारों को विशेष रूप से प्रभावित किया। उन्होंने लाहौर के नेशनल कॉलेज में शिक्षा प्राप्त की और इतिहास, राजनीति, साहित्य तथा क्रांतिकारी विचारधाराओं का गंभीर अध्ययन किया। किशोरावस्था में ही वे सार्वजनिक गतिविधियों और युवा संगठनों से जुड़ने लगे। उन्होंने नौजवान भारत सभा के माध्यम से युवाओं में राजनीतिक चेतना फैलाने का प्रयास किया। उनका व्यक्तित्व केवल साहस तक सीमित नहीं था, वे पढ़ने लिखने वाले गंभीर चिंतक भी थे। आगे चलकर यही अध्ययन उनके क्रांतिकारी विचारों की बौद्धिक नींव बना।

युवा भगत सिंह महात्मा गांधी के असहयोग आंदोलन से प्रभावित हुए और ब्रिटिश शासन के विरोध में सक्रिय हुए, लेकिन 1922 में चौरी चौरा की घटना के बाद असहयोग आंदोलन वापस लिए जाने से उनके मन में यह विचार मजबूत हुआ कि स्वतंत्रता के लिए संघर्ष के अन्य रास्तों पर भी विचार करना आवश्यक है। इसके बाद उन्होंने क्रांतिकारी साहित्य पढ़ा, राजनीतिक विचारों का अध्ययन किया और युवाओं को संगठित करने की दिशा में काम किया। इसी दौर में उनका संपर्क चंद्रशेखर आजाद और अन्य क्रांतिकारियों से हुआ। वे हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन से जुड़े और आगे चलकर इसके बदले हुए स्वरूप हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। साल 1925 का काकोरी ट्रेन एक्शन हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन के इतिहास की प्रमुख घटना थी और उसके बाद हुए दमन ने संगठन की दिशा को प्रभावित किया। भगत सिंह और उनके साथियों ने क्रांतिकारी आंदोलन को अधिक संगठित तथा वैचारिक स्वरूप देने का प्रयास किया।

0: जानतन साथियों, अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों, अब तुम्हारे हवाले वतन।
1: दोस्तों, भगत सिंह के क्रांतिकारी जीवन में 1928 का लाहौर प्रसंग और 1929 की केंद्रीय विधानसभा कार्रवाई विशेष रूप से महत्वपूर्ण रहे। लाला लाजपत राय की मृत्यु के बाद भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव और चंद्रशेखर आजाद से जुड़े क्रांतिकारी समूह ने पुलिस अधिकारी स्कॉट को निशाना बनाने की योजना बनाई, लेकिन पहचान की भूल में जेपी सैंडर्स मारे गए। इसके बाद भगत सिंह भूमिगत हो गए। 8 अप्रैल 1929 को भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त ने केंद्रीय विधानसभा में बम फेंके और जानबूझकर गिरफ्तार हो गए, ताकि अदालत को अपने विचार जनता तक पहुंचाने के मंच के रूप में इस्तेमाल कर सकें। इसके बाद मुकदमे और जेल में उनके संघर्ष ने उन्हें पूरे देश में प्रसिद्ध कर दिया। लाहौर षड्यंत्र मामले में भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को मृत्युदंड दिया गया और 23 मार्च 1931 को उन्हें फांसी दे दी गई। उनका जीवन भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में साहस, विचार और त्याग की स्थायी विरासत छोड़ गया। देश

क्या आपके जिले की कोई ऐसी खास पहचान है जिस पर पूरे देश को गर्व हो? अब उसे राष्ट्रीय मंच पर प्रस्तुत करने का सुनहरा अवसर है। सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय द्वारा जेम्स ऑफ इंडिया राष्ट्रीय पहल शुरू की गई है। इसका उद्देश्य देश के हर जिले की संस्कृति, विरासत, पर्यटन, लोक कला, हस्तशिल्प, स्थानीय व्यंजन, प्राकृतिक सौंदर्य और प्रेरणादायक कहानियों को डिजिटल माध्यम से पूरे देश तक पहुंचाना है।

0: यदि आप एक उभरते हुए डिजिटल क्रिएटर है तो 30 सितंबर 2026 तक वेव्स ओटीटी ऐप के माय वेव्स सेक्शन में जाकर अपना क्रिएटर प्रोफाइल बनाइए और जेम्स ऑफ इंडिया के अंतर्गत अपने जिले पर आधारित मौलिक वीडियो, रील, डॉक्यूमेंट्री, ब्लॉग या पॉडकास्ट अपलोड कीजिए। चयनित प्रतिभागियों को जिला, राज्य और राष्ट्रीय स्तर पर सम्मानित किया जाएगा। जिला स्तर पर प्रत्येक पुरस्कार के लिए 50,000 रूपए, राज्य स्तर पर 2,00,000 रूपए तथा राष्ट्रीय स्तर पर 5,00,000 रूपए तक की पुरस्कार राशि प्रदान की जाएगी। तो देर किस बात की, अपने जिले की अनमोल पहचान को देश के सामने लाने का यह अवसर हाथ से न जाने दे। जेम्स ऑफ इंडिया से जुड़िए और अपने जिले को राष्ट्रीय पहचान दिलाइए।
1: तो दोस्तों, इसी के साथ ही हमारा आज का यह देश की शान कार्यक्रम यहीं पर समाप्त होता है।

वादा करते हैं जल्द होगी मुलाकात, तब तक के लिए दीजिए अपने दोस्त दीपक कुमार सिंह को अनुमति। नमस्कार, शुभ रात्रि।

ये आकाशवाणी का श्री विजयपुरम केंद्र है। रात्रि के 8 बजे हैं। अब आप सुनेंगे फिल्मी गीतों का कार्यक्रम चित्रपट संगीत।

कार्यक्रम का पहला गीत अभी आपने सुना श्री 420 फिल्म से। आवाज़ें थीं मन्ना डे और लता मंगेशकर के। शैलेंद्र के लिखे गीत को संगीत दिया था शंकर जयकिशन ने। अब सुनिए आनंद बख्शी के लिखे ये गीत रचना, जिसकी तर्ज बनाई है लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने। गायक कलाकार हैं मुकेश और लता मंगेशकर तथा फिल्म का नाम है फ़र्ज़।

0: काल के बाद।
1: India's greatest treasures are not just its monuments, they are its people, culture and untold stories. The Ministry of Information and Broadcasting through Prasar Bharati proudly presents Gems of India, a national initiative inviting creators to showcase the unique identity of their districts. Whether it's culture, heritage, tourism, festivals, cuisine, handicrafts, local heroes or hidden destinations, your story matters. Create a 1 to 3 minute video, reel, documentary, podcast or vlog and upload it on the MyWaves platform. Entries will be judged on authenticity, creativity, storytelling, technical quality and community impact. Exciting prizes await. 50,000 rupees at the district level, 2 lakh rupees at the UT level and 5 lakh rupees at the national level. Celebrate your roots. Inspire the nation. Gems of India, because every district has a story worth telling.
0: एक आवश्यक सूचना, आकाशवाणी श्री विजयपुरम में ब्रॉडकास्ट असिस्टेंट के पैनल में शामिल होने हेतु योग्य उम्मीदवारों से आवेदन आमंत्रित किए गए हैं। स्नातक अर्थात ग्रेजुएट उम्मीदवार जिन्हें हिंदी व अंग्रेजी तथा कंप्यूटर का ज्ञान हो और जिनकी आयु 31 अगस्त 2026 को 40 वर्ष से अधिक न हो, इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। श्री विजयपुरम नगर पालिका क्षेत्र के भीतर रहने वाले जो समुचित योग्यता रखते हैं, इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। आवेदन प्रपत्र आकाशवाणी श्री विजयपुरम के ड्यूटी रूम से प्राप्त कर सकते हैं। आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि 5 अक्टूबर 2026 है। याद रहे, प्रसारण सहायक अर्थात ब्रॉडकास्ट असिस्टेंट की ये चयन प्रक्रिया किसी नियमित रोजगार के लिए नहीं है। इस संबंध में और अधिक जानकारी के लिए आकाशवाणी श्री विजयपुरम से संपर्क किया जा सकता है। सूचना समाप्त हुई। श्रोताओं, चित्रपट संगीत कार्यक्रम में आपका फिर स्वागत है।

अभी आप मन्ना डे और लता मंगेशकर का गाया चोरी चोरी फिल्म का गीत सुन रहे थे। गीतकार थे शैलेंद्र तथा संगीतकार थे शंकर जय किशन। आइए अब सुनते हैं नौशाद के संगीत निर्देशन में तैयार मजरू सुल्तानपुरी का लिखा साथी फिल्म का ये गीत। और इस गीत को स्वर दिया है मुकेश व सुमन कल्याणपुर ने।

आप पेश है बरसात फिल्म में लता मंगेशकर और साथियों का गाया ये गीत। शैलेंद्र के लिखे बोलों की धुन बनाई है शंकर जयकिशन ने।

कार्यक्रम के आखिर में सुनिए मुकेश का गाया आवारा फिल्म का ये गीत। शब्दकार हैं शैलेंद्र तथा संगीतकार हैं शंकर जयकिशन।

मुकेश के गाए आवारा फिल्म के इस गीत के साथ ही चित्रपट संगीत कार्यक्रम समाप्त हुआ। ये आकाशवाणी का श्री विजयपुरम केंद्र है। रात्रि के 8:30 हुई हैं। लीजिए अब सुनिए रोजगार समाचार, तत्पश्चात गौरव गान। पहले रोजगार समाचार। भारत सरकार के राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण नई दिल्ली द्वारा प्रतिनियुक्ति डेपुटेशन के आधार पर योग्य एवं इच्छुक अधिकारियों से आवेदन आमंत्रित किए गए हैं। भर्ती के अंतर्गत ग्रुप ए के 2 पदों पर नियुक्ति की जाएगी, जिनमें सहायक सलाहकार सूचना प्रौद्योगिकी और सहायक सलाहकार संचार के एक एक पद रिक्त हैं। सहायक सलाहकार सूचना प्रौद्योगिकी तथा सहायक सलाहकार संचार पदों के लिए 7वें केंद्रीय वेतन आयोग के वेतन स्तर 11 के अनुसार होगा। नियुक्ति राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण NDMA नई दिल्ली में की जाएगी। आवेदन के लिए अभ्यर्थी केंद्र सरकार, राज्य सरकार, केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल, रक्षा बल अथवा अन्य सरकारी विभाग के समकक्ष पद पर नियमित रूप से कार्यरत हो अथवा वेतन स्तर 9 में 5 वर्ष की नियमित सेवा पूरी कर चुका हो। सहायक सलाहकार सूचना प्रौद्योगिकी पद के लिए किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या संस्थान से कंप्यूटर साइंस, इलेक्ट्रॉनिक्स, सूचना प्रौद्योगिकी तथा दूरसंचार में स्नातक डिग्री या समकक्ष योग्यता तथा सूचना प्रौद्योगिकी नेटवर्क के संचालन में 5 वर्ष का अनुभव आवश्यक है। वही सहायक सलाहकार संचार पद के लिए उपरोक्त विषयों में स्नातक डिग्री या समकक्ष योग्यता के साथ रक्षा बलों, केंद्रीय पुलिस संगठनों, पुलिस, पुलिस वायरलेस एवं संचार अथवा दूरसंचार परियोजनाओं के संचालन में 5 वर्ष का अनुभव अपेक्षित है। दोनों पदों के लिए अधिकतम आयु सीमा 56 वर्ष निर्धारित की गई है। पात्र अभ्यर्थी निर्धारित प्रारूप में अपने आवेदन, आवश्यक प्रमाण पत्रों सहित रोजगार समाचार में विज्ञापन प्रकाशित होने की तिथि से 60 दिनों के भीतर उचित माध्यम से अपर

जीव प्रशासन, राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण, A1 सफदरजंग एनक्लेव नई दिल्ली 1100 दोनों के पते पर भेज सकते हैं। जिन अभ्यर्थियों ने इसी विज्ञापन के संदर्भ में पूर्व आवेदन किया है, उन्हें पुनः आवेदन करने की आवश्यकता नहीं। प्रत्येक की पद के लिए अलग अलग आवेदन भेजना अनिवार्य है। आकाशवाणी श्री विजयपुरम में ब्रॉडकास्ट असिस्टेंट के पैनल में शामिल होने हेतु योग्य उम्मीदवारों से आवेदन आमंत्रित किए गए हैं। स्नातक अर्थात ग्रेजुएट उम्मीदवार जिन्हें हिंदी व अंग्रेजी तथा कंप्यूटर का ज्ञान हो और जिनकी आयु 31 अगस्त 2026 को 40 वर्ष से अधिक न हो, इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। श्री विजयपुरम नगर पालिका क्षेत्र के भीतर रहने वाले जो समुचित योग्यता रखते हैं, इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। आवेदन प्रपत्र आकाशवाणी श्री विजयपुरम के ड्यूटी रूम से प्राप्त किए जा सकते हैं। आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि 5 अक्टूबर 2026 है। याद रहे, प्रसारण सहायक अर्थात ब्रॉडकास्ट असिस्टेंट की ये चयन प्रक्रिया किसी नियमित रोजगार के लिए नहीं है। इस संबंध में और अधिक जानकारी के लिए आकाशवाणी श्री विजयपुरम से संपर्क किया जा सकता है। और इसी के साथ ही रोजगार समाचार समाप्त हुए। श्रोताओं, आइए अब सुनते हैं गौरव गान।

अभी आप गौरव गान सुन रहे थे। ये आकाशवाणी का श्री विजयपुरम केंद्र है। रात्रि के 8:45 होने को हैं। अब अगला कार्यक्रम हम अपने दिल्ली केंद्र से रिले करेंगे। कृपया प्रतीक्षा कीजिए।

आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं विशाल शर्मा। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने बदलती प्रौद्योगिकी और अनिश्चितता के बीच रक्षा तैयारियों में भूसामरिक सोच और आकस्मिक योजना पर बल दिया। कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा, सरकार किसानों को उपज का उचित मूल्य दिलाने के लिए बहुआयामी रणनीति पर काम कर रही है। देश भर में 50 स्वच्छ आदर्श शहरों को विकसित करने के लिए प्रगति 50 के अंतर्गत नई पहलों की शुरुआत की गई। भारत ने संयुक्त राष्ट्र महासभा में जम्मू कश्मीर के संदर्भ में तुर्की के राष्ट्रपति तैयब अर्दवान की अनुचित टिप्पणियों को खारिज किया। आंतरिक कर्नाटक, केरलम और उत्तर पूर्वी राज्यों में कल मूसलाधार वर्षा का अनुमान। और एशियाई खेल 2026 में भारत ने महिला 4x400 मीटर रिले स्पर्धा में

0: पदक जीता। निशानेबाज नीरू ढांडा ने महिला ट्रैप व्यक्तिगत स्पर्धा में स्वर्ण पदक अपने नाम किया। अब समाचार विस्तार से। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि बदलती प्रौद्योगिकी, अनिश्चित परिस्थितियों और भौगोलिक चुनौतियों के बीच भारत को अपनी तैयारियों में भू सामरिक सोच और आकस्मिक परिस्थितियों से निपटने की योजना को महत्वपूर्ण स्थान देना होगा। नई दिल्ली में आज भारतीय नौसेना कमांडर सम्मेलन में श्री सिंह ने कहा कि वर्ष 2047 तक विकसित भारत का संकल्प साकार करने में भारतीय नौसेना रणनीतिक आधार के रूप में काम कर रही है। उन्होंने कहा कि भारत का लक्ष्य स्पष्ट है कि संकट आने से पहले ही हमारी तैयारियां इतनी मजबूत होनी चाहिए कि देश उससे निपटने के लिए तैयार रहे। एक रिपोर्ट।
1: रक्षा मंत्री ने कहा है कि ऑपरेशन ऊर्जा सुरक्षा ने देश की ऊर्जा आपूर्ति लाइनों और राष्ट्रीय हितों की रक्षा में भारतीय नौसेना की पेशेवर क्षमता और परिचालन तत्परता को एक बार फिर साबित किया है। उन्होंने कहा कि भारत हिंद महासागर क्षेत्र में फर्स्ट रिस्पार और भरोसेमंद सहयोगी के रूप में अपनी भूमिका लगातार मजबूत कर रहा है। रक्षा मंत्री ने कहा कि दक्षिण चीन सागर, भूमध्य सागर और अटलांटिक महासागर में भारतीय युद्धपोतों की तैनाती देश की ब्लू वाटर नौसेना क्षमता को दर्शाती है। उन्होंने कहा कि नौसेना वर्ष 2047 तक विकसित भारत के लक्ष्य को हासिल करने में एक महत्वपूर्ण रणनीतिक आधार के रूप में कार्य कर रही है। नीतिका गुप्ता, आकाशवाणी समाचार, नई दिल्ली।
0: कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि सरकार किसानों को उनकी उपज का उचित और लाभकारी मूल्य दिलाने के लिए बहुआयामी रणनीति पर काम कर रही है। इसमें फसल प्रबंधन, वैज्ञानिक भंडारण और बेहतर विपणन व्यवस्था को मजबूत करना शामिल है। श्री चौहान ने आज नई दिल्ली में राष्ट्रीय कृषि सम्मेलन रबी अभियान को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि तुअर, उड़द और मसूर का न्यूनतम समर्थन मूल्य पर 100% सरकारी खरीद सुनिश्चित की जाएगी।
2: किसान को ठीक दाम मिल जाए, हम सबकी जिम्मेदारी है। और इसमें दोनों व्यवस्था, एक MSP और एक विदाउट MSP, हम बाजार से कैसे जोड़ दे किसानों को। ये तय किया, तुअर, मसूर, उड़द 100% खरीदेगी सरकार। खरीदने की तैयारी ठीक से करके रखें जिससे 48 घंटे में पेमेंट हो जाए।
0: श्री चौहान ने कहा कि भारत अंतर्राष्ट्रीय मुक्त व्यापार समझौतों से उभर रहे नए बाजार अवसरों का लाभ उठाएगा।
2: FTA का जो हमारे कृषि समझौते हुए दुनिया के देश, वो भारत के किसानों के लिए बहुत उपयोगी है। कई कृषि उत्पाद ऐसे हैं जो 0% इम्पोर्ट ड्यूटी पर दुनिया के बाजारों में जा सकते हैं, हमारे फल, हमारी सब्जी, हमारे अनाज। अगर बाजार से किसान को ठीक कनेक्ट कर दिया तो उसको दाम ठीक मिलने की गारंटी है।
0: श्री चौहान ने प्रधानमंत्री राष्ट्रीय कृषि विकास योजना के अंतर्गत 10 से ज्यादा राज्यों के कृषि मंत्रियों को 1200 करोड़ रुपए से अधिक की वित्तीय मंजूरी के पत्र भी सौंपे। आवासन और शहरी कार्य मंत्री मनोहर लाल ने आज प्रगति 50 के अंतर्गत नई पहलें शुरू की। इसका उद्देश्य आर्थिक सांस्कृतिक विरासत, तीर्थयात्रा, पर्यटन और प्रशासनिक महत्व वाले 50 शहरों के लिए आदर्श ढांचा तैयार करना है। श्री मनोहर लाल ने कहा कि 24 राज्यों के ये 50 शहर देश के बाकी हिस्सों के लिए स्वच्छ और आदर्श शहरों का उदाहरण बनेंगे। वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग ने राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के लिए संशोधित ग्रेडेड रेस्पॉन्स एक्शन प्लान ग्रैप कार्यक्रम को मंजूरी दे दी है। ये निर्णय आयोग के अध्यक्ष राजेश वर्मा की अध्यक्षता में हुई बैठक में लिया गया। पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने बताया कि BS3 पेट्रोल और BS4 डीजल या उससे नीचे के मानक वाले हल्के मोटर वाहनों पर प्रतिबंध अब सोनीपत में भी लागू होगा। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।
3: ध्यान दें, आपकी मेहनत को राष्ट्रीय पहचान, पशुपालन क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान देने और नवीन प्रौद्योगिकी प्रथाओं को अपनाने वालों को भारत सरकार का पशुपालन एवं डेयरी विभाग प्रदान करता है राष्ट्रीय सम्मान। आज ही नामांकन करें राष्ट्रीय गोपाल रत्न पुरस्कार 2026 के लिए। इस पुरस्कार के लिए 3 श्रेणियों में होता है चयन, सर्वश्रेष्ठ डेयरी किसान, सर्वश्रेष्ठ डेयरी सहकारी समिति और सर्वश्रेष्ठ AI तकनीशियन। उत्तर पूर्वी क्षेत्र और हिमालयी राज्यों के लिए विशेष पुरस्कार का प्रावधान। नामांकन की तिथि 10 अगस्त से 30 सितंबर 2026 तक, तो देर किस बात की। आज ही आवेदन करें www.awards.gov.in पर या संपर्क करें नजदीकी CSC केंद्र पर। राष्ट्रीय गोपाल रत्न पुरस्कार 2026, पशुपालन एवं डेयरी विभाग, भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी।
0: समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। भारत ने संयुक्त राष्ट्र महासभा में जम्मू कश्मीर के संदर्भ में तुर्की के राष्ट्रपति रिसेप तैयब एर्दोगान की टिप्पणियों को अनुचित बताते हुए

0: खारिज कर दिया है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने आज नई दिल्ली में कहा कि जम्मू कश्मीर भारत की क्षेत्रीय अखंडता और संप्रभुता से जुड़ा विषय है।
1: इंडिया रिजेक्ट्स द अनवॉरंटेड रेफरेंसेस।
2: भारत संयुक्त राष्ट्र महासभा में तुर्की के राष्ट्रपति द्वारा केंद्रीय शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर के बारे में अनुचित संदर्भों को खारिज करता है। ये भारत की क्षेत्रीय अखंडता और संप्रभुता से जुड़ा मामला है और इस विषय पर किसी भी भारी पक्ष की कोई भूमिका नहीं है।
1: नो एक्सटर्नल पार्टी हैज एनी लोकस स्टैंडाई ऑन दिस इशू।
0: विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर की सीमा पार आतंकवाद संबंधी टिप्पणी पर श्री जायसवाल ने कहा कि विदेश मंत्री ने इसे गंभीर चिंता का विषय बताया है। अमेरिका के 100% टैरिफ लगाए जाने के विषय पर श्री जायसवाल ने कहा कि विदेश सचिव विक्रम मिश्री ने हाल ही में नई दिल्ली में अमेरिकी कांग्रेस के प्रतिनिधिमंडल के साथ बैठक की थी।
3: अमेरिकी कांग्रेस के जो यहाँ पर डेलीगेशन आई हुई है उनकी मुलाकात फॉरेन सेक्रेटरी से हुई और उस मुलाकात में अन्य विषयों के अलावे जो हमारी चिंताएं हैं इसको लेके कि इसका किस प्रकार का प्रभाव पड़ सकता है हमारे द्विपक्षीय रिश्तों पर और उसके अलावे जो अंतर्राष्ट्रीय बाजार में जो ऊर्जा की स्थिति है उस पर क्या प्रभाव पड़ सकता है, इन चिंताओं के बारे में उनको दोहराया उनसे।
0: फारस की खाड़ी में भारतीय जहाजों के बारे में श्री जायसवाल ने बताया कि वहां भारतीय ध्वज वाले 6 वाणिज्यिक जहाज मौजूद हैं। इन पर करीब 163 भारतीय नाविक सवार हैं। जहाजरानी मंत्रालय इन जहाजों की आवाजाही पर लगातार नजर रख रहा है। भारत बांग्लादेश गंगा जलसंधि से जुड़े सवाल पर श्री जायसवाल ने कहा कि दोनों देशों के बीच संयुक्त नदी आयोग है और नदियों से जुड़े सभी मुद्दों पर इसी आयोग के माध्यम से चर्चा की जाएगी। विदेशी अंशदान विनियमन संशोधन विधेयक 2026 की समीक्षा के लिए गठित संयुक्त संसदीय समिति की दूसरी बैठक आज नई दिल्ली में हुई। समिति को विधेयक के प्रावधानों की समीक्षा करेगी और शीतकालीन सत्र 2026 के प्रथम सप्ताह में संसद को अपनी रिपोर्ट सौंपनी होगी। लोकसभा सांसद संजय जायसवाल की अध्यक्षता वाली समिति में लोकसभा के 21 और राज्यसभा के 10 सदस्य हैं। ये विधेयक विदेशी अंशदान विनियमन अधिनियम 2010 में संशोधन से संबंधित है। इसका उद्देश्य विदेशी अंशदान के उपयोग में अधिक पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित करना है। भारत के उच्चायुक्त दिनेश त्रिवेदी ने आज ढाका में बांग्लादेश के विदेश राज्य मंत्री हुमायूं कबीर से मुलाकात की। उच्चायुक्त ने राज्य मंत्री के रूप में कार्यभार संभालने पर श्री कबीर को बधाई दी। इस दौरान दोनों पक्षों ने भारत और बांग्लादेश के बीच निरंतर सहयोग पर चर्चा की। इसमें दोनों देशों के लोगों के लिए पारस्परिक रूप से लाभकारी परिणामों पर विशेष रूप से बल दिया गया। रूस में भारत के राजदूत विनय कुमार ने आज मॉस्को में रूस के उप विदेश मंत्री मिखाइल गलुजिन से मुलाकात की। उन्होंने द्विपक्षीय और अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर बातचीत की और यूक्रेन के हालात पर भी विस्तार से चर्चा की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जनसेवा के क्षेत्र में 25 वर्ष पूरे कर रहे हैं। ये जनसेवा से देश सेवा के मंत्र और लगातार जारी रहने वाले समर्पण से संभव हुआ है। सेवा और सुशासन के इसी दृष्टिकोण से प्रेरित होकर सरकार देश को 2047 तक विकसित राष्ट्र बनाने का लक्ष्य हासिल करने के लिए लगातार काम कर रही है। समावेशी विकास और सामाजिक सशक्तिकरण के माध्यम से ये समर्पण लोगों की जिंदगी बदल रहा है। आज अपनी विशेष श्रृंखला में हम बात कर रहे हैं कि प्रत्यक्ष लाभ अंतरण के माध्यम से इस संकल्प को कैसे वास्तविकता में बदला गया।
4: 2014 में शुरू की गई प्रत्यक्ष लाभ अंतरण यानी डीबीटी के माध्यम से सरकार की ओर से दी जाने वाली धनराशि पारदर्शिता के साथ सीधे लाभार्थियों के बैंक खातों में पहुंचाई जा रही है। 1985 में तत्कालीन प्रधानमंत्री ने कहा था कि गरीबों के लिए भेजे गए हर एक रुपये में से केवल 15 पैसे ही लाभार्थियों तक पहुंचते हैं। 2014 के बाद केंद्र सरकार ने इस व्यवस्था को बदलते हुए यह सुनिश्चित किया कि डीबीटी के माध्यम से सरकारी योजनाओं का पूरा लाभ सीधे लाभार्थी के बैंक खाते में पहुंचे। एक कार्यक्रम को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा था कि आज सैकड़ों सरकारी योजनाओं का पैसा डीबीटी के माध्यम से सीधे लोगों के बैंक खातों में पहुंच रहा है।
5: हम भारत में डिजिटल टेक्नोलॉजी से ट्रांसपेरेंसी लेकर आए हैं। आज सरकार की सैकड़ों स्कीम्स के तहत डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर किया जाता है। इसमें सिस्टम से लीकेज बंद हुई है।
4: आकाशवाणी समाचार से बात करते हुए छत्तीसगढ़ के किसान दिनेश कुमार राठौर ने बताया कि डीबीटी के माध्यम से प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत हर साल 6,000 रुपये मिल रहे हैं।
6: अब हमारे खाते में सीधे सरकार द्वारा डायरेक्ट पैसे आ जाता है। साथ ही जब भी हम खाद या बीज लेने जाते हैं तो हमें डीबीटी के माध्यम से काफी छूट मिलता है। वहीं किसान सम्मान निधि के द्वारा अब सालाना 6,000 रुपये मिलता है।
4: इस साल अगस्त तक डीबीटी के माध्यम से 320 सरकारी योजनाओं के तहत 53 लाख करोड़ रुपए से अधिक की धन

0: राशि लाभार्थियों को सीधे हस्तांतरित की जा चुकी है। डीबीटी ने बिचौलियों की भूमिका को खत्म कर सरकारी व्यवस्था में पारदर्शिता और जवाबदेही को मजबूत किया है। भानु के साथ दीपेंद्र कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।
2: हर खबर से जुड़े रहिए, जहां भी हो, expert@AIRnews हिंदी को फॉलो करें।
1: ये आकाशवाणी है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने आज दोहा में एशिया अवसंरचना निवेश बैंक AIIB की वार्षिक बैठक के दौरान कतर के वित्त मंत्री अली बिन अहमद अल कुवारी से मुलाकात की। दोनों नेताओं ने कतर में भारत की UPI भुगतान प्रणाली के विस्तार और दोनों देशों के बीच वित्तीय सहयोग को मजबूत करने पर चर्चा की। इस दौरान कतर की भारत में $10 अरब के निवेश की प्रतिबद्धता के कार्यान्वयन, राष्ट्रीय निवेश और अवसंरचना कोष के जुड़ाव और द्विपक्षीय निवेश संधि को अंतिम रूप देने पर विशेष बल दिया गया। मौसम विभाग ने कल कर्नाटक के भीतरी इलाकों केरलम, माहे, कराईकाल और पूर्वोत्तर राज्यों में मूसलाधार बारिश का अनुमान व्यक्त किया है। अगले 3 से 4 दिनों के दौरान रायलसीमा, तमिलनाडु, पुदुचेरी और कराईकाल में तेज हवाओं के साथ आंधी तूफान आने की संभावना है। और अब बात एशियाई खेलों की। जापान एशियाई खेलों में आज भारत ने 2 स्वर्ण सहित 8 पदकों के साथ शीर्ष 10 में जगह बना ली। महिला 4x400 मीटर रिले टीम स्पर्धा में भारत ने स्वर्ण पदक जीता। इसी स्पर्धा में पुरुष टीम ने कांस्य पदक प्राप्त किया। वहीं 4x100 मीटर मिक्स्ड रिले स्पर्धा में भारत ने कांस्य पदक हासिल किया। पूजा ने महिलाओं की हाई जंप स्पर्धा में और गुलवीर सिंह ने पुरुषों की 5000 मीटर दौड़ स्पर्धा में कांस्य पदक जीता। नीरू ढांडा ने महिला ट्रैप व्यक्तिगत निशानेबाजी स्पर्धा में पहला स्वर्ण पदक जीता। महिला ट्रैप टीम स्पर्धा में भी नीरू ढांडा, आशिमा अहलावत और मनीषा कीर ने रजत पदक हासिल किए। मुक्केबाजी में नरेंद्र बरवाल ने 90 किलोग्राम से अधिक भार वर्ग में कांस्य पदक अपने नाम किया। परवीन हुड्डा ने महिलाओं के 65 किलोग्राम और अंकुश पंघाल ने पुरुषों के 80 किलोग्राम भार वर्ग के फाइनल में प्रवेश कर लिया है। भारत 6 स्वर्ण 21 रजत 26 कांस्य सहित 53 पदकों के साथ पदक तालिका में 10वें स्थान पर है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और खेल मंत्री मनसुख मांडविया ने पदक विजेताओं को बधाई दी है। और अब आर्थिक जगत की खबरों के साथ हैं अमित गोयल।
3: मुंबई शेयर बाजार का सेंसेक्स 0.3% के नुकसान से 243 अंक गिरकर 72,529 के स्तर पर बंद हुआ। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी भी 0.3% की गिरावट से 64 अंक गिरकर 22,716 के स्तर पर बंद हुआ। अंतर बैंकिंग विदेशी मुद्रा बाजार में डॉलर के मुकाबले रुपया 95.99 रुपए प्रति डॉलर के पूर्व स्तर पर बरकरार रहा।
1: और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने बदलती प्रौद्योगिकी और अनिश्चितता के बीच रक्षा तैयारियों में भू सामरिक सोच और आकस्मिक योजना पर बल दिया। कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा, सरकार किसानों को उपज का उचित मूल्य दिलाने के लिए बहुआयामी रणनीति पर काम कर रही है। देश भर में 50 स्वच्छ आदर्श शहरों को विकसित करने के लिए प्रगति 50 के अंतर्गत नई पहलों की शुरुआत की गई। भारत ने संयुक्त राष्ट्र महासभा में जम्मू कश्मीर के संदर्भ में तुर्की के राष्ट्रपति तैयब अर्दोगान की अनुचित टिप्पणियों को खारिज किया। आंतरिक कर्नाटक, केरलम और उत्तर पूर्वी राज्यों में कल मूसलाधार वर्षा का अनुमान। और एशियाई खेल 2026 में भारत ने महिला 4x400 मीटर रिले स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीता। निशानेबाज नीरू ढांडा ने महिला ट्रैप व्यक्तिगत स्पर्धा में स्वर्ण पदक अपने नाम किया। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
4: गुड इवनिंग, दिस इज आकाशवाणी। आई एम अनुजा कुमार विद द न्यूज एट 9। The headlines. Defense Minister Rajnath Singh calls for geostrategic thinking and contingency planning for defense preparedness amid changing technology and uncertainty. Agriculture Minister Shivraj Singh Chauhan says government is working on multi-dimensional strategy to ensure fair prices for farmers' produce. New set of initiatives launched under Pragati 50 to develop 50 clean role model cities across the country. India rejects unwarranted references made by Turkish President Tayyip Erdogan on Jammu and Kashmir during his UNGA address. Heavy rainfall conditions likely over interior Karnataka, Keralam and northeastern states tomorrow. And in Asian Games 2026, India clinches gold in women's 4.

0: Manten.
1: ये आकाशवाणी है, प्रस्तुत है कार्यक्रम मंथन। इसके अंतर्गत सुनिए भारत में पशुपालन बीमा के डिजिटलीकरण की पहल पर चर्चा। इसमें भाग ले रहे हैं वरिष्ठ पत्रकार एसपी सिंह, कार्यक्रम का संचालन कर रहे हैं अमित गोयल।
2: नमस्कार, मंथन कार्यक्रम में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे ग्रामीण पशुधन क्षेत्र में पशु बीमा पोर्टल के बारे में। हमारे साथ बातचीत करने के लिए कृषि विशेषज्ञ एसपी सिंह मौजूद हैं। एसपी सिंह जी, कार्यक्रम में आपका स्वागत है।
3: जी धन्यवाद।
2: एसपी सिंह जी, किस तरह से देखते हैं जो कल ये पशुधन बीमा पोर्टल की शुरुआत की गई है, तो ग्रामीण पशुधन क्षेत्र में इसकी कितनी महत्वपूर्ण भूमिका आप समझते हैं?
3: देखिए, इस देश में पशुओं की संख्या और किसानों की समस्याएं, एक तरह से समझिए कि जितनी ज्यादा संख्या है और पशुओं की देखभाल और जो उनकी सुरक्षा का प्रबंधन और किसानों की समस्याओं का निदान, एक ही मंच पर सभी सेवाएं उपलब्ध कराने की यह एक व्यवस्था है। और ये डिजिटल व्यवस्था होने से पशुओं का पंजीकरण ऑनलाइन होने लगा है, बीमा कवरेज आसानी से मिल जाएगा, सभी प्रक्रियाएं एक ही जगह पर पूरी हो जाएंगी, पारदर्शिता और प्रक्रिया तेज हो जाएगी, बिचौलियों की भूमिका कम हो जाएगी, बिना दावों के क्लेम और निपटान तेजी से होगा, धोखाधड़ी की गुंजाइश कम होगी, रियल टाइम निगरानी की जा सकती है, किसी भी तरह की धोखाधड़ी होती है तो योजनाओं की वास्तविक समय पर सरकार की ओर से, प्रशासन की ओर से और किसान की ओर से मॉनिटरिंग बेहतर तरीके से की जा सकती है, डेटा प्रबंधन की कार्यप्रणाली में सुधार करने में सहूलियत होगी, सरकार और विभागों को सही स्थिति से समझ में आएगी, जो पूरा

0: पोर्टल बनाया गया है, कह सकते हैं कि पशुपालकों के अनुकूल उनकी सुविधा को उनकी सहूलियत को देखते हुए इस तरह का बनाया गया है। इस देश के एक छोर से दूसरे छोर के जो बहुभाषी लोग हैं, किसी भी भाषा में वो उस पर अपनी जानकारी लेना चाहें या देना चाहें, तो हिंदी अंग्रेजी समेत करीबी अन्य 13 क्षेत्रीय भाषाएं भी उपलब्ध हैं उस पोर्टल पर। आप जिस भी भाषा में जाकर अपनी बात कहना चाहें या अपनी जानकारी या अपना आंकड़ा उस पर डालना चाहें, ये सब आपको उपलब्ध हो जाएगा।
1: जी
0: सबसे बड़ा जो फायदा होने वाला है किसानों को, वो बीमारी या दुर्घटना से जो होने वाले नुकसान होते थे किसानों को भारी स्तर पे, पशुपालकों को इससे निजात मिलेगी, मुश्किलें नहीं होगी, और उनकी जो आर्थिक झटका लगता था, मुश्किल आती थी, वो एक तरह कह सकते हैं एक रक्षा कवच मिल जाएगा, जोखिम से बचाव हो जाएगा। दूसरी चीज की पशुपालकों की आजीविका का सबसे बड़ा साधन होते थे पशु, उनसे वो सुरक्षा जब उन्हें मिलेगी तो उनकी भी सुरक्षा और उनकी आर्थिक स्थिति में सुधार होगा। जी
1: जो पशुपालकों को इस तरीके से जो सुरक्षा कवच की आपने बात की है, ये
0: जी
1: उनकी आर्थिक स्थिति को कितना सहारा दे पाएगा या सहयोग कर पाएगा?
0: ऐसी व्यवस्था है कि किसान इस देश में, आप समझिए कि 70% जो पशुपालक हैं उनके पास देश का 80% जो पशु हैं उनके पास हैं। इसका मतलब सीधा सीधा है, जो छोटे किसान हैं, सीमांत किसान हैं, मझोले किसान हैं या भूमिहीन किसान हैं, जिनके पास कुछ भी और साधन नहीं है गांव में, वो रोजी रोटी और लोगों के यहाँ मजदूरी, खेतिहर मजदूर जिन्हें आप कह सकते हैं, ऐसे लोगों के लिए यह आजीविका का सबसे बड़ा साधन है। और अगर मान लीजिए आजीविका के इस साधन पर कोई संकट आता है या उस पर कोई मुश्किलात पेश आती है, उनका पशु बीमार होता है, उनमें दूध देने की क्षमता घट जाती है, या पशु दुर्घटनावश किसी बीमारी से या कैसे मृत्यु हो जाती है, ऐसे में तो उसके बेचारे की सारी रोजी रोटी ही खत्म हो जाएगी। सरकार ने जो ये रक्षा कवच उन्हें दिया, मैं इसलिए उसे रक्षा कवच कहूंगा, उससे उनको बहुत फायदे होंगे, उनकी मुश्किलात कम होंगी।
1: इस बीमा से, जिस तरह से आपने बताया कि बीमारी, क्या इसमें प्राकृतिक आपदा को भी शामिल किया गया है या जो महामारी से संबंधित दिक्कतें आती थी उसको भी इसमें शामिल किया गया है?
0: देखिए ऐसा है कि पशुओं को किसी भी तरह से हानि पहुंचती है, ये सबका सारा कुछ एक साथ जोड़ दिया गया, उसका दायरा बढ़ा दिया गया है, क्योंकि सरकार ने इसका सारा भार खुद उठाने का दायित्व तो लिया है, अपने कंधे पर लिया है, सरकारी खजाने से ही सब कुछ दिया जाएगा। यानी पशुपालक को किसी भी स्तर पर कहीं भी किसी भी तरह की मुश्किलात पेश न आए, संकट उसके ऊपर न आए, जोखिम से उसको बचाव हो, इसके लिए सरकार ने बाकायदा सारी सुविधाएं दी हैं। अब आप समझिए यहाँ तक जितने का पशु होगा उसके जो आधार बनाया गया है, किस तरह से पशुओं का बीमा किया जाएगा, पशुओं का बीमा किया जाएगा उनके मूल्य के हिसाब से, वो कितनी उनकी बाजार का उनका मूल्य क्या है, मूल्य के हिसाब से जो उनका बीमा बनता है, बीमे पर जो प्रीमियम बनता है, प्रीमियम का 85% हिस्सा सरकार वहन करेगी, मात्र 15% बहुत नॉमिनल होगा, बहुत कम धनराशि होगी प्रीमियम के तौर पर जो किसान को देनी होगी। तो इसका सीधा सा मतलब है कि किसान की सुरक्षा का पूरा प्रबंध हर तरीके से, चाहे वो प्राकृतिक तौर से हो या कृत्रिम तौर पर से, कैसे भी अगर दुर्घटना बस की मौत होती है या उसको कोई प्राकृतिक ऐसी कोई आपदा आती है जिसमें बीमारी कोई लग जाती है, सामूहिक संक्रामक तरह के ढेर सारे रोग पशुओं में आते हैं। अभी एक हाल के वर्षों में आपने देखा एक बड़ा रोग संक्रामक चल रहा है लंपी, जिससे उनकी क्षमता घट जाती है, दूध देने की क्षमता घट जाती है, उत्पादकता घट जाती है। तो ऐसे में अगर पशुओं की सुरक्षा का प्रबंध नहीं होगा, उनको इस तरह का बीमा का कवच नहीं उपलब्ध कराया जाएगा, तो सबसे बड़ा संकट उन किसानों पर आएगा, उन पशुपालकों पर आएगा जिनके पास रोजी रोटी का एकमात्र साधन है पशुपालन।
1: आपने बताया कि जो इसका प्रीमियम आएगा, उस प्रीमियम का 85% हिस्सा सरकार वहन करेगी और 15% हिस्सा ही पशुपालकों को या पशुधन रखने वाले किसानों को वहन करना होगा। इसमें
0: जी
1: लाभार्थी का सत्यापन करना या ये जो इस तरह की जो पॉलिसी ली जाएगी उसके बारे में थोड़ा सा बताएं कि किस तरह, कितना आसान होगा या उसके लिए कौन से प्रयास करने होंगे एक पशुधन इस्तेमाल करने वाले को या किसानों को?
0: देखिए इसके लिए सबसे बड़ी बात क्या है कि अब तक के जितने कमजोर कड़ी थी, जहां जहां से मुश्किलें पेश आया करती थी, उन सबको किसी भी तरह के घपलेबाजी, किसी तरह का भ्रष्टाचार, किसी तरह का मुश्किल ना आए, इसलिए ये व्यवस्था की गई है। ये जो यूनिफाइड प्लेटफॉर्म बनाया गया है पशुपालकों की, देखिए क्या है इसमें, पशुपालक किसान, पशुपालन विभाग, बीमा कंपनियां और पशु चिकित्सक, जो लोकल लेवल पे हर ब्लॉक स्तर पर, ब्लॉक में क्या पंचायत स्तर पर वेटरनरी के डॉक्टर्स बैठे हुए हैं, ये सब

0: का एक मिला जुला मंच है। इस मंच पर हर तरह की सुविधा दी गई है, जैसे हर पशु के कान में एक टैगिंग की जाती है, ईयर टैगिंग बोलते हैं, उनके कान में एक टैग लगता है, 12 डिजिट का होता है। 12 डिजिट का ईयर टैगिंग जो लगाया जाएगा वो धोखाधड़ी रोकने और पशुओं की सटीक पहचान के लिए इसे भारत पशुधन डेटाबेस के तौर पर से इसे लिंक किया गया है, ताकि कोई गड़बड़ी ना करे किसी भी तरह का, कोई और पशु दिखाकर, किसी और पशु के मरने की सूचना देकर किसी तरह की बीमा कंपनियों के साथ धोखाधड़ी न हो सके। सरकार ने यह पुख्ता प्रबंध किया है। और इसकी जो क्लेम लेने की है, मान लीजिए किसी का पशु मरता है तो उसे कोई मुश्किल पेश ना आए तो उसे ऑनलाइन मृत्यु प्रमाण पत्र और पोस्टमार्टम रिपोर्ट अपलोड करना पड़ेगा, और ये निपटान की प्रक्रिया इतनी जल्दी होगी कि 21 दिनों के अंदर ज्यादातर दावे पूरे कर लिए जाएंगे, यानी उनके क्लेम का पैसा जो उनको मिलना है वो मिल जाएगा, क्योंकि उनके साथ पशु के मरने की सूचना कौन देगा। ये उसी प्लेटफॉर्म पर जो वेटनरी का डॉक्टर जो उसका स्टेक होल्डर है, जो उसका एक पक्षकार है, जब बीमा होगा तो ये बीमा कंपनियां, किसान और पशुपालक और ये जितने भी पार्ट हैं, ये सब एक साथ मिलकर डिजिटल प्लेटफॉर्म पर इसकी जानकारी डालेंगे, पोस्टमार्टम की रिपोर्ट डालेंगे और उस पर डालेंगे उसकी डेथ सर्टिफिकेट, ये जारी करेगा वो डॉक्टर, जारी करने के 21 दिन के अंदर, हो सकता है इससे पहले भी उसका दावा मिल जाए।
1: आपने ये तो बात करी कि अगर किसी तरह से उसको बीमारी होती है, किसी तरह से दुर्घटना होती है, क्या प्राकृतिक आपदाओं से भी इन पशुधन को बचाने के लिए इस तरह की बीमा का सुरक्षा कवर मिलेगा?
0: सरकार द्वारा जो ये किया गया है, असमय मृत्यु से होने वाली आर्थिक, मतलब जो किसानों को मिलेगा, हाँ ये दोनों को मिलेगा।
1: मतलब इसमें प्राकृतिक आपदाओं के कारण भी, अगर जैसे कि आजकल बहुत सारे भारतीय क्षेत्रों में बाढ़ का
0: जैसे
1: प्रकोप,
0: बाढ़ आ जाए, भूकंप आ जाए, भूस्खलन हो जाए, कोई ऐसी मुश्किल पेश आ जाए, तो ऐसे समय में भी ये इसका प्रबंध किया गया है कि उसके उसका जो नुकसान हुआ है उसकी भरपाई बीमा कंपनियों के थ्रू सरकार करेगी।
1: पशुधन का मूल्यांकन करने की क्या प्रक्रिया रहेगी, क्या उस बारे में आप थोड़ी सी जानकारी दे सकेंगे?
0: देखिए क्या है, इसके लिए भी सरकार के पास एक डिजिटल प्लेटफॉर्म है जिस पर पशु की खरीद बिक्री भी होती है। एक प्लेटफॉर्म और है, एक डिजिटल प्लेटफॉर्म पशुपालन मंत्रालय के पास, विभाग के पास, और हर डिस्ट्रिक्ट में कह सकते हैं, हर स्टेट में कह सकते हैं, इस तरह का प्लेटफॉर्म है जहां से, क्योंकि पशुओं की खरीद बिक्री का एक बड़ा मुश्किल होती थी कि अगर मान लीजिए हम 500 किलोमीटर दूर से कोई पशु खरीदते हैं और उसको हम कहीं और ले जाना है तो जो उसके ढुलाई और बहुत मुश्किलें पेश आती थी, तो उस पशु के स्वास्थ्य के बारे में, उस पशु की प्रोडक्टिविटी के बारे में, उस पशु के क्वालिटी के बारे में, वो किस ग्रेड का है, वो किस प्रजाति का है, ये सारी चीजें वेटनरी का डॉक्टर प्लस वो जो किसान के यहाँ दूध देने की क्षमता कितनी है, उसकी प्रोडक्टिविटी कितनी है, कितनी बार वो बच्चा दे चुकी है, ये सारी डेटा बेस ऑलरेडी होगा, उसके आधार पर बाजार मूल्य तय किया जाता है और उसी मूल्य को आधार बनाया जाएगा।
1: इस पोर्टल का उपयोग किस तरह की किया जा सकता है, क्या सिर्फ कंप्यूटर पे ही, या इसमें कहीं कोई मोबाइल ऐप भी है जिसके द्वारा इस पोर्टल का उपयोग किया जा सकता है?
0: अभी स्टार्टिंग में इसको यह पोर्टल पर ही इसका उपयोग करेंगे,
1: जी
0: जो आपके सामुदायिक केंद्र बने हुए हैं इस तरह के, PSC जिसको कहते हैं ना, उसके मार्फत आप जाकर के इसको रजिस्टर्ड करा सकते हैं। अपने पशु को आपको उस पर रजिस्टर्ड कराना पड़ेगा, क्योंकि जो बीमा कंपनी है बिना रजिस्ट्रेशन के तो देगी नहीं। आपके पशु का जो बीमा कंपनी है जो देगी, आपको क्लेम देने वाली है, या जो बीमा देगी, जो प्रीमियम वसूलेगी सरकार से या किसान से, वो कंप्लीट जानकारी रखेगी और आपको अपने सामुदायिक CSC केंद्र से जाकर करके उसको रजिस्टर करना पड़ेगा। हाँ एक काम आपके यहाँ हो सकता है कि आपके ऐप अगर आप उस पर डाउनलोड कर लें, हमें लगता है आने वाले दिनों में जल्दी ही इसे ऐप के थ्रू भी संचालित किया जाने की व्यवस्था की जाए। जी
1: किसानों की जो आय आपने सुनिश्चित करने की बात करी, तो क्या इसके लिए सरकार ने जागरूकता फैलाने के लिए क्या कोई और भी उपाय किए हैं जिससे इसका व्यापक प्रचार प्रसार हो सके और सभी पशुपालकों को या किसानों को इसका लाभ मिल सके?
0: सरकार के पास सारा डेटा है, क्योंकि जो सरकार लोगों को भेजती है तरह तरह की सूचनाएं, मौसम के बारे में, खेती किसानों के बारे में देती है, तो ज्यादातर पशुपालक किसानी खेती से जुड़े हुए हैं, उनके सबके डेटाबेस सरकार के पास है, जिनकी इंफॉर्मेशन लगातार जाती रहती है, और अब उसी के थ्रू, SMS के थ्रू सबको ये बराबर जानकारी दी जाएगी और दी जा रही है हमें लगता है। और इसके अलावा जो प्रचार और के संसाधन है, जो हम और आप बातचीत कर रहे हैं आकाशवाणी के थ्रू, ये हम और आप बैठ के जो चर्चा कर रहे हैं, एक तरह से कह सकते हैं उनके ये जानकारी देने के लिए ही, उन्हें जागरूक बनाने के लिए ही, कि आपका जो बहुमूल्य पशु है, जो आपके पास ऐसे कीमती पशुओं की मौत हो जाने या उनके नुकसान हो जाने या उनकी उत्पादकता क्षमता घट जाने पर उन्हें नुकसान न हो, इस तरह की जानकारी किसान भाइयों को होनी चाहिए, ताकि उन्हें लगे कि जैसे उनकी फसलों के लिए बीमा योजना है, अगर फसल पर कोई नुकसान आ जाता है तो उन्हें कैसे

0: प्राप्त हो जाता है। ठीक ऐसे ही उनके पशुओं के बारे में सारी जानकारी, क्योंकि 12 डिजिट का टैग लगा है पशु के कान में, यह टैग के थ्रू उसको पता चल जाता है कि पशु की लोकेशन क्या है, पशु सच में मर गया है या नहीं मरा है, या वो किसके बारे में क्या जानकारी दी जा रही है। तो ये सारी जानकारी किसान को उसी के थ्रू दी जाएगी, डिजिटली ही आसानी से पहुंचा जा सकता है किसान तक।
1: इसमें कुछ रियल टाइम मॉनिटरिंग या निगरानी व्यवस्था की भी
0: हाँ,
1: सुविधा?
0: निगरानी के लिए ही जो 12th का यह टैगिंग की गई है उसका
1: जी
0: मायने यही है, वो एक कह सकते हैं आर्यन टैग है। यही बैठ के आप पता कर सकते हो कि उस पशु की लोकेशन क्या है। उस पशु की बराबर आपको स्टेटस देना पड़ेगा। अगर मान लीजिए पशु बीमार होता है तो इसकी जानकारी भी उसी टैग के थ्रू आपके अपने ऐप पर लगातार देनी पड़ेगी या CSC के थ्रू देनी पड़ेगी। ऐसा नहीं कि अचानक आपका पशु मर गया, आपने एक दिन बताया कि अभी आज मर गया, जबकि वो मान लीजिए 15 दिन से, 20 दिन से, महीने से, 2 महीने से बीमार चल रहा है, उसकी क्षमता घट रही है, उसका इलाज नहीं हो रहा। नहीं, ये सब आपको लगातार करना पड़ेगा, इसकी सूचना देनी पड़ेगी और वेटनरी डॉक्टर को लगातार संपर्क में रहना होगा, उसको भी दिखाना पड़ेगा, क्योंकि उसकी रिपोर्ट को ही आधार बनाया जाएगा। रियल टाइम तभी तो पता चलेगा कि पशु की स्थिति क्या है। किसी भी बीमा कंपनी को जो भुगतान करेगी क्लेम, वो कैसे दे पाएगी? इसलिए किसान बराबर जानकारी देता रहेगा। अगर उस पशु किसी तरह के संकट में है तो इसकी भी जानकारी आपको उसको देनी पड़ेगी।
1: आमतौर पे
0: मेरे
1: काफी
0: ख्याल
1: जटिल
0: में
1: व्यवस्था लगती थी कि उम्मीद करते हैं कि जो पशुपालक हैं या जो किसान हैं या सीमांत किसान हैं जिनका मुख्य आय का स्रोत पशुपालन है तो उनके लिए एक बेहतरीन व्यवस्था इस बीमा पोर्टल के माध्यम से हो सकेगी।
0: ये जो व्यवस्था की गई है, लाभार्थी जो अभी दिया जा रहा है कि प्रीमियम तो सिर्फ 15% ही देना पड़ेगा पशुपालक को, बाकी सरकार वहन करेगी। इसके लिए एक सीमा तय की गई है। इसकी सीमा यह है कि अगर आपके पास गाय या भैंस, अधिकतम 5 मवेशियों का ही आप ये करा सकते हैं।
1: अधिकतम संख्या भी इसमें निर्धारित की गई है।
0: अधिकतम सीमा इसकी तय की गई है और
1: जी
0: इसका जो भुगतान की व्यवस्था की जाएगी वो 60% केंद्र सरकार देगी और 40% हिस्सा राज्य सरकार देगी। तो ये व्यवस्था की गई है।
1: एसपी सिंह जी, कार्यक्रम में शामिल होने के लिए और हमारे सभी श्रोताओं को इतनी महत्वपूर्ण जानकारी सरल शब्दों में देने के लिए धन्यवाद।
0: धन्यवाद।
2: अभी आप सुन रहे थे भारत में पशुपालन बीमा के डिजिटलीकरण की पहल पर चर्चा। इसमें भाग ले रहे थे वरिष्ठ पत्रकार एसपी सिंह। कार्यक्रम का संचालन कर रहे थे अमित गोयल। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग द्वारा प्रस्तुत किया गया। इसे आप हमारे मोबाइल ऐप News on AIR और यूट्यूब चैनल News on AIR ऑफिशियल पर भी सुन सकते हैं।
3: मंथन
4: घर की बंदूक थामने का शौक लग गया। परिवार की दुनाली बंदूक से वो टीन के डब्बों पे निशाना लगाया करती। निशाने एकदम सटीक बैठते। उसके ममेरे भाई ने एशियन गेम्स 2018 में ट्रैप शूटिंग में रजत पदक पाया तो उसने भी सोचा अब ये मौका है गेम को सीरियसली लेने का। ट्रेनिंग में लग गई और 5-6 साल में ही गोली की स्पीड से शिखर पे जा पहुंची और आज उसने स्वर्ण पदक पे निशाना साधा, नया एशियाई रिकॉर्ड बना डाला। खेलों की दुनिया सपनों को सच्चाई में बदलने वाली ऐसी कितनी ही कहानियों से भरी हुई है। 20वें एशियाई खेलों के किताब में भी भारतीय नए पन्ने जोड़ने की जद्दोजहद में लगे हुए हैं। एशियन गेम्स आईची नगोया पर आज के हाइलाइट्स कार्यक्रम के साथ हम हैं उपस्थित। नमस्कार, मैं हूँ अनुपम पाठक। आज की हेडलाइंस। नीरू ढांडा ने महिला ट्रैप में इतिहास रचा, स्वर्ण पदक और नया एशियाई रिकॉर्ड। महिला टीम के साथ देश के नाम किया आज का दूसरा पदक, रजत पदक। एथलेटिक्स के अंतिम दिन आया स्वर्ण पदक और साथ में 4 कांस्य पदक भी। बॉक्सिंग में अंकुश पंघाल और परवीन हुडा ने शान से फाइनल्स में एंट्री की तो नरेंद्र बेरवाल को मिला कांस्य पदक। स्क्वाश में भारतीय महिला टीम क्वार्टर फाइनल में पहुंची और आर्चरी में भी 3 तीरंदाज रिकर्व स्पर्धा के क्वार्टर फाइनल्स में। शूटिंग और एथलेटिक्स दोनों में ही शानदार प्रदर्शन आए आज, लेकिन एथलेटिक्स से पहले बात शूटिंग की। नीरू ने नया इतिहास रच दिया आज। शॉटगन की ये शेरनी खेलों के इतिहास में पहला महिला स्वर्ण पदक जीतने वाली शूटर बनी। निशाने इतने सटीक कि नया एशियाई रिकॉर्ड। और यही नहीं, उन्हीं के दम पर बहुत कड़ी स्पर्धा में टीम रजत पदक भी भारत के खाते में गया। एक बार फिर तालियां बजाने के लिए सुनिए पूरा विवरण मुदिता से।
5: शूटिंग में भारत ने 1 स्वर्ण और 1 रजत के साथ यादगार प्रदर्शन किया। ट्रैप शूटिंग टीम इवेंट में भारतीय

0: महिलाओं ने शानदार प्रदर्शन करते हुए रजत पदक जीता। नीरू ढांडा, आशिमा अहलावत और मनीषा कीर की भारतीय तिकड़ी ने कुल 328 अंक हासिल किए और दूसरे स्थान पर रही। चीन ने 346 अंकों के साथ स्वर्ण पदक हासिल किया, वहीं कुवैत ने 325 के साथ कांस्य पदक जीता। और फिर आया गोल्ड मेडल, जो नीरू ढांडा ने महिलाओं की ट्रैप स्पर्धा के फाइनल में हासिल किया। 26 साल की भारतीय शूटर ने 30 में से 28 शॉट स्कोर किए और टॉप पर रही। उनकी सबसे करीबी प्रतिद्वंदी चीन की सुन युनोंग से वो 2 शॉट आगे रही। उनके स्कोर ने एक नया एशियन रिकॉर्ड और एशियन गेम्स रिकॉर्ड भी बनाया। इस जीत के साथ नीरू एशियन गेम्स में इंडिविजुअल ट्रैप शूटिंग में मेडल जीतने वाली पहली भारतीय महिला बन गई हैं। इसके पहले 2025 में नीरू ने वेमेन ट्रैप इवेंट में अपना पहला एशियन चैंपियनशिप गोल्ड मेडल जीता। 2026 में नीरू ने इटली के लोनाटो में ISSF शॉटगन वर्ल्ड कप में वेमेन ट्रैप में व्यक्तिगत स्पर्धा में गोल्ड मेडल जीतने वाली पहली भारतीय महिला बनकर इतिहास रच दिया। आइए सुनते हैं उनके कोच मनशेर सिंह ने नीरू ढांडा के बारे में क्या कहा।
1: She joined the academy and the-

0: 25 में नीरू ने विमेन ट्रैप इवेंट में अपना पहला एशियन चैंपियनशिप गोल्ड मेडल जीता। 2026 में नीरू ने इटली के लोनाटो में ISSF शॉटगन वर्ल्ड कप में विमेन ट्रैप में व्यक्तिगत स्पर्धा में गोल्ड मेडल जीतने वाली पहली भारतीय महिला बनकर इतिहास रच दिया। आइए सुनते हैं उनके कोच मनशेर सिंह ने नीरू ढांडा के बारे में क्या कहा।
1: And she got COVID and we lost her in the hospital. We couldn't find her for 10 days. And something happened to her. Found her lying in a bed somewhere with the most distressful condition. Pulled her out of there, got her support in Chandigarh. Then psychologists had to get involved because she was so traumatized. So we didn't manage all that support. Got her back into the academy. Today she's an Asian champion because of her life-changing experiences. Become the most strongest shooter in a final in the present group of shooters.
2: एथलेटिक्स के अंतिम दिन हुए सभी फाइनल्स में भारतीय उपस्थिति थी, जो दिखाती है भारतीय एथलीट्स के बढ़ते हुए स्तर को। लेकिन हाँ, अगर पदकों के हिसाब से आंकें तो जरूर पोडियम फिनिश में हम कहीं न कहीं थोड़े ढीले दिखे हैं। पिछले एडिशन में 6 स्वर्ण पदक दिलाने वाले इस खेल में इस बार अंतिम दिन तक पहले स्वर्ण पदक की बाट जोही जा रही थी, और आज ये उम्मीद पूरी हुई। अंतिम से ठीक पहले की स्पर्धा में लड़कियों ने पूरी की 4x400 मीटर रिले में। पहले ही एक पदक जीत चुकी विद्या रामराज ने अंतिम लैप में क्या जबरदस्त एंकर दौड़ लगाई। पूरी ताकत के साथ शानदार फर्राटा और भारतीय राष्ट्रगान की धुन फिजा में गूंज उठी। स्वर्ण पदक 3:01.61 के साथ। आज पूरे समय बारिश की फुहारों के बीच हुई स्पर्धाओं में भारत ने 4 कांस्य पदक और जीते। 4x400 मीटर पुरुषों में डिफेंडिंग चैंपियन था भारत, आज कांस्य पदक आया। लेकिन याद रहेगी तीसरे नंबर पर जय की दौड़, जिसने भारत को लड़ाई की स्थिति में ला दिया, और उसके बाद विशाल थिन्नारसु की अंतिम दौड़ बस देखने ही वाली थी। भारत को तीसरे स्थान पर ले आए वो। इस स्पर्धा में स्वर्ण पदक जापान की टीम ने पाया। किसान परिवार में जन्मे, फौज में भर्ती होने का सपना सच करने के लिए अलीगढ़ की सड़कों पर दौड़ की तैयारी करते करते फौज में आने के बाद उनका टैलेंट पहचाना गया, और आज वो गुलवीर सिंह पिछले 1-2 सालों में सबसे उम्दा प्रदर्शन करने वाले भारतीय एथलीट हैं। अपनी पेट 5000 मीटर स्पर्धा में वो 13:32.75 के साथ तीसरे स्थान पर आए, और कांस्य पदक के साथ इन खेलों में अपना तीसरा पदक पाया। 40 साल बाद इन खेलों में 3 या ज्यादा पदक जीतने वाले खिलाड़ी बने वो। ऊंची कूद में पूजा ने अपने 5वें प्रयास में 1.84 मीटर ऊंचाई पार की, जो उन्हें दिला गई कांस्य पदक। स्वर्ण पदक उज्बेकिस्तान की बार्नोखोव ने 1.90 मीटर के साथ जीता। देव कुमार मीणा ने पुरुष पोल वॉल्ट में 7वां स्थान पाया, लेकिन उनकी तारीफ इसलिए कीजिए कि अपना बेस्ट झोंक दिया और नया राष्ट्रीय रिकॉर्ड बनाया। कुलदीप 10वें स्थान पर रहे। तो महिला हैमर थ्रो में तानिया चौधरी ने भी अपना बेस्ट दिया, 65.35 मीटर दूर तारगोला फेंका, लेकिन चौथा स्थान ही पाया। महिला 800 मीटर में पूजा 7वें, तो पुरुष 800 मीटर में मोहम्मद अफसल अंतिम स्थान पर रहे। एथलेटिक्स में भारत का अभियान 1 स्वर्ण पदक, 9 रजत पदक और 14 कांस्य पदक। मुक्केबाजों ने रिंग में भारतीय दबदबा आज भी बनाए रखा। पदक तो पहले से ही पक्के थे। आज सेमीफाइनल में 3 मुक्केबाज रिंग में उतरे, 2 के पंच उन्हें ले गए फाइनल्स में, यानी अब दांव स्वर्ण पदक पर रहेगा। वो दृश्य फिर से खींचने की कोशिश प्रेरणा शर्मा द्वारा।
3: इट वॉज एन इनक्रेडिबल डे फॉर इंडिया इन द बॉक्सिंग रिंग एज वेल। टू रिकैप द एक्शन फ्रॉम द मॉर्निंग सेशन, द इंडियन बॉक्सिंग कंटिंजेंट पुट ऑन एक्सप्लोसिव परफॉर्मेंसेस, लॉकिंग इन 3 मेजर मेडल आउटकम्स। इन द वुमेन 65 kg सेमीफाइनल, परवीन हुडा डिलीवर्ड अ डोमिनेंट डिस्प्ले, डिफीटिंग चाइनाज ली शू 5-0 टू स्टॉर्म इन टू द फाइनल। दैट फर्स्ट हाफ विन गारंटीड हर एटलीस्ट अ सिल्वर मेडल, पुटिंग इंडिया विद इन टचिंग डिस्टेंस ऑफ अनदर गोल्ड। ओवर इन द मेन्स 80 kg सेमीफाइनल, अंकुश पंघाल पुट ऑन अ मास्टर क्लास, पुलिंग ऑफ अ ब्रिलियंट कमबैक टू आउटपंच उज़्बेकिस्तान फासलुद्दीन। हिज विक्ट्री सिक्योर्ड हिज प्लेस इन द फाइनल एंड अश्योर्ड टीम इंडिया ऑफ अनदर कंफर्म्ड सिल्वर मेडल एट मिनिमम। एंड इन द मेन्स प्लस 90 kg सेमीफाइनल, हेवीवेट स्टार नरेंद्र बरवाल स्टूड टो टू टो इन अ फियर्स बैटल अगेंस्ट द वर्ल्ड चैंपियन एबेक ओरलबे। डिस्पाइट अ करेजियस एफर्ट, बरवाल वाज एज्ड आउट, साइनिंग ऑफ विद अ हार्ड अर्न ब्रॉन्ज मेडल फॉर द नेशन, हिज सेकंड कंसेक्यूटिव एशियन गेम्स ब्रॉन्ज। 2 spots booked in the gold medal finals and a bronze logged in from earlier today. What a phenomenal show by our boxers inside the ring. Parveen Hooda delivered a dominant display, defeating China's Li Shu 5-0 to storm into the

0: Final. That first half win guaranteed her at least a silver medal, putting India within touching distance of another gold. Over in the men's 80 kg semi-final, Ankush Panghal put on a masterclass, pulling off a brilliant comeback to outpunch Uzbekistan's Fazliddin. His victory secured his place in the final and assured Team India of another confirmed silver medal at minimum. And in the men's plus 90 kg semi-final, heavyweight star Narinder Barwal stood toe-to-toe in a fierce battle against the world champion Ebek Orelbey. Despite a courageous effort, Berwal was edged out, signing off with a hard-earned bronze medal for the nation. His second consecutive Asian Games bronze. Two spots booked in the gold medal finals and a bronze logged in from earlier today. What a phenomenal show by our boxers inside the ring.
1: आज रिकर्व की एकल स्पर्धाएं थीं। धीरज देव बोमरा से तो उम्मीदें स्वाभाविक थीं, लेकिन नीरज ने भी शानदार तीर चलाए और कुमकुम ने कमाल कर दिया, यानी तीन धनुर्धर चिड़िया की आंख यानी स्वर्ण पदक की राह में क्वार्टर फाइनल तक पहुंच गए। और माइक की कमान मुदिता के पास आप तक ये विवरण पहुंचाने के लिए।
2: तीरंदाजी में धीरज बोमदेवरा और नीरज चौहान ने पुरुषों की रिकर्व एकल स्पर्धा के क्वार्टर फाइनल में प्रवेश कर लिया है। नीरज चौहान ने विश्व चैंपियनशिप में कांस्य पदक विजेता रहे कोरिया के किम जे देओ को 6-4 से पराजित किया। वहीं टॉप सीड और मौजूदा एशियन चैंपियन धीरज बोमदेवरा ने ताइपे के चेंग शियांग हुई पर 6-2 से जबरदस्त जीत दर्ज की। अगले राउंड में सेमीफाइनल स्पॉट के लिए वर्ल्ड कप फाइनल चैंपियन धीरज का मुकाबला उज़्बेकिस्तान के अमीर खून सादिकोव से और नीरज चौहान का भूटान के लैम दोर्जी से होगा। वहीं कुमकुम अनिल मोहोद महिलाओं की रिकर्व इंडिविजुअल प्रतिस्पर्धा के क्वार्टर फाइनल में पहुंच गई हैं। क्वार्टर फाइनल में कुमकुम का मुकाबला रिपब्लिक ऑफ कोरिया की कांग च्याय यंग से होगा। यंग ने भारत की ही दूसरी तीरंदाज कीर्ति शर्मा को हराकर क्वार्टर फाइनल में प्रवेश किया है।
1: स्क्वाश में महिला टीम पूरे रॉ में दिख रही है। नए स्टार्स पैदा कर रहा है ये गेम्स। 18 बरस की अनहत सिंह तो स्क्वाश की नई पोस्टर गर्ल बन गई हैं। महिलाओं का जलवा आज भी जारी रहा। खुलासे के साथ मुदिता।
2: भारतीय महिला स्क्वाश टीम ने अपने आखिरी पूल सी मैच में ईरान को 3-0 से हरा दिया। इस जीत के साथ भारतीय टीम अपने ग्रुप में शीर्ष पर रहते हुए क्वार्टर फाइनल में पहुंच गई है। तन्वी खन्ना ने ईरान की नरगिस सुल्तानी के खिलाफ मैच जीता, जो खेल के बीच में ही रिटायर हो गयी। अनाहत सिंह ने फरिश्ते इख्तदारी को सीधे गेमों में 11-5, 11-4, 11-7 से शिकस्त दी। वहीं जोशना चिनप्पा ने भी अपना मैच ईरान के खिलाफ 11-1, 11-3, 11-9 से जीत कर 3-0 का क्लीन स्वीप पूरा किया। पूल सी में टॉप करने के बाद भारतीय महिला स्क्वाश टीम अब क्वार्टर फाइनल में सिंगापुर से मुकाबला करेगी।
1: हाल ही में हुए डेविस कप मुकाबले में सुमित नागल दक्षिण कोरिया के खिलाड़ी से हार गए थे और आज भी विपक्षी कोरिया से ही था, लेकिन सुमित के रैकेट के इरादे कुछ और थे। दूसरे राउंड के मुकाबलों में और भी भारतीय खिलाड़ी कोर्ट पर उतरे। टेनिस पर आज की कहानी अभिनव कुमार झा से।
3: एशियन गेम्स में टेनिस खिलाड़ियों के लिए मंगलवार का दिन अच्छा रहा। पुरुष एकल के दूसरे दौर में डीके सुरेश ने इंडोनेशिया के गुनावान त्रिसमोहन तारा को कड़े मुकाबले में 7-5, 7-6 से हराकर प्री क्वार्टर फाइनल में जगह बनाई। वहीं सुमित नागल ने बारिश के कारण दो दिन तक चले मुकाबले में दक्षिण कोरिया के सियोंग चान होंग को 6-4, 6-0 से हराकर अंतिम 16 में प्रवेश किया। उनका अगला मुकाबला उज़्बेकिस्तान के सर्गेई फोमिन से होगा। आज भारतीय खिलाड़ियों के डबल्स मुकाबले भी कार्यक्रम में थे। पुरुष डबल्स के दूसरे राउंड में यूकी भामरी और डीके सुरेश की जोड़ी का सामना कजाकिस्तान की जोड़ी से हुआ, जहां भारतीय जोड़ी ने 6-1, 7-5 से मैच अपने नाम किया। जबकि अनिरुद्ध चंद्रशेखर और एन श्रीराम बालाजी की जोड़ी का सामना नेपाल के अभिषेक बस्तौला और प्रदीप खड़का से होना था, जहां पूरे मुकाबले में एक तरफा तरीके से 6-2, 6-1 के साथ भारतीय जोड़ी ने जीत दर्ज की। अब बात करें मिश्रित डबल्स की, तो मिश्रित डबल्स के पहले राउंड में अंकिता रैना और एन श्रीराम बालाजी की जोड़ी का सामना हांगकांग के यूडीस चोंग और कैरन थॉम्पसन से हुआ, जिसमें 4-6 और 4-6 के सीधे सेटों से भारतीय जोड़ी को हार का सामना करना पड़ा और इस प्रकार मिक्स डबल्स की इस जोड़ी का सफर एशियन गेम्स में यहीं समाप्त हुआ। हालांकि यूकी भामरी और ऋतुजा भोसले के रूप में मिक्स डबल्स में भारतीय चुनौती अभी कायम है।
1: वॉलीबॉल में पूल सी में आज एक सुपर रोमांचक मैच हुआ। भारत कुवैत से पहले दोनों से ठार बैठा, लेकिन इसके बाद वो जुझारूपन और संघर्ष दिखाया कि देखने वालों की सांसें थम जाएं। भारत अपने पूल में टॉप पर। और माइक पर प्रेरणा शर्मा।
0: इंडिया हैव प्रोड्यूस्ड अ सेंसेशनल कमबैक टू डिफीट कतर 3-2 इन देयर फाइनल पूल सी एनकाउंटर। इंडिया हैड ऑलरेडी

0: City beaten Vietnam and Hong Kong China 3-0 in their opening matches, but Qatar provided a much tougher challenge. They edged the opening set 28-26 after India missed 2 set points and then took the second 27-25 despite India building a 4-point lead midway through the set. 2 sets down, India showed tremendous composure to turn the match around. They kept their hopes alive by taking the third set 25-23 before dominating the fourth to win 25-20 and level the contest. That sent the match into a deciding fifth set, which turned into another dramatic battle. India held their nerve in their extended tiebreak to win 24-22 and complete a stunning reverse sweep. With 3 wins from 3 matches, India finished unbeaten at the top of Pool C and advanced to the quarterfinals in style.
1: केनो स्लालोम बहुत दर्शनीय होती है। तेज बहाव वाले पानी में नाव तेज और संतुलित तरीके से खेना और साथ ही लटकते हुए द्वारों के बीच में से। केनो और कयाक में आज क्या हुआ बता रहे हैं अभिनव कुमार झा। केनो स्लालोम बहुत दर्शनीय होती है। तेज बहाव वाले पानी में नाव तेज और संतुलित तरीके से खेना और साथ ही लटकते हुए द्वारों के बीच में से। केनो और कयाक में आज क्या हुआ बता रहे हैं अभिनव कुमार झा।
2: केनो स्लैलम में भारतीय खिलाड़ियों ने सेमीफाइनल की ओर कदम बढ़ाया है। पुरुष कयाक सिंगल हीट्स में हितेश केवट ने 118.22 सेकंड के साथ 8वां स्थान प्राप्त किया, वहीं प्रद्युमन सिंह राठौड़ ने 127.70 सेकंड के साथ 10वां स्थान प्राप्त कर सेमीफाइनल राउंड के लिए अपनी जगह पक्की की। बात करें महिला कयाक सिंगल हीट में तो शिखा चौहान ने भी 344.87 सेकंड के साथ सेमीफाइनल में जगह बनाई, जबकि महिला केनो सिंगल में पल्लवी जगताप और रीना सेन ने हिस्सा लिया था। जहां पल्लवी जगताप ने 7वां स्थान प्राप्त करके तो वहीं रीना सेन ने 9वां स्थान प्राप्त करके सेमीफाइनल के लिए अपना नाम दर्ज कराया।
1: बहाव वाले पानी से अब चलते हैं अपेक्षाकृत शांत समंदर की ओर। मौसम और बारिश ने सेलिंग में आज खासा व्यवधान डाला। सर्फिंग में एक ही भारतीय स्पर्धा में बचा था। आज क्वार्टर फाइनल पुरुष शॉर्टबोर्ड में लहरों से उनकी गुफ्तगू कैसी रही जानते हैं अभिनव से।
0: Looking back at the earlier action from Pacific Long Beach in Tahara, surfing made its official Asian Games debut, a huge milestone for the sport. In the men's shortboard quarterfinals, Heat 4, India's Kishore Kumar Anbarasu went head-to-head against Toby Espejon of the Philippines. Kishore put up a spirited effort on the waves, finishing with a score of 5.37 to Espejon's 8.53, which unfortunately ended India's historic run just shy out of the medal rounds. Even though the campaign came to a close, Kishore's quarterfinal appearance marked a landmark moment for Indian surfing.
1: आज से साइकिलिंग ट्रैक की स्पर्धाएं आरंभ हो गईं। भारतीय दल में कुल 14 सदस्य हैं। कई स्पर्धाओं में भारतीय साइकिल सवार हवा से बातें करने की कोशिश करते दिखे। विवरण के साथ एक बार फिर अभिनव।
2: ट्रैक साइकिलिंग में भारत के लिए दिन चुनौतीपूर्ण रहा। महिला टीम स्प्रिंट क्वालिफिकेशन में सेलेस्टिना, सरिता कुमारी, कीर्ति रंगास्वामी चिका और त्रिशा पॉल की भारतीय टीम छठे स्थान पर रही, जिसकी बदौलत उन्होंने फर्स्ट राउंड के लिए क्वालिफाई किया, लेकिन फर्स्ट राउंड में चाइनीज ताइपे की टीम से हार का सामना करना पड़ा। कुछ ऐसा ही सूरतेहाल पुरुष टीम स्प्रिंट का भी रहा, जहां रोजित सिंह यांगलेम, डेविड बेकहम, एल्का टोचोंगो और रोनाल्डो सिंह लेतोन जाम की टीम को चाइना से हार के एशियन गेम्स से बाहर होना पड़ा। आपको बता दें श्रोताओं कि इसी चाइनीज टीम ने इस इवेंट में पुरुष टीम स्प्रिंट में गोल्ड मेडल भी अपने नाम किया। हालांकि इस इवेंट में भी क्वालिफिकेशन राउंड में भारतीय टीम ने 7वें स्थान पर रहकर फर्स्ट राउंड के लिए क्वालिफाई किया था। वहीं बात करें महिला टीम परशूट में तो हर्षिता झाकर, पूजा बबन डानोले, मीनाक्षी और स्वास्ति सिंह की भारतीय टीम को फर्स्ट राउंड में ज्यादा समय लेने के कारण बाहर कर दिया गया, किंतु दिन की शुरुआत इन्होंने भी क्वालिफिकेशन राउंड में क्वालिफाई करके की थी, जहां इन्होंने 5वां स्थान हासिल किया था।
1: कुराश में कल एक पदक आया था और आज अंतिम भारतीय एंट्री भी स्पर्धा में थी। हुआ क्या बता रही हैं मुदिता।
3: कुराश में पुरुषों के 66 किलोग्राम भार वर्ग में विपिन कुमार का अभियान राउंड ऑफ 16 में खत्म हो गया। वे साउथ कोरिया के यून ह्यूनसो से 0-3 से हार गए और इस नतीजे के साथ गेम्स में उनका इंडिविजुअल कैंपेन खत्म हो गया। इसके पहले कुराश में पिंकी वल्हारा ने महिलाओं के 78 किलोग्राम वर्ग में भारत के लिए कांस्य पदक जीता था।
1: स्पोर्ट्स क्लाइंबिंग के बारे में जानते हैं आप आज की स्पर्धा की जानकारी अभिनव से।
2: स्पोर्ट क्लाइंबिंग की स्पर्धाओं में भारत की नजरें खास तौर पर महिला स्पीड क्लाइंबिंग पर रहीं। भारत की 19 वर्षीय जोगापूर्ति ने अपने एशियाई खेल पदार्पण में शानदार प्रदर्शन करते हुए क्वालिफिकेशन राउंड में

0: 7.28 सेकंड के साथ नौवां स्थान हासिल करके महिला स्पीड क्लाइंबिंग के क्वार्टर फाइनल में तो जगह बनाई ही, साथ ही उन्होंने नेशनल रिकॉर्ड भी दोबारा से अपने नाम किया। स्पीड क्लाइंबिंग में खिलाड़ी 15 मीटर की एक समान दीवार पर सबसे तेज समय में ऊपर पहुंचने की कोशिश करते हैं, इसलिए शुरुआत, गति और संतुलन बेहद महत्वपूर्ण होता है। महिला स्पीड का क्वालिफिकेशन नागोया के पोर्ट में आयोजित किया गया। भारत के नजरिए से जोगा का क्वार्टर फाइनल में पहुंचना स्पोर्ट क्लाइंबिंग में देश की बढ़ती मौजूदगी का अहम संकेत है।
1: India has jumped from the 12th position to the 10th position with the courtesy of 2 gold medals today. India's total medal tally now stands at 52 medals, broken down into 6 gold, 21 silver and 25 bronze. China leads the table with 143 gold, 62 silver and 49 bronze, followed by Japan in second with 45 gold, 71 silver and 67 bronze medals, and the Republic of Korea in third with 24 gold, 27 silver and 44 bronze medals.
2: कल कुश्ती आरंभ होगी जिसमें पदकों की खासी उम्मीद है। निशा और सुनील कुमार मैट पर होंगे। महिला हॉकी सेमीफाइनल में दक्षिण कोरिया से भिड़ंत होगी। बॉक्सिंग में प्रिया और लवलीना सेमीफाइनल जीतने के प्रयास करेंगी। शूटिंग में 25 मीटर रैपिड फायर में अनीश होंगे और मिक्स्ड ट्रैप स्पर्धा भी होगी। आर्चरी में कंपाउंड के मुकाबलों में भारतीय पदकों की ओर बढ़ने के प्रयास करेंगे। स्क्वैश में महिला टीम सिंगापुर से भिड़ेगी क्वार्टर फाइनल में। जूडो भी कल शुरू होगा और गोल्फ भी, जिसमें पुरुष और महिला दोनों ही मैदान पर होंगे। इसके साथ ही ई स्पोर्ट्स, सेलिंग, कैनो स्लालोम और साइकिलिंग में भी भारतीय खिलाड़ी दिखेंगे।
3: एशियन गेम्स 2026 आईची नगोया।

अभी आप राहत फ़तेह अली खान का गाया कलयुग फिल्म का गीत सुन रहे थे। गीतकार थे सईद कादरी तथा संगीतकार थे रोहिल हयात और फैज़ल रफ़ी। अब सुनिए मिथुन का लिखा व संगीतबद्ध किया फिल्म एक विलन का ये गीत, और इस गीत को आवाज़ दी है मोहम्मद इरफान ने।

मोहम्मद इरफान के गाए एक विलन फिल्म के इस गीत के साथ ही फिल्मी गीतों का ये कार्यक्रम समाप्त हुआ। ये आकाशवाणी का श्री विजयपुरम केंद्र है मौसम। मौसम विभाग से प्राप्त सूचना के अनुसार जनसेवाओं और मशवरों के लिए कोई विशेष चेतावनी नहीं है। परसों सुबह तक के मौसम संबंधी पूर्वानुमान में बताया जाता है कि अंडमान तथा निकोबार द्वीप समूह के एक दो स्थानों पर हल्की वर्षा होने या गरज के साथ बौछारें पड़ने की संभावना है। ये था मौसम का हाल। इस समय रात्रि के 10:30 हुए हैं। हमारी आज की दूसरी सभा अब यहीं समाप्त होती है। प्राइमरी चैनल पर कल प्रातः 5:25 पर हम अपनी पहली सभा में, जबकि FM 100.9 MHz विविध भारती FM पर कल सुबह 6 फिर उपस्थित होंगे। तब तक के लिए हमें आज्ञा दीजिए। जय हिंद।

मीडियम वेव 438.6 मीटर अर्थात 684 किलोहर्ट्ज़ पर ये आकाशवाणी का श्री विजयपुरम केंद्र है। आज बुधवार है, शक संवत 1948 के अश्विन माह के 8वीं तिथि अर्थात 30 सितंबर 2026। इस समय प्रातः के 5:26 हुए हैं। आज की अपनी पहली सभा में हम अपने सभी श्रोताओं का हार्दिक अभिवादन करते हैं।

0: श्रोताओं, इस समय सवेरे के 5:30 हुए हैं। अनमोल विचार।
1: सच अगर कड़वा हो तो उसे सुनना अक्सर कठिन होता है, क्योंकि वो हमारी उन कमियों और सच्चाई से हमारा सामना कराता है जिन्हें हम स्वीकार नहीं करना चाहते। लेकिन यही सच हमें अपनी गलतियों को पहचानने और स्वयं को बेहतर बनाने का अवसर देता है। मीठा झूठ कुछ पल की खुशी दे सकता है, लेकिन कड़वा सच जीवन को सही दिशा दिखाता है। इसलिए हर सच को नकारने के बजाय उसे समझने और उसे सीखने का साहस रखें, क्योंकि सच चाहे कड़वा हो, बदलाव की शुरुआत अक्सर वहीं से होती है।
0: ये था आज का अनमोल विचार, और अब आरंभ होता है भक्ति गीतों का कार्यक्रम प्रभाती वंदना। कार्यक्रम में सबसे पहले सुनिए मातृ वंदना।